मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। आज शनिवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की तिथि 2, तदनुसार 23 मई सन 2026 ईस्वी। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 5:49 होने को हैं। आरंभ होती है आज की हमारी प्रातःकालीन सभा।

0: आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है, प्रस्तुत है प्रातःकालीन दैनिक प्रसारण चिंतन।
1: इस संसार का कोई भी प्राणी, चाहे वह मनुष्य हो या पशु पक्षी, कीट पतंग भी दुख नहीं चाहते, सभी सुखी चाहते हैं और इसके लिए प्रयास भी करते हैं। मनुष्य के अतिरिक्त जितनी भी योनियां हैं वे केवल भोग योनियां हैं, यानी कि उन्हें अपने पहले के कर्मों के अनुसार निर्धारित फल भोगना पड़ता है। लेकिन मनुष्य योनि उभय योनि है, इसमें स्त्री और पुरुष दोनों नए कर्म करने का अवसर भी पाते हैं, इसीलिए मानव योनि को सबसे श्रेष्ठ बताया गया है। परमपिता परमात्मा ने मनुष्यों को सुंदर शरीर के साथ साथ आत्मा दी है, उसकी सहायता के लिए मन, बुद्धि और इंद्रियां भी दी है। इनके सदुपयोग से मनुष्य भौतिक और आध्यात्मिक दोनों क्षेत्रों में सफलता प्राप्त कर सकता है। लेकिन एक विडंबना है, मनुष्य इस धरती पर जीवन भर सुख की तलाश करता रहता है और सुख उसे मिलता नहीं। आखिर कारण क्या है? आइए हम नीति की एक उक्ति पर विचार करते हैं। आचार्य चाणक्य ने कहा था, सुखस्य मूलम धर्मः, यानी कि धर्माचरण से ही सुख प्राप्त होता है। कहने का आशय है कि सद्गुणों को अपने जीवन में अपनाना ही धर्म है। वैसे तो धर्म का शाब्दिक अर्थ है धारण करना, यानी जिसे धारण किया जाए। मनुस्मृति में धैर्य, क्षमा, मन पर नियंत्रण, चोरी का परित्याग, पवित्रता, इंद्रिय संयम, सद्बुद्धि, विद्या प्राप्ति, सत्य और अक्रोध, धर्म के ये 10 लक्षण बताए गए हैं। इन्हें जीवन में अपनाना ही धार्मिक होना है। कहने का आशय है कि यदि हम विपरीत परिस्थितियों में भी अपनी हिम्मत नहीं हारते, यदि हम दूसरों को क्षमा करने का गुण रखते हैं, हम अपने मन पर नियंत्रण रखते हैं और मन हमें इधर उधर नहीं भटकाता, हम चोरी की ओर आकर्षित नहीं होते, हम पवित्रता रखते हैं, हमें अपनी इंद्रियों पर संयम है, हमारी बुद्धि

0: अच्छी है, हम विद्या प्राप्त करते हैं, हम सच की राह पर चलते हैं, हम क्रोध नहीं करते, तो हम धार्मिक हैं। हम धर्म के लक्षणों को आत्मसात जितने अंशों में करेंगे, उतने ही अंशों में हम धार्मिक बनते जाएंगे। इस प्रकार यदि यह कहा जाए कि धर्म का अर्थ सदाचार है, तो इसमें कुछ भी अनुचित नहीं होगा। किसी विद्वान ने कहा है, मनुष्य धर्म का फल सुख चाहता है अपने लिए, लेकिन धर्म आचरण नहीं करना चाहता, और पाप का फल दुख नहीं चाहता, फिर भी जानबूझकर पाप करता है। अगर हम अपने जीवन में सुख और शांति चाहते हैं, तो हमें धर्म के सही आशय को समझना होगा और धर्म अर्थात सदाचार को जीवन का अभिन्न अंग बनाना होगा। धर्म के इसी भाव को आचारः परमो धर्मः भी कहा गया है, यानी आचार ही सबसे बड़ा धर्म है। आचार का मतलब सदाचार। मनुष्य के कर्म ही सुख और दुख के कारण होते हैं। वो चाहे तो सुखी रह सकता है, दुख से दूर रह सकता है। इसीलिए हमें अपने स्वार्थों से ऊपर उठकर ऐसे कर्म करने चाहिए, दूसरों को भी ऐसे कर्म करने की प्रेरणा देनी चाहिए जो सबके हित में हो। इससे हमारा खुद का भी भला होगा और इस संसार का भी। तो आइए इस दिशा में सोचें, विचार करें।
1: अभी आप सुन रहे थे प्रातःकालीन दैनिक प्रसारण चिंतन, आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है। प्रस्तुत है कृषक श्रोताओं को संबोधित हमारा दैनिक कार्यक्रम कृषि चर्चा। विषय है अदरक की आधुनिक खेती, और इस विषय पर जानकारी दे रहे हैं आशुतोष कुमार झा।
2: आजुक कृषि चर्चा का संग हम आशुतोष कुमार झा। किसान भाई लोकन, आजुक कृषि चर्चा का विषय है अदरक आधुनिक खेती। किसान भाई लोकन, अदरक जकरा की स्थानीय बोली में आद सेहो कहल जाता है, महत्वपूर्ण मसाला फसल में से एक है। एकर उपयोग मसाला, औषधि, चाह आदि खाद्य पदार्थ में व्यापक रूप से कयल जाता है। आधुनिक तकनीक सबक प्रयोग से किसान भाई आदक खेती में कम लागत में बेस उत्पादन आ नीक लाभ सेहो प्राप्त कर सके। किसान भाई लोकन, एकरा लेल सबसे पहले अपना सबके खेतक चुनाव आवश्यक हो जाता है। आदक खेती के लेल जीवांश युक्त दोमट बलुई से हल्लुक दोमट, जाहि में जल निकास के व्यवस्था हो। अदरक के खेती छाह वाला जगह पर कयल जाता है, जना की बाड़ी, बगीचा। किसान भाई लोकन, प्रभेद आ उपजा के गप करी तो मरान 130 से 140 क्विंटल प्रति हेक्टेयर सोठक लेल, नदिया 150 से 250 क्विंटल प्रति हेक्टेयर, बीया दर 18 से 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर, बीया प्रकंद का आकार 20 से 30 ग्राम, जाहि में 3 से 4 स्वस्थ कली हो। किसान भाई लोकन, अब बीज उपचार की बात करी तो रीडो मिल दवाई का 0.25% घोल से आधा घंटा उपचारित करी। रोपाई का दूरी 30x20 सेंटीमीटर आ बुआई का समय 15 मई से 15 जून तक। किसान भाई लोकन, छपनी, बुआई व रोपाई के बाद क्यारी सब या खेत का शीशम का हरियर पात से या मकई का ढड्ढा से 5 सेंटीमीटर मोटगर परत से झाँप देवाक चाहिए। अब खाद आ उर्वरक का गप करी तो सरलाह गोबर का खाद 100 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के दर से रोपाई बुआई से 20 से 30 दिन पहले खेत में दो 1 से 2 बेर जोताई कर दी। नेत्रजन 60 से 80 किलो, फास्फोरस 50 किलो, संग ही पोटास 80 से 100 किलो प्रति हेक्टेयर देवाक चाहिए। नेत्रजन खाद का 3 बराबर भाग में बांट कर खेत में नमी के अवस्था में दी। पहल भाग पौधा में 2-3 पत्ती एबाक बाद यूरिया के रूप में उपरिवेशन करी। दोसर भाग पहल उपरिवेशन का 25 से 30 दिनक बाद खेत में नमी के अवस्था में दी। संग ही तेसर भाग दोसर उपरिवेशन का 25 से 30 दिनक बाद खेत में नमी के अवस्था में दी। फास्फोरस आ पोटास का पूरा मात्रा

0: रोपाई व बुआई से एक या दो दिन पहले खेत के तैयारी में दी। अगर खेत में सूक्ष्म पोषक तत्व का कमी आए तो जिंक सल्फेट 25 किलो आ बोरेक्स 20 किलो प्रति हेक्टेयर के दर से खेतक अंतिम जोताई के समय माटि में मिला दी। फेरस सल्फेट का 5-10 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोर बनाकर 10-15 बूंद नेबो का रस व 1-1.5 ग्राम साइट्रिक एसिड दो आ पहले छिड़काव बुआई रोपाई से 60-90 दिन आ दोसर छिड़काव 90-120 दिन के बाद करवाक चाहिए। किसान भालोकन अब पटौनी के गप करी तो खरीफ फसल हेबाक कारणे पटौनी के आवश्यकता नहीं होइत अछि, मुदा बरखा नहीं हेबाक अवस्था में आवश्यकता अनुसारे प्रत्येक महीना में दू बेर पटौनी कऽ देबाक चाही। एहि प्रकारे जखन अपना सब नीक तरहें खेती करे छी तो उपजो अपना सबके नीक प्राप्त होइत अछि। एकरे संग आजुक कृषि चर्चा के एतहि विराम दैत आशुतोष कुमार झा का विदा देल जाओ। नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे कृषक श्रोताओं के लिए हमारा दैनिक कार्यक्रम कृषि चर्चा। विषय था अदरक की आधुनिक खेती और इस विषय पर जानकारी दे रहे थे आशुतोष कुमार झा। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से प्रसारित किया गया।

0: आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है, आप सुन रहे हैं हमारी प्रातःकालीन सभा के कार्यक्रम। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 6 बजने को हैं। कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 19वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। श्री मोदी इस अवसर पर उपस्थित लोगों को संबोधित भी करेंगे। ये रोजगार मेला देश में 47 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। रोजगार मेला प्रधानमंत्री मोदी की रोजगार सृजन को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। भारत और साइप्रस के बीच आतंकरोधी नवाचार और प्रौद्योगिकी, उच्च शिक्षा और अनुसंधान तथा सांस्कृतिक सहयोग पर संयुक्त कार्य समूह की स्थापना सहित विभिन्न क्षेत्रों में कई समझौते हुए। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडुलाइडिस के साथ विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करने पर चर्चा की। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। उन्होंने कहा कि साइप्रस के साथ रक्षा सहयोग भी बढ़ा है।
2: आज हमने साइबर सिक्योरिटी, मैरिटाइम सिक्योरिटी और काउंटर टेररिज्म सहयोग को भी और मजबूत करने का निर्णय लिया है। इतना ही नहीं, हम इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव और इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जैसे महत्वपूर्ण पहलों से कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए भी साथ मिलकर काम करेंगे।
1: दोनों नेताओं ने आतंकवाद से निपटने के लिए बहुपक्षीय प्रयासों को मजबूत करने और संयुक्त राष्ट्र के ढांचे के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक समझौता को शीघ्र अंतिम रूप देने और अपनाने का आह्वान किया। उन्होंने आतंकवाद के प्रति अपनी शून्य सहिष्णुता के दृष्टिकोण को भी दोहराया। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो 4 दिन की भारत यात्रा पर आज कोलकाता पहुंचेंगे। ये उनकी पहली भारत यात्रा है। श्री रूबियो नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भेंट करेंगे। श्री रूबियो विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर से बातचीत भी करेंगे। उनका अमरीकी दूतावास में होने वाले अमरीकी स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल होने का कार्यक्रम है। श्री रूबियो मंगलवार को नई दिल्ली में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेंगे। बैठक में ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग और जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी भी शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि क्वाड बैठक में स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत के दृष्टिकोण के अनुरूप जारी पहलू की प्रगति की समीक्षा की जाएगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कल नई दिल्ली में इन्वेस्टमेंट कंपनी इंस्टीट्यूट ऑफ द अमेरिका के एशिया और ग्लोबल एनालिटिक्स के प्रबंध निदेशक मैथ्यू मोहले कैंप से मुलाकात की और भारत की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था में निवेश के अवसरों पर चर्चा की। सोशल मीडिया पोस्ट में

0: श्री गोयल ने बताया कि चर्चा का मुख्य केंद्र प्रौद्योगिकी, अवसंरचना, इलेक्ट्रॉनिक्स और डिजिटल व्यवस्था सहित उच्च विकास वाले क्षेत्रों में अमरीकी संस्थागत निवेश को मजबूत करना, साथ ही विनिर्माण, नवाचार और रोजगार सृजन को बढ़ावा देना था। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा है कि पूरे देश में पेट्रोल और डीजल की पर्याप्त उपलब्धता है और आपूर्ति स्थिर बनी हुई है। सोशल मीडिया पोस्ट में मंत्रालय ने नागरिकों को घबराहट में खरीदारी न करने और केवल आवश्यकता के अनुसार ईंधन खरीदने की सलाह दी है। मंत्रालय ने कहा कि कुछ खुदरा दुकानों पर अस्थायी दबाव को तेल विपणन कंपनियों द्वारा निरंतर आपूर्ति निगरानी और समन्वित वितरण प्रयासों के माध्यम से दूर किया जा रहा है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले में पुणे से एक और महिला को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान मनीषा हवलदार के रूप में हुई है, जिन्हें राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए द्वारा विशेषज्ञ के रूप में नियुक्त किया गया था। अब इस मामले में 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। ओडिशा के चांदीपुर एकीकृत परीक्षण रेंज से कम दूरी के बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 1 का सफल परीक्षण किया गया। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि परीक्षण सभी प्रचालनगत और तकनीकी मानकों पर सटीक उतरा। ये सफल परीक्षण भारत की रणनीतिक रक्षा तैयारियों में एक अन्य मील का पत्थर है, जो देश की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। लेबनान में संयुक्त राष्ट्र प्रांतिरक्षा मिशन में कार्यरत भारतीय सेना के अधिकारी मेजर अभिलाषा बराक को 2025 के संयुक्त राष्ट्र सैन्य लैंगिक समानता समर्थक पुरस्कार के लिए चुना गया है। मेजर बराक वर्तमान में लेबनान में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल में महिला सहभागिता दल की कमांडर के रूप में भारतीय बटालियन में कार्यरत हैं। आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 55 रन से हरा दिया। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए सनराइजर्स हैदराबाद ने 20 ओवर में 4 विकेट पर 255 रन बनाए। प्रतियोगिता में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला शाम 7:30 बजे पंजाब किंग्स से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलोहर्ट्ज और न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर यह आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। प्रस्तुत है दैनिक प्रसारण स्वास्थ्य चर्चा।
2: स्वास्थ्य चर्चा के इस अंक में हम हाजिर हैं डॉक्टर रमन कुमार वर्मा जी के साथ, जो प्रख्यात नेत्र रोग चिकित्सक हैं। आज हम उनसे जानेंगे कि अगर किसी को मोतियाबिंद हो जाए तो उसका उपचार वो कैसे करे। डॉक्टर साहब,
3: देखा जाए मोतियाबिंद का कोई मेडिकल ट्रीटमेंट दवा से संभव नहीं हो पाया है। हालांकि दावे किए जाते हैं, लेकिन उसका कोई वैज्ञानिक तथ्य नहीं है। मोतियाबिंद जब मरीज को होने लगे या हो गया है और मरीज को अपना काम करने में कठिनाई हो और चश्मे से आँखों की रोशनी दृष्टि उतनी न बढ़े जिससे कि वो देख पाए, तो उसे नेत्र विशेषज्ञ की सलाह लेनी चाहिए। और ऐसी स्थिति में ऑपरेशन ही उपचार रह जाता है, चाहे मोतियाबिंद कच्चा हो या पका हो। ये पुराना कंसेप्ट है कि जब मोतियाबिंद पूरी तरह पक जाए तभी उसका ऑपरेशन कराना चाहिए।
2: यानी कि चश्मा आपके काम लायक नहीं रह गया, कितना भी पावर बढ़ा लो आपकी दृष्टि अगर नहीं आ रही है, आप चीजों को सही ढंग से नहीं देख रहे हो, तो आप तय मानो कि आपका ऑपरेशन कराना ही एकमात्र विकल्प आपके पास बचता है मोतियाबिंद का।
3: जी हाँ, पकने तक इंतजार नहीं करना चाहिए। और अब तो यह ऑपरेशन बहुत ही सुरक्षित हो गया है।
2: क्या इसमें मौसम का भी कुछ असर होता है? कुछ लोग कहते हैं जाड़े में ऑपरेशन कराना चाहिए या गर्मी में नहीं कराना चाहिए, ऐसा कुछ है क्या?
3: नहीं, वैसी बात नहीं है। मोतियाबिंद का ऑपरेशन 12 महीने हो सकता है, लेकिन हाँ, चूंकि मरीजों को हिदायत दी जाती है, सभी मरीजों को, मोतियाबिंद के मरीजों को, कि ऑपरेशन के बाद 10-15 दिन सर से न नहाए। इसलिए कुछ मरीज कठिनाई अनुभव करते हैं और उनकी मंशा होती है कि जाड़े में ही ऑपरेशन कराएं, लेकिन ये कोई मोतियाबिंद के ऑपरेशन को टालने का कारण नहीं है कि सिर्फ जाड़े में ही इसका ऑपरेशन कराया जा सके।
2: आजकल लेंस वगैरह प्रत्यारोपित किया जाता है, उससे क्या आंखों को नई दृष्टि मिल जाती है?
3: हाँ बिल्कुल, मोतियाबिंद के ऑपरेशन में क्रांतिकारी परिवर्तन आया है विगत 2-3 दशकों से, और अब लेंस प्रत्यारोपण के साथ मोतियाबिंद ऑपरेशन होता है और इसके साथ ही एक नए विजुअल वर्ल्ड की शुरुआत हो जाती है मरीज के लिए। पहले जो ऑपरेशन होता था उसमें मरीज को मोटा चश्मा लगाना पड़ता था, बाएं दाएं देखने के लिए उसे सर घुमाना पड़ता था, हर चीज़ें बड़ी नज़र आती थी, लेकिन अब

0: जो ऑपरेशन हो रहा है लेंस प्रत्यारोपण के साथ, उसमें ऐसी बात नहीं रह गई है। लेंस प्रत्यारोपण में हमारे देश में, हमारे राज्य में लगभग सभी जिला और अनुमंडल स्तर पर विशेषज्ञों द्वारा यह ऑपरेशन बहुत ही कुशलता से और सफलता के साथ हो रहा है। और उसमें भी एक नई पद्धति आ गई है जिसके बारे में लोगों को जानकारी होनी चाहिए, वो है फेको इमल्सिफिकेशन पद्धति। ये नवीनतम पद्धति है लेंस प्रत्यारोपण का।
1: इसमें क्या होता है?
0: इसमें मोतियाबिंद ऑपरेशन में चीरा जो लगाते हैं इंसिजन, वो बहुत छोटा लगाने की जरूरत होती है, 2 या 3 मिलीमीटर, और ऑपरेशन के बाद टांके की जरूरत नहीं पड़ती। एक बहुत ही पतला 1 मिलीमीटर का टिटेनियम नीडल होता है जिसमें प्रति सेकंड 40,000 कंपन पैदा होते हैं। इसके द्वारा ही यह ऑपरेशन संपन्न किया जाता है। अंदर से कॉर्टिकल मैटर न्यूक्लियस निकाल देने के बाद फोल्डेबल लेंस डाल देते हैं। मरीज को 2 घंटे के बाद घर भेज दिया जाता है। मरीज को कोई कठिनाई नहीं होती है। इसमें समय भी पहले के मुकाबले कम लगता है और रोगी का पहला रिहैबिलिटेशन बहुत जल्दी हो जाता है।
1: और कुछ क्या ऑपरेशन के पहले या बाद में कोई सावधानी बरतनी पड़ती है क्या?
0: जी हाँ, ऑपरेशन के बाद हम लोग आमतौर पे रोगियों को हिदायत देते हैं कि उन्हें काला चश्मा पहनना है और जो दवाई विशेषज्ञ उन्हें प्रिस्क्राइब करते हैं उन्हें आँख में अवश्य डालना चाहिए। आँखों को कभी नहीं मलना चाहिए। सावधानी बरतनी चाहिए कि आँखों में चोट न लगे। ऑपरेशन किए गए आँख की तरफ करवट लेकर 2 या 3 सप्ताह तक सोने से हम लोग मना करते हैं और भारी वजन उठाने से भी हम लोग मरीज को रोकते हैं।
1: तो अभी आपने डॉक्टर आर के वर्मा से सुना, मोतियाबिंद का ऑपरेशन अगर आप कराते हैं तो क्या क्या सावधानी रखें, और इस ऑपरेशन की जो नवीनतम तकनीक है वो भी हमारे पास अब उपलब्ध है। सबसे अच्छी बात यह है कि अनुमंडल स्तर तक इसके विशेषज्ञ जो कृत्रिम लेंस है उसका प्रत्यारोपण करते हैं। डॉक्टर साहब, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: स्वास्थ्य चर्चा के बाद आकाशवाणी दरभंगा से अब प्रस्तुत है भक्ति संगीत पर आधारित हमारा कार्यक्रम वंदना। कार्यक्रम के आरंभ में आइए सुनते हैं समूह स्वर में गाया गया ये देशगान।

0: सियापति रामचंद्र की जय।
1: कीर्तिमान और साथियों के स्वर में अभी आप सुन रहे थे श्री हनुमान चालीसा। आकाशवाणी दरभंगा से आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत का हमारा कार्यक्रम वंदना।

जय जय हनुमान गोसाई। ये भक्ति गीत अभी आप सुन रहे थे हरिओम शरण और साथियों के स्वर में। आकाशवाणी दरभंगा से आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत पर आधारित हमारा कार्यक्रम वंदना।

अनुप जलोटा के गाए इस भक्ति गीत के साथ ही कार्यक्रम वंदना अब समाप्त हुआ। प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया गया। अब प्रस्तुत है रामचरितमानस गान। आज के प्रसंग में स्वर सुरेश वाडेकर का है।

श्री राम अवतार की पूरी कथा सुनाकर काकभुशुंडी उस प्रकरण की चर्चा कर रहे हैं जब उन्होंने प्रभु से भक्ति का वरदान मांगा था। उन्हें प्रभु की उस अविरल तथा निष्काम भक्ति की कामना थी जिसकी महिमा श्रुतियों तथा पुराणों में गाई गई है। एवमस्तु कहकर रघुनाथ जी कहते हैं, हे काक, तू स्वभाव से ही बुद्धिमान है, अतः ऐसा वरदान क्यों करना मांगता। तूने तो सभी सुखों का स्रोत मांग लिया। तेरे समान बड़भागी इस संसार में अन्य कोई नहीं। जिस भक्ति को मुनिजन जप और योग की अग्नि में शरीर को जलाकर भी नहीं पाते, वही भक्ति तूने मांगी है। अब तेरे हृदय में सभी गुणों का वास होगा। भक्ति, ज्ञान, विज्ञान, वैराग्य, योग, मेरी लीलाएं और उनका रहस्य तू सहज ही जान जाएगा। माया से उत्पन्न होने वाले भ्रम अब तुझे नहीं व्यापेंगे। यह वरदान देकर प्रभु ने काकभुशुंडी को निज सिद्धांत की सीख दी। यह सारा संसार मेरी माया से उत्पन्न हुआ है। इसके सभी जीव मुझे प्रिय हैं, किंतु सबसे अधिक मुझे मनुष्य प्रिय है। उनमें भी वेद के अनुसार धर्माचरण करने वाले, उनमें भी वैराग्य धारण करने वाले, फिर ज्ञानी, ज्ञानियों में भी विज्ञानी, विज्ञानियों में भी अति प्रिय वो हैं जिन्हें केवल मेरी भक्ति का सहारा और भरोसा है।

अभी आप सुन रहे थे रामचरितमानस गान, प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया गया। अब श्रोताओं, आपको जानकारी दे दें, आज हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के विषय में। कार्यक्रम नमस्कार मिथिला आप सुनेंगे अब से कुछ देर बाद, यानी प्रातः 7:05 से। उर्दू कार्यक्रम अंजुमन का प्रसारण समय होगा 9:10 से। फिल्म संगीत आप सुनेंगे दिन में 10:00, 11:30 पर। अपराह्न 2:30 पर। दिन के 11:00 समय होगा शास्त्रीय संगीत का। महिलाओं को संबोधित कार्यक्रम नारी संसार लेकर हम उपस्थित होंगे दिन में 12:30 पर। आप श्रोताओं के पत्रों पर आधारित कार्यक्रम आपकी पसंद आप सुनेंगे दिन में 1:15 पर। प्रादेशिक संगीत का समय होगा अपराह्न 3:00, जिसके अंतर्गत आप सुनेंगे कुछ मराठी गाने। अभी आप जानकारी प्राप्त कर रहे हैं आज हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के विषय में। शाम 5:00 हमारी दूसरी सभा के आरंभ में आप सुनेंगे युवाओं के लिए कार्यक्रम युववाणी। विद्यापति गीतों का आनंद आप लेंगे संध्या 6:10 पर। इसके तुरंत बाद आप सुनेंगे मैथिली संवाद, समय होगा संध्या 6:25 पर। गाम घर ये कार्यक्रम आप सुनेंगे संध्या 6:30 से। शाम 7:00 समय होगा कार्यक्रम खेती गृहस्थी का। कुछ फिल्मी गाने हम आपको सुनवाएंगे शाम 7:52 पर। हमारा पर्यावरण ये कार्यक्रम आप सुनेंगे रात 8:15 पर। विज्ञान भारती ये कार्यक्रम आप सुनेंगे रात 9:30 से, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। अभी आप जानकारी प्राप्त कर रहे थे आज हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के विषय में। आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है। कार्यक्रम संबंधी एक सूचना, गर्मी के मौसम में अगर सावधानी न बरती जाए तो लू लगने के अलावे स्वास्थ्य संबंधी कई अन्य समस्याएं भी हो सकती हैं। गर्मी के मौसम में स्वास्थ्य संबंधी सावधानियां, यही है आकाशवाणी दरभंगा के फोन इन कार्यक्रम हेलो जिंदगी के अगले अंक का विषय। विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर

फुलेश्वर झा। प्रसारण के दौरान कार्यक्रम से जुड़ने के लिए फोन नंबर होंगे 9430029353 एवं 06272222481। समय याद रखें, रविवार 24 मई 2026 दिन के 11 बजे। सूचना समाप्त हुई।

0: आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है, मीडियम वेव 231.5 मीटर यानी 1296 किलोहर्ट्ज़ और न्यूज ऑन AIR ऐप पर आप सुन रहे हैं हमारे प्रातःकालीन सभा के कार्यक्रम। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 6:55 होने को हैं। अब समाचार होंगे क्रमशः संस्कृत और हिंदी में।
1: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा साइप्रस देशस्य राष्ट्रपतिः निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स इत्येषश्च आतंकवादं निवारणाय बहुपक्षीय प्रयासानां सुदृढ़ीकरणाय तथा संयुक्त राष्ट्र संघस्य संरचनांतर्गतं अंतरराष्ट्रीय आतंकवादस्य विषये समग्र सम्मेलनं शीघ्रमेव अंतमीकृत्य स्वीकर्तुं आहूतवन्तौ। ह्यः नवदिल्ल्यां उभयोः नेत्रोः मध्ये वार्तायाः अनन्तरं प्रदत्ते संयुक्त वक्तव्ये उभौ पक्षौ संयुक्त राष्ट्र संघे तथा यूरोपीय संघे च निर्दिष्टानां आतंकवादिनां आतंकि संघटनानां च विरुद्धं अपि च संयुक्त राष्ट्र संघस्य सुरक्षा परिषद प्रतिबंध समित्याः अंतर्गतं सूचीबद्धानां 67,200+ यावत् आतंकि संघटनानां विरुद्धं प्रबलं समन्वितं च कार्याचरणाय आग्रहं कृतवन्तौ।
2: आज हमने साइबर सिक्योरिटी, मैरिटाइम सिक्योरिटी और काउंटर टेररिज्म सहयोग को भी और मजबूत करने का निर्णय लिया है। इतना ही नहीं, हम इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव और इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जैसे महत्वपूर्ण पहलों से कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए भी साथ मिलकर काम करेंगे।
1: उभौ पक्षौ साइबर सुरक्षायाम् अपि च उदयोन्मुख प्रौद्योगिक्यां विशेषावधानेन सह रक्षा उद्योगयोः मध्ये सहयोगेन सह रक्षा सुरक्षा सहकारं सुदृढ़ीकरणेऽपि सहमतौ अभवताम्। अस्मिन् सन्दर्भे साइप्रस डिफेंस एंड स्पेस इंडस्ट्रीज क्लस्टर तथा सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स इत्येतयोः मध्ये संधिपत्रे हस्ताक्षरं जातम्। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अद्य 21वें रोजगार मेलायां विविध प्रशासकीय विभागेषु संस्थासु च नवनियुक्तानां यूनां कृते 150,000+ नियुक्तिपत्राणां वितरणं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इति आभासीय माध्यमेन करिष्यति। अमेरिका देशस्य विदेश सचिवः मार्को रूबियो इत्येषः अद्य भारतस्य चतुर्दिवसीय यात्रायां कोलकाता नगरं आगमिष्यति। इदं तस्य प्रथमं भारत पर्यटनं भविष्यति। कोलकाता नगरे प्रवासावधौ श्री रूबियो वर्येण मदर टेरेसा वर्यायाः समाधिस्थले श्रद्धांजलिः अर्पणस्य अपेक्षा अस्ति। सः विक्टोरिया स्मारकमपि द्रष्टुं शक्नोति। पश्चात् अमेरिका देशस्य विदेश सचिवः नवदिल्ल्यां प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना सह मेलनं विधास्यति। श्वः श्री रूबियो राष्ट्रिय राजधान्यां विदेश मन्त्रिणा एस जयशंकरेण सह वार्तालापं करिष्यति। सः अमेरिका देशस्य दूतावासस्य स्वातंत्र्य दिवसोपलक्षे आयोजिते कार्यक्रमेपि भागं ग्रहीष्यति। सोमवासरे श्री रूबियो वर्यः आगरा जयपुर नगरयोः भ्रमणं करिष्यति। तत्पश्चात् मंगलवासरे भारते आयोजिते क्वाड विदेश मंत्री

नेतृणां सभायां भागं ग्रहीतुं नवदिल्ल्यां प्रत्यागमिष्यति। भारत ऋतु विभागेन अद्य पूर्वीय मध्य प्रदेशे पूर्वीय उत्तर प्रदेशे विदर्भे च तीव्रतर उष्ण तरंगस्य स्थित्यै रक्तवर्णीया संचेतना प्रसारितास्ति। अद्य दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, राजस्थान, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा इत्येतेषु प्रदेशेषु उष्ण तरंगस्य स्थित्यां आईएमडी विभागेन नारंगवर्णीया संचेतना प्रदत्ता अस्ति। तटीये आंध्र प्रदेशे, तेलंगानायां, पश्चिम मध्य प्रदेशे, पश्चिम उत्तर प्रदेशे च अद्य दिने तथैव स्थितिः भविष्यति। अद्य दिल्ल्याम् अधिकतमं तापमानं 45 डिग्री सेल्सियस यावत्, न्यूनतम तापमानं 27 डिग्री सेल्सियस यावत् भवितुं शक्नोति। अन्त्यक्रीडा वार्तायाम् आईपीएल क्रिकेट क्रीडायां सनराइजर्स हैदराबाद दलेन हैदराबादे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु दलं 55 धावनांकैः पराजितम्। अद्य सायं 7:30 लखनऊ नगरे पंजाब किंग्स लखनऊ सुपर जायंट्स दलयोः मध्ये क्रीडा भविष्यति। इति वार्ताः।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 19वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। इनमें विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में नवनियुक्त युवा शामिल हैं। श्री मोदी इस अवसर पर उपस्थित लोगों को संबोधित भी करेंगे। ये रोजगार मेला देश में 47 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। रोजगार मेला प्रधानमंत्री मोदी की रोजगार सृजन को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की प्रतिबद्धता दर्शाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स ने आतंकवाद से निपटने के लिए बहुपक्षीय प्रयासों को मजबूत करने और संयुक्त राष्ट्र ढांचे में अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक सम्मेलन को शीघ्र अंतिम रूप देने तथा अपनाने का आह्वान किया है। दोनों नेताओं ने आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति को दोहराते हुए दोहरे मापदंड, राज्य प्रायोजित आतंकवाद और किसी भी परिस्थिति में आतंकवादी कृत्यों के औचित्य को अस्वीकार कर दिया। नई दिल्ली में कल दोनों नेताओं के बीच हुई वार्ता के बाद दोनों देशों ने संयुक्त राष्ट्र और यूरोपीय संघ द्वारा नामित सभी आतंकियों और आतंकी संगठनों के खिलाफ मजबूत और समन्वित कार्रवाई का आग्रह किया। दोनों नेताओं ने उग्रवाद, कट्टरता, आतंकवाद का वित्त पोषण और धन शोधन का मुकाबला करने के लिए अधिक सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने आतंकी गतिविधियों के लिए नई और उभरती प्रौद्योगिकियों का दुरुपयोग रोकने तथा आतंकियों की भर्ती से निपटने का भी आह्वान किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि साइप्रस के साथ भारत के रक्षा सहयोग में वृद्धि हुई है।
1: आज हमने साइबर सिक्योरिटी, मैरिटाइम सिक्योरिटी और काउंटर टेररिज्म सहयोग को भी और मजबूत करने का निर्णय लिया है। इतना ही नहीं, हम इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव और इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जैसे महत्वपूर्ण पहलों से कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए भी साथ मिलकर काम करेंगे।
0: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो 4 दिन की भारत यात्रा पर आज कोलकाता पहुंचेंगे। ये उनकी पहली भारत यात्रा है। श्री रूबियो नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भेंट करेंगे। श्री रूबियो विदेश मंत्री एस जयशंकर से बातचीत भी करेंगे। श्री रूबियो मंगलवार को नई दिल्ली में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेंगे। बैठक में ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग और जापान के विदेश मंत्री तोशी मित्सु मोतेगी भी शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि क्वाड बैठक में स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत के दृष्टिकोण के अनुरूप जारी पहलों की प्रगति की समीक्षा की जाएगी। अमेरिका की राष्ट्रीय खुफिया निदेशक तुलसी गैबार्ड ने इस्तीफा दे दिया है। सुश्री गैबार्ड ने कहा कि वे 30 जून से अपने पद से हट जाएंगी। राष्ट्रपति ट्रंप ने सुश्री गैबार्ड की प्रशंसा करते हुए कहा कि प्रशासन को उनकी कमी महसूस होगी। सुश्री गैबार्ड के बाद राष्ट्रीय खुफिया प्रधान उपनिदेशक आरुण लुकास कार्यवाहक निदेशक के रूप में कार्यभार संभालेंगे। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा है कि देश में पेट्रोल और डीजल की पर्याप्त उपलब्धता है। मंत्रालय ने नागरिकों को घबराहट में खरीदारी न करने और केवल

0: आवश्यकता के अनुसार ईंधन खरीदने की सलाह दी। मंत्रालय ने कहा कि जिम्मेदारी के साथ उपयोग और जनता का सहयोग ईंधन की सुचारू उपलब्धता सुनिश्चित करने में सहायक होगा। लेबनान में संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षा मिशन में कार्यरत भारतीय सेना के अधिकारी मेजर अभिलाषा बराक को वर्ष 2025 के संयुक्त राष्ट्र सैन्य लैंगिक समानता समर्थक पुरस्कार के लिए चुना गया है। मेजर बराक भारतीय सेना की पहली महिला लड़ाकू हेलीकॉप्टर पायलट भी हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए केंद्र सरकार को रिकॉर्ड 2,86,000 करोड़ रुपए का अधिशेष हस्तांतरित करने की मंजूरी दे दी है। ये रिजर्व बैंक के अब तक के सबसे अधिक लाभांश में से एक है। ये निर्णय कल मुंबई में राज्यपाल संजय मल्होत्रा की अध्यक्षता में बैंक के केंद्रीय निदेशक मंडल की बैठक में लिया गया। आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु को 55 रन से हरा दिया। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए सनराइजर्स हैदराबाद ने 20 ओवर में 4 विकेट पर 255 रन बनाए। जवाब में रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु 20 ओवर में 4 विकेट पर 200 रन ही बना सकी। ईशान किशन को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 231.5 मीटर यानी 1296 किलो हर्ट्ज और न्यूज ऑन AIR ऐप पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र। प्रस्तुत है प्रातःकालीन दैनिक कार्यक्रम नमस्कार मिथिला।

0: नमस्कार मिथिला।
1: नमस्कार श्रोता लोग, राजयोग नमस्कार मिथिला कांक में हम रंजीत हमारा संग कुशल हूँ। हमारा नमस्कार
0: रंजीत जी, आपको भी मेरा नमस्कार और साथ ही साथ नमस्कार मिथिला सुनने वाले तमाम श्रोताओं को कुशल का प्यार भरा नमस्कार।
1: और जना कि श्रोता लोकन के बुझल छन कि कार्यक्रमक शुरुआत लोकन करे छी सबसे पहले सुविचार से, तो आजुक सुविचार
0: आज का सुविचार है चाणक्य नीति से, जो आपके साथ बुरा करे उसके साथ बुरा करने में कोई पाप नहीं है, क्योंकि दुष्ट आदमी को उसको उसकी ही मुद्रा में भुगतान करना अति आवश्यक है। यह
1: देखियो कथनी के चाणक्य के हिसाब हम आपन कह सकै छी। चाणक्य के बड़ा सुंदर लिखल छन पंक्ति, जे आग के संग आग बन मिलो, पानी के संग पानी, गरल का उत्तर है प्रतिगरल, यही कहते हैं जग के ज्ञानी। लेकिन अब हम अहाँ के की कहू या श्रोता लोकन के की कहिए, हमरा कहो में कनी जवानो लड़खड़ाइया, मुदा की कहू, ये सुंदर सुंदर बात जे छै ने आब किताबे में पढ़े टा में निक लागे छै। धरातल पर जे उतरे छै तो बड़ा आत्मा कचोटे छै, आत्मा बुझू जे बड़ा हृदय विदारक स्थिति भ जाइ छै, जे समाजक स्थिति देखै छै और किताब के जे सुंदर सुंदर पंक्ति लिखल देखै छी तो कतौ कोनो मेले जोल नहि देखाइत छै, एकटा पूब एकटा पश्चिम। आउ कार्यक्रम में आगा बढ़े छी और एक नजर रखे छी, अब जानकारी साझा कर रहा कुशल, जे आजुक दिन हमारा लेल की खास महत्व रखते थे हमारा राष्ट्र में हमारा समाज में, जानकारी साझा कर दी।
0: आज ही के दिन 1785 में महान वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने अपने बाईफोकल चश्मे में आविष्कार की घोषणा की थी। 1949 में आज ही के दिन पश्चिमी जर्मनी ने अपना नया संविधान अंगीकार किया था और इसे औपचारिक रूप से संघीय गणराज्य के रूप में स्थापित किया गया था। 1984 में आज ही के दिन बछेंद्री पाल ने माउंट एवरेस्ट को फतह किया और यह उपलब्धि हासिल करने वाली भारत की पहली महिला बनी। भारत ने सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल पृथ्वी 2 का सफल प्रशिक्षण आज ही के दिन सन 2004 में किया और आज ही के दिन सन 1919 में राजस्थान के जयपुर राजघराने की प्रसिद्ध राजमाता और राजनीतिज्ञ महारानी गायत्री देवी का जन्म हुआ था।
1: तो इचल आजुक दिन इतिहास जानकारी।

साझा कयलहुँ। आओर देखू श्रोता लोकनि, जे आजुक नमस्कार मिथिला कमके सबसँ पहिले हम बताबै छी जे हमरा लोकनिके जे कार्यक्रमके जे सांस्कृतिक परम्परा अइ ताहिमे अपना लोकनिके हम बताबी जे परम्परा बदलै छै मुदा संस्कृति नहि बदलै छै। तऽ नमस्कार मिथिला कार्यक्रम आओर आकाशवाणी दरभंगाके जे संस्कृति छलै ओ संस्कृति आइयो अपना जगहपर ठामे छै आओर ओनाहिते विगत पिछला 50 सालसँ आकाशवाणी दरभंगा अपन श्रोता लोकनिके बीचमे अपन उपस्थिति रोज दर्ज कराबै छथि। तऽ नमस्कार मिथिलाके जहाँ तक हमरा लोकनि बात करी कुशल, तऽ आइ नमस्कार मिथिलामे हमरा लोकनि चर्चा करब जे वर्तमान परिस्थितिमे राजनीतिमे महिलाके भागीदारी, आओर दोसर पॉइंट अइ हमरा लोकनिके पास जे महिलामे शिक्षाके महत्व। चर्चा करबाक लेल दुनू विषय हमरा लोकनिके समय अभाव सेहो देखेबे टा करत, मुदा श्रोता लोकनि कहीँ जे चर्चा हमरा लोकनि करब, मुदा हमर जे संस्कृति अइ आकाशवाणी दरभंगा आओर नमस्कार मिथिला कार्यक्रमके, ओहि संस्कृतिके फेर एक बेर हम पुनरावृत्त करै छी आओर सुनै छी अखन सबसँ पहिले सुन्दर सन मैथिली गीत, ओकरा बाद फेर अपने लोकनिसँ हमरा लोकनि बातचीत करब। तऽ श्रोता लोकनि पहिले अखन सुनै छी सुन्दर सन मैथिली गीत।

0: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
1: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
2: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।
3: मैत्री सुगम संगीत के बाद रंजीत जी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और कार्यक्रम में वक्त हो चला है आज के सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों पर नजर डालने का, यानी हालचाल का। हालचाल लेकर उपस्थित है रंजीत कुमार झा।
4: धन्यवाद कुशल, नमस्कार। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी घोषणा कलन है कि राज्य में अगला 5 वर्ष तक 1 लाख शिक्षक के नियुक्ति कैल जाए। एकरा अंतर्गत हर साल कम से कम 20,000 शिक्षक के बहाली कैल जाए। एकरा लेल हर वर्ष जुलाई के महीना में नियुक्ति संबंधी विज्ञापन जारी कैल जाए। मुख्यमंत्री के अई घोषणा के बाद तय भेल कि TRE4 के नियुक्ति के शीघ्र शुरू कैल जाए। मुख्यमंत्री शुक्रवार का लोक सेवा आयोग आवास के शिक्षा विभाग के समीक्षात्मक बैसार में विभागीय कार्य के विस्तार से जानकारी लेलन। संघ में पदाधिकारी के निर्देश देलन कि इस दौरान उनका राज्य के 100 बच्चा के नीक और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा भेटे, एकरा लेल हमार सरकार लगातार प्रयासरत रहे। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी समीक्षात्मक बैसार कर शिक्षक के स्थानांतरण के पारदर्शी और सुगम बनाबे को लेकर शिक्षा विभाग के निर्देश जारी कलन है। ओ दो टूक कहलन है कि महिला शिक्षक के यथासंभव गृह जिला में हुनक प्रखंड के गृह पंचायत के बगल के पंचायत में स्थानांतरित कैल जाए। पुरुष शिक्षक के हुनक गृह प्रखंड के बगल के प्रखंड में स्थानांतरण कैल जाए। मुख्यमंत्री इहो कहलन कि पुरुष शिक्षक अगर गृह जिला के अपन गृह प्रखंड के बगल में प्रखंड के तबादला हेतन तेकरा अनुरूप शिक्षा विभाग के स्थानांतरण के नीति बनाबो के निर्देश देल गेल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आयोजित विभिन्न रोजगार मेला में सरकारी विभाग में नियुक्ति कैल गेल 51,000 से अधिक युवा के नियुक्ति पत्र सौंपता। कार्यक्रम भोरे के 11 बजे से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित कैल जाए। अ दौरान मुख्यमंत्री युवा के संबोधित सेहो करता। सरकार कहलक है कि रोजगार मेला में युवा के सरकारी नौकरी जोड़नाय एक बड़का पहल और एक नीक पत्थर के मील साबित है। बिहार में अपराध के बदौलत संपत्ति जमा करे वाला अपराधी के संपत्ति अब जब्त कैल जाए। ADG विधि व्यवस्था और ट्रैफिक सुधांशु कुमार बतौलन कि नवका आपराधिक कानून BNSS के धारा 107 के प्रावधान के तहत अब 1,433 अपराधी के पहचान कर हुनकर संपत्ति के चिन्हित कैल गेल है, जाहि में 428 के संपत्ति के जब्त करवा के कानूनी प्रक्रिया पूरा कर लेल गेल है और

आधार पर आप जल्दी हिनकर सबके संपत्ति सरकार के द्वारा संपत्ति जब्त कैल जाए। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जल संसाधन विभाग के निर्देश देने हैं कि सुल्तानगंज के पास नदी के जल के बाढ़ के अवधि जुलाई के अक्टूबर के बीच होवा वाला है, एकरा कारण से कर भंडारण और सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराएल जाए, अमे सब के इलाके से हो शामिल करवा के लिए कहल गया है। संगे इहो कहल गया कि गंगा के जल से तीन गो जिला के सफाई कैल जाए, जेमे मिथिला क्षेत्र के खगड़िया जिला के शामिल से हो कैल गया है। ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार कहलन है कि वित्तीय वर्ष 2026-27 में मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के लिए 10 करोड़ रुपया के राशि सब जिला के जारी कर दल गया। अह राशि से पात्र गरीब जनता के अपन पक्का घर दल जतन। ओ कहलक कि पूर्व में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के संकल्प के पूरा करवा के दिशा में ये महत्वपूर्ण कदम उठाओल गया। राज्य के कोनो पात्र ग्रामीण गरीब परिवार गृह विहीन आब नहीं रहता, सरकार हुनका आवास प्रदान करवा के लिए पक्का छतदार मकान उपलब्ध करावे में कसर बाकी आब नहीं छोड़त। राज्य सरकार सरकारी शिक्षण के समय पर वेतन भुगतान के लक विशेष कार्य योजना पर काज शुरू कर दिलक है। एकरा तहत वो नियमित रूप से समय पर वेतन देवा के योजना करत। सरकार शिक्षक के वेतन भुगतान के लिए 642 करोड़ रुपया अखन तक आवंटित कलक है। अइ समय में सब शिक्षक के समय पर वेतन भुगतान नहीं भ पाबि रहल है, एकरा संगे संगे किछ दिन विलंब सेहो भ जाइत है। अइ से पहले राज्य सरकार समग्र शिक्षा अभियान के तहत कार्यरत कर्मचारी शिक्षक के वेतन भुगतान के लिए 1050 करोड़ रुपया जारी केने का छल, जाहि में अप्रैल और मई महीना के वेतन के भुगतान कैल गेल छल। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में राज्य में राजस्व प्रशासन के अधिक जवाबदेही और प्रभावी बनाबो के लेल 25 मई से 11 जून तक सब जिला में प्रतिदिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वीसी के समीक्षात्मक बैसार करवाक निर्णय लेल गेल है। समीक्षात्मक बैसार में राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल करता। विभाग के ओर से अपर सचिव अजीव वस्त्रराज और जारी पत्र में कहल गया कि प्रत्येक कार्य दिवस में तीन जिला के संगे असंगे अलग सत्र के समीक्षा से हो कैल जाए। बैसार तीन गो पारी में है, पहल पारी संध्या बेला 4 बजे से 5 बजे तक, दूसर पारी 5 से 6 और तेसर पारी 6 बजे से 7 बजे तक चलाओल जाए। जिला अधिकारी के निर्देश दिल गया कि वो संघ समीक्षात्मक बैसार में शामिल हेता और संगे बंदोबस्त पदाधिकारी, अपर समाहर्ता, जिला भू अर्जन पदाधिकारी, भूमि सुधार अपर समाहर्ता, अंचलाधिकारी, राजस्व पदाधिकारी के उपस्थित से हो सुनिश्चित करवाक आदेश दिल गया। समीक्षा समय सब अत्यधन प्रतिवेदन उपलब्ध रखबाक चाहिए। समीक्षा के दौरान ऑनलाइन दाखिल खारिज के डिफेक्ट चेक और लंबित मामला के निष्पादन के स्थिति पर से हो विशेष ध्यान दिल जाए। दरभंगा नगर भू संपदा विनायक प्राधिकरण रेरा दरभंगा के 14 गो परियोजना के अवैध घोषित कर दिलक है। अय परियोजना के चिन्हित कर उनका विरुद्ध कार्रवाई से हो कैल जाए। संगहि संबंधित प्लाट के निबंधन और दाखिल खारिज पर रोक लगाबो के सख्त निर्देश से हो दिल गेल है। समाहरणालय सभागार में शुक्रवार का रेरा बिहार के आयुक्त संजय कुमार सिंह की अध्यक्षता में आयोजित बैसार कैल गेल। जांच आयुक्त के कहलन कि प्रोजेक्ट निबंधन प्रक्रिया के सरल बनाबे के लक कदम उठाएल गया। एक बावजूद यदि कोनो व्यक्ति या कोनो संस्था रेरा अधिनियम के उल्लंघन करो तो एकरा विरुद्ध सरकार के द्वारा सख्त कार्रवाई कैल जाए। बैसार में निर्देश दिल गए कि कोनो कंपनी के नाम पर प्लॉटिंग अथवा रजिस्ट्री कैल जा रहा है तो संबंधित पदाधिकारी ओकर गहन जाँच सुनिश्चित करौता, ओकरा बाद एक खाता और खेसरा कहकर बेर बेर रजिस्ट्रेशन होब के शिकायत पर विशेष ध्यान देव के आवश्यकता पर से हो जोर दिलन है। दरभंगा के जिला अधिकारी कौशल कुमार के अध्यक्षता में शुक्रवार को जन सुनवाई अदालत लगाओल गेल। जिला अधिकारी परिवादी के समस्या के सुनलन और समाधान के प्रयास से हो कलन। आधा दर्जन से अधिक मामला के मौका पर समाधान कैल गेल और शेष आवेदन के संबंधित विभाग के अधिकारी के कार्रवाई करवा के निर्देश दिल गेल। जनता दरबार में 42 से बेसी परिवादी उपस्थित छला है। जनता दरबार में राजस्व और भूमि विभाग से संबंधित परिवादी बेसी छला है। मौका पर जिला स्तरीय पदाधिकारी सब सेहो उपस्थित रहला। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी जुनेद आलम के न्यायालय में शुक्रवार को नालसीबाद में LNMU थाना के न्यायालय के आदेश के बावजूद प्रतिवेदन नहीं भेजवा के कारण थाना अध्यक्ष के अवहेलना के आरोप में बतौर हरजाना 2000 रुपया भुगतान करवा के आदेश दिल गेलन है। बताबे चले कि विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के सुंदरपुर निवासी विजय कुमार मल्लिक 29 लाख रुपया के ठगी के आरोप लगाबत विश्वविद्यालय थाना में नगर क्षेत्र के शकमापुल निवासी राकेश कुमार के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करोने छला है। तालाब बचाओ अभियान के

0: प्रतिनिधि मंडल शुक्रवार का सांसद गोपाल जी ठाकुर से हुनक आवासीय कार्यालय पर भेंट कर दरभंगा शहर में तीनू तालाब हराही दिग्घी और गंगा सागर के मूल स्वरूप के रूप में बचाव के लिए अपील कैलन है। दिशा के बैसार के द्वारा दरभंगा में 375 गो तालाब के जीवंत करवा के लिए शहर में 9 गो पुराना डेयर और गौशाला के 46 एकड़ जमीन के चिन्हित करवा के निर्देश दिल गेल छल। एकरा तरफ से कोनो अखन धर कार्यवाही नहीं कैल गेल है। एकरा संगहि तालाब बचाव अभियान में हराही दिग्घी और गंगा सागर पोखर से संबंधित ज्ञापन सौंपल गेल है, जाहि में न्यायालय के आदेश और जल पर्यावरण से संबंधित कानून के भ रहल उपभोक्ता के जानकारी दिल गेल। बताओल गेल है कि कोनो तरह अदालत के आदेश के अवमानना भ रहल है और अत कानूनी प्रशासन जिला प्रशासन और नगर निगम प्रशासन के द्वारा कोनो एक्शन नहीं लेल जा रहल है। जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष व राज्यसभा सांसद संजय कुमार झा शुक्रवार को नयका दिल्ली में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भेंट कर दरभंगा एयरपोर्ट पर नाइट लैंडिंग सुविधा के प्रभावी संचालन से जुड़ल विषय पर विस्तार से चर्चा कैलन। अ दौरान रक्षा मंत्री चिट्ठी सौंप कर रात्रिकालीन उड़ान सेवा के संचालन के लिए आवश्यक और अतिरिक्त वायुसेनाकर्मी और तकनीकी सहायता के उपलब्ध कराब के आग्रह कैलन है। मिथिला प्राचीन काल से नारी शक्ति के प्रमुख स्रोत रहल है। ई बात राज्यसभा के सांसद डॉक्टर धर्मशीला गुप्ता महारानी अधिरानी रामेश्वरी लता संस्कृत कॉलेज सभागार में चेतना प्रज्ञा प्रवाह दरभंगा विभाग के द्वारा आयोजित व्याख्यान में कहलन। व्याख्यान के विषय छल प्राचीन मिथिला और नारी शक्ति छल। कार्यक्रम के अध्यक्षता कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार डॉक्टर दिनेश झा और ए मौका पर कुलानुशासक सेहो मौजूद छला है। ई हाल चाल अखन अपने लोकन आकाशवाणी दरभंगा से सुन रहल छी।
1: अरे हमार बाबूजी के कहना बा बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
2: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
3: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।
0: वर्षों से बंद पड़ल रैयाम चीनी मिल के पुनः संचालन करवा के कवायद तेज कर दिल गेल। मिल चालू होबा पर गन्ना के आवश्यकता सेहो होयत। एकरा मद्देनजर गन्ना विभाग के ओर से 4 सदस्यीय टीम शुक्रवार को प्रखंड के विभिन्न पंचायत के दौरा कर किसान के संगे समीक्षात्मक बैसार कैलन तथा इलाका में गन्ना के पैदावार के स्थिति के जानकारी सेहो लेलन। किसान के गन्ना के खेती के लिए प्रेरित कैल जा रहा है, संगे हुनका गन्ना के बीज सेहो उपलब्ध कराब के भरोसा सरकार के द्वारा दिल जा रहा है। अ दौरान टीम बंसारा छच्चा पझारी छतवन पंचायत के दर्जन भर गन्ना किसान के संगे बैसार कर सूची तैयार कैलन और गन्ना के हर हाल में खरीदों के प्रति आश्वास जलौलन। मिल के दोबारा चालू होव के संभावना से किसान में खुशी के माहौल है। गन्ना अधिकारी के टीम किसान के आधुनिक तरीका से गन्ना उत्पादन बेहतर उपज और उन्नत खेती के जानकारी सेहो दिलन। संगे संगे बाहर से जो आयल छल प्रतिनिधिमंडल वो किसान के भरोसा दिलौलन है कि आब पहले वाला स्थिति नहीं है, रैयाम चीनी मिल चालू हेतु और गन्ना के खेती तखन गन्ना के खेती कैल जेते जैसे किसान के आमदनी में वृद्धि हेतन। चौटी विधायक डॉक्टर मुरारी मोहन झा शुक्रवार को प्रखंड के 4 गो विद्यालय के प्रबंध समिति के बैसार में भाग लकर शिक्षा व्यवस्था एवं विद्यालय के विकास से जुड़ल विभिन्न मुद्दा में समीक्षा कैलन। अ दौरान विधायक विभिन्न संचिका के अवलोकन सेहो कैलन। वो उत्क्रमित उच्च विद्यालय बरियोल, उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय माधोपट्टी, उत्क्रमित उच्च विद्यालय लालगंज और उत्क्रमित उच्च विद्यालय लहवार में आयोजित बैसार में विद्यालय के शैक्षणिक स्थिति, आधारभूत सुविधा, छात्र छात्रा के उपस्थिति, स्वच्छता व्यवस्था और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लकर प्रधानाध्यापक शिक्षक एवं समिति के सदस्य के संगे विचार विमर्श कर कतेको निर्देश देलन है। नगर परिषद बेनीपुर के वार्ड नंबर 9 के बसुहाम में सड़क पर जल जमाव से गांव के लोग के आवागमन करो में काफ़ी दिक्कत के सामना करो पड़े हैं। बतावे चली कि ग्रामीण अशोक कुमार दास बतौलन कि विनोद कुमार के दास के घर से लगकर करीब 70 फीट के दूरी तक कनिको पानी भेला के बाद जल जमाव के समस्या उत्पन्न भ जात जैसे आम जनता के आवागमन में काफ़ी कठिनाई के सामना करो पड़े हैं और ई स्थिति लगभग बरसात और बिना बरसात के सेहो बनल रहत है। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में AI आधारित फॉरेंसिक और साइबर कौशल विकास संबंधी कार्यक्रम में नामांकन के लिए आवेदन के प्रक्रिया 23 मई से शुरू भ जाए। एकरा लक शुक्रवार का कुलपति प्रोफेसर संजय कुमार चौधरी ऑनलाइन पोर्टल के शुभारंभ कलन। अई अवसर पर कुलपति पाठ्यक्रम के विवरणिका में विमोचन से कलन। ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आवेदन के अंतिम तिथि 20 जून निर्धारित कल गल।

0: इंटर स्नातक या स्नातकोत्तर उत्तीर्ण अभ्यर्थी नामांकन के लिए आवेदन कर सकते हैं। मनीगाछी में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर जेएन कॉलेज में आयोजित 2 दिवसीय कार्यक्रम में स्वच्छता, जल संरक्षण और पौधा संरक्षण पर जोर दिल गेल। 2 दिवसीय कार्यक्रम में प्रथम दिन गत 21 मई को पर्यावरण के संरक्षण के लिए संगे साफ सफाई के प्राथमिकता देने पर महाविद्यालय के छात्र छात्रा के प्रेरित कैल गेल। कुशेश्वर पूर्वी स्थान पूर्वी प्रखंड क्षेत्र में चक्रवाती आंधी और बारिश के प्रभावित भेल परिवार के सहयोग से प्रखंड प्रशासन शुक्रवार को राहत पहुंचावे के काज शुरू कर दिलक है। आंधी से पीड़ित परिवार के बीच प्रारंभिक सहायता के रूप में पोलोथीन सीट के वितरण कैल गेल। वीडियो प्रभा शंकर मिश्र बतौलन कि उपलब्ध संसाधन के तहत प्रभावित परिवार के पोलोथीन और खान पान के व्यवस्था के उपलब्ध कराएल गेल। अहि के संग आजुक सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधि सम्पन्न होते। नमस्कार।
1: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
2: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
3: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।
0: हाल चल के श्रोताओं का अपने लोगों के फिर एक बार स्वागत है। और देखो जब हम बात करी यातायात संबंधी जानकारी के बारे में तो अपने के बताबे चली जाए यातायात संबंधी के विषय में बताबी जे प्राप्त जानकारी के मुताबिक सड़क मार्ग में अखन धरि कोनो फेरबदल नहीं कैल गेल है प्रशासन के तरफ से। जो कोनो VVIP मूवमेंट के कारण अगर सड़क मार्ग में कोनो तरह प्रशासन के द्वारा तब्दीली कैल जाए, परिवर्तन कैल जाए, तो ओकर जानकारी अपने लोकन के आकाशवाणी दरभंगा परिवार के द्वारा दे लिया जाए। लेकिन एकटा बात श्रोता लोकन हम कही कि कह दिए कुशल, हमरा लोकन तो सब दिन अपने लोकन के जानकारी दैत छी, लेकिन ओ जानकारी के फलस्वरूप अपने लोकन के जानकारी के सुनबाक लेल अपन रेडियो सेट के सेहो खोलबाक चाही और ऐ जानकारी से लगातार अपडेट अपने लोकन होइत रही हम रेडियो के माध्यम से। और जब हम बात करी हवाई सफर के, तो हवाई सफर में जे विमान के परिचालन के समय में कतौ कोनो अंतर नहीं कैल गेल है। रेलवे सफर के जब हम लोगन बात करी तो जाहि गाड़ी के जे आगमन के समय है, जाहि गाड़ी के जे प्रस्थान करबाक समय है, तै में कोनो फेरबदल रेलवे बोर्ड के तरफ से स्टेशन के तरफ से नहीं कैल गेल है। आब एगो कहावत छै जे पल में पड़ले होल है, कोई अगर आगा किछु भऽ जाइए एकर जिम्मेवारी के लेत है श्रीमान। तैं लग वर्तमान परिस्थिति है। और संगे इहो कहब जे जौं आइ हमरा कोनो सुन्नर श्रोता के अगर कतौ सफर करबाक योजना होइन तऽ 3 टा जे अपना शहर से कनेक्टिविटी है यातायात के सुगमता के लेल ओहिठाम 3 टा जे इंक्वायरी नंबर देल गेल छै ओहि पर एक बेर क्वेरी कऽ ली, ओकरा बाद अपन सफर के शुरुआत करी।
4: तो जब सफर की शुरुआत आपने की है रंजीत जी, तो क्यों ना पहले अपने श्रोताओं को एक फिल्म संगीत का आनंद देते हैं, उसके बाद हम लोग कार्यक्रम में आगे बात करेंगे कि महिलाओं का शिक्षा का क्या
0: मान। निश्चित तौर पर तो फिलहाल समय भ गेल अछि जे आश्रोतो लोकन के इंतजार अछि,
4: क्योंकि काम के साथ अगर मनोरंजन हो तो फिर काम करने का आनंद ही कुछ और होता है। आनंद जी
0: देखियो सब तबका के लोग छथिन ने, अब अपन जे श्रोता छथिन किछ काजो करय वाला श्रोता छथिन, किछ गीतो सुनय वाला श्रोता छथिन, त सब श्रोता के हमरा लोकन के अपना संगे लोक के चलो पड़ै छै ने। अब सबसे पहिले हमरा लोकन एखन फिल्म संगीत सुनै छी, ओकरा बाद फिर कार्यक्रम में आगा बातचीत हेतै।

0: हमरा लोग फिल्म संगीत सुने हमारे देखो आप समय हम लोग के भर रहे कि श्रोता लोग बातचीत करवा के।
1: तो रंजीत जी एक बात तो है, शिक्षा तो सभी के लिए आवश्यक होती है लेकिन प्रत्येक व्यक्ति के लिए जो शिक्षा का महत्व बहुत अधिक बढ़ जाता है, लेकिन विशेषकर महिलाओं की भागीदारी जब आती है तो महिलाओं की शिक्षा या निर्देश की आधी आबादी को शिक्षा से ही है। बहुत प्राचीन काल से हमारे वेद पुराणों में बहुत सारी महिलाओं विदुषी हुई है जिनके मेघा की चर्चा आज भी होती है, लेकिन उसके बाद के समय में कुछ दिनों तक षड्यंत्र के चलते महिला शिक्षा को बाधित किया गया, लेकिन पुनः आधुनिक युग में आज बेटियां समाज में सबसे आगे हैं, चाहे UPSC BPSC या नीट के एग्जाम परीक्षाएं की अगर हम बात करें।
0: देखियो कुशल, शिक्षा के हम कोनो परीक्षा से जोड़ कर नहीं देख सकै छी, कोनो परीक्षा के प्राप्तांक से हम ककरो योग्यता के आकलन नहीं कर सकै छी। और आब आइ काल्हि बड़ा बड़ा ध्रुवीकरण वाला बात छै जे महिलाओं में शिक्षा का महत्व, और अभी भारत संदेश में तो ई बात कतौ ने कतौ अटपटा लागै छै। अगर अहाँ भारत के पुराना इतिहास उठा कर देखियो, ये मध्यकालीन इतिहास के हम बात नहीं करब, कारण जे मध्यकालीन के इतिहास में जे लेखनी भेल छै ओ लेखनी कतौ ने कतौ जे छै से पक्षपात क के लेखनी भेल छै, और वर्तमान समय में अखनो सह भ रहल छै, तो ओहि लेखनी के कोनो महत्व नहि रहि जाइ छै जाहि लेखनी में पक्षपात कयल गेल होय। लेखनी के मतलब होइ छै निष्पक्ष, निष्पक्षता, जे दुनू पक्ष के संतुलन के लऽ कऽ लिखल जाइ छै ओकरा शुद्ध लेखनी मानल जाइ छै। और रहि गेलै जे हमरा लोकन के अहाँ पौराणिक इतिहास के उठा कर देखियौ तो भारतवर्ष में महिला के शिक्षा के महत्व सबदिना रहि गेलै। हमरा ओहिठमन समाज में पूर्ण होबा के लेल, शिक्षा में पूर्ण होबा के लेल केकरो कोनो रोक ठोक नहीं चले है। अब ई सवाल कतौ से उठ गेलै जे बच्चा महिला के स्कूल नहीं जाय दे गेल छै, या महिला पढ़े नहीं छलखिन है। अगर महिला नहीं पढ़े छलखिन है कुशल, तो आइ हम समस्त देशवासी मिथिलावासी से ई प्रश्न पूछे छियनि जे की अगर मिथिला नहीं पढ़े छलखिन है तो अहाँ याद करियो ओ दिन जखन मंडन मिश्र और आद्य शंकराचार्य के शास्त्रार्थ भेल रहनि, तो ओहिठमन जज के भूमिका में, निर्णायक के भूमिका में हुनकर पत्नी रहथिन बैसल। अगर वो महिला शिक्षित नहीं रहतीन, उनका शिक्षा के ज्ञान नहीं रहें, तो जजमेंट कमेटी में, निर्णायक मंडली में उनका कोना राखल करें। बड पैघ सवाल उठे छे। बहुत रास एहन चीज छे जे शिक्षा सावित्री बाई फूले के अहाँ नाम सुनने हेबे, नारी शिक्षा जगत के उत्थान करवा के लेल अहम योगदान हुनकर रहलन है। आई के डेट में सरकार सेहो प्रतिबद्ध है, चाहे वो केंद्र सरकार हुए या बिहार सरकार हुए, ओहो प्रतिबद्ध है जे महिला में शिक्षा के प्रति जागरूकता कोना बढ़ाएल जाए, महिला बेसी से बेसी कोना शिक्षित हेती, छोट छोट जे बच्ची सब है ओकरा सबके बेसी से बेसी स्कूल से हमरा लोकन केना जोड़ सकै छिए। एकरा प्रभावकारी बनाबे के लेल अई धरातल योजना के धरातल पर उतारबा के लेल केंद्र सरकार और बिहार सरकार के तरफ से कतेक रास योजना चलायल जा रहल है, जकर सबसे पैघ उपलब्धि अहाँ देखने हेबे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बिहार सरकार के ओर से अहाँ देखने हेबे जे छात्रा के शिक्षा के प्रति लोक लुभावन वादा नहीं ओकरा कहल जा सकैए, आकर्षित करवा के लेल साइकिल योजना,
1: पोशाक
0: योजना, छात्रवृत्ति योजना, ओहिमे अब सवाल उठै छै जे एहिठमन कते लोक एकरा व्यंग में लेल जाए, कुछ सब बात के गंभीरते से नहीं लेल जा सकै छै। एक समय में हमरा लोकन चूंकि एहि क्षेत्र से जुड़ल छी साहित्यिकी से, तो लोग सब कटाक्षो करथिन जे सब चीज आब सरकार बेटिए के देवे लए तैयार भ रहल छै, महिला आरक्षणो भ रहल छै, महिला के साइकिल स्कूल जेबाक लेल साइकिल, ओ बाबू लड़को स्कूल जाय छोकरो साइकिल दियो। व्यंग लोग करै छथिन सरकार के प्रति, लेकिन ओकर असर बड़ा व्यापक

0: रूप सँ कुशल एलै, चूंकि हम अहाँ अखन शहरी परिवेश मे छी तऽ हमरा अहाँके ओतेक नजर नहि आबि रहल अछि, मुदा अगर अहाँ सुदूर ग्रामीण इलाकामे अखन अहाँ चलि जाउ तऽ अहाँ देखबै जे बचिया सब झुंड बनौने, लाल हरियर पियर कपड़ा पहिरने, लाल हरियर पियर साइकिल लेने आओर बचिया सब झुंड मे ओहि गाँवसँ शिक्षा अर्जन करबाक लेल दोसर गाँव, चूँकि प्रत्येक विद्यालय प्रत्येक गाँवमे विद्यालय अखनो नहि छै, तऽ दोसर गाँव तक ओ बच्चिया सब ढोन झुंड बना कऽ टोली बना कऽ शिक्षा ग्रहण करबाक लेल इसकुल तक पहुँचैए आओर शिक्षित भऽ रहल अछि। आओर अहाँ ओकर उदाहरण बड़ा सुन्दर कहलहुँ जे आइ जतेक भारतमे कम्पिटेटिव एग्जाम होइए, चाहे ओ सर्विसके लेल होइ या फेर डिग्रीके लेल होइ, ओहि सबमे महिलाके भागीदारी कतौ पुरुषसँ कमतर नहि आँकल जाइए। आ थोड़े तऽ सोना पर सुहागा आओर भऽ गेलै जे मैट्रिकमे पास करू तैयो सरकार राशि देत, इंटरमे फर्स्ट डिवीजन भेल तैयो सरकार राशि देत, ग्रेजुएशनमे फर्स्ट डिवीजन भेल तैयो सरकार राशि देत, सब चीज तऽ भेट रहल छै, लेकिन सब चीज भेलाके बावजूदो आइ काल्हि, पहिले शिक्षाके उद्देश्य किछु आओर होइ छलै, साविद्या विमुक्त अइ, आब शिक्षाके जे छै से लक्ष्य भऽ गेल छै जे पास करो नौकरी पाओ, तऽ वर्तमान स्थितिमे छै खाली पास करो नौकरी मत पाओ, आ नौकरी पा भी गए तो सरकार का जो कार्यालय का जो नियम बंधा हुआ है, जो कानून है, जो प्रावधान है, आप उसके हिसाब से चलें, अगर आप कुछ इधर उधर करेंगे तो निकाले जाएंगे, क्योंकि ये भारत देश है, हमारे यहाँ लोकतांत्रिक देश है, लोकतंत्र और एक हमारे यहाँ संविधान से देश चलता है, हम इधर से उधर जा नहीं सकते हैं। और जकर परिणाम ही हुई है जो आज महिला, आज हमारा देश के बेटी हरेक प्रतियोगिता परीक्षा में, खेल जगत में, न्यायिक जगत में, सब जगह अहाँ देखबै जे ओकर उपस्थिति जे छै से दर्ज, ओ अपन उपस्थिति दर्ज करा रहल अछि। आओर ओ आइके डेटमे जे एहि मानसिकताके लोक छथि हमर पुरुषसभ, जे नहि ई महिला छथि ई काज नहि कऽ सकै छथि, ओहि मानसिकताके आजुक बेटी सीधा सीधी चैलेंज करै छथिन आ कहै छथिन जे प्रतियोगिते परीक्षा पास केने आ जज भेने एस पी भेने हम नहि रहबौ, आब हम फाइटर प्लेन उड़ेबौ, आओर ओ उड़ाबै छथि। तऽ ई शिक्षाके कारण सम्भव भेलैए, अशिक्षितके कारण नहि सम्भव छै।
1: रंजीत जी यही बात कहने वाले थे कि शिक्षा पाने से ये नहीं कि आपके पास शिक्षा और सिर्फ ज्ञान ही बढ़ा, इससे क्या होता है आप अपने परिवार के परिवेश भी अच्छा कर सकते हैं, आपके आप अपने बाल बच्चों को पढ़ा के भी आप अपने परिवार को भी अच्छा कर सकते हैं। फिर आप जैसे अभी आपने फाइटर प्लेन की बात कही, हर जगह आप देखिएगा, हर क्षेत्र में आप देखिएगा महिलाओं का बढ़ता योगदान आज के समय बहुत ही ज़्यादा है, तो कहीं ना कहीं उसका कारण तो एक मूल शिक्षा ही है, इसलिए महिलाओं को भी शिक्षा का।
0: हाँ देखियो, शिक्षा तो छै, लेकिन शिक्षा में दुर्गुण नहीं छै, एहन बात नहीं छै। शिक्षा दू तरहक होइ छै, वैदिक शिक्षा, दैहिक शिक्षा, रोजगार परक। हाँ कुशल है यौ, की कहै छी कुशल बाबू, हम बिसरि जाइ छियै जे नमस्कार मिथिलाके कार्यक्रम हमरा लोकनिके जे छै से कार्यालयके समय सीमा निर्धारण केने छै, श्रोता लोकनि क्षमा चाहै छी। लेकिन एकटा बात आओर कहऽ चाहब जे बच्चिया हो या बच्चा, बच्ची बच्चामे फर्क नहि करब, ककरो शिक्षामे कोनो फर्क नहि करब, बेटा हो या बेटी, शिक्षा देबामे कतौ पछा नहि हटब, एक दिन भूखल रहि जायब, सूखल रोटी खा लेब, लेकिन बाल बच्चाके पढ़ाबऽके लेल हर सम्भव सब गोटे प्रयास करब। आओर नमस्कार मिथिला कंगन, हमरा लोकनि एक डेग आगाँ बढ़ै छी आओर सुनै छी सुन्दर सन फिल्म सङ्गीत।

श्रोतागण फिल्म संगीत हमें अखन सुनने और देखो घड़ी के सुई टिक टिक इशारा कर रहे हैं अखन के आज नमस्कार मिथिला के अंक संविदा लेकिन श्रोता लोग एक बात कही चलत चलत कार्यक्रम अपने लोग केहन लगे।

चिट्ठी पत्री के माध्यम से अपने लोकन हमारे लोकन के पठा सकै छी त फटाफट कागज और कलम उठाबी और हमर पता नोट करी। कार्यक्रम नमस्कार मिथिला द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी दरभंगा और पिन नंबर ठीक 8460004 इस पता पर श्रोता लोकन अपने लोकन हमारे लोकन के चिट्ठी पत्री सेहो लिख सकै छी और आकाशवाणी दरभंगा सुनबाक लेल अपने लोकन न्यूज ऑन AIR ऐप पर जाकर डाउनलोड कऽ कऽ आकाशवाणी दरभंगे नहीं आकाशवाणी भारत के सब केंद्र के आनंद अहाँ लऽ सकै छी। एहि शब्दक संग आजुक नमस्कार मिथिला के अंक सँ हमरा लोकनि लैत छी विदा। नमस्कार मिथिला।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नमस्कार मिथिला, प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया गया।
1: कीजिए दिन का आरंभ पवित्रता, भक्ति और आस्था के साथ। प्रातः 6:10 पर आकाशवाणी दरभंगा से भक्ति संगीत का हमारा कार्यक्रम वंदना। रेडियो सेट के साथ साथ न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी।

साहित्य, संस्कृति और कला के उपवन में फुलायल एक गोट एहन पुष्प जाहिसँ गमकैत अछि संपूर्ण मिथिला।

0: सब दिन भर तुहार आबै छल कहियो थमहू अगला साल, हमर गर्दन काटि लेला आ अपने बनल मालू।
1: गुआ सुपारी के कहल जायत अछि, मुदा अखन कहै छियनि कि गुआ कनि आनि के दिया तऽ बहुत कमे लोक हेता जे गुआ बुझि के सुपारी बुझि के आनि के देता।
2: अपन परम्परा, अपन संस्कार, अपन माटिक सुगंध के सहेजे मैथिली कार्यक्रम सिंगर हार।
3: नब्बे वर्षों का शानदार सफर आकाश।
4: आकाशवाणी दरभंगा ने भी पूरे कर लिए हैं अपने 50 साल।
5: एक से बढ़कर एक कार्यक्रम, साथ ही सदाबहार फिल्मी गाने समय समय पर।
4: सोमवार से शनिवार दोपहर 12 बजे और संध्या 5:40 पर कुछ तराने नए जमाने के।
3: आकाशवाणी दरभंगा, सुनते रहिए।
6: घर घर के वाणी आकाशवाणी, हृदय हृदय के वाणी आकाशवाणी। आ हृदय सबके जोड़बा लेल हम आबि रहल छी एक क्लिक पर। हमर स्टेशंस लाइव, मनक बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, क्षण क्षण के विश्वसनीय खबर। हमर सबक वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नव भारत, नव आकाशवाणी।
7: भोर होते उठ जाओ, किएक तऽ इजोतक पहिल किरण संग फुलाय लगैत अछि, फूल प्रकृति में घोराय लगैत अछि, ऊर्जा आबय वाला काल्हि लेल।
8: प्रगति तखने भ सकैए जखन पुरुष और महिला समान रूप से सब क्षेत्र में एक रंग हुनका अधिकार प्राप्त हेतन।
9: आ मनुख लेल तो बुझू अत्यंत जरूरी।

0: पानि बुन्नी नहि हैत तऽ खेती नहि हैत, आ खेती जँ नहि हैत, उपजा नहि हैत तऽ हमरा लोकनि खायब की?
1: मामा बने जाने बाबा देने जादा।
2: नमस्कार मिथिला, सुबह 7:05 पर सुनते रहिए आकाशवाणी दरभंगा।
3: आकाशवाणी दरभंगा की प्रस्तुति गाम घर संध्या 6:30 पर
4: मीडियम वेव 231.5 यानी 1296 किलोहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 8 को हैं। कुछ ही देर में आप सुनेंगे समाचार प्रभात।
5: वाणी का ये पटना की दिल्ली केंद्र से होगा।
6: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
7: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर।
8: हर घर सूर्य घर।
9: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 19वें रोजगार मेले में 51,000 से अधिक चयनित युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए केंद्र सरकार को 2,86,000 करोड़ रुपए के अधिशेष हस्तांतरण को मंजूरी दी। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो भारत की 4 की यात्रा पर कोलकाता पहुंचे, आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगे। मौसम विभाग ने आज पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और विदर्भ में भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया। भारतीय सेना के अधिकारी मेजर अभिलाषा बराक को प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र सैन्य लैंगिक समानता समर्थक पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। और आईपीएल क्रिकेट में मेजबान सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु को 55 से हराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 19वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। इनमें विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में नव चयनित युवा शामिल हैं। श्री मोदी इस अवसर पर उपस्थित लोगों को संबोधित भी करेंगे। ये रोजगार मेला देश में 47 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि रोजगार मेला प्रधानमंत्री मोदी की रोजगार सृजन को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की प्रतिबद्धता दर्शाता है।
10: यह रोजगार मेला रोजगार सृजन के प्रति प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता को पूरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह रोजगार मेला युवाओं को सशक्त बनाने और राष्ट्र निर्माण में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए उन्हें सार्थक अवसर प्रदान कर रहा है। देश भर में अब तक आयोजित 18 रोजगार मेलों के माध्यम से 12,00,000 नियुक्ति पत्र जारी किए जा चुके हैं। यह 19वां रोजगार मेला देश भर में 47 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। इसमें देश के सभी हिस्सों से चयनित नव नियुक्त उम्मीदवार केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और भागों में नियुक्त होंगे, जिसमें रेल मंत्रालय, गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और उच्च शिक्षा विभाग सहित अन्य विभाग शामिल हैं। यह रोजगार मेला देश के विकास में युवाओं की भागीदारी को मजबूत करने की दिशा में एक और बड़ा कदम है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
9: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स ने आतंकवाद से निपटने के लिए बहुपक्षीय प्रयासों को मजबूत करने और संयुक्त राष्ट्र ढांचे में अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक सम्मेलन को शीघ्र अंतिम रूप देने का आह्वान किया है। दोनों नेताओं ने आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति को दोहराते हुए दोहरे मापदंड, राज्य प्रायोजित आतंकवाद और किसी भी परिस्थिति में आतंकवादी कृत्यों के औचित्य को अस्वीकार कर दिया। नई दिल्ली में कल दोनों नेताओं के बीच हुई वार्ता के बाद दोनों देशों ने संयुक्त राष्ट्र और यूरोपीय संघ द्वारा नामित सभी आतंकियों और आतंकी संगठनों के खिलाफ मजबूत और समन्वित कार्रवाई का आग्रह किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि साइप्रस के साथ भारत के रक्षा सहयोग में वृद्धि हुई है।
11: आज हमने साइबर सिक्योरिटी, मैरिटाइम सिक्योरिटी और काउंट

0: टेररिज्म सहयोग को भी और मजबूत करने का निर्णय लिया है। इतना ही नहीं, हम इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव और इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जैसे महत्वपूर्ण पहलों से कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए भी साथ मिलकर काम करेंगे।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि सेमीकंडक्टर, अंतरिक्ष और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भारत और साइप्रस के बीच सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि भारत और साइप्रस की मित्रता साझा मूल्यों और एकजुटता पर आधारित है।
2: 1962 में हमारे राजनयिक संबंधों की स्थापित के बाद से ही भारत और साइप्रस एक दूसरे के साथ खड़े हुए हैं। हमारे जानसीपुर की मित्रता अब से सम्मान, साझा मूल्यों, विश्वास और एकजुटता पर आधारित है। आने वाले वर्षों में भारत साइप्रस के साथ अपने व्यापक सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए उत्सुक है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपके मार्गदर्शन और नेतृत्व के साथ हमारी मित्रता निरंतर सुदृढ़ होती जाएगी।
1: राष्ट्रपति मुर्मू ने कल राष्ट्रपति भवन में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स के सम्मान में राजकीय भोज का आयोजन किया। भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए केंद्र सरकार को रिकॉर्ड 2,86,000 करोड़ रुपए का अधिशेष हस्तांतरित करने की मंजूरी दे दी है। ये रिजर्व बैंक के अब तक के सबसे अधिक लाभांश में से एक है। ये निर्णय कल मुंबई में रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा की अध्यक्षता में बैंक के केंद्रीय निदेशक मंडल की 623वीं बैठक में लिया गया। बैंक ने कहा कि वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान उसकी सकल आय पिछले वर्ष की तुलना में 26.42% बढ़ी। बैंक का व्यय 27.6% बढ़ा। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा है कि देश में पेट्रोल और डीजल की पर्याप्त उपलब्धता है और आपूर्ति स्थिर बनी हुई है। सोशल मीडिया पोस्ट में मंत्रालय ने नागरिकों को घबराहट में खरीदारी न करने और केवल आवश्यकता के अनुसार ईंधन खरीदने की सलाह दी। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज 91 पैसे प्रति लीटर तक की वृद्धि हुई। पिछले 10 दिन में तेल के मूल्यों में ये तीसरी वृद्धि है। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 87 पैसे बढ़कर 99.51 रुपए प्रति लीटर हो गई है, जबकि डीजल के मूल्य 91 पैसे बढ़कर 92.49 रुपए प्रति लीटर हो गया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @ @YYRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
3: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
4: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
5: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो 4 दिन की भारत यात्रा पर कोलकाता पहुंच गए हैं। श्री रूबियो की यह पहली भारत यात्रा है। ये यात्रा अमेरिका और भारत के बीच आपसी संबंधों को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसका मुख्य उद्देश्य व्यापार, रक्षा, ऊर्जा सुरक्षा, प्रौद्योगिकी और हिंद प्रशांत रणनीति में सहयोग का विस्तार करना है। भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर ने हवाई अड्डे पर श्री रूबियो का स्वागत किया। श्री रूबियो आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भेंट करेंगे। श्री रूबियो विदेश मंत्री एस जयशंकर से भी बातचीत करेंगे। उनका अमरीकी दूतावास में होने वाले अमरीकी स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल होने का भी कार्यक्रम है। श्री रूबियो मंगलवार को नई दिल्ली में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेंगे। बैठक में ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग और जापान के विदेश मंत्री तोशी मित्सो मोतेगी भी शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि क्वाड बैठक में स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र के दृष्टिकोण के अनुरूप जारी पहलों की प्रगति की समीक्षा की जाएगी। बैठक में आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। भारतीय सेना के अधिकारी मेजर अभिलाषा बराक को वर्ष 2025 के संयुक्त राष्ट्र सैन्य लैंगिक समानता समर्थक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। मेजर अभिलाषा बराक लेबनान में संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षा मिशन में कार्यरत हैं।
6: मेजर अभिलाषा बराक वर्तमान में लेबनान में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल में महिला सहभागिता दल की कमांडर के रूप में भारतीय बटालियन में कार्यरत हैं। मेजर बराक भारतीय सेना की पहली

0: महिला लड़ाकू हेलीकॉप्टर पायलट भी हैं। मेजर बराक ये पुरस्कार प्राप्त करने वाली तीसरी भारतीय शांति रक्षक बन गई हैं। इससे पहले मेजर सुमन गवानी को 2019 में और मेजर राधिका सेन को 2023 में ये पुरस्कार मिला था। वर्ष 2016 में स्थापित ये पुरस्कार प्रतिवर्ष संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों में तैनात बलों के कमांडरों और मिशन प्रमुखों के नामांकनों में से चुना जाता है। भारत संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों में सैनिकों और पुलिस कर्मियों का सबसे बड़ा योगदान देने वाले देशों में शामिल है। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
1: भारत तिब्बत सीमा पुलिस के महिला दल ने एवरेस्ट शिखर पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की है। ये उनका पहला अभियान था। 14 सदस्यीय दल में 11 महिला पर्वतारोही और 3 तकनीकी तथा सहायक कर्मचारी शामिल थे। एक रिपोर्ट।
2: इस दल ने 21 मई को नेपाल की ओर से दक्षिण कोल मार्ग से विश्व की सबसे ऊंची चोटी पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की। अभियान को 19 अप्रैल को बल के मुख्यालय से रवाना किया गया था। स्वच्छ हिमालय ग्लेशियर बचाओ अभियान के अंतर्गत दल ने पर्यावरण जागरूकता गतिविधियां भी चलाई और एवरेस्ट क्षेत्र से गैर बायोडिग्रेडेबल कचरा एकत्र किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस सफलता पर दल को बधाई दी है। श्री शाह ने कहा कि दुर्गम भूभाग और कठोर परिस्थितियों में यह उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल करके टीम ने बल के आदर्श वाक्य राष्ट्र सर्वोपरि को कायम रखा है। इस उपलब्धि के साथ बल ने अब तक 232 पर्वतारोहण अभियान पूरे कर लिए हैं। इनमें एवरेस्ट पर 5 सफल चढ़ाई शामिल हैं। बल ने एवरेस्ट, कंचनजंगा, मकालू, लोहत्से, धौलागिरी और मनालसू सहित दुनिया की 8000 मीटर से अधिक ऊंची 6 चोटियों पर भी चढ़ाई की है। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
1: मध्य प्रदेश सरकार ने समान नागरिक संहिता UCC की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कल सचिवालय में वेबसाइट ucc.mp.gov.in का शुभारंभ किया। इस पोर्टल के माध्यम से नागरिक, राजनीतिक दल और सामाजिक संगठन प्रस्तावित यूसीसी पर अपने विचार और सुझाव साझा कर सकते हैं। प्रतिक्रिया देने की अंतिम तिथि इस वर्ष 15 जून है। आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु को 55 रन से हरा दिया। हैदराबाद में कल टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए सनराइजर्स हैदराबाद ने निर्धारित 20 ओवर में 4 विकेट पर 255 रन बनाए। जवाब में रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु की टीम निर्धारित 20 ओवर में 4 विकेट पर केवल 200 रन ही बना सकी। प्रतियोगिता में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का सामना पंजाब किंग्स से होगा। ये मैच लखनऊ में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। मौसम विभाग ने आज पूर्वी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने अगले 5 दिन में दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, राजस्थान, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा में भी लू की चेतावनी जारी की है। आकाशवाणी समाचार के विशेष कार्यक्रम पीपल्स पद्म की अगली कड़ी में हम प्रसिद्ध वायलिन वादिका एन राजम से बातचीत करेंगे। उन्हें प्रतिष्ठित पद्म विभूषण से सम्मानित किया जाएगा। ये कार्यक्रम आज सुबह 9:10 पर आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। इसे न्यूज ऑन AIR ऐप और न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर भी सुना जा सकता है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
3: धन्यवाद कनकलता। आरक्षण को लेकर सर्वोच्च न्यायालय का बयान अनेक अखबारों की पहली सुर्खी है। अमर उजाला ने न्यायालय के हवाले से लिखा है, माता पिता में से कोई भी IAS अफसर तो बच्चों को आरक्षण क्यों। राजस्थान पत्रिका की ऐसी ही सुर्खी है। जनसत्ता लिखता है, मलाईदार तबके के आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने उठाया सवाल। नीट पेपर लीक केस में एक और शिक्षिका की गिरफ्तारी हिंदुस्तान के पहले पृष्ठ पर है। राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है, तीसरी मनीषा फिजिक्स की एक्सपर्ट हुई गिरफ्तार। दैनिक भास्कर लिखता है, अब तक 11 गिरफ्तार, इनमें से 7 आरोपी महाराष्ट्र के। दैनिक जागरण ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का बयान दिया है, नीट UG की दोबारा होने वाली परीक्षा को कराएंगे 100% त्रुटि रहित। नवभारत टाइम्स ने त्रिषा शर्मा मामले में लिखा है, पोस्टमार्टम फिर होगा, त्रिषा का 10 दिन से फरार पति हिरासत में। दैनिक ट्रिब्यून ने कुश्ती महासंघ द्वारा पहलवान विनेश फोगाट को घरेलू प्रतियोगिताओं में भाग लेने के अयोग्य घोषित करने पर हाईकोर्ट की कड़ी फटकार की खबर देते हुए लिखा है, प्रतिशोध की भावना से काम न करें WFI। लोकसत्ता की हेडलाइन है, आसमानी आग में झुलसा देश, पारा 47 डिग्री के पार। जनसत्ता संपादकीय में लिखता है, इस बात पर भी गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए कि आखिर मैदानों के साथ अब पहाड़ भी क्यों तपने लगे हैं। मौसम विज्ञानियों का मानना है कि पहाड़ी क्षेत्रों में वनों की अंधाधुंध कटाई, अवैज्ञानिक तरीके से खनन और पर्यटक वाहनों के बढ़ते दबाव से स्थानीय मौसम चक्र में बदलाव हो रहा है। ऐसे में अगर अब भी हम नहीं संभले तो निकट भविष्य में

0: 5 million seed balls in June during the monsoon season, writes the Statesman. And with that, it's back to you, Sunil.
1: Thank you, Nina. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi to distribute over 51,000 appointment letters to new recruits in various government departments today. RBI approves record surplus transfer of 2.86 lakh crore rupees to central government for financial year 2025-26. US Secretary of State Marco Rubio arrives in Kolkata on his maiden four-day visit to India to call on Prime Minister Modi in New Delhi this afternoon. IMD issues red alert for severe heat wave over East Madhya Pradesh, East Uttar Pradesh and Vidarbha today. Indian Army Officer Major Abhilasha Barak honored with prestigious UN Military Gender Advocate of the Year Award 2025. And in IPL cricket, host Sunrisers Hyderabad beat Royal Challengers Bengaluru by 55 runs. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
2: Akashvani se pesh hai khabarnama. Adab. Khabarname ke saath main Zameer Rizvi. सबसे पहले इस वक्त की सुर्खियां। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज मुख्तलिफ सरकारी महकमों में नए भर्ती किए गए अफराद को 51,000 से ज्यादा तकरीनामे में तकसीम करेंगे। आरबीआई ने माली साल 2025-26 के लिए 2.86 लाख करोड़ रुपए की इजाफी रिकॉर्ड रकम मरकजी हुकूमत को सौंपने की इजाजत दी है। अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो भारत के अपने पहले चार रोजा दौरे पर कोलकाता पहुंच गए हैं। वो आज दोपहर नई दिल्ली में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। भारतीय महकमे मौसमियात ने मशरकी मध्य प्रदेश, मशरकी उत्तर प्रदेश और विदर्भ में आज शदीद गर्मी के पेश नज़र रेड अलर्ट जारी किया है। भारतीय फौज की अफसर मेजर अभिलाषा बराक को साल 2025 का अक़वामे मुत्तहिदा की फौजी सिन्फी वकील के अवार्ड से नवाजा गया है। और आईपीएल क्रिकेट में मेज़बान सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 55 रन से हरा दिया। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी 19वें रोजगार मेले के तहत आज मुख्तलिफ सरकारी महकमों और इदारों में 9 तकररशुदा 51,000 से ज्यादा नौजवानों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तकरीरनामे तकसीम करेंगे। जनाब मोदी इस मौके पर तकरीब से खिताब भी करेंगे। हमारे नामा निगार ने खबर दी है कि रोजगार मेला वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की जानिब से रोजगार पैदा करने को दी जा रही तरजीह की अक्कासी करता है और इस विजन को हकीकत में बदल रहा है। तफसील हमारे नामा निगार से।
3: रोजगार मेला वज़ीर-ए-आज़म मोदी की जानिब से रोजगार पैदा करने को तरजीह देने की जानिब एक अहम कदम है जो नौजवानों को बामाना मौके फराहम करने और मुल्क की तामीर में अहम रोल अदा कर रहा है। अपने आगाज के बाद से मुल्क भर में मुनक़िद हुए 18 रोजगार मेलों में अब तक 12 लाख तकरीनामे जारी किए जा चुके हैं। 19वां रोजगार मेला मुल्क भर के 47 मकामात पर होगा। मुल्क भर से तकरीरी पाने वाले उम्मीदवार मुख्तलिफ वजारतों और महकमों में मुलाजमत हासिल करेंगे, जिनमें रेलवेज, दाखिला, सेहत व खानदानी बहबूद और आला तालीम समेत दिगर महकमे और वजारतें शामिल हैं। नई दिल्ली से दीपेंद्र कुमार की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मुजीब अख्तर।
2: भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने रिकॉर्ड 2.86 लाख करोड़ रुपए की रकम इजाफी असासे के तौर पर मरकजी हुकूमत को मुंतकिल करने की इजाज़त दी है। ये रकम माली साल 2025-26 के लिए थी, जो आरबीआई की जानिब से मुनाफे की तकसीम डिविडेंड की अब तक की सबसे बड़ी रकम है। यह फैसला आरबीआई के डायरेक्टर्स के मरकजी बोर्ड की 623वीं मीटिंग में लिया गया, जिसकी सदारत कल मुंबई में गवर्नर संजय मल्होत्रा ने की। आरबीआई ने अपने बयान में कहा है कि उसने मजमुई आमदनी में पिछले साल के मुकाबले इस साल यानी 2025-26 के दौरान 26.42% इजाफा हुआ है, जबकि अखराजात में जिनमें इम्कानी खतरात शामिल नहीं हैं 27.60% का इजाफा हुआ है। अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो अपने चार रोजा भारत दौरे पर आज कोलकाता पहुंच गए हैं। ये भारत का उनका पहला दौरा होगा, जो वाशिंगटन और नई दिल्ली के दरमियान दोतरफा ताल्लुकात को मुस्तहकम करने की जानिब अहम कदम साबित होगा। जनाब रूबियो के दौरे के दौरान तिजारत, दिफा, तवानाई की यकीनी फराहमी, टेक्नोलॉजी और भारत बहरुल काहिल हिकमत अमली जैसे शोबों में तावुन को वसत देने पर तवज्जो मरकूज किए जाने का इम्कान है। भारत में अमरीकी सफीर सर्गियो गोर ने हवाई अड्डे पर जनाब रूबियो का इस्तकबाल किया। अमरीकी वजारत खारजा ने कहा है कि कोलकाता में अपने क्याम के दौरान जनाब रूबियो मदर हाउस, सेंट टेरेसा मिशनरीज ऑफ चैरिटी और शहर के चिल्ड्रन होम का दौरा करेंगे। सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब गोर ने बताया कि जनाब रूबियो दिन में नई दिल्ली का सफर करेंगे और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे।

0: होंगे। अमरीकी सफीर के मुताबिक ये दौरा बुनियादी तौर पर दिफाई शराकत दारियों, जदीद टेक्नोलॉजीज, तजारती ताल्लुकात और क्वाड फ्रेमवर्क के तहत इश्तराक जैसे अहम स्ट्रेटेजिक शोबों में तआवुन को मुस्तहकम करने पर तवज्जो मरकूज करेगा। सदर जमहूरी द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि भारत और कुब्रुस के दरमियान सेमीकंडक्टर्स, खला और मसनूई जहानत जैसे नए और उभरते हुए शोबों में तआवुन की बेपनाह सलाहियत मौजूद है। राष्ट्रपति भवन में कल कुब्रुस के अपने हमनसब निकोलस क्रिस्टोडोलाइड्स और उनके वफद को दिए गए इशाइये के बाद सदर जमहूरिया इजहार ख्याल कर रही थीं। उन्होंने कहा कि टेक्नोलॉजी और जिद्दत तराजी दो तरफा ताल्लुकात के मुस्तकबिल के मैदानों के तौर पर उभरे हैं।
1: 1962 में हमारे राजनयिक संबंधों की स्थापित के बाद से ही भारत और साइप्रस एक दूसरे के साथ खड़े हुए हैं। हमारे जानसीपुर की मित्रता आपसे सम्मान, साझा मूल्य, विश्वास और एकजुटता पर आधारित। आने वाले वर्षों में भारत साइप्रस के साथ अपने व्यापक सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए उत्सुक है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपके मार्गदर्शन और नेतृत्व के साथ हमारी मित्रता निरंतर

0: भारत और साइप्रस एक दूसरे के साथ खड़े हुए हैं। हमारे जानसीपुर की मित्रता आपसे सम्मान, साझा मूल्य, विश्वास और एकजुटता पर आधारित। आने वाले वर्षों में भारत साइप्रस के साथ अपने व्यापक सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए उत्सुक है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपके मार्गदर्शन और नेतृत्व के साथ हमारी मित्रता निरंतर सुदृढ़ होती जाएगी।
1: सदर जमहूरिया ने सरहद पार दहशतगर्दी और कसीर जहती इदारों में इस्लाहात जैसे अहम मामलों पर कुबरुस की हिमायत की सताइश की। सदर जमहूरिया ने कुबरुस की सालमियत, इत्तेहाद और इलाकाई यकजहती के तहत भारत की गैर मुतजलजल हिमायत का इरादा भी किया। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि दोतरफा ताल्लुकात को स्ट्रेटेजिक साझेदारी में बदल दिया गया है, जो भारत और कुबरुस के दरमियान बढ़ती सूझबूझ, गहराई और बाहमी एतमाद की अक्कासी करते हैं। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। भारतीय फौज के अफसर मेजर अभिलाषा बराक को, जो लेबनान में अक्वामे मुत्तहदा के क्याम अमन मिशन में खिदमत अंजाम दे रही हैं, अक्वामे मुत्तहदा के 2025 के एक बावकार अवार्ड के लिए मुंतखब किया गया है। उन्हें यह अवार्ड इस साल की फौजी सिन्फी वकील के तौर पर दिया जा रहा है। मेजर बराक, जो फिलहाल एक भारतीय बटालियन में लेबनान में अक्वामे मुत्तहदा की उबूरी फोर्स में खवातीन की सरगर्मी वाली टीम की कमांडर UNIFIL के तौर पर खिदमत अंजाम दे रही हैं, भारतीय फौज के जंगजू हेलीकॉप्टर की पहली खातून पायलट भी हैं। ये अवार्ड हासिल करने वाली मेजर बराक तीसरी भारतीय क़याम अमन फौजी हैं जिन्हें ये एजाज हासिल हुआ है। इससे पहले मेजर सुमन गवानी को साल 2019 में जनूबी सूडान में अक़वामे मुत्तहदा मिशन के तहत खिदमत अंजाम देने पर इस अवार्ड से नवाजा गया था और मेजर राधिका सेन को साल 2023 में इस अवार्ड से नवाजा गया था। उन्हें यह अवार्ड जमहूरिया कांगो में अक़वामे मुत्तहदा के इस्तेहकाम मिशन के तहत उनकी खिदमात पर दिया गया था। भारत तिब्बत सरहद पुलिस ITBP ने माउंट एवरेस्ट पहुंचने वाली अभी तक की पहली ऐसी बैनुल अक़वामी कोहे पैमा मुहिम मुकम्मल कर ली है जो सिर्फ खवातीन पर मुश्तमिल है। ये कामयाबी इस फौज की कोहे पैमाई के मैदान में तारीखी संगे मील है। पेश है एक रिपोर्ट। ITBP की एक 14 रकनी कोह पैमा टीम ने, जो 11 खवातीन, 3 तकनीकी माहरीन और मददगार अमले पर मुश्तमिल है, इस माह की 21 तारीख को दुनिया की सबसे ऊंची चोटी सर कर ली। इस मुहिम को 19 अप्रैल को ITBP के सदर दफ्तर से रवाना किया गया था। अपनी हिमालय साफ करो और ग्लेशियर को महफूज करो मुहिम के तहत टीम ने माहौलियाती बेदारी की सरगर्मियां अंजाम दी और एवरेस्ट खित्ते से नॉन बायोडिग्रेडेबल कचरे को इकट्ठा किया। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने टीम को माउंट एवरेस्ट पर कौमी झंडा फहराने पर मुबारकबाद दी। जनाब शाह ने कहा कि इस बुलंदतरीन इलाके और सख्त आबो हवा के हालात में ये काबिल तहसीन कारनामा अंजाम देकर टीम ने ITBP के खुद से पहले मुल्क के मोटो की शान बरकरार रखी है। जिज्ञासा पांडे की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असलम बेग।
2: आज पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 91 पैसे फी लीटर इजाफा हुआ है। 10 दिन से भी कम मुद्दत में ये तीसरा इजाफा है। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत में 87 पैसे का इजाफा हुआ है और ये 99 रुपये 51 पैसे फी लीटर हो गया है, जबकि डीजल की कीमत में 91 पैसे का इजाफा होकर ये 92 रुपये 49 पैसे लीटर हो गया है। ये इजाफा ईरान तनाज़े और आमनाए हुरमुज में रुकावट के सबब खाम तेल की आलमी कीमतों में अचानक इजाफे के दौरान हुआ है। इस दौरान पेट्रोलियम और कुदरती गैस की वजारत ने बताया कि भारत में पेट्रोल और डीजल भरपूर मकदार में दस्तियाब है और पूरे मुल्क में सप्लाई भी मुस्तहकम है। सोशल मीडिया पोस्ट में वजारत ने शहरियों को मशवरा दिया है कि वो घबराहट में ख़रीदारी ना करें और ईंधन की ख़रीदारी अपनी असल ज़रूरत के मुताबिक करें। वजारत ने मजीद कहा कि जिम्मेदारी के साथ की जाने वाली खपत और आवाम के तआवुन से इस यकीन दहानी में मदद मिलेगी कि ज़्यादा मांग वाले इन दिनों के दौरान ईंधन सभी के लिए दस्तियाब है। मध्य प्रदेश सरकार ने यकसां सिविल कोड UCC की जानिब एक अहम कदम उठाया है। वज़ीर-आला मोहन यादव ने कल सेक्रेटेरिएट में ucc.mp.gov.in वेबसाइट का आगाज़ किया। पोर्टल के जरिए सियासी पार्टियां और समाजी तंजीमें मुजवजा UCC मामले पर अपने ख्यालात और मशवरे पेश कर सकती हैं। रद्दमल दाखिल करने की आखिरी तारीख इस साल 15 जून मुकर्रर की गई है। सानवी तालीम के मरकजी बोर्ड CBSE ने 12वीं जमात के बोर्ड इम्तहानात के जवाबी पर्चों की स्कैंड फोटोकॉपी हासिल करने की आखिरी तारीख में एक दिन की तौसी करते हुए इसे 24 मई तक बढ़ा दिया है। इससे पहले इसकी आखिरी तारीख आज तक थी। सीबीआई ने कहा कि ये

0: पिछले कुछ दिनों से इसकी वेबसाइट पर गैर सीबीएसई ने कहा कि पिछले कुछ दिनों से इसकी वेबसाइट पर गैर मुतवक्के ट्रैफिक और गैर मजाज इंटरफेस के मुतादिद कोशिशों से खलल अंदाजी के खदशे के बाद यह फैसला लिया गया। बोर्ड ने इत्तला दी है कि जवाबी पर्चों की स्कैन कॉपी हासिल करने के बाद पर्चों की दोबारा जांच के लिए तलबा को 2 दिन मिलेंगे। भारतीय महकमा मौसमियात ने मशरकी मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश और विदर्भ में आज शदीद गर्मी से मुतालिक रेड अलर्ट जारी किया है। महकमा मौसमियात ने दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, राजस्थान, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड और ओडिशा में अगले 5 दिन के दौरान सख्त गर्मी से मुतालिक ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है। इसी तरह के मौसमी हालात अगले 5 दिन तक साहिली आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, मगरबी मध्य प्रदेश और मगरबी उत्तर प्रदेश में भी रहेंगे। गंगाई मगरबी बंगाल, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में आज मौसम के गर्म और मरतूब रहने का इम्कान है। इस दौरान भारतीय महकमा मौसमियात ने अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, जैली हिमालयी मगरबी बंगाल और सिक्किम में कल तक शदीद बारिश की पेशगोई की है। मध्य प्रदेश में शदीद गर्मी के हालात जारी हैं। रियासत के 42 जिलों में भारतीय महकमा मौसमियात ने शदीद गर्मी से मुतालिक वार्निंग जारी की है। कई खित्तों में दर्जे हरारत के औसत से ज्यादा रहने पर रेड, ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किए गए हैं। तफसील हमारे नामा निगार से।
1: मध्य प्रदेश शदीद गर्मी की गिरफ्त में है। रियासत में टीकमगढ़, छतरपुर और पन्ना सबसे ज्यादा मुतासिर हैं। इन तीनों मकामात पर रेड अलर्ट जारी किया गया है। ग्वालियर और 20 दिगर जिलों में शदीद गर्मी से मुतालिक रेड अलर्ट जारी किया गया है, जबकि ग्वालियर और दिगर 20 जिलों में ऑरेंज अलर्ट और भोपाल, इंदौर समेत दिगर 16 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। मध्य प्रदेश के 10 जिलों में दर्ज हरारत कल 44 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा रहा। गर्मी की यह शदीद लहर 31 मई तक जारी रहेगी। इसका मतलब यह है कि मध्य प्रदेश के लोगों को अगले 10 दिन तक गर्मी से कोई राहत नहीं मिलेगी। भोपाल से अभिनव गोयल की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मुजीब अख्तर।
0: ट्रंप इंतजामिया ने अमेरिका के ग्रीन कार्ड तरीक़ेकार में बड़ी तब्दीली की है। उन्होंने कहा है कि उन गैर मुल्की शहरियों को जो मुस्तकिल सकूनत चाहते हैं, इसकी दरख्वास्त देने के लिए अपने वतन वापस जाना होगा। इस कदम से पहले अमेरिकी शहरियत और इमिग्रेशन खिदमात USCIS ने एक पॉलिसी तैयार की थी जिसमें अमेरिका में रहने वाले सिर्फ उन लोगों को मंजूरी दी जाएगी जो गैर मामूली हालात से दो चार हैं। अमेरिकी नेशनल इंटेलिजेंस की डायरेक्टर तुलसी गबार्ड ने अपने ओहदे से इस्तीफे का ऐलान किया है। मोहतरमा गबार्ड ने कहा है कि वो अपने शौहर अब्राहम विलियम्स में हड्डियों के कैंसर की तशखीस के बाद अपने ओहदे से इस्तीफा दे रही हैं, जो 30 जून से नाफिज हो जाएगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को लिखे इस्तीफे में मोहतरमा गबार्ड ने कहा कि वो गुज़िश्ता 1.5 साल से नेशनल इंटेलिजेंस के डायरेक्टर के ओहदे पर फराइज अंजाम देने का मौका फराहम करने पर बेहद मशकूर हैं। आईपीएल क्रिकेट में कल रात हैदराबाद में खेले गए मैच में सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 55 रन से शिकस्त दी। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए सनराइजर्स हैदराबाद ने मुकर्रर 20 ओवर्स में 4 विकेट के नुकसान पर शानदार 255 रन बनाए। आज लखनऊ में शाम 7:30 बजे लखनऊ जायंट्स का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। ये थी खबरें और अब अखबारात के आईने के साथ हैं मुजीब अख्तर।
1: शुक्रिया जमीर। राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के अखबारात ने अलग अलग खबरों को शह सुर्खी बनाया है। रोजनामा हिंदुस्तान एक्सप्रेस ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और कुब्रुस के सदर क्रिस्टोफर ग्लाइस के दरमियान हुई बातचीत पर तवज्जो मरकूज की है। बातचीत के बाद एक मुश्तरका बयान में जनाब मोदी ने कहा कि भारत और कुब्रुस ने ताल्लुकात को स्ट्रेटेजिक शराकतदारी की सतह तक ले जाने का फैसला किया है और सरमायाकारी को दोगुना करने का हदफ मुकर्रर किया है। रोजाना प्रताप और इंकलाब ने वजारत खारजा के हवाले से खबर दी है कि क्वाड ममालिक के वजारत खारजा की मीटिंग 26 तारीख को मुनक़िद होगी, जिसमें शिरकत के लिए अमरीका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के वजारत खारजा भारत आएंगे। इस मौके पर भारत बहरुल काहिल खित्ते और बाहमी मफादात के बैन अलाक़वामी मसायल पर गौर व खौज किया जाएगा। राज्यसभा की 26 सीटों पर इंतखाबात 18 जून को होंगे। इस खबर को रोजनामा इंकलाब ने खसूसी तौर पर शाये किया है। इस बात का ऐलान इंतखाबी कमीशन ने कल किया।
0: और आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज मुख्तलिफ सरकारी महकमों में नए भर्ती किए गए अफराद को 51,000 से ज्यादा तकरुना में तकसीम करेंगे। RBI ने माली साल 2025-26 के लिए 2.86 लाख करोड़ रुपए की रिकॉर्ड इजाफी रकम मरकजी हुकूमत को सौंपने की इजाज़त दी है। अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो भारत के अपने पहले 4 रोजा दौरे पर कोलकाता पहुँच गए हैं। वो आज दोपहर नई दिल्ली में वजीर आजम नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। भारतीय महकमा मौसमियात ने मशरकी मध्य प्रदेश, मशरकी उत्तर प्रदेश और विदर्भ में आज शदीद गर्मी के पेश नज़र रेड अलर्ट जारी किया है। भारतीय फौज के अफसर मेजर अभिलाषा बराक को साल 2025 का अक़वाम-ए-मुत्तहिदा की फौजी सिन्फी वकील के अवार्ड से नवाजा गया है।

0: साथ ही आकाशवाणी से खबरनामा खत्म हुआ।
1: आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलो हर्ट्ज पर। थोड़ी देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।

0: AIR at 90.
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
2: इधर आइए, इधर।
3: इधर?
2: हाँ, विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना आइए और बिहार और झारखंड के किसी भी आकाशवाणी केंद्र से अपना विज्ञापन बुक कराइए।
4: देश के सबसे बड़े रेडियो नेटवर्क पर बिल्कुल किफायती दर पर आप अपने उत्पाद का प्रचार प्रसार कर सकते हैं।
3: अच्छा, ऐसी बात है, तो फिर इधर उधर क्यों भटकना, अपनी आकाशवाणी में अपनापन भी तो है।
4: बिहार और झारखंड के आकाशवाणी केंद्रों से विज्ञापन प्रसारण हेतु संपर्क करें।
3: विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना, हमारा मोबाइल नंबर है 9431021294, हमारा लैंडलाइन नंबर है 0612222205042, हमारा ईमेल एड्रेस है patnacbs@gmail.com।
4: शुभ वाणी,
3: लाभ वाणी,
2: आकाशवाणी।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 19वें रोजगार मेले में 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा, प्रदेश में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए हर साल जुलाई में जारी होगा विज्ञापन, प्रत्येक वर्ष कम से कम 20,000 शिक्षकों की होगी बहाली। कॉम्फेड ने सुधा दूध समेत अन्य दुग्ध उत्पादों की कीमतों में बढ़ोतरी की, दूध के मूल्य में 2 से 3 रुपए प्रति लीटर तक की वृद्धि। और प्रदेश का दक्षिणी हिस्सा भीषण गर्मी और लू की चपेट में, रोहतास के डेहरी का अधिकतम तापमान रिकॉर्ड 45 डिग्री सेल्सियस के पास पहुंचा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 19वें रोजगार मेले में 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। प्रधानमंत्री इस कार्यक्रम में सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से नवनियुक्त युवाओं को संबोधित भी करेंगे। रोजगार मेला देश भर के 47 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। हमारे संवाददाता ने बताया कि रोजगार मेला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की युवाओं को रोजगार देने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
1: यह रोजगार मेला रोजगार सृजन के प्रति प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता को पूरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह

0: रोजगार मेला युवाओं को सशक्त बनाने और राष्ट्र निर्माण में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए उन्हें सार्थक अवसर प्रदान कर रहा है। देश भर में अब तक आयोजित 18 रोजगार मेलों के माध्यम से 12 लाख नियुक्ति पत्र जारी किए जा चुके हैं। यह 19वां रोजगार मेला देश भर में 47 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। इसमें देश के सभी हिस्सों से चयनित नव नियुक्त उम्मीदवार केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में नियुक्त होंगे, जिसमें रेल मंत्रालय, गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और उच्च शिक्षा विभाग सहित अन्य विभाग शामिल हैं। यह रोजगार मेला देश के विकास में युवाओं की भागीदारी को मजबूत करने की दिशा में एक और बड़ा कदम है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि राज्य में अगले 5 वर्षों में 1 लाख शिक्षकों की नियुक्ति होगी। इसके अंतर्गत हर साल कम से कम 20,000 शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। इसके लिए हर वर्ष जुलाई महीने में नियुक्ति संबंधी विज्ञापन जारी किया जाएगा। शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान श्री चौधरी ने शिक्षकों के स्थानांतरण के लिए नई नीति बनाने का भी निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि महिला शिक्षकों को गृह जिले के अपने प्रखंड की गृह पंचायत के बगल की पंचायत में स्थानांतरित किया जाए, वहीं पुरुष शिक्षकों का गृह जिले के गृह प्रखंड के बगल के प्रखंड में तबादला होगा। मुख्यमंत्री ने राज्य के सभी विद्यालयों में छात्र छात्राओं को पोशाक की आपूर्ति जीविका के माध्यम से करने के भी निर्देश दिए। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने कहा है कि मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद TRE4 को लेकर संशय की स्थिति समाप्त हो गई है। उन्होंने कहा कि शिक्षकों के रिक्त पदों के आकलन के बाद इस संबंध में फिर से बिहार लोक सेवा आयोग को अधियाचना भेजी जाएगी।
2: जुलाई महीने में TRE4 की वैकेंसी आ जाएगी, तो TRE4 पर स्थिति स्पष्ट हो गई। विद्यालयों में जितने भी हमारे स्वीकृत पद है और जो आज शिक्षक हैं, कहीं ज्यादा हैं कहीं कम हैं, उसका पूरा एक सप्ताह के अंदर हमारे विभाग के अधिकारियों को CM साहब ने निर्देशित किया है कि पूरा इसको रेशनलाइजेशन करके और निकालिए कि अभी कितनी आवश्यकता है, और उसके आधार पर हम अधियाचना फिर भेजेंगे। एक तो न्यूनतम हो गया कि 20,000, यदि ज्यादा आवश्यकता होगी तो ज्यादा भेज।
1: बिहार स्टेट मिल्क कॉपरेटिव फेडरेशन कॉम्फेड ने सुधा दूध समेत सभी दुग्ध उत्पादों की कीमतों में बढ़ोतरी की है। दूध के मूल्य में प्रति लीटर 2 से 3 रुपए तक की वृद्धि की गई है। सुधा गोल्ड की कीमत प्रति लीटर 65 रुपए से बढ़ाकर 68 रुपए कर दी गई है। सुधा स्टैंडर्ड दूध 57 रुपए से बढ़कर 60 रुपए प्रति लीटर हो गया है। वहीं गाय दूध 54 रुपए से बढ़कर 57 रुपए और टी स्पेशल 50 रुपए से बढ़कर 52 रुपए प्रति लीटर हो गया है। इसके अलावा कॉम्फेड ने पनीर, दही, घी, मक्खन और मिठाइयों की कीमतों में भी वृद्धि की है। बढ़ी हुई दरें 25 मई से प्रभावी होगी। साथ ही कॉम्फेड ने किसानों को प्रति लीटर दूध में 2 से 3 रुपए 13 पैसे तक की बढ़ोतरी की है। खुदरा विक्रेताओं के लिए दूध के मुनाफे में 20 पैसे प्रति लीटर बढ़ाई गई है। तेल विपणन कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी की है। पेट्रोल 87 पैसे और डीजल 91 पैसे प्रति लीटर महंगा हो गया है। पिछले 10 दिन में तेल के मूल्यों में तीसरी बार वृद्धि हुई है। बिहार पुलिस के आतंकवाद निरोधक दस्ता ATS ने देश विरोधी गतिविधियों में संलिप्तता और पाकिस्तान से आतंकी संपर्क के आरोप में मुजफ्फरपुर के रतनपुरा गांव से मोहम्मद मुस्तफा नामक युवक को गिरफ्तार किया है। ATS के ADG पंकज दारात ने बताया कि आरोपी के पास से बरामद डिजिटल साक्ष्यों से देश की सुरक्षा को खतरा पहुंचाने की साजिश का खुलासा हुआ।
3: इन पे मुख्य रूप से यह आरोप है कि एक सज्जाद भट्टी पाकिस्तान बेस्ड एक गैंगस्टर है, जो कि इंडिया में अपने हैंडलर्स के थ्रू इंडिया में जो डिसग्रंटल्ड एलिमेंट हैं उनको अपना सोल्जर बनाना चाहता है। सज्जाद भट्टी का एक हैंडलर है राणा हुनैन, वो भी पाकिस्तान का है, तो उससे ये संपर्क में लगातार लास्ट 6-7-8 महीने से है और ये उनसे हथियार मांग रहा है बार बार।
1: बिहार में अपराध की बदौलत संपत्ति जमा करने वाले अपराधियों की संपत्ति जब्त होगी। ADG विधि व्यवस्था सुधांशु कुमार ने बताया कि अब तक 1,433 अपराधियों की संपत्तियां चिन्हित की गई हैं। इनमें 428 की संपत्ति जब्त करने की

0: प्रक्रिया शुरू करने से संबंधित प्रस्ताव न्यायालय को भेज दिया गया है। पूर्वी चंपारण जिले के रघुनाथपुर और तुरकोलिया थाना क्षेत्र के अलग अलग गांव में पिछले महीने जहरीली शराब पीने से 10 लोगों की मौत के मामले में मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग ने 14 मद्य निषेध पुलिस पदाधिकारियों को निलंबित कर दिया है। मामले की जांच के बाद मद्य निषेध उपायुक्त दरभंगा की अनुशंसा पर यह कार्रवाई की गई है। गया जिले के खिजरसराय प्रखंड स्थित सिसवर गांव में एक कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी पर असामाजिक तत्वों ने पथराव कर दिया। पुलिस कर्मियों ने मौके से 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। इधर केंद्रीय मंत्री को जान से मारने की धमकी देने के मामले में नालंदा जिले के लहेरी से 1 युवक की गिरफ्तारी हुई है। सीबीआई ने नीट परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले में पुणे से एक और महिला को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान मनीषा हवलदार के रूप में हुई है, जिन्हें एनटीए ने विशेषज्ञ के रूप में नियुक्त किया था। अब तक इस मामले में दिल्ली, जयपुर, गुरुग्राम, नासिक, पुणे, लातूर और अहिल्यानगर से 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
1: इधर आइए, इधर
2: इधर।
1: हाँ, विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना आइए और बिहार और झारखंड के किसी भी आकाशवाणी केंद्र से अपना विज्ञापन बुक कराइए।
3: देश के सबसे बड़े रेडियो नेटवर्क पर बिल्कुल किफायती दर पर आप अपने उत्पाद का प्रचार प्रसार कर सकते हैं।
2: अच्छा, ऐसी बात है, तो फिर इधर उधर क्यों भटकना, अपनी आकाशवाणी में अपनापन भी तो है।
3: बिहार और झारखंड के आकाशवाणी केंद्रों से विज्ञापन प्रसारण हेतु संपर्क करें।
2: विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना, हमारा मोबाइल नंबर है 9431021294। हमारा लैंडलाइन नंबर है 0612222250042। हमारा ईमेल एड्रेस है patnacbs@gmail.com।
3: शुभ वाणी,
2: लाभ वाणी,
3: आकाशवाणी।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_पटना को फॉलो कर सकते हैं। प्रदेश का दक्षिणी हिस्सा भीषण गर्मी और लू की चपेट में है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान रोहतास का टेहरी सबसे गर्म स्थान रहा। यहां का अधिकतम तापमान 44.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। कैमूर का अधिकतम तापमान 44.2, गया का 42.4 और बक्सर का 42.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। राजधानी पटना के अधिकतम तापमान में लगभग 2 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आई है। यहां का अधिकतम तापमान 38.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग ने आज रोहतास, कैमूर, पटना, गया और बेगूसराय समेत राज्य के दक्षिण पश्चिम और दक्षिण मध्य जिलों में लू की चेतावनी जारी की है। वहीं राज्य के उत्तर पूर्वी और उत्तर पश्चिमी हिस्सों में कुछ स्थानों पर तेज हवा के साथ बारिश का पूर्वानुमान है।
4: राज्य के उत्तर पूर्व भाग के एक या दो स्थानों पर वर्षा की संभावना है, जबकि शेष भागों का मौसम आमतौर से शुष्क बने रहने की संभावना है। राज्य के उत्तर पूर्व भाग के जिलों में एक दो स्थानों पर मेज गर्जन वज्रपात के साथ हवा की गति 40 से 50 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। राज्य के दक्षिण पश्चिम एवं दक्षिण मध्य भाग के जिलों में एक दो स्थानों पर उष्ण लहर चलने की संभावना है।
0: इधर सुपौल जिले के प्रतापगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत गोविंदपुर पंचायत के मंडल टोला में बारिश के दौरान वज्रपात की घटना में एक महिला की मौत हो गई। राज्य सरकार ने राज्य स्तरीय कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति का पुनर्गठन किया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। वहीं उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी को कार्यकारी अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सह विधायक संजय सराफ की और जदयू के प्रदेश अध्यक्ष सह विधायक उमेश सिंह कुशवाहा समिति के उपाध्यक्ष बनाए।

0: भाजपा की बिहार इकाई की ओर से आज से पटना में 2 दिवसीय दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान का आयोजन किया जाएगा। प्रशिक्षण का उद्घाटन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन करेंगे। प्रशिक्षण वर्ग के समापन सत्र में पार्टी के वरिष्ठ नेता और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी शामिल होंगे। प्रशिक्षण महाअभियान के तहत पार्टी कार्यकर्ताओं को संगठन की मजबूती के संबंध में प्रशिक्षण दिया जाएगा। राज्य सरकार ने शिक्षकों के वेतन भुगतान के लिए 642 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। इस राशि से समग्र शिक्षा अभियान के तहत आने वाले शिक्षकों के अप्रैल और मई महीने का वेतन भुगतान किया जाएगा। सिवान के जिलाधिकारी ने 90 पंचायत सचिवों को निलंबित कर दिया है। ये सभी जांच के क्रम में अपने कर्तव्य स्थल से अनधिकृत रूप से अनुपस्थित पाए गए थे। आरा जंक्शन पर ट्रेन पर चढ़ने के क्रम में गिरने से पिता पुत्र की मौत हो गई। मृतक उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले के रहने वाले थे। पटना के चित्रगुप्त नगर थाना क्षेत्र के रामकृष्णा नगर स्थित एक गोदाम से 95 लाख रुपए मूल्य की प्रतिबंधित दवा बरामद की गई है। पुलिस ने इस मामले में एक तस्कर और गोदाम कर्मी को गिरफ्तार किया है। अररिया जिले के फारबिसगंज अनुमंडल थाना क्षेत्र में अवैध खनन और परिवहन में लगे 2 ट्रैक्टर को जब्त किया गया है। मधुबनी जिले के पंडोल थाना क्षेत्र के सरिसब पाही स्थित भारतीय स्टेट बैंक शाखा के पास अपराधियों ने एक युवक से 1,40,000 रुपए लूट लिए। पश्चिम चंपारण जिले के कोबरथना और ठकराहा थाना क्षेत्रों से पुलिस ने भारी मात्रा में शराब के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। आईपीएल में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का सामना पंजाब किंग्स से होगा। यह मैच लखनऊ में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। वहीं कल खेले गए मैच में सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 55 रनों से हरा दिया। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने शिक्षक नियुक्ति को लेकर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की घोषणा को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान लिखता है, हर साल 20,000 शिक्षकों की बहाली होगी, 5 वर्षों में 1 लाख नियुक्तियां। दैनिक जागरण ने इसी खबर को प्रमुखता देते हुए लिखा है, हर वर्ष जुलाई में आएगा विज्ञापन। प्रभात खबर ने सुप्रीम कोर्ट के हवाले से लिखा है, माता पिता IAS तो आरक्षण क्यों। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, जेब पर बोझ, 1 लीटर सुधा गोल्ड 3 रुपए और 200 ग्राम पनीर 10 रुपए महंगा। राष्ट्रीय सागर के शब्द हैं, राज्य में 10 और IAS अधिकारियों का तबादला। आज अखबार लिखता है, जीविका दीदियों को इसी महीने मिलेंगे 20,000 रुपए। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 19वें रोजगार मेले में 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा, प्रदेश में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए हर साल जुलाई में जारी होगा विज्ञापन, प्रत्येक वर्ष कम से कम 20,000 शिक्षकों की होगी बहाली। कॉम्फेड ने सुधा दूध समेत अन्य दुग्ध उत्पादों की कीमतों में बढ़ोतरी की। दूध के मूल्य में 2 से 3 रुपए प्रति लीटर तक की वृद्धि। और प्रदेश का दक्षिणी हिस्सा भीषण गर्मी और लू की चपेट में, रोहतास के टेहरी का अधिकतम तापमान रिकॉर्ड 45 डिग्री सेल्सियस के पास पहुंचा। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: बिहार सरकार लेकर आई है आपकी समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए एक नई पहल, सहयोग शिविर। इसके तहत प्रत्येक माह के प्रथम एवं तृतीय मंगलवार को पंचायत सरकार भवन अथवा निकटवर्ती सार्वजनिक स्थल पर सहयोग शिविर का आयोजन किया जा रहा है।
2: सहयोग पोर्टल sahyog.bihar.gov.in पर कभी भी ऑनलाइन परिवाद दर्ज कर सकते हैं। परिवाद करने की तिथि से 30 दिनों के अंदर समाधान सुनिश्चित कर सहयोग पोर्टल पर उपलब्ध कराया जाएगा।
1: साथ ही सहयोग शिविर में संबंधित जानकारी हेतु निशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1100 पर सुबह 8 से शाम 8 बजे तक संपर्क कर सकते हैं। सहयोग से सबका सम्मान, जीवन आसान।
3: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, बिहार सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित
4: आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है। मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलो हर्ट्ज पर। हमारा अगला कार्यक्रम

कीजिए दिन का आरंभ पवित्रता, भक्ति और आस्था के साथ। प्रातः 6:10 पर आकाशवाणी दरभंगा से भक्ति संगीत का हमारा कार्यक्रम वंदना। रेडियो सेट के साथ साथ न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी।

0: सब दिन बरतुहार आबै छल कहियो थमहू अगला साल, हमर गर्दन काटि लेल आ अपने बनल मालूम।
1: गुआ सुपारी के कहल जायत अछि, मुदा अखन कहै छियनि कि गुआ कनि आनि के दिया तऽ बहुत कमे लोक हेता जे गुआ बुझि के सुपारी बुझि के आनि के देता।
2: अपन परम्परा, अपन संस्कार, अपन माइटक सुगंध के सहेजे मैथिली कार्यक्रम सिंगर हार।
3: नब्बे वर्षों का शानदार सफर आकाशवाणी का।
4: आकाशवाणी दरभंगा ने भी पूरे कर लिए हैं अपने 50 साल।
5: एक से बढ़कर एक कार्यक्रम, साथ ही सदाबहार फिल्मी गाने समय समय पर।
4: सोमवार से शनिवार दोपहर 12 बजे और संध्या 5:40 पर कुछ तराने नए जमाने के।
3: आकाशवाणी दरभंगा, सुनते रहिए।
6: घर घर केरवाणी आकाशवाणी, हृदय हृदय केरवाणी आकाशवाणी। आ हृदय सबके जोड़बा लेल हम आबि रहल छी एक क्लिक पर। हमर स्टेशंस लाइव, मनक बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, क्षण क्षण केर विश्वसनीय खबर। हमर सबक वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नव भारत, नव आकाशवाणी।
7: भोर होते उठ जाओ, किएक तऽ इजोतक पहिल किरण संग फुलाय लगैत अछि, फूल प्रकृति में घोराय लगैत अछि, ऊर्जा आबय वाला काल्हि लेल।
8: प्रगति तखने भ सकैए जखन पुरुष और महिला समान रूप सँ सब क्षेत्र में एक रंग हुनका अधिकार प्राप्त हेतन।
9: आ मनुख लेल तो बुझू अत्यंत जरूरी, पानि बुन्नी नहीं हैत तो खेती नहीं हैत, आ खेती जो नहीं हैत, उपजा नहीं हैत तो हमरा लोकनि खायब की।
10: मामा बने जाने बाबा देने जादा।
3: नमस्कार मिथिला, सुबह 7:05 पर सुनते रहिए आकाशवाणी दरभंगा।

मुन्नी बेग की आवाज़ में सामीन, आपने ये गज़ल समाअत फरमाई, एक बार मुस्कुरा दो। यकीनन ज़िंदगी में सबसे अहमियत और कीमती शय का दर्जा रखने वाली ये मुस्कुराहट बहुत ही आम नहीं है, जबकि इसे आम करने की ज़रूरत है, क्योंकि इंसान मुश्किलों में, परेशानियों में ज़िंदगी को गुजारते हुए, हालात से लड़ते हुए जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा फुकदान महसूस करता है वो ये मुस्कुराहट है। मुस्कुराहटों के ज़रिए इंसान अपने गम को भूल जाता है। हर इंसान अपने इस सफ़र में, जो ज़िंदगी का सफ़र है सामीन, इसमें मुशक्क़त के साथ अपनी ज़िंदगी को गुजारता है, और ये कुदरत का इंतज़ाम भी है। और ऐसे ही इस सफ़र में उसे जिन जज्बात की ज़रूरत होती है उसमें उखुवत और हमदर्दी, इसकी भी काफ़ी ज़रूरत होती है, क्योंकि इंसान किसी मुश्किल से दोचार है और उससे उसे लड़ने का रास्ता नहीं दिख रहा है, तो वैसे हालत में जो एतमाद बहाल करने वाली चीज़ है वो उख़ुवत और हमदर्दी है। अमीर बिनाई का बहुत ही ख़ूबसूरत शेर है कि खंजर चले किसी पे, तड़पते हैं हम अमीर, सारे जहाँ का दर्द हमारे जिगर में है। और ये जज्बा तभी पैदा हो सकता है जब हम इस उख़ुवत और हमदर्दी के जज्बे से सरशार हों, क्योंकि ये हमारे लिए भी ज़रूरी है, क्योंकि हम जब इसे किसी दूसरे को देंगे तो दूसरे की जानिब से हमारी ज़िंदगी के लिए, हमारे वक्त में भी ये हमें फराहम किया जाएगा। उख़ुवत और हमदर्दी जो इंसानी मुआशरे की बुनियाद के तौर पे तसव्वुर किया जाता है, और ये अमन और सुकून की ज़ामिन भी है। ये दोनों ऐसी खूबियाँ हैं जो लोगों के दिलों को जोड़ती हैं, नफ़रतों को मिटाती हैं, और एक मिसाली मुआशरे की तश्कील में अपना अहम किरदार अदा करती हैं। उख़ुवत यानी ब्रदरहुड, अगर हम कहें ज़ामिन, तो इसका मतलब है भाईचारा, यानी सब इंसानों के साथ मोहब्बत, मसावात, और भाईचारे का रिश्ता कायम करना, यानी उसे ये यकीन दिलाना कि वो इस सफ़र में तनहा नहीं है, उसकी ज़रूरत के

0: पे हम साथ हैं। इसी तरह से इस माशरे में इसका जो असर होगा वो बाहमी एतमाद, इज़्ज़त और तहफ़्फ़ुज़ का एहसास पैदा होता है। और सिंपथी और एम्पैथी तो हम तमाम लोग जानते हैं कि ये जो हमदर्दी है ये उस वक्त मरहम के तौर पे काम देती है जबकि इंसान बहुत ज़्यादा गम में मुब्तला हो जाता है और उसे बिल्कुल दुनिया अंधेरी तारीख दिखाई देती है। ऐसी हालत में उसे इस जज्बे से वापस उभारा जा सकता है। अगर ये जज्बा हमदर्दी अगर उसके साथ न किया जाए तो वह इंसान अपने आप को तबाही की तरफ लेके चला जाता है और ये एक इंसान की मौत नहीं, एक इंसानियत की मौत होती है। यकीनन हमदर्दी का जो जज्बा है वो इंसानों के साथ साथ तमाम मखलूक के साथ करने की ज़रूरत है और हम तमाम लोग इससे आगाह भी हैं और इसकी कोशिशें भी वक्तन फवक्तन करते रहते हैं। लेकिन आइए इस जज्बे को आम करें और तमाम तरह के गम तकलीफ़ों को भुला कर एक दूसरे के साथ उखुव्वत और हमदर्दी के जज्बे को पैदा करने का अहद लें। आइए सामीन हम इस छोटी सी गुफ्तगू के बाद आपको अगली पेशकश की जानी मुतवज्जे किए दे रहे हैं। लीजिए आपकी समातों के हवाले है ये ड्रामा उनवान दोपहर के बाद।
1: अरे ओ शर्कू, घड़ी देखी है? 9 बजने वाले हैं और अभी तक नाश्ता तैयार नहीं हुआ। साहब तुम्हें ही कच्चा खा जाएंगे।
2: अब क्या करें बेगम साहब, 5 बजे सुबह से उठकर लगे हुए हैं। अकेले कौन कौन सा काम करें, किसी को बेड टी चाहिए तो किसी को स्कूल ले जाने के लिए टिफिन बॉक्स, किसी को सादी चाय तो किसी को नींबू की, और इधर अंगेठी अलग, और मेरी बुढ़िया की तरह रूठी हुई है ससुरी। हम क्या करें?
1: अरे कुछ करोगे भी या बड़बड़ाते जाओगे? काम धाम तो करना ही नहीं, बस अल्लाह मियाँ ने गज भर की जबान दे दी है। 9 बजने में कुल 20 मिनट रह गए हैं और अभी तक साहब का नाश्ता तैयार नहीं हुआ। ठीक 9 बजे टेबल पर बैठ जाएंगे, तब तुम अपनी तकरीर शुरू करना। सलमा, ओ सलमा।
3: जी अम्मी। आई। अम्मी मुझे पुकार रही थी।
1: नहीं भाई, तुम्हें क्यों पुकारूंगी? पुकार तो रही हूँ अपनी किस्मत को कि एक पल चैन नहीं। अरे बाप की फिक्र भी है, उन्हें ऑफिस जाना है, उनके कपड़े ठीक कर दिए या नहीं, टाई इस्त्री होकर आ गई या नहीं, ए शर्फू जूते पर पॉलिश हुई है या नहीं। हाय मेरे अल्लाह, मैं क्या करूं, अकेली जान और एक साहब बहादुर है कि हर काम घड़ी के मुताबिक होना चाहिए। अरे सलमा तुम मेरा मुंह क्या देख रही हो? तौबा तौबा, जवान होने को आई मगर खानादारी से कोई दिलचस्पी ही नहीं है।
3: अम्मी मेरा इम्तिहान है।
1: चूल्हे में जाए तुम्हारा इम्तिहान, पहले साहब की खबर गिरी करूं या तुम्हारे इम्तिहान की सोचूं? 2 मिनट की देर भी हो गई तो सारा घर सर पर उठा लेंगे। जरा उनके कपड़े तो ठीक कर दो, मैं नाश्ते का इंतजाम कर रही हूँ।
2: या अल्लाह, अरे यो अंगीठी खुदा के वास्ते जल जा। अरे आज ही धोखा देना था, ये कोयला भी हमारी किस्मत की तरह पत्थर है पत्थर।
1: बस तुम यूं ही बड़बड़ाते रहो, 9 बजने ही वाले हैं, मैं तो अलग हो जाऊंगी, साहब से तुम निपट लेना।
2: अब कर ही तो रहे बेगम साहब, बस आमलेट बनाना रह गया है और फिर चाय। जल तू जलाल तू, आई बला को टाल तू। अरे बापरे, मर गए, 9 बज गए बेगम साहब, 9 बज गए।
1: बस अब साहब टेबल पर आते ही होंगे। आज हुई आफत, 9 जैसा भी कोई वक्त का पाबंद हो, घड़ी के कांटे के साथ नाश्ता खाना सोना उठना। कुछ कहो तो मुझे ही नसीहतें होने लगती हैं। अरे तुम क्या जानो, घर की दीवारों में बंद हो, मैं दफ्तर जाता हूँ, ऑफिसर हूँ, अगर मैं ही पाबंद ना हुआ तो।
4: अरे ओ शर्फू बेगम, अरे भाई कहाँ हैं सब लोग? 9:02 हो गए और अभी तक डाइनिंग टेबल खाली है, ये क्या बदतमीजी है?
1: थोड़ी देर हो गई शर्फू, जल्दी नाश्ता लगाओ, साहब को देर हो रही है।
4: देर हो रही है नहीं बल्कि देर हो चुकी, 9:03 हो चुके हैं, मुझे नाश्ता करना है, कपड़े तब्दील करना है, 9:30 ऑफिस के लिए रवाना होना है, आज ऑफिस में 3-3 मीटिंगें हैं, मैं क्या तुम लोगों की तरह बेकार हूँ? वक्त की कोई कीमत ही नहीं है, मैं कहता हूँ।
1: जी बस आ ही गया नाश्ता, असल में अंगेठी ने धोखा दे दिया इसीलिए देर हो गई।
2: ओ अल्लाह मियाँ, 45 साल से चूल्हा फुकवा रहे हैं और आज भी अंगीठी ऐसे बुझा देते हैं कि शर्फू पगला जाता है। हो गई ना देर, साहब तो बेगम पर बिगड़ेंगे और बेगम मुझ पर। अरे काहे बुढ़ापे में जलील

0: कराओ हमका।
1: शर्फू
0: आया।
2: शर्फू, ये अंडे का पोच बनाया है तूने या अपनी तस्वीर बनाई?
0: जी वो साहब जल्दी में जर्दी टूट गई, गलती हो गई साहब।
2: लेकिन क्यों हो गई गलती? अगर इसी तरह सब लोग गलतियां करते रहे तो इस मुल्क का क्या होगा? तुम पोच बनाने में गलती करो, मैं फाइलों में ऑर्डर देने में गलती करूं, फिर
1: आपने भी कहां की बात कहां पहुंचा दी, जल्दी में जर्दी बिखर गई। शर्फू तुम चाय लाओ, देखो कच्चा पानी मत डाल देना, ठीक से उबल जाए तभी डालना।
0: अरे नहीं बेगम साहब, 45 साल से चाय बना रहे हैं क्या इतना भी नहीं जानते? अरे हम जब कर्नल थॉमस साहब क्या काम करते
1: बस,
0: थे।
1: बस तुम अपने अंग्रेज कर्नल साहब की बात रहने दो, वरना देर हो जाएगी, जाओ जल्दी चाय लेकर आओ।
0: अरे हमका तो सब पागल समझते हैं, जहाँ कर्नल साहब का नाम लियो सबको बुरा लगता है। अरे कर्नल साहब जैसा मालिक अब कहाँ मिलेगा, सुबह सुबह गुड मॉर्निंग कहो तो कैसा खुश हो जाते रहे। अरे अंग्रेज की बात ही और थी, और मेम साहब आहा क्या पटर पटर अंग्रेजी बोलती थी, और काम चाल जो कभी डांटे नौकरों को, अरे कि ई है दिन रात शर्फू के पीछे ही पड़ी रहती हैं। अरे हमका का है, कुछ दिन और शर्फू को सता ले, फिर नहीं मिलेगा शर्फू जैसा कोई।
1: शर्फू, अरे आ गई चाय।
0: लाते हैं भाई, शर्फू कोई मशीन थोड़ी है। ला रहे हैं साहब।
1: ला रहे हैं, ला रहे हैं, 10 मिनट तो हो गए, फिर साहब बहादुर का गुस्सा चमकेगा। उफ, इन दोनों नौकर और साहब ने तो मेरा दिमाग खराब कर दिया है।
2: क्या कह रही हो?
1: आपको कुछ थोड़ी ही कह रही हूँ, मैं तो शर्फू को कह रही थी।
2: अरे तुम शर्फू को क्या कहोगी, तुमने एडमिनिस्ट्रेशन की सलाहियत ही नहीं है, एक नौकर पर तो काबू रख ही नहीं सकती, मेरी तरह 100-200 अमले पर काबू रखना पड़ता तो लुटिया डुबो देती।
1: बस रहने भी दीजिए, घर की खानादारी करनी पड़े तो पता चले कि ये काम कितना मुश्किल है।
2: अच्छा इस बहस को छोड़ो, मुझे 5 मिनट देर हो चुकी है और इसे मेकअप करना है, जल्दी करो। मेरे कपड़े कहाँ हैं, टाई कहाँ है, जूतों पर पॉलिश हुई या नहीं?
1: पापा आपके कपड़े जूते सब तैयार हैं।
2: अच्छा चलो, अरे ये जूतों पर पॉलिश हुई है या तेल मालिश, सब निकम्मे हैं, किसी को कोई काम करना नहीं आता। अरे सलमा, सलमा।
1: जी पापा।
2: ये जूतों पर पॉलिश किसने की है और टाई की इस्त्री किस कदर खराब है, वो मैं तो परेशान हो गया।
1: पापा गलती हो गई, आज पहन लीजिए ना, कल से ठीक कर दूंगी।
2: कल से अच्छा देखो ड्राइवर तैयार है या नहीं, मैं अब चलूं। अच्छा बेगम मैं चला, 5:30 बजे आऊंगा और 6:30 बजे मुझे क्लब की मीटिंग में जाना है, फिर 8:30 बजे ओल्ड बॉयज का डिनर है, जरा मेरी स्याह अचकन और जयपुरी जूतियां ठीक करा देना, और सलमा बेटा तुम जरा देख लेना मेरी अचकन के साथ वाले मोजे भी ठीक कर देना।
1: बहुत अच्छा पापा।
2: अच्छा बेगम मैं चला, खुदा हाफिज।
1: खुदा हाफिज, बाय बाय पापा।
2: बाय बाय।
0: सलाम साहब। चल शर्फू जान बच गई।
1: ओह खुदा का शुक्र है, आज का दिन कटा, अब 5 बजे तक नजात मिली, सुबह क्या होती है कयामत होती है। शर्फू जरा अब मुझे चाय दे दे, सर फटा जा रहा है।
3: मम्मी पापा बूढ़े हो गए मगर अभी तक किस कदर स्मार्ट हैं और वक्त के कितने पाबंद हैं।
1: हाँ 2-4 महीनों की बात है, रिटायर हो जाने दो, सारी स्मार्टनेस चली जाएगी। मैं तो खुश होंगी जब ये रिटायर होंगे, पूरे घर का कोर्ट मार्शल किए रहते हैं। ऑफिस गए हैं, अब ऑफिस वालों का कोर्ट मार्शल हो रहा होगा।
2: क्यों बड़े बाबू, इस फाइल को पुटअप करने में इतनी देर क्यों हुई?
4: यस सर।
2: एस सर क्या मतलब, मेरी बात का जवाब नहीं दिया आपने।
4: सर वो असिस्टेंट है ना पांडे, उसी ने देर कर दी।
2: आपने एक्सप्लेनेशन कॉल किया उसका?
4: यस सर। जी नहीं, जी नहीं सर।
2: मैं आप दोनों को सस्पेंड कर दूंगा।
4: यस सर। जी सर। जी सर।
2: आप जा सकते हैं, अंडर सेक्रेटरी साहब को भेज दीजिए।
4: यस सर।
2: कम इन।
5: गुड मॉर्निंग सर।
2: गुड मॉर्निंग। लेकिन आज आप 20 मिनट देर से क्यों आए?
5: वो सर जरा डॉक्टर के यहाँ चला गया था।
2: वहां पहले भी जा सकते थे, यू नो आई डोंट लाइक दिस, और आपका स्टाफ पर कंट्रोल भी ठीक नहीं है, आई एम नॉट हैप्पी विद यू।
5: सर वो बात ये है सर,
2: मैं फिजूल बातें पसंद नहीं करता।

0: दैट्स ऑल, अब आप जा सकते हैं।
1: जी हुजूर।
0: ये फाइल डिप्टी साहब को दे दो।
1: वो आज छुट्टी पर हैं सर, दफ्तर नहीं आए हैं।
0: क्यों नहीं आए हैं?
1: साहब उनकी मेम साहब बीमार हैं।
0: पता नहीं ये लोग नौकरी क्यों करते हैं, बीवी बीमार है तो दफ्तर नहीं आए, कभी बच्चा बीमार है कभी खुद बीमार है। तुम जा सकते हो। हाँ सुनो।
1: जी हुजूर।
0: देखो जो बाहर लोग मिलने के लिए बैठे हैं उनसे कह दो मैं आज किसी से नहीं मिलूंगा, मैं जरूरी काम में मशगूल हूं, परसों 3:30 बजे मिलूंगा। पीए साहब से कह दो कि वो आज सारे अपॉइंटमेंट्स कैंसिल कर दें, लोगों को सिवाय मिलने मिलाने की कोई काम ही नहीं है।
1: बहुत अच्छा हुजूर।
0: बेगम, बेगम, अरे कहाँ हो?
2: अच्छा आप आ गए ऑफिस से?
0: हाँ भाई, ऑफिस से अब हमेशा के लिए आ गया, आज रिटायर हो गया, चार्ज देकर आ रहा हूं। 35 साल के चक्कर से आज नजात।

0: बेगम, बेगम, अरे कहाँ हो?
1: अच्छा, आप आ गए ऑफिस से?
0: हाँ भाई, ऑफिस से अब हमेशा के लिए आ गया, आज रिटायर हो गया। चार्ज देकर आ रहा हूं, 35 साल के चक्कर से आज नजात मिली। अब जी भर कर आराम करूंगा, किस कदर हल्का फुल्का महसूस कर रहा हूं।
1: हाँ हाँ, क्यों नहीं, अब आपकी उम्र भी आराम करने की है। खैर से अरशद की नौकरी हो चुकी है, घर में बहू आ चुकी, सलमा की शादी हो चुकी, अल्लाह ने सभी अरमान तो पूरे कर दिए। शर्फू, शर्फू।
2: आया बेगम साहब।
0: जी बेगम साहब।
1: देखो साहब आ गए और अब आज से रिटायर हो गए, कितने खुश हैं तुम्हारे साहब।
2: हाँ साहब, मुबारक हो आराम, मगर हमको तो काम करते करते 45 साल हो गए। साहब हमको भी अब रिटायर कर दीजिए ना।
0: अरे शर्फू, तुमको कैसे रिटायर करूंगा, तुम तो हमारी बेगम की तरह हमारी जिंदगी भर के साथी हो।
2: नहीं साहब, अब हमारे हाथ पैर भी जवाब देने लगे हैं, मगर हमको तो मौत ही रिटायर करेगी साहब। हम लोगों की किस्मत में एक ही बार रिटायर होना लिखा है। अच्छा, हम चाय बना लें।
0: बेचारा शर्फू वाकई 15 साल की उम्र से ये काम कर रहा है, मगर इसकी किस्मत में आराम नहीं है। अच्छा बेगम, मैं कपड़े तब्दील कर लूं। शर्फू, अरे ओ शर्फू।
2: जी साहब।
0: अरे जरा टेलीफोन तो ले आना, मैं जरा मेहता साहब से बात करूंगा।
2: लेकिन साहब टेलीफोन तो कट गया, कल ऑफिस वाले ले गए।
0: अरे हाँ, ऑफिस का फोन था। अच्छा देखो, रामबिलास से कह दो कि मेहता साहब से किताब मांग के ले आए।
2: हुजूर, रामबिलास तो अब नए साहब की ड्यूटी पर चला गया, कल ही तो कहने आया था कि अब वो नहीं आएगा।
0: अरे हाँ, याद आया, रिटायरमेंट के बाद वो चपरासी भी तो चला गया। मगर तुम खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो, चाय क्यों नहीं लाते, कितने बज रहे हैं? बेगम, बेगम।
1: जी, क्या बात है, क्यों चिल्ला रहे हैं?
0: क्यों चिल्ला रहे हैं, तुम्हारा लहजा इस कदर खुश क्यों है? 9:30 बज गए, अभी तक नाश्ता मेज पर नहीं लगा और तुम कह रही हो कि चिल्ला क्यों रहे हैं?
1: ठीक ही तो कह रही हूँ, 9:30 बज गए तो कौन सी आफत आ गई, अब आपको कौन सा ऑफिस जाना है?
0: अब कौन सा मुझे ऑफिस जाना है? ऑफिस जाना नहीं है तो क्या हुआ, क्या नाश्ता भी नहीं करना है? मैं रिटायर हो गया तो क्या?
1: आखिर मैं क्या करूं, अरशद को दफ्तर जाना है, पहले उसे नाश्ता दूं या आपको? उधर बहू बेगम की तबीयत खराब है, पहले पोते को देखूं या आपकी फिक्र करूं?
0: हाँ, अरशद को दफ्तर जाना है ना, ठीक ही तो है, ठीक ही तो है।
2: अरे वाहरी दुनिया, यही साहब के लिए रोज हंगामा होवत रहे और अब यही रिटायर का हो गए कि सबकी निगाह बदल गई। चल शर्फू, काम कर रही तो तुमका भी बस रिटायर कर दी है।
0: सलमा, सलमा।
3: उफ़ो, पापा रिटायर क्या हो गए, हर वक्त चिल्लाते ही रहते
0: हैं। सलमा, अरे ओ सलमा।
3: जी पापा।
0: कितनी देर से पुकार रहा हूँ तुम्हें और तुम सुनती ही नहीं हो।
3: आ ही तो रही थी, आखिर इम्तिहान की तैयारी कर रही हूँ, बेकार थोड़े ही बैठी थी।
0: बेकार थोड़े ही बैठी थी, बेकार तो मैं बैठा हूँ।
3: पापा, आपने मुझे किस लिए बुलाया था?
0: हाँ बेटे, जरा मेरे कपड़े ठीक कर दो, मुझे पेंशन के कागजात लाने जाना है।
3: पापा, मेरे कॉलेज का वक्त हो रहा है, देर हो जाएगी, मैं शर्फू को कह देती हूँ, वो ठीक कर देगा, प्लीज पापा।
0: कॉलेज में देर हो जाएगी? हाँ हाँ, ठीक तो है, मैं खुद ठीक कर लूंगा, कोई बात नहीं है।
4: मिर्जा साहब। ओ मिर्जा साहब।
0: अरे मिर्जा साहब, आइए आइए, कब से आपका इंतजार कर रहा हूँ, तशरीफ लाइए।
4: भाई

0: मैं पहले भी आ जाता, मगर नाश्ते में देर हो गई।
1: हाँ साहब, जरूर हो गई होगी, जब से हम लोग रिटायर हो गए हैं नाश्ते में देर हो ही जाया करती है। मेहता साहब, ये रिटायरमेंट की जिंदगी भी बहुत खराब है। नौकरी थी तो काम से परेशान रहता था और सोचता था कि रिटायरमेंट के बाद खूब आराम करूंगा, और अब कोई काम नहीं है तो ज्यादा बेचैनी है।
0: मिर्जा साहब, किसी हाल में चैन नहीं। दरअसल रिटायरमेंट के बाद आदमी मशीन के उस घिसे हुए पुर्जे की तरह हो जाता है, जिसे मशीन से अलग कर दिया गया हो। अब इस जंगालू पुर्जे की मशीन की जरूरत नहीं मिर्जा साहब।
1: ठीक ही कहते हैं मेहता साहब, सब कुछ बदला बदला सा लगता है। अपने लोग, दरो दीवार, सब कुछ बदल से गए हैं। बाहर के ड्राइंग रूम में अरशद के दोस्त बैठे रहते हैं, बेगम को पोते पोतियों से फुर्सत नहीं, बच्चे मेरे पास बैठते घबराते हैं। ऐसा लगता है रिटायर होकर मैंने सब कुछ खो दिया है।
0: मिर्जा साहब, अभी तो चंद दिन हुए आपको रिटायर हुए, मैं तो 2 साल से इसी तरह जी रहा हूं, मगर अब आपको एडजस्ट करना चाहिए, वरना सेहत पर बुरा असर पड़ेगा।
1: हाँ मेहता साहब, आप ठीक ही कहते हैं। अरे जब जवानी ही नहीं रही तो बुढ़ापा भी नहीं रहेगा। अच्छा ठहरिए, मैं जरा चाय के लिए कह दूं। बेगम, बेगम जरा चाय भेज दो बाहर, मेहता साहब आए थे।
2: दिन भर का यही चक्कर है, ना इन्हें कोई काम है और ना मेहता साहब को, बस 20 बार चाय बनाए जाओ। पहले ये दफ्तर में रहते थे, मुझे दिन में तो सुकून मिलता था।
1: तुम मुझसे कुछ कह रही हो?
2: मैं ये कह रही हूँ कि अरशद ऑफिस गए हैं, सलमा कॉलेज गई है, और मैं बहू बेगम को लेकर डॉक्टर के पास जा रही हूँ। आप मेहता साहब से बेकार की गुफ्तगू छोड़िए और जरा बच्चों को देखिए, घर में और कोई नहीं है।
1: मैं बच्चों को देखूं और मेहता साहब की चाय?
2: तो क्या हुआ, बच्चों को देखना कोई गुनाह तो नहीं है? आखिर आप बेकार ही तो बैठे हैं, शर्फू से कह दीजिए चाय बना देगा। और हाँ, जरा उसे सब्जी लाने को भी कह दीजिएगा, मुझे देर हो रही है, फिर डॉक्टर साहब नहीं मिलेंगे।
1: ठीक ही तो है, मुझे काम ही क्या है, बच्चों को देखूं, सब्जी मंगवाऊं। शर्फू, शर्फू, शर्फू।
3: जी साहब, जी साहब। आज तबीयत ठीक नहीं है मालिक, बुखार है और बदन टूट रहा है।
1: ओह अच्छा, तो तुमने कोई दवा क्यों नहीं ली? तुम छोड़ दो, मैं खुद चाय बना लूंगा।
3: नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है मालिक, मैं चाय बना देता हूँ मालिक, मेरे जीते जी आप कैसे चाय बनाएंगे? नहीं नहीं, मैं बना देता हूँ।
1: शर्फू, तुम बहुत कमजोर हो गए हो
3: जी,
1: बूढ़े हो गए हो। तुमने एक दिन मुझसे कहा था कि तुम्हें भी रिटायर कर दूं, वाकई तुम्हें भी आराम की जरूरत है, अब तुम भी रिटायर हो जाओ शर्फू, आराम करो, तुम्हें पहले की तरह खाना रुपया सब मिलता रहेगा।
3: रिटायर? नहीं नहीं, नहीं मालिक, मैं रिटायर नहीं करूंगा। नहीं नहीं, मैं रिटायर नहीं करूंगा, रिटायर नहीं करूंगा।

दोपहर के बाद इस उन्मान के तहत आप ये ड्रामा समाप्त कर रहे थे। तहरीर थी शफी मशहदी की और पेशकश थी शमीम फारूकी की। आई सामीन, अब वक्त हुआ चाहता है, लीजिए बज़्म मौसीकी के तहत ये गज़ल हम आपकी समातों के हवाले कर रहे हैं, मिताली सिंह और भूपेंद्र सिंह की आवाज़ में।

गुलाम अली की आवाज़ में सामीन आपने इस गज़ल को समाप्त किया, और अगली गज़ल जो हम आपको सुनवाने जा रहे हैं वो जगजीत सिंह और चित्रा सिंह की है। लीजिए आपके समातों के हवाले।

0: सामिन जगजीत सिंह और चित्रा सिंह की आवाज़ में आप फिराक गोरखपुरी का ये कलाम समाप्त कर रहे हैं। इसी के साथ हमारा आज का ये सफ़र यहीं तमाम करने की हमें इजाज़त दीजिए। कल फिर हमारी मुलाकात होगी इस वादे और इरादे के साथ। खुदा हाफिज़।
1: मीडियम वेव 231.5 मीटर यानी 1296 किलो हर्ट्ज और न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत।

0: I cannot sleep.
1: मैं तेरा हीरो, इस फिल्म का ये गाना अभी आप सुन रहे थे अरिजीत सिंह और शालमली खोलगड़े की आवाजों में। कुमार के लिखे इस गाने को संगीत दिया था साजिद वाजिद ने।
2: नमस्ते बहनों और भाइयों, बड़े ही कम शब्दों में आपको सुनाना चाहता हूँ उस साल का लोकप्रिय गीत ये। सलाम ले जाता हुआ उड़न खटोला और बीन बजाती हुई

बद्रीनाथ की दुल्हनिया। इस फिल्म का ये गाना अभी आप सुन रहे थे बप्पी लहरी और अनुराधा पौडवाल की आवाजों में। इंडिवर के लिखे इस गाने को संगीत दिया था तनिष्क बागची ने। फिल्म संगीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से। कार्यक्रम संबंधी एक सूचना, श्रोताओं, गर्मी के मौसम में अगर सावधानी न बरती जाए तो लू लगने के अलावे स्वास्थ्य संबंधी कई अन्य समस्याएं भी हो सकती हैं। गर्मी के मौसम में स्वास्थ्य संबंधी सावधानियां, यही है आकाशवाणी दरभंगा के फोन इन कार्यक्रम हेलो जिंदगी के अगले अंक का विषय। विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर फुलेश्वर झा। प्रसारण के दौरान कार्यक्रम से जुड़ने के लिए फोन नंबर होंगे 9430029353 एवं 06272222481। समय याद रखें रविवार 24 मई 2026 दिन के 11 बजे। सूचना समाप्त हुई।

अभी आप सुन रहे थे तमाशा फिल्म का ये गाना अलका याग्निक और अरिजीत सिंह की आवाजों में। गीत के बोल इरशाद कामिल का, संगीत निर्देशन AR रहमान का।

मोनाली ठाकुर को अभी आप सुन रहे थे फिल्म लुटेरे में। अमिताभ भट्टाचार्य के लिखे इस गाने को संगीत दिया था अमित त्रिवेदी ने। फिल्म संगीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से। कार्यक्रम संबंधी एक सूचना, श्रोताओं, गर्मी के मौसम में अगर सावधानी न बरती जाए तो लू लगने के अलावे स्वास्थ्य संबंधी कई अन्य समस्याएं भी हो सकती हैं। गर्मी के मौसम में स्वास्थ्य संबंधी सावधानियां, यही है आकाशवाणी दरभंगा के फोन इन कार्यक्रम हेलो जिंदगी के अगले अंक का विषय। विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर फूलेश्वर झा। प्रसारण के दौरान कार्यक्रम से जुड़ने के लिए फोन नंबर होंगे 9430029353 एवं 06272222481। समय याद रखें रविवार 24 मई 2026 दिन के 11 बजे। सूचना समाप्त हुई।

अरिजीत सिंह और चिन्मय श्रीपदा को अभी आप सुन रहे थे फिल्म टू स्टेट्स में। इसी के साथ फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है, आइए सुनते हैं भक्ति संगीत का हमारा कार्यक्रम।

भक्ति संगीत के कार्यक्रम में आज आपने सुना जगजीत सिंह, पुरुषोत्तम दास जलोटा और हरिओम शरण को। आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है, हमारे अगले उद्घोषणा की थोड़ी प्रतीक्षा करें।

मीडियम वेव 231.5 मीटर पर यह आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। श्रोताओं, आज की पहली सभा को आगे बढ़ाते हैं और प्रस्तुत करते हैं हमारा शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। आज आप सुनेंगे वाद्य वादन में बांसुरी वादन में राग यमन, राजेंद्र प्रसन्ना के द्वारा।

0: बैंकिंग सेक्टर में प्रोबेशनरी ऑफिसर्स, मैनेजमेंट ट्रेनीज व एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स, इसरो में साइंटिस्ट, इंजीनियर तथा टेक्निकल असिस्टेंट, शिक्षा मंत्रालय में प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, रजिस्ट्रार, डिप्टी रजिस्ट्रार, असिस्टेंट रजिस्ट्रार, लाइब्रेरियन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में नर्सिंग ऑफिसर, स्टोर कीपर कम क्लर्क, जूनियर मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट, सीनियर रेजिडेंट, सीपीएसई, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम में मैनेजर, डिप्टी मैनेजर एवं असिस्टेंट मैनेजर, रक्षा क्षेत्र में नाविक जैसे विभिन्न पद। देश की समर्थ युवा शक्ति विकसित भारत एट 2047 के संकल्प की सिद्धि में अहम भूमिका निभा रही है। रेलवे को गति देने में, अंतरिक्ष में नई ऊंचाइयां छूने में या वित्तीय सेवाओं को जन जन तक पहुंचाने में उनका योगदान हर क्षेत्र में दिखाई देता है। ये कर्मयोगी युवा सिर्फ अपने जीवन को ही नहीं बदल रहे बल्कि राष्ट्र निर्माण में भागीदार भी हैं और साक्षी भी। यही नए भारत की पहचान है, जहां हर उपलब्धि के पीछे मेहनत की कहानी है और अवसर की समानता का अटूट विश्वास है। रोजगार मेला, युवाओं की निरंतर प्रगति, विकसित भारत की गति शक्ति।
1: अब मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह करती हूं कि कृपया रिमोट का बटन दबाकर 51,000 से अधिक नियुक्ति पत्रों के वितरण के इस अभियान का शुभारंभ करें।

मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह करती हूँ कि रोजगार मेले के इस अवसर पर अपने आशीर्वचनों से हम सबको अनुग्रहित करें।

साथियों, आज देश भर के हजारों युवाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है। आज 51,000 से ज्यादा युवाओं को सरकारी नौकरी का नियुक्ति पत्र मिला है। आज आप सभी देश की विकास यात्रा में अहम भागीदार बन रहे हैं, जिम्मेवार भागीदार बन रहे हैं। रेलवे, बैंकिंग, डिफेंस, हेल्थ, एजुकेशन और दूसरे कई क्षेत्रों में आप सभी नई जिम्मेदारियां संभालने जा रहे हैं। आने वाले वर्षों में विकसित भारत के संकल्प को सिद्ध करने में आप सभी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं। साथियों, यहां तक पहुंचने के लिए आप सभी ने लंबी तैयारी और कड़ा परिश्रम जरूर किया होगा। इस उपलब्धि के लिए मैं आपको भी और आपके परिवारजनों को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। आपको यहां तक पहुंचाने में आपके माता पिता और परिवार का योगदान कम नहीं होता है, लेकिन इतना भी यही है कि जैसे परिवार का योगदान होता है, समाज का भी बहुत बड़ा योगदान होता है हमें यहां पहुंचाने के लिए। हम सिर्फ अपने कारण नहीं पहुंचते, सिर्फ अपने परिवार के कारण नहीं पहुंचते। इस विशाल देश के 140 करोड़ नागरिकों के योगदान का भी बहुत बड़ा महत्व होता है और इसलिए हमारा दायित्व खुद के प्रति, खुद के परिवार प्रति, वैसे ही संपूर्ण समाज के प्रति भी रहता है। और मुझे विश्वास है इन सभी कामों के लिए आप अपने आप को और अधिक योग्य बनाएंगे। मैं आपको बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, आप सबको पता है अभी दो दिन पहले ही मैं 5 देशों की यात्रा कर करके लौटा हूं। कहने को तो ये सिर्फ 5 देशों की यात्रा थी, लेकिन इस दौरान मेरी दर्जनों देशों की बड़ी बड़ी कंपनियों के लीडर से बातें हुई, विस्तार से चर्चा हुई, मुलाकात हुई और हर जगह मैंने एक बात समान रूप से महसूस की है। दुनिया भारत के युवाओं और भारत की टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस को लेकर बहुत उत्साहित है। आज दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनना चाहती है। भारत भी दुनिया के अलग अलग देशों के साथ पार्टनरशिप कर रहा है। इसका उद्देश्य यही है कि भारत के युवाओं को अवसर मिले, रोजगार मिले, उनका सामर्थ्य खिल उठे, साथ साथ

मैं चाहता हूं मेरे देश के नौजवानों को ग्लोबल एक्सपोजर भी मिले। इस यात्रा के दौरान अब जैसे नीदरलैंड की मैं बात करूं तो नीदरलैंड्स के साथ सेमीकंडक्टर्स, वाटर, एग्रीकल्चर और एडवांस मैन्युफैक्चरिंग पर चर्चा हुई। स्वीडन के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई और डिजिटल इनोवेशन उस पर सहयोग की बहुत सारी बातें हुई। नॉर्वे के साथ ग्रीन टेक्नोलॉजी और मैरीटाइम कोऑपरेशन की बात आगे बढ़ी है। यूएई के साथ स्ट्रेटेजिक एनर्जी और टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप पर महत्वपूर्ण समझौते हुए। इटली के साथ डिफेंस, क्रिटिकल मिनरल्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऐसे अत्यंत महत्वपूर्ण क्षेत्रों में पार्टनरशिप्स पर एग्रीमेंट हुए। साथियों, इन सारे एग्रीमेंट्स का सीधा लाभ भारत के युवाओं को मिलने वाला है और आपने देखा होगा कि सारे विषय एक उज्जवल समर्थ भारत के भविष्य की गारंटी लेकर के आते हैं, क्योंकि हर नया निवेश, हर टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप, हर इंडस्ट्रियल कोलैबोरेशन भारत के युवाओं के लिए नई अपॉर्चुनिटीज तो लेकर के आता ही है, लेकिन अनगिनत नए अवसर तैयार करता है। मेरे नौजवान साथियों, हमें याद रखना है ये वो सेक्टर्स हैं जिनमें आने वाला इन्वेस्टमेंट और पार्टनरशिप आने वाले 3-4 दशक की ग्लोबल ग्रोथ को ये शेप करने वाली इंडस्ट्री तैयार करेगी। और निश्चित तौर पर भारत के युवाओं की इसमें बहुत बड़ी भूमिका होगी। साथियों, भारत किस तरह दुनिया का एक भरोसेमंद सप्लाई चेन पार्टनर बन रहा है, इसका मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। जैसे नीदरलैंड्स की सेमीकंडक्टर कंपनी, आप में से बहुत लोग इस नाम से परिचित होंगे, एएसएमएल, एएसएमएल के साथ भारत की टाटा कंपनी का एग्रीमेंट है। भारत दुनिया के कुछ ही देशों में से एक है जिसके साथ इस कंपनी ने समझौता किया है। एएसएमएल टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के बीच ये अकेला समझौता ही भारत में रोजगार के अनगिनत नए मौके बनाएगा और भारत को एक नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी में प्रवेश द्वार खोल देगा। ऐसे ही स्वीडन के साथ टेक्नोलॉजी और एआई पार्टनरशिप्स, यूएई का साथ सुपर कंप्यूटिंग कोऑपरेशन भारत की टेक्नोलॉजी क्षमता को बहुत मजबूत करने वाले हैं। इन एग्रीमेंट से युवाओं के लिए नए अवसर तो होंगे ही होंगे। साथियों, आज क्लीन एनर्जी, क्रिटिकल मिनरल्स, ग्रीन हाइड्रोजन और सस्टेनेबल मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े सेक्टर्स भी बहुत तेजी से ग्रो कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। इनसे जुड़ी पार्टनरशिप एक नई इकोनॉमी के न्यू अपॉर्चुनिटीज के

पढ़ रहे हैं, इनसे जुड़ी पार्टनरशिप एक नई इकोनॉमी के न्यू अपॉर्चुनिटीज के दरवाजे खोल रही है। स्वीडन, नॉर्वे और इटली जैसे देशों के साथ ग्रीन ट्रांजिशन और सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी में भी सहयोग बढ़ रहा है। ये भारत को क्लीन मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ी फ्यूचर इंडस्ट्रीज में मजबूत करेगा। इसके अलावा भारत ने पोर्ट्स, शिपिंग और मैरिटाइम इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े एग्रीमेंट पर तेजी से काम किया है। यूएई और नॉर्वे के साथ पार्टनरशिप से भारत का शिप बिल्डिंग इकोसिस्टम मजबूत होगा। और आप तो जानते हैं, शिप बिल्डिंग यानी स्किल मैन पावर की बहुत जरूरत पड़ती है, यानी भारत के इंजीनियर्स, टेक्नीशियंस और स्किल वर्कर्स के लिए इतनी मांग बढ़ने वाली है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। कितने अवसर तैयार होंगे साथियों। हर नई पार्टनरशिप के साथ हम भारतीय स्टार्टअप्स, रिसर्चर्स और यंग प्रोफेशनल्स के लिए दुनिया से जुड़ने के नए रास्ते बना रहे हैं। इससे भारतीय युवाओं को एडवांस एक्सपर्टीज, ग्लोबल मार्केट्स और ग्रोथ के नए मौके भी मिलेंगे। आज दुनिया उन देशों का सम्मान करती है जो इनोवेट करते हैं, जो बिल्ड करते हैं और जो बड़े स्तर पर डिलीवरी कर सकते हैं। भारत आज इन तीनों दिशाओं में तेजी से आगे बढ़ रहा है और इस परिवर्तन की सबसे बड़ी ताकत आप सब मेरे नौजवान साथी हैं, भारत का युवा है। और मैं दुनिया में जहां भी जाता हूं, मैं काफी समय चर्चा में भारत की युवा शक्ति की चर्चा करता हूं। साथियों, आज हर भारतीय एक बड़े संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। ये संकल्प 2047 तक विकसित भारत के निर्माण का संकल्प है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आज देश अलग अलग सेक्टर्स में निवेश कर रहा है और इस निवेश से देश के युवाओं के लिए रोजगार के लाखों नए अवसर बन रहे हैं, जिसे आज भारत में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग की पूरी सप्लाई चेन तैयार की जा रही है। आने वाले समय में भारत की 10 बड़ी सेमीकंडक्टर यूनिट्स दुनिया में अपना परचम लहराएगी। इनमें बड़ी संख्या में भारत के नौजवानों का सामर्थ्य होगा, भारत के नौजवानों की बुद्धि प्रतिभा होगी, भारत के नौजवानों का कमिटमेंट होगा। और स्वाभाविक है, रोजगार तो है ही है। भारत आज शिप बिल्डिंग से लेकर शिप रिपेयरिंग और ओवरहॉलिंग का भी इकोसिस्टम विकसित कर रहा है। इसके लिए करीब 75,000 करोड़ रुपए, 75,000 करोड़ रुपीज का निवेश किया जा रहा है। इसी तरह भारत में ही हम पूरा एमआरओ इकोसिस्टम यानी मेंटेनेंस, ओवरहॉल

और रिपेयर फैसिलिटी तैयार कर रहे हैं। इससे देश के एविएशन सेक्टर को बहुत मदद मिलने वाली है और भारत के युवाओं के लिए रोजगार का नया सेक्टर तो खुलना ही खुलना है। साथियों, भारत आज एक बड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरर है और हम इलेक्ट्रॉनिक्स से जुड़ी कंप्लीट वैल्यू चेन भारत में ही बना रहे हैं। इसके लिए जो पीएलआई स्कीम चल रही है उससे देश में रिकॉर्ड इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्शन हो रहा है और युवाओं को लाखों की संख्या में जॉब्स भी मिल रही है। साथियों, ऐसे अनेकों अभियानों पर भारत का पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर मिलकर बहुत बड़ा निवेश कर रहा है। ये निवेश देश के युवाओं को देश में ही जॉब्स दे रहा है, उनके सपने पूरे कर रहा है। एक सरकारी कर्मचारी होने के नाते, जो कि आज नियुक्ति पत्र के भरने के बाद आपकी पहचान बनने वाली कि आप एक सरकारी कर्मचारी हैं, तो उस नाते आपको भी हमेशा ये ध्यान रखना है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस देश की कितनी बड़ी प्राथमिकता है। साथियों, भारत की ग्रोथ स्टोरी और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, इसमें ये मानी हुई बात है, आप भी जानते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर इसकी बहुत बड़ी भूमिका होती है। जब गांव, छोटे शहर और दूर दराज के इलाके विकास से जुड़ते हैं तभी देश की प्रगति का लाभ ज्यादा लोगों तक पहुंचता है। पिछले 12 वर्षों में रेलवे, हाईवे, एयरपोर्ट, लॉजिस्टिक्स, पोर्ट्स, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर कल्पना भर का तेज गति से विस्तार हुआ है, विकास हुआ है, हर स्तर पर काम हुआ है। आज आप अपने क्षेत्र में किसी की भी दिशा में 100 किलोमीटर अगर जाएंगे तो भारत सरकार द्वारा कोई न कोई काम चलता हुआ नजर आएगा आपको। आज गांवों में भी बदलाव तेजी से दिखाई दे रहा है। कनेक्टिविटी बढ़ने से किसानों, छोटे व्यापारियों, विद्यार्थियों के लिए नए रास्ते खुले हैं। आज करोड़ों परिवारों को पक्का घर मिला है, यानी दुनिया के कई देश हैं जिनके पास टोटल घर होते हैं उससे अनेक गुना घर हम नए बनाते हैं। इतना ही नहीं, जो मेरा स्वच्छता का अभियान है उसको तो मैं कभी भी भूलने नहीं देता हूं लोगों को, और नहीं मैं भी बोलता हूं, उसमें शौचालय की बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है, हम उस पर भी बल दे रहे हैं। करोड़ों घरों तक आज बिजली पहुंची है, रूफटॉप सोलर एनर्जी, कितने नए नए वेंडर्स मैदान में आए हैं। अब देखिए, जल जीवन मिशन से नल से जल पहुंचाना, मैं अभी देख रहा था कि मैं चाहता था कि शहरों में पीएनजी के कनेक्शन बढ़े तो मुझे प्लम्बर नहीं मिल रहे थे, कमी पड़ रही थी, क्योंकि जल जीवन के मिशन में कई सारी बड़ी संख्या में प्लम्बर वहां लगे हुए थे। अब इधर मुझे एनर्जी के लिए बड़े शहरों में पीएनजी के कनेक्शन तेजी से बढ़ाने थे, तो आप कल्पना कर सकते हैं।

है कि कभी कभी तो लोगों की जरूरत पड़े तो लोग कम पड़ जाते हैं। साथियों, इन बदलावों का असर सिर्फ सामान्य नागरिकों की सुविधाओं तक सीमित नहीं रहता। गांव तक सड़क पहुंची तो मार्केट तक आना जाना आसान हुआ, बिजली की सुविधा बेहतर हुई तो छोटे उद्योग धंधे आगे बढ़ने लगे, गांव में भी एग्रीकल्चर में वैल्यू एडिशन होने लगा। पहले अगर वो लाल मिर्ची बेचते थे, अब बिजली आई तो लाल मिर्ची का पाउडर बनाते हैं, पाउडर बना करके पैकेज बनाते हैं, पैकेज बना करके बेचते हैं। तो गांव में भी छोटे छोटे छोटे छोटे उद्योग इसके कारण बढ़ते जाते हैं। डिजिटल कनेक्टिविटी बढ़ी तो गांव के लोग भी पूरे विश्व के साथ जुड़ रहे हैं, आधुनिकता से जुड़ रहे हैं। शहर और गांव का फर्क मिटता चला जा रहा है और इससे अर्थव्यवस्था की गति तेज हुई है। और इन सब का पॉजिटिव प्रभाव देश के नौजवानों के उज्जवल भविष्य की गारंटी बन जाता है। रोजगार तो निर्माण होते ही होते हैं, लेकिन राष्ट्र भी एक नए स्वाभिमान के साथ आगे बढ़ जाता है, लाखों लोगों को नए मौके भी मिल जाते हैं। साथियों, आज भारत के युवा के पास जिस तरह से आगे बढ़ने के, अपने सपने पूरा करने के मौके हैं, ऐसा अवसर पहले नहीं मिला है। मैं किसी का दोष नहीं कर रहा हूं, लेकिन हकीकत है कि आज बहुत तेज गति से सब हो रहा है, विशाल फलक पे हो रहा है, विविधताओं से भरा हो रहा है। आज मैन्युफैक्चरिंग, टेक्नोलॉजी, स्टार्टअप, डिजिटल सर्विसेज, रेलवे, डिफेंस, इतना ही नहीं स्पेस, ऐसे अनेक क्षेत्रों में अनगिनत अवसर हमारा इंतजार कर रहे हैं। हमारा प्रयास है कि ज्यादा से ज्यादा युवा नए अवसरों का लाभ उठा सके और देश के युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने का पूरा मौका मिले। इसलिए स्किल डेवलपमेंट, इंडस्ट्री लिंक्ड एजुकेशन और फ्यूचर टेक्नोलॉजी पर लगातार जोर दिया जा रहा है। आईआईटी को मॉडर्न बनाया जा रहा है, नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को मजबूत किया जा रहा है, पीएम सेतु जैसे अभियान इसी दिशा में काम कर रहे हैं। साथियों, पिछले कुछ वर्षों में देश में सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप की एक नई संस्कृति विकसित हुई है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। देश में 2,30,000 से ज्यादा, यह आंकड़ा याद रखिए, 2,30,000 से ज्यादा रिकॉग्नाइज्ड स्टार्टअप्स हैं और उसमें भी दो चार नौजवान भी जुड़े हुए होते हैं। अहम बात यह है कि ये बदलाव सिर्फ बड़े शहरों तक सीमित नहीं है और मुझे इसका सबसे ज्यादा आनंद है। आजकल तो Tier 2 और Tier 3 शहरों के युवा भी बहुत बड़ी संख्या में स्टार्टअप और इनोवेशन की दुनिया में अपना ताकत दिखा रहे हैं, उनके सामर्थ्य की नोट लेनी पड़ रही है। ये परिवर्तन अब देश की अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस बदलाव में हमारी नारी शक्ति की भूमिका भी लगातार बढ़ रही है। आज बड़ी संख्या में विमेन लेड स्टार्टअप्स, ये जब सुनते हैं ना मन गर्व से

भर जाता है। मैं जब दुनिया के लोगों को बताता हूं कि हमारे यहां स्टार्टअप में महिलाओं की बहुत बड़ी भूमिका बढ़ रही है, बहुत बड़ी मात्रा में महिलाएं आगे आ रही है, मुद्रा योजना के तहत करोड़ों महिलाओं को फाइनेंशियल सपोर्ट मिला है, पीएम स्वनिधि जैसी योजनाओं ने भी लाखों महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने का अवसर दिया है। आज गांवों में, छोटे शहरों में पहले से ज्यादा महिलाएं अपने दम पर नए काम शुरू कर रही है। साथियों, नीतियां और निर्णयों के इस अभियान के बीच आपको एक और बात याद रखनी है, किसी भी व्यवस्था की असली ताकत उसके लोग होते हैं, जनता जनार्दन की शक्ति होती है, जनशक्ति होती है, और जनशक्ति ही तो राष्ट्र शक्ति बनती है। आप सभी जिस व्यवस्था का हिस्सा बनने जा रहे हैं उसका सीधा संबंध करोड़ों करोड़ों देशवासियों के जीवन से है, करोड़ों करोड़ों देशवासियों की आशा आकांक्षाओं से है। सरकारी नौकरी लोगों के जीवन को आसान बनाने का माध्यम ही होती है। आप जिस भी विभाग में काम करेंगे वहां आपके व्यवहार, संवेदनशीलता और काम करने के तरीके का बहुत महत्व होगा। देश ने आप पर भरोसा किया है, अब ये जिम्मेदारी आपकी है कि आप अपने काम से, अपने आचरण से, अपनी वाणी से, अपने व्यवहार से उस भरोसे को और मजबूती देंगे। देशवासियों के हृदय में एक नया विश्वास भर जाएगा, आपको मिलते ही वो नई आशा के साथ आगे बढ़ेगा। इसलिए हर युवा कर्मयोगी अपने काम को जिम्मेदारी की तरह देखें, और मेरे लिए तो आप बहुत कुछ हैं। पहले जमाने में हम सुनते थे ना, सहस्त्र बाहु वाले फलाने, सहस्त्र बाहु वाले ढींकने, आज सरकार के बाहु आप ही हैं, सरकार का सामर्थ्य आप ही हैं। जो पहले से सरकार में है वो भी है, जो नए आ रहे हैं वो भी है। आज भारत के लोगों की आकांक्षाएं बहुत बढ़ रही हैं और मैं इसे विकास की पॉजिटिव साइन मानता हूं। हमें अपने देश के लोगों के एस्पिरेशंस को समझना भी है और उसके हिसाब से उतनी ही तेज गति से काम भी करना है। ऐसे में पब्लिक सर्विस में आने वाले युवाओं की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो गई है। आपको लगातार सीखते रहना होगा, खुद को नई टेक्नोलॉजी, नई सिस्टम और नई जरूरतों के हिसाब से तैयार करना होगा। इसमें आपको iGOT कर्मयोगी प्लेटफॉर्म से बहुत मदद मिलेगी। कर्मयोगी प्रारंभ जैसे मॉड्यूल से आपको अपनी जिम्मेदारियां समझने में बहुत सहूलियत होगी। मेरा आपसे आग्रह है कि इसका ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाएं। साथियों, आज भारत का युवा दुनिया के हर क्षेत्र में अपनी पहचान बना रहा है। यही स्पिरिट, यही ऊर्जा पब्लिक सर्विस में भी दिखाई देनी चाहिए। विकसित भारत ऐसे ही युवाओं के प्रयास से बनेगा जो अपने काम को देश सेवा का माध्यम

0: मानते हैं, जन सेवा का माध्यम मानते हैं। और हमारे यहां तो कहा जन सेवा ही प्रभु सेवा। मुझे पूरा विश्वास है आज नियुक्ति पत्र पाने वाले हमारे युवा साथी भारत के विकास यात्रा को नई गति देंगे। आपके काम, आपके फैसलों से विकसित भारत के संकल्प की सिद्धि होगी। और आपको वो मंत्र कभी भूलना नहीं है, हमारा मंत्र है नागरिक देवो भव। नागरिक देवो भव, नागरिक का कल्याण ही हमारा कर्तव्य है। मैं एक बार फिर आज नियुक्ति पत्र पाने वाले सभी युवाओं को आगे के जीवन के लिए, देश सेवा के इस अवसर को निभाने के लिए अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।
1: अभी आप माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से देश भर के 47 स्थानों पर आयोजित 19 रोजगार मेले के अंतर्गत 51,000 से अधिक युवाओं को रोजगार पत्र वितरित करने के अवसर पर आयोजित समारोह और माननीय प्रधानमंत्री का संबोधन सुन रहे थे।

मीडियम वेव 231.5 मीटर यानी 1296 किलोहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है। आइए श्रोताओं, अब आनंद लेते हैं फिल्म संगीत का, और उससे पहले सुनते हैं एक देशभक्ति गीत।

फिल्म हम हिंदुस्तानी का ये गीत अभी आप सुन रहे थे मुकेश की आवाज़ में। आइए अगला गीत आपको सुनवाते हैं मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में, फिल्म तुमसे, फिल्म जानवर से

एंड इवनिंग इन पेरिस का ये गीत अभी आप सुन रहे थे आशा भोसले की आवाज़ में। इस गीत को संगीत से सजाया है शंकर जयकिशन ने और इस गीत को लिखा है हसरत जयपुरी ने। आइए अगला गीत आपको सुनाते हैं फिल्म बहारें फिर भी आएंगी से मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ में। इस गीत को संगीत दिया है ओपी नैयर साहब ने। तो आइए सुनते हैं ये गीत।

फिल्म लव इन टोक्यो का ये गीत अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज़ में। आइए अगला गीत आपको सुनवाते हैं फिल्म गूंज उठी सहनाई से गीता दत्त और लता मंगेशकर की आवाज़ में, और इस गीत को संगीत से सजाया है वसंत देसाई ने और इस गीत को लिखा है भरत व्यास ने।

0: ऐ मेरी हमरथ, मुझको थाम ले, जिंदगी से भाग कर आया हूं।
1: बारिश हो रही है, ये बारिश न होती तो भी ना आती।

यलगार फिल्म का ये गीत अभी आप सुन रहे थे सपना मुखर्जी और उदित नारायण की आवाज में। श्रोताओं भी आप आनंद ले रहे थे फिल्म संगीत का हमारे आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से। हमारा अगला कार्यक्रम अब समय हो रहा है हमारे श्रोता बहनों के कार्यक्रम नारी संसार का, तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम नारी संसार आपकी रेडियो सखी विजेता के साथ।

नमस्कार बहनों, नारी संसार कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो सहेली विजेता। बहनों, हमेशा की तरह आज भी कार्यक्रम में ढेर सारी बातें होंगी, हम वार्ता भी सुनवाएंगे और कुछ फिल्मी गीतों का आनंद भी लेंगे। तो अब आइए हम बात करें गांव की महिलाएं और आत्मनिर्भर भारत की। तो बहनों, वो समय और था जब गांव की औरतों को शिक्षा से वंचित रखा जाता था। वो या तो घर में काम करती या फिर खेतों में जाकर बीज बोना, धान की रोपाई, निराई गुराई मतलब खरपतवार निकालना और फसल की कटाई में मुख्य रूप से शामिल रहती थी। इसके अलावा वो फसलों की मड़ाई, अनाज की ओसाई और भंडारण जैसे कार्यों में भी बराबर का योगदान देती। वो खेतों में काम करने के साथ साथ मवेशियों के लिए खेत में ही चारा काटती, उन्हें इकट्ठा करके रखती ताकि मवेशियों के पालन पोषण में किसी तरह की दिक्कत ना हो। तो इस तरह के सारे काम ग्रामीण महिलाएं अपने घरेलू काम को करते हुए करती थी और उसके बाद भी वो अपनी ज़रूरतों के लिए दूसरे पर निर्भर रहती थी। पर धीरे धीरे वक्त बदला, महिलाएं अब शिक्षित होने लगीं। अब गांव की महिलाओं को भी समझ में आने लगा कि इस बदलते समय में दूसरे पर निर्भर रहना सही नहीं, मतलब उन्हें भी आत्मनिर्भर बनना चाहिए। इसलिए वो खुद के पैरों पर खड़े होने की कोशिश करने लगी और अपनी कोशिश में वो बहुत हद तक कामयाब भी हुई। आज गांव की महिलाएं यदि चाहें तो वो घर पर ही मवेशी पालन कर दूध उत्पादन कर सकती हैं। वो सरकारी योजनाओं या सहकारिता के माध्यम से अच्छा मुनाफा कमा सकती हैं। इसके अलावा खेतों में औषधीय पौधों, सब्जियों या मशरूम की खेती कर आमदनी कर सकती हैं। जूट और बांस के उत्पाद जैसे खजूर के पत्तों और बांस से सुंदर टोकरियां, चटाइयां, थैले बनाकर भी रोजगार कर सकती हैं। गांव की महिलाएं आत्मनिर्भर बने इसके लिए सरकार भी कई तरह की योजनाएं चलाकर उनकी मदद करती हैं। जैसे प्रधानमंत्री जी द्वारा चलाया गया उज्ज्वला योजना, जो कि केवल महिलाओं के मदद के लिए ही है, इसका लाभ महिलाएं खूब उठा रही हैं। अब गांव के हर घर में गैस सिलेंडर उपलब्ध है, जिससे ग्रामीण महिलाओं का समय खाना बनाने के लिए जो खर्च होता था वो समय अब बचने लगा, जिससे वो अपने रोजगार में लगाने लगी और आत्मनिर्भर बनी। इसी तरह अब गांव की महिलाएं सरकार द्वारा चलाए जा गए योजना के तहत 6 महीनों का सिलाई कटाई बुनाई का कोर्स कर वो घर पर ही संस्था चलाकर खुद भी आत्मनिर्भर बन रही हैं और इसके लिए दूसरे को भी प्रेरित कर रही हैं। आज अचार पापड़ का व्यवसाय तो काफ़ी प्रसिद्ध है, जिसे महिलाएं घर बैठे खूब अच्छी तरह से निभा रही हैं और अपना आमदनी भी देख रही हैं। बहनों, आज महिलाएं स्वयं सहायता समूह से जुड़कर छोटे स्तर पर बचत और ऋण का लाभ उठा सकती हैं। इसके तहत सरकार द्वारा लखपति दीदी योजना जैसे कई प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए भी जा रहे हैं। आज युवा ग्रामीण महिलाएं घर बैठे ऑनलाइन शिक्षा या फ्रीलांस सेवा से जुड़ सकती हैं। साथ ही सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के माध्यम से गाँव में महिलाओं की को प्रशिक्षण और आर्थिक सहायता भी प्रदान की जा रही है। बहनों, सरकार द्वारा जो ग्रामीण महिलाओं के लिए इतनी सारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, इन सब के पीछे सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि महिलाएं आत्मनिर्भर बन सकें। महिलाएं जब आत्मनिर्भर बनेंगी तो आत्मविश्वास में से उनमें मजबूती आएगी, उनका खुद पर विश्वास बढ़ेगा, उनका हौसला बढ़ेगा और वो हर क्षेत्र में कदम बढ़ाकर भारत देश को सम्मान दिला सकेंगी, जिससे हमारे देश का नाम रोशन होगा। तो आइए बहनों, कार्यक्रम में अब हम आगे बढ़ते हैं और आपको ले चलते हैं मनोरंजन की दुनिया में और सुनवाते हैं एक गीत।

बहनों, छोटी छोटी बचत की आदत हमारे परिवार के लिए कितनी ज़रूरी है। ये बचत किए गए पैसे हमें आड़े वक्त कितना काम आती हैं, इसके बारे में कहना ज़रा मुश्किल है, क्योंकि बहुत लोग इस तरह की बातों को नहीं समझ पाते। तो परिवार में बचत की आदत डालें, और ये बता रही हैं हमारे रेडियो सहेली श्वेता।

0: नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रही हैं नारी संसार और मैं हूं श्वेत। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो हर घर, हर परिवार और हर व्यक्ति के जीवन से जुड़ा है। हमारा आज का विषय है परिवार में डाले बचत की आदत। श्रोताओं, कहा जाता है बूंद बूंद से घड़ा भरता है, ठीक उसी प्रकार छोटी छोटी बचत मिलकर भविष्य की बड़ी ताकत बन जाती है। आज के समय में महंगाई लगातार बढ़ रही है, यदि ऐसे में हम अपनी कमाई का थोड़ा हिस्सा बचाकर रखें तो अचानक आने वाली परेशानियों का सामना आसानी से कर सकते हैं। कई बार बीमारी, बच्चों की पढ़ाई, शादी या किसी जरूरी काम से समय की बचत ही सबसे बड़ा सहारा बनती है। लेकिन बचत का मतलब केवल पैसे जमा करना नहीं होता, बचत का मतलब है जरूरत के अनुसार खर्च करना और फिजूल खर्ची से बचना। जैसे जरूरत ना होने पर बिजली का बंद कर देना, पानी को बेकार ना बहने देना, खाना उतना ही लेना जितनी जरूरत हो और समय का सही उपयोग करना, ये सभी अच्छी आदतें भी बचत का ही हिस्सा है। श्रोताओं, परिवार में अगर माता पिता बच्चों को बचपन से बचत की सीख दे तो बच्चे आगे चलकर जिम्मेदार और समझदार बनते हैं। उन्हें गुल्लक में पैसे जमा करने की आदत डालनी चाहिए। छोटे छोटे प्रयास आगे चलकर बड़ी सफलता का कारण बनते हैं। कई बार लोग सोचते हैं कि कम आय में बचत संभव नहीं, लेकिन सच्चाई ये है कि बचत की शुरुआत छोटी रकम से भी हो सकती है। जरूरी ये नहीं कि आप कितना बचाते हैं, बल्कि जरूरी ये है कि आप नियमित रूप से बचत करते हैं। यदि परिवार का हर सदस्य मिलकर ये संकल्प ले कि फिजूल खर्च नहीं करेंगे तो घर की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और जीवन में आत्मविश्वास बढ़ेगा। श्रोताओं, हमेशा याद रखिए कि बचत किया हुआ धन कमाए हुए धन के बराबर होता है। तो आइए हम सभी ये सोचे और अपने जीवन में इस बात को लेकर आए कि हम अपने परिवार में बचत की आदत डालेंगे, बिजली, पानी और समय की कद्र करेंगे और आने वाले भविष्य को सुरक्षित बनाएंगे। तो चलिए इसी प्रेरणादायक संदेश के साथ मुझे दीजिए अनुमति, फिर होगी मुलाकात एक नए विषय और नई सोच के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।
1: अभी आप हमारे रेडियो सहेली श्वेता से जान रही थी परिवार में बचत की आदत डालना कितना फायदेमंद होता है। तो आइए अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सोशल मीडिया के सकारात्मक उपयोग की। बहनों, आज के डिजिटल युग में सोशल मीडिया हमारे समाज में इस कदर रच बस गया है कि लगभग हर कोई किसी न किसी रूप से इससे जुड़ा है। हर सोशल मीडिया अकाउंट, हर तस्वीर और हर पोस्ट के साथ हम न सिर्फ अपने दोस्तों, परिवार, रिश्तेदारों के साथ जुड़े रहते हैं, बल्कि पूरी डिजिटल दुनिया के साथ हम अपनी जानकारी साझा कर रहे होते हैं। इन सब से हमें खुशी तो बहुत होती है, पर इसके फायदे कम और नुकसान ज़्यादा होते हैं। इसलिए हमें सोशल मीडिया का सकारात्मक उपयोग करना होगा। बहनों, आज हम डिजिटल युग में जी रहे हैं। हमारा हर काम, चाहे वो पढ़ाई लिखाई हो, जॉब हो, कुछ जानने की बात हो, हम इंटरनेट के माध्यम से ही घर बैठे जान लेते हैं, समझ लेते हैं और कर लेते हैं। तो जैसा कि हमने पहले भी कहा है कि इसके फायदे के साथ साथ नुकसान भी हैं, पर हमें इसकी बुराइयों से बचते हुए इससे होने वाले फायदे की ओर ध्यान देना है। मेरे कहने का मतलब है कि सोशल मीडिया युवाओं के लिए उनकी शिक्षा की दृष्टि से काफ़ी फायदेमंद है, तो इसलिए सोशल मीडिया युवाओं को सीखने

जोड़ने और रचनात्मकता का एक शक्तिशाली माध्यम बन सकता है। इसके सकारात्मक उपयोग के लिए डिजिटल साक्षरता, स्क्रीन टाइम का संतुलन और केवल ज्ञानवर्धक बातों पर ध्यान देना चाहिए। युवाओं को सोशल मीडिया कौशल और ज्ञान का विकास करने के लिए होना चाहिए। युवा अपने करियर को संवारने के लिए सोशल मीडिया का उपयोग पर्सनल ब्रांडिंग, प्रोफेशनल नेटवर्किंग और अपने काम के पोर्टफोलियो को प्रदर्शित करके कर सकते हैं। इसके अलावा लिंक्डइन का उपयोग करके वो पेशेवर प्रोफाइल बना सकते हैं, जिससे वो अपनी शिक्षा, स्किल्स और उपलब्धियों को स्पष्ट रूप से अपडेट रख सकें। युवा चाहें तो इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर क्रिएटिव फील्ड, डिज़ाइनिंग, फोटोग्राफी या कला प्रदर्शन कर अपने काम के वीडियो और चित्र इन प्लेटफॉर्म्स पर डालकर अपना पोर्टफोलियो बना सकते हैं। वो चाहें तो फेसबुक और लिंक्डइन पर अपने करियर से संबंधित समूहों का हिस्सा बन सकते हैं। इससे उन्हें नए रोजगारों की जानकारी मिलती रहेगी। बहनों, सोशल मीडिया को कौशल बनाएं, मतलब केवल कंटेंट देखने के बजाय सोशल मीडिया मार्केटिंग सीखें, क्योंकि आज के समय में सोशल मीडिया मैनेजर और डिजिटल मार्केटर की बहुत मांग है। इसी तरह महिलाएं भी चाहे तो सोशल मीडिया का सकारात्मक उपयोग कर अपनी पहचान बना सकती हैं और आत्मनिर्भर बन सकती हैं। वो अपने कौशल ज्ञान को बढ़ावा दे सकती हैं, ऑनलाइन व्यापार कर सकती हैं, सकारात्मक समुदायों से जुड़ सकती हैं। ये न केवल उन्हें सशक्त बनाता है, बल्कि उन्हें एक सुरक्षित डिजिटल पहचान भी दिलाता है। बहनों, महिलाओं को चाहिए कि वो इंटरनेट के माध्यम से ऐसे समूहों और पेजों से जुड़े जो उन्हें जीवन में आगे बढ़ने में, अपने सपने को साकार करने में मदद करे। उन्हें आत्मनिर्भर बनने के लिए नई नई राह दिखाएं, मतलब होम बेस्ड बिजनेस के विषय में जानकारी हासिल करें, जिससे वो घर बैठे ही खुद का काम कर सकें। हस्तशिल्प, कुकिंग, सिलाई, कढ़ाई जैसे कला को सोशल मीडिया के जरिए रोजगार बनाएं और आत्मनिर्भर बने। बहनों, यदि एक बात और कहना चाहूँगी, अब हम डिजिटल युग में जी रहे हैं तो स्वाभाविक है इससे हमें फ़ायदा के साथ साथ नुकसान भी थोड़ा बहुत होता ही है, तो इसलिए हमें सुरक्षित तरीके से इसका उपयोग करना होगा। तो इसके लिए कुछ बातों को लेकर हमें सावधान भी रहना होगा। जैसे अपनी व्यक्तिगत जानकारी, जैसे घर का पता, फ़ोन नंबर या दैनिक दिनचर्या को सार्वजनिक करने से बचना होगा। अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स, इंस्टाग्राम, फेसबुक को हमेशा प्राइवेट रखना होगा और अनजान लोगों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजने से बचना होगा। मजबूत पासवर्ड का इस्तेमाल करें ताकि आपके अकाउंट्स सुरक्षित रहें। तो बहनों, इस तरह डिजिटल सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सोशल मीडिया का सकारात्मक उपयोग करें और सफलता की राह पर अग्रसर रहें। तो आइए एक बार फिर से हम अपनी चर्चा को ख़त्म करते हुए आगे बढ़ते हैं और आपको सुनवाते हैं एक और प्यारा सा फिल्मी गीत।

0: कार्यक्रम संबंधी एक सूचना। श्रोताओं, गर्मी के मौसम में अगर सावधानी न बरती जाए तो लू लगने के अलावे स्वास्थ्य संबंधी कई अन्य समस्याएं भी हो सकती हैं। गर्मी के मौसम में स्वास्थ्य संबंधी सावधानियां, यही है आकाशवाणी दरभंगा के फोन इन कार्यक्रम हेलो जिंदगी के अगले अंक का विषय। विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर फुलेश्वर झा। प्रसारण के दौरान कार्यक्रम से जुड़ने के लिए फोन नंबर होगा 9430029353। एक और नंबर है 0627222481। समय याद रखें रविवार 24 मई 2026 दिन के 11 बजे। सूचना समाप्त हुई। बहनों, आइए अब हर दिन कुछ खास अंक में हम जानते हैं गले की खराश से राहत पाने के कुछ उपाय। तो गर्म पानी में नमक डालकर पीना काफ़ी फायदेमंद होता है। जितना संभव हो मुंह और जीभ की सफाई पर ध्यान दें और ठंडी चीज़ों को खाने से बचें, जैसे तुरंत फ्रिज से निकाला गया पानी हो, फल हो, आइसक्रीम हो, इन सारी चीज़ों को खाने से बचें। अदरक, मुलेठी या तुलसी के पत्तों को पानी में उबालकर चाय बनाकर पी सकती हैं। ये संक्रमण से लड़ने और कफ को बाहर निकालने में मदद करती है। गर्म पानी की भाप लेने से गले का सूखापन दूर होता है और बंद नाक में, गले में जकड़न से राहत मिलती है। धूल, मिट्टी, सिगरेट के धुएं और प्रदूषण से अपने गले को बचाएं। इसके लिए मास्क का इस्तेमाल करें। तो ये था हमारा आज का स्वास्थ्य टिप्स। अगर आपके पास भी इस तरह कोई टिप्स है तो आप हमारे जरिए अन्य श्रोता बहनों तक पहुँचा सकती हैं। हमारा पता है कार्यक्रम नारी संसार द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी दरभंगा। पिन कोड है 8460004। तो दीजिए अनुमति अपनी रेडियो सहेली विजेता को। नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नारी संसार। आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है। हमारे दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी में समाचार बस कुछ ही देर में।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 19वें रोजगार मेले में विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में 51,000 से अधिक नव नियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रोजगार मेले को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत दुनिया के विभिन्न देशों के साथ भी साझेदारी कर रहा है, जिसका उद्देश्य युवाओं को अवसर, रोजगार और वैश्विक अनुभव देना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत दुनिया का भरोसेमंद आपूर्ति श्रृंखला साझेदार बन रहा है। उन्होंने कहा कि दुनिया भारत के विकास यात्रा का हिस्सा बनने के लिए उत्सुक है। श्री मोदी ने कहा कि हर भारतीय 2047 तक देश को विकसित भारत बनाने के संकल्प के साथ काम कर रहा है।
3: आज हर भारतीय एक बड़े संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। ये संकल्प 2047 तक विकसित भारत के निर्माण का संकल्प है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आज देश अलग अलग सेक्टर्स में निवेश कर रहा है और इस निवेश से देश के युवाओं के लिए रोजगार के लाखों नए अवसर बन रहे हैं, जिसे आज भारत में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग की पूरी सप्लाई चेन तैयार की जा रही है।
2: केरलम में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस तथा पर्यटन राज्य मंत्री सुरेश गोपी ने आज तिरुवनंतपुरम में रोजगार मेले का उद्घाटन किया। सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया रोजगार मेला केवल एक भर्ती अभियान से कहीं अधिक है और इसका उद्देश्य युवा शक्ति को राष्ट्र शक्ति में बदलना है। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने घोषणा की है कि राज्य में अगले 5 वर्ष में 1,00,000 शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। शिक्षा विभाग के उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे हर साल कम से कम 20,000 शिक्षकों की

सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि भर्ती प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए अब शिक्षकों की नियुक्ति के लिए अधिसूचना हर साल जुलाई महीने में जारी की जाएगी। बिहार सरकार ने 21 जून को नीट यूजी पुनः परीक्षा में शामिल होने वाले राज्य के सभी छात्रों के लिए सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा की घोषणा की है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सोशल मीडिया पर यह जानकारी दी। आंध्र प्रदेश के श्री सत्यसाई जिले में आज राष्ट्रीय सीमा शुल्क अप्रत्यक्ष कर और नारकोटिक्स अकादमी में भारतीय राजस्व सेवा के 76वें बेंच के अधिकारियों की पासिंग आउट परेड आयोजित की गई। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस अवसर पर श्री चौधरी ने कहा कि केंद्र सरकार ने युवाओं को लगभग 4 करोड़ रोजगार के अवसर सृजित किए हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो आज दोपहर नई दिल्ली पहुंचे। वे मंगलवार को नई दिल्ली में होने वाली क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए 4 दिन की भारत यात्रा पर हैं। श्री रूबियो आज सेवा तीर्थ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। अमेरिकी विदेश मंत्री कल विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। इंडियन ऑयल ने कहा है कि देश में पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति स्थिर है और ईंधन की कोई कमी नहीं है। इंडियन ऑयल ने एक बयान में कहा कि कुछ खुदरा दुकानों में मांग आपूर्ति असंतुलन और चुनिंदा क्षेत्रों में मांग बढ़ने के कारण अस्थिरता की खबर है। ऐसे मामले देश भर में 42,000 से अधिक खुदरा दुकानों के इंडियन ऑयल के नेटवर्क में से कुछ खुदरा दुकानों तक ही सीमित हैं। इंडियन ऑयल ने बताया कि 1 मई से 22 मई की अवधि के दौरान कंपनी ने ईंधन की बिक्री में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की है। इस दौरान पेट्रोल की बिक्री में 14% जबकि डीजल की बिक्री में करीब 18% की वृद्धि हुई है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज वृद्धि हुई। पिछले 10 दिन में तेल के मूल्यों में तीसरी बार वृद्धि हुई है। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 87 पैसे बढ़कर 99.51 रुपये प्रति लीटर हो गई है जबकि डीजल का मूल्य 51 पैसे बढ़कर 92.49 रुपये प्रति लीटर हो गया है। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने आज सीएनजी की कीमत में 1 रुपये की वृद्धि की है। इस वृद्धि के बाद राजधानी में 1 किलोग्राम सीएनजी की नई दर 81.09 रुपये हो गई है। आईपीएल क्रिकेट में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। ये मैच लखनऊ में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। कल रात सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 55 रन से पराजित किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

कार्यक्रम विवरण में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। आइए हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की आपको जानकारी दे दें। अब से कुछ ही देर में यानी दोपहर के 1:15 पर आप सुनेंगे हमारा फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम आपकी पसंद। दोपहर के 2 बजे आप हमारे पटना केंद्र से प्रसारित प्रादेशिक समाचार सुनेंगे और दोपहर के 2:05 पर आप सुनेंगे हमारे पटना केंद्र से प्रसारित इलाकाई खबरें। दोपहर के 2:15 पर आप सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से प्रसारित दोपहर समाचार और दोपहर के 3 बजे आप सुनेंगे प्रादेशिक संगीत का हमारा कार्यक्रम। मराठी गीत सुनेंगे आप आज अजीत कड़कड़े की आवाज में। आज दूसरी सभा के कार्यक्रम में शाम 5 बजे आप सुनेंगे युवाओं पर आधारित कार्यक्रम युववाणी। शाम 6:30 पर हमारे ग्रामीण श्रोता भाइयों का कार्यक्रम गांव घर का प्रसारण किया जाएगा। चर्चा का विषय होगा प्रधानमंत्री आवास योजना और शाम 7 बजे हमारे किसान भाइयों का कार्यक्रम खेती गृहस्थी का प्रसारण होगा। चर्चा का विषय होगा ईख की फसल की देखभाल कैसे।

रात्रि के 8:15 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम हमारा पर्यावरण। निर्माण एवं वाचन कल्याण कुमार झा और प्रस्तुत करता है असद दाऊद। रात्रि के 9:30 पर हमारे दिल्ली केंद्र से प्रसारित कार्यक्रम विज्ञान भारती का प्रसारण आप सुनेंगे और हमारे दिल्ली केंद्र से ही रात्रि के 10:00 संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम प्रसारण किया जाएगा। अब आइए श्रोताओं एक साप्ताहिक कार्यक्रम के विषय में जानकारी दे दें। गर्मी के मौसम में अगर सावधानी बरती ना जाए तो लू लगने के अलावे स्वास्थ्य संबंधी कई समस्याएं भी हो सकती हैं। गर्मी के मौसम में स्वास्थ्य संबंधी सावधानियां यही है आकाशवाणी दरभंगा के फोन इन कार्यक्रम हेलो जिंदगी के अगले अंक का विषय। विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर फुलेश्वर झा। प्रसारण के दौरान कार्यक्रम से जुड़ने के लिए फोन नंबर है 9430029353 और हमारा लैंडलाइन नंबर है 0627222481। समय याद रखें रविवार 24 मई 2026 दिन के 11:00।

0: जिंदगी है तो है समस्याएं भी, समस्याएं हैं तो हम तलाशते हैं समाधान के उपाय। आपकी इस तलाश को थोड़ा आसान हम बनाते हैं अपने कार्यक्रम हेलो जिंदगी के माध्यम से। आकाशवाणी दरभंगा से सुनिए फोन इन कार्यक्रम हेलो जिंदगी, रविवार दिन में 11 बजे।
1: होती रही कुछ बातें गीतों की और कुछ उनसे जुड़ी हस्तियों की।
2: रंगत तेरी सूरत से किसी में नहीं, नहीं।
1: कानों से जब टकराई सुरों की शीतल फुहारें,
3: नाचो रस बरसी।
1: मुंदी हुई आंखों में जागने लगी

0: तन्हा रात के अंधेरे में गीतों के रंग। बुधवार रात 10:30 पर आकाशवाणी दरभंगा की प्रस्तुति।
1: ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है, मीडियम वेव 231.5 मीटर पर। आइए सुनते हैं देशभक्ति गीत।

मीडियम वेव 231.5 मीटर यानी 1296 किलोहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है। श्रोताओं, अब समय हो रहा है फिल्म संगीत पर आधारित हमारे कार्यक्रम आपकी पसंद का। तो आइए, चलिए आनंद लेते हैं कार्यक्रम आपकी पसंद, आपकी रेडियो हम सफर चंदना के साथ। कार्यक्रम आपकी पसंद में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। मैं आपकी रेडियो दोस्त चंदना आप सबको अभिनंदन करती हूं, स्वागत करती हूं कार्यक्रम आपकी पसंद में। आज शनिवार है और आज ढेरों पसंदीदा गीतों के साथ मैं फिर से हाजिर हो गई हूं आपके लिए। और तो चलिए, ज़्यादा वक्त ना लेते हुए सुनते हैं ये कार्यक्रम आपकी पसंद और चलते हैं एक सुरीले सफ़र पर।

तो सबसे पहले सुनते हैं फिल्म लव इन टोक्यो से लिए गए इस गीत को लता मंगेशकर की आवाज में, और इस गीत को सुनना पसंद कर रहे हैं कोटवा नारायणपुर बाबापट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय, दुबिहा नेवादा गाजीपुर से प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय, प्रांजल राय, शेरपुरा का कला गाजीपुर से अवधेश राय, श्रीमती प्रीति राय और नवनीत राय, राजनगर मधुबनी से राम कुमार गुप्ता, विनीता गुप्ता, रविराज, गौरव कुमार, कुशेश्वर प्रसाद गुप्ता, मास्टर रुद्र गुप्ता, एम के गुप्ता एवं मित्रगण, छपरा दलदली बाजार से संजय कुमार गुप्ता, संजीत कुमार गुप्ता, सरजीत कुमार गुप्ता एवं सुधांशु कुमार गुप्ता, सीतामढ़ी महावीर स्थान से प्रभात कुमार गुप्ता, अरविंद कुमार गुप्ता, मंटू कुमार गुप्ता और निकी कुमार गुप्ता, फुलवारी शरीफ पटना से अविनाश चंद्र, ज्योति गुप्ता, जानवी और पीहू,

इसी गीत को पसंद कर रहे हैं ग्राम फांसी से राजकुमार हुड्डी, सुरजीत सिंह हुड्डी, प्रमोद कुमार हुड्डी, हांसी शहर से राजू मिगलानी, कविता मिगलानी, सुभाष योगी, डब्बू और बब्बू। इसी गीत को सुनना पसंद किया है मालोट कैंप पंजाब से सतीश मिगलानी, सीमा अनमोल, धर्मपाल, वीर सिंह लाठी, लखविंदर संधु, महावीर संधु, गुरचन ग्रोवर और रमेश मिगलानी। साथ ही साथ इसी गीत को सुनना पसंद कर रहे हैं भटिंडा रोड डब्वाली से राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग और मोहित नारंग। तो आइए सुनते हैं आपकी ये पसंद फिल्म लव इन टोक्यो से।

अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं फिल्म ब्रह्मचारी से, आवाज है मोहम्मद रफी की, गोला मोहम्मद रफी की, और ये सुनना पसंद किया है गोला बाजार बक्सर से श्रद्धानंद आर्य, अभिनंद आर्य, परमानंद आर्य, पंकज, प्रमोद, रोहित और मोहित, पटेल नगर मलोट पंजाब से राजेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी जाजोरिया, की गगनदीप जाजोरिया, बेबी आरजू जाजोरिया, बैठना से बलकरन अंजनी वर्मा, कुमारी ज्योति वर्मा, चौटदा सारागांव से सुजान वर्मा, सौहाद्र वर्मा और आयुषी, साथ में कृति वर्मा, झंझारपुर लंगड़ा चौक से हरिराम पासवान, काजल कुमारी, जयशंकर पासवान, रानी कुमारी, ये गीत सुनना पसंद किया है उन्होंने। इस गीत को महाराजा रेडियो श्रोता संघ जिला खांडवा ग्राम लोहारी से भी पद सुनना चाह रहे हैं, और ये हैं राजेश कुमार धनजे, राहुल कुमार धनजे, विशाल कुमार धनजे, शीला धनजे, गायत्री धनजे, खुर्दी रोड मानपुर से विजय वैद, रानी वैद, महिमा और नीतू वैद। तो आइए सुनते हैं ये गीत ब्रह्मचारी से मोहम्मद रफी की आवाज़।

0: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
1: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
2: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।

था फिल्म बॉबी से लता मंगेशकर की आवाज़ में, और इस गीत को सुनना पसंद कर रहे थे सेक्टर 57 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, नवनीत राय, डॉक्टर अमरदीप, अनिल शर्मा कालका से शुभ चंद्र बजाज, वृंदा बजाज और साहिल। इसी गीत को सुनना चाह रहे थे एकता रेडियो श्रोता संघ बड़ी खरंजपुर भागलपुर बिहार से भाई गुलफराज आरम, बेगम शामा आरा, दोस्त जमालुद्दीन नेपाली, फैज़ा फातिमा और यूसुफ हाजमा। इसी गीत को सुनना पसंद किया था लुधियाना पंजाब से अमरजीत सोनम कौर, परमजीत अदीबा कौर, बिहारी कॉलोनी महासुदन से वली वल्ला फ़कीर, डब्लू वल्ला फ़कीर, फबिन आसमा फ़कीर, बुलंदशहर से बद्रू वली अंसारी, फर्जू वली अंसारी, फर्जी वली अंसारी। साथ ही साथ इसी गीत को सुनना पसंद कर रहे थे शिवाजी चौक राजिम छत्तीसगढ़ से अनिल कुमार, अंजुलता, आदित्य कुमार और

0: कृष्ण श्रीवास्तव, अमरपुर पैनरा छत्तीसगढ़ से दीपक कुमार, रोशन कुमार, बंसी लाल, रेखा देवी, श्वेता देवी, सुरुचि देवी, दिशा और लवली श्रीवास्तव। तो श्रोताओं, भी आप आनंद ले रहे हैं फिल्म संगीत पर आधारित हमारे कार्यक्रम आपकी पसंद का। लेते हैं छोटा सा अंतराल।
1: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
2: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
3: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।
0: अंतराल के बाद आइए फिर से सुनते हैं ये गीत फिल्म तीन देवियों से। तीन देवियां, आवाज़ें हैं किशोर कुमार और आशा भोसले की, और इस गीत को सुनना पसंद कर रहे हैं वेडी से राजेश सोनी, कंचन सोनी, गायत्री डोमने, वैष्णवी डोमने, चंचल डोमने, अर्जुन गोविंदकर और धीरज सरसरे, गोविंदपुर धनबाद से सराफत हुसैन अंसारी, बेगम रेहाना, परवेज अशरफ और हसन इमाम, सदाबहार रेडियो श्रोता संग ताजपुर।

आवाजें हैं किशोर कुमार और आशा भोसले की, और इस गीत को सुनना पसंद कर रहे हैं वेडी से राजेश सोनी, कंचन सोनी, गायत्री डोमने, वैष्णवी डोमने, चंचल डोमने, अर्जुन गोविंदकर और धीरज सरसरे, गोविंदपुर धनबाद से सराफत हुसैन अंसारी, बेगम रेहाना, परवेज अशरफ और हसन इमाम, सदाबहार रेडियो श्रोता संघ ताजपुर मोरवा से भाईकारी रायकारी, श्रीमती मीना करी, पुंजरा जारिन, आरती पुंज, आकर्षण पुंज, जयश्री, पिंकी, रिंकी, रिकी, नीतू, मोहम्मद फारूक, ललन मिश्रा, ढोली सकरा से जयंत कुमार बैरागी, गोकुल चौक गंगजला सहरसा से राधे कुमार विद्यार्थी, सरिता राधे विद्यार्थी, राजेश रंजन विद्यार्थी, राजीव रंजन विद्यार्थी, संजय कुमार विद्यार्थी, ओम कुमार, गुंजेश कुमार, रिया रानी, कुमकुम कुमारी, साक्षी बुल्कीवाली, पलना झा, नया नगर सुपौल से श्वेता रंजन, पप्पू जी, रजनीश कुमार, आनंद कुमार, आशुतोष कुमार, अभिताभ कुमार, अंकजेंद्र और कुमार निराला। सुनते हैं ये गीत।

0: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
1: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
2: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।

फिल्म अपना देश का ये गीत अभी आप सुन रहे थे किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ में। और इस गीत को सुनना पसंद कर रहे थे नाहर मंटोला से भाई कादिर अली, जाकिर अली, हामिद अली, जाबिर अली, मोहम्मद अरमान और मोहम्मद सलमान। इसी गीत को सुनना पसंद किया था डोंगरगांव छत्तीसगढ़ से राष्ट्रपाल गजभैये, राधिका गजभैये, अनामिका अंशिका, तन्मय गजभैये। भिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशन देवगन, कौशल्या देवगन, हेमलता और डिम्पल देवगन। इसी गीत को सुनना पसंद कर रहे थे रिंगिनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा। साथ ही साथ इनामा टोल भगवतीपुर बिहार से नूतन सहनी, कंचन सहनी, बबीता, कोमल, नव्या सहनी, सुधा, विभा, ज्योति, पार्वती सहनी, त्रिपुरारी सहनी, संतोष कुमार सहनी, रासो देवी, रिंकू देवी, रुचि कुमारी, निशु कुमारी और एस के सहनी। आइए अगला गीत आपको सुना रहे हैं फिल्म जंगली से लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। और इस गीत को सुनना पसंद कर रहे हैं कनेरा मोहल्ला पटियाला से बत्ता परिवार, मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, नितिन पलक, करण, गीतू, निहारिका और वंश। महादेव घाट अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश, तारिणी, सूरज, सुजला ठाकुर, ज्योति ठाकुर और रेयांश ठाकुर। लेवई से गुलाबदास मानिकपुरी, लच्छनपुरी से विश्वनाथ साहू, भिलई से मुकेश वर्मा और देतरंगी से भागवत वर्मा। ग्राम महेशवाली, तहसील मलकारपुर, महाराष्ट्र से शत्रुघ्न धाड़े, वाल्मीकि धाड़े, नीनाजी धाड़े, स्वप्निल धाड़े और अजय खिरोटकर। तो श्रोताओं, अभी आप आनंद ले रहे हैं फिल्म संगीत पर आधारित हमारा ये कार्यक्रम आपकी पसंद। मैं आपकी रेडियो हमसफर चंदना आपको सुनवा रही हूँ आपके पसंदीदा गीतों को। तो आइए सुनते हैं ये गीत फिल्म जंगली से।

0: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
1: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
2: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।

ये गीत है फिल्म एन इवनिंग इन पेरिस का मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में, और इस गीत को सुनना पसंद कर रहे हैं आज़ाद नगर लक्सर हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाब शामिर।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकारी नौकरियां नागरिकों के जीवन को बेहतर और आसान बनाने का महत्वपूर्ण माध्यम है। श्री मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 19वें रोजगार मेले का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश ने अपने कर्मयोगियों पर भरोसा जताया है और अब यह उनकी जिम्मेदारी है कि वे अपनी लगन, आचरण और रोजमर्रा के कामों से उस भरोसे का मान रखें और उसे अधिक मजबूत करें। श्री मोदी ने कहा कि पूरी दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनने के लिए उत्सुक है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत विश्व के कई देशों के साथ साझेदारी भी कर रहा है, जिसका मकसद देश के युवाओं को अवसर, रोजगार और वैश्विक अनुभव दिलाना है। उन्होंने कहा कि देश अब पूरी दुनिया का एक भरोसेमंद सप्लाई चेन पार्टनर बनता जा रहा है। रोजगार मेले में सरकार के अलग अलग विभागों और संगठनों में नवनियुक्त 51,000 से भी ज्यादा युवाओं को नियुक्ति पत्र बांटे गए। ये रोजगार मेला पूरे देश में 47 अलग अलग जगहों पर आयोजित किया गया। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने 21 जून को होने वाली नीट यूजी 2026 पुनर्परीक्षा के परीक्षार्थियों को सरकारी बसों में निशुल्क आवागमन की सुविधा दिए जाने की घोषणा की है। श्री चौधरी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इसका उद्देश्य दूरदराज के क्षेत्रों से आने वाले परीक्षार्थियों को बिना किसी आर्थिक और मानसिक तनाव के समय पर परीक्षा केंद्रों तक पहुंचाना है। मुख्यमंत्री ने जिला प्रशासन, स्वयंसेवी संस्थाओं और मठ मंदिरों से छात्रों और अभिभावकों के लिए पेयजल और सत्तू जैसे पेय पदार्थों की व्यवस्था में सहयोग करने की अपील भी की है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज पटना के ऊर्जा सभागार में आयोजित 2 दिवसीय AI समिट का उद्घाटन किया। श्री चौधरी ने कहा कि हमारा संकल्प है कि युवा शक्ति, स्टार्टअप और नवाचार के बल पर बिहार डिजिटल क्रांति का अग्रणी राज्य बने। उन्होंने कहा कि AI आधारित विकास से शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और प्रशासनिक व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाया जाएगा। श्री चौधरी ने कहा कि इस समिट का मुख्य उद्देश्य राज्य को टेक्नोलॉजी हब बनाना और युवाओं के लिए कौशल विकास के नए अवसर प्रदान करना है। कार्यक्रम में देश भर के AI विशेषज्ञ, स्टार्टअप, डेवलपर्स और शोधकर्ता समेत हजारों की संख्या में छात्र शामिल हो रहे हैं। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक।

0: पर हमारे स्टेशंस लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा है कि ऊर्जावान कार्यकर्ता ही पार्टी की असली ताकत हैं। श्री नवीन ने प्रदेश भाजपा की ओर से पटना सिटी में आयोजित दो दिवसीय दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाभियान का उद्घाटन करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि पार्टी कार्यकर्ता पूरी निष्ठा और तन्मयता से कार्य कर रहे हैं, उन्हें ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रम से बेहतर दिशा निर्देश मिलते हैं। इस अवसर पर पटना साहिब के सांसद रविशंकर प्रसाद, प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी समेत पार्टी के कई वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता मौजूद थे। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी कल समापन सत्र में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि राज्य में अगले 5 वर्षों में 1,00,000 शिक्षकों की नियुक्ति होगी। इसके अंतर्गत हर साल कम से कम 20,000 शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। इसके लिए हर वर्ष जुलाई महीने में नियुक्ति संबंधी विज्ञापन जारी किया जाएगा। शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान श्री चौधरी ने शिक्षकों के स्थानांतरण के लिए नई नीति बनाने का भी निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि महिला शिक्षकों को गृह जिले के अपने प्रखंड की गृह पंचायत के बगल की पंचायत में स्थानांतरित किया जाएगा। वहीं पुरुष शिक्षकों का गृह जिले के गृह प्रखंड के बगल के प्रखंड में तबादला होगा। प्रदेश के विभिन्न भागों में मौसम का मिला जुला रूप देखने को मिल रहा है। राज्य के दक्षिणी भागों में भीषण गर्मी और लू की स्थिति बनी हुई है। वहीं उत्तर पूर्वी भागों में पश्चिमी विक्षोभ के कारण आंधी बारिश की परिस्थितियां बनी हैं। मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि अगले 24 घंटों के दौरान अररिया, कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज और सुपौल जिले के विभिन्न स्थानों पर आंधी बारिश और वज्रपात की आशंका है। वहीं पटना, गया, अरवल, औरंगाबाद, भभुआ, रोहतास समेत राज्य के दक्षिण मध्य और दक्षिण पश्चिम भागों में अनेक स्थानों पर प्रचंड गर्मी और लू की स्थिति बनी रहेगी। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। अब आप सुनेंगे उर्दू बुलेटिन।
2: आदाब, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप कसीम अहमद से इलाकाई खबरें सुनिए। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकारी नौकरियां शहरियों की ज़िंदगी को बेहतर और आसान बनाने का एक अहम ज़रिया हैं। जनाब मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए 19वें रोज़गार मेले का इफ्तिताह किया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मुल्क ने अपने कर्मयोगियों पर भरोसा ज़ाहिर किया है और अब ये उनकी ज़िम्मेदारी है कि वो अपनी लगन, तर्ज अमल और रोज़मर्रा के कामों से इस भरोसे का मान रखें और इसे मज़ीद मजबूत करें। जनाब मोदी ने कहा कि पूरी दुनिया भारत के तरक्याती सफ़र का हिस्सा बनने के लिए पुरजोश है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि भारत दुनिया के कई मुख्तलिफ ममालिक के साथ शराकत दारी भी कर रहा है, जिसका मकसद मुल्क के नौजवानों को मौक़े, रोज़गार और आलमी तजुर्बा फराहम करना है। उन्होंने कहा कि मुल्क अब पूरी दुनिया का एक काबिले एतमाद सप्लाई चेन पार्टनर बनता जा रहा है। रोज़गार मेले में हुकूमत के मुख्तलिफ महकमों, तंजीमों में नौमुंतखब 51,000 से भी ज़्यादा नौजवानों को तकर्री नामा तकसीम किए गए। ये रोज़गार मेला पूरे मुल्क में 47 मुख्तलिफ मकामात पर मुनक़िद किया गया था। वज़ीर-ए-आला सम्राट चौधरी ने 21 जून को होने वाले नीट UG के दोबारा इम्तहान के उम्मीदवारों के लिए सरकारी बसों में मुफ्त सफ़र की सहूलत फराहम करने का ऐलान किया है। जनाब चौधरी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इसका मकसद दूर दराज के इलाकों से आने वाले उम्मीदवारों को बग़ैर किसी माली और ज़हनी तनाव के वक्त पर इम्तहान मराकज़ तक पहुँचाना है। वज़ीर-ए-आला ने ज़िला इंतज़ामिया, रज़ाकाराना तंजीमों और मठ मंदिरों से भी अपील की है कि वो तलबा और उनके वालदैन के लिए पीने के पानी और सत्तू जैसे मशरूबात के इंतजामात में तावुन करें। वज़ीर-ए-आला सम्राट चौधरी आज पटना के ऊर्जा सभागार में मुनाकिद दो रोज़ा AI समिट का इफ्तिताह किया। जनाब चौधरी ने कहा कि हमारा अज़्म है कि यूथ एनर्जी स्टार्टअप और इख्तरा के ज़ोर पर बिहार डिजिटल इनकलाब के सफ़े अव्वल की रियासत बने। उन्होंने कहा कि AI पर मोहित तरक्की से तालीम, सेहत, ज़रात और नज़्म व नस्क को मज़ीद मौसर बनाया जाएगा। जनाब चौधरी ने कहा है कि इस समिट का ख़ास मकसद रियासत को टेक्नोलॉजी हब बनाने और नौजवान

के लिए फरोगे हुनर के नए मौके फराहम करना है। प्रोग्राम में मुल्क के AI माहिरीन, स्टार्टअप डेवलपर्स और रिसर्च स्कॉलर समेत हज़ारों की तादाद में तलबा शामिल हो रहे हैं। BJP के कौमी सदर नितिन नवीन ने कहा है कि तवानाई से भरपूर कारकुन ही पार्टी की असल ताकत हैं। जनाब नवीन ने बिहार BJP की जानिब से पटना सिटी में मुनक़दा दो रोज़ा दीनदयाल उपाध्याय तरसीलो तरबियती मुहिम का इफ्तिताह करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि पार्टी कारकुन पूरी लगन और तुंदही से काम कर रहे हैं और ऐसे तरबियती प्रोग्रामों से उन्हें बेहतर रहनुमाई मिलती है। इस मौके पर पटना साहब के रुकन पार्लियामेंट रविशंकर प्रसाद, रियासती सदर संजय सरोगी समेत पार्टी के कई सीनियर रहनुमा और कारकुनान मौजूद थे। वज़ीर-आला सम्राट चौधरी कल इख्तितामी सेशन में शिरकत करेंगे। वज़ीर-आला सम्राट चौधरी ने कहा है कि रियासत में आइंदा 5 वर्षों में 1 लाख असातज़ा की तकर्री होगी। इसके तहत हर साल कम से कम 20,000 असातज़ा की तकर्री की जाएगी। इसके लिए हर साल जुलाई के महीने में तकर्री से मुतालिक इश्तहार जारी किया जाएगा। महकमे तालीम की जायज़ा मीटिंग के दौरान जनाब चौधरी ने असातज़ा के तबादला के लिए नई पॉलिसी बनाने की भी हिदायत दी है। रियासत के मुख्तलिफ हिस्सों में मौसम का मिला जुला असर देखने को मिल रहा है। रियासत के जनूबी हिस्सों में शदीद गर्मी और झुलसा देने वाली लू की सूरत हाल बनी हुई है। वहीं शुमाल मशरक़ी हिस्सों में मगरबी डिस्टर्बेंस की वजह से आंधी और बारिश के हालात बने हुए हैं। महकमे मौसमियात ने अपनी पेशगोई में कहा है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान अररिया, कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज और सुपौल अज़ला के मुख्तलिफ मकामात पर आंधी, बारिश और आसमानी बिजली गिरने का खदशा है। दूसरी तरफ पटना, गया, अरवल, औरंगाबाद, भभुआ और रोहतास समेत रियासत के जनूबी वस्त और जनूबी मगरबी हिस्सों में कई मकामात पर शदीद गर्मी और लू की सूरत हाल बरकरार रहेगी। इसके साथ ही इलाकाई ख़बरों का ये बुलेटिन अब ख़त्म होता है।

बिहार पुलिस रेडियो बिहार पटना में सहायक अवर निरीक्षक तकनीकी के रिक्त पद पर प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर सीधी नियुक्ति हेतु विज्ञापन ऑनलाइन आवेदन। तिथि 21/5/2026, अंतिम तिथि 21/6/2026। विज्ञापन बिहार पुलिस रेडियो बिहार पटना के सहायक अवर निरीक्षक तकनीकी के पद पर अधिसूचना नियुक्तियों की संख्या निम्न प्रकार हैं। सहायक अवर निरीक्षक तकनीकी पद एक, रिक्तियों की संख्या है 22, वेतमान है लेवल 5। उपरोक्त पद पर नियुक्ति हेतु प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित की जाएगी। इसके लिए विज्ञापन संख्या 7/26 यहां जारी किया जा रहा है। उक्त पद पर चयन के लिए बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग द्वारा अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन प्राप्त किया जाएगा। एक अभ्यर्थी द्वारा मात्र एक ही ऑनलाइन आवेदन भरा जा सकता है। आवेदन के लिए पात्रता भारतीय नागरिक होना आवश्यक है। पुरुष, महिला एवं थर्ड जेंडर आवेदन कर सकते हैं। अभ्यर्थियों की शैक्षणिक योग्यता दिनांक 1/8/2025 तक किसी भी राज्य सरकार अथवा केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त पॉलिटेक्निक संस्था से इलेक्ट्रॉनिक्स एवं कम्युनिकेशन अथवा इलेक्ट्रॉनिक्स एवं टेली कम्युनिकेशन या सूचना प्रौद्योगिकी अथवा इलेक्ट्रॉनिक्स में से किसी एक विषय में 3 वर्षों की डिप्लोमा कोर्स में कम

से कम 50% अंकों के साथ उत्तीर्णता हो। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के सदस्य के लिए ये उत्तीर्णता 45% की होगी। आयु सीमा की गणना उम्र की सीमा की गणना दिनांक 1/8/2025 के आधार पर किया जाएगा। अभ्यर्थियों की उम्र दिनांक 1/8/2025 को मैट्रिक अथवा समकक्ष प्रमाण पत्र के अनुसार निम्नवत होगी। अभ्यर्थियों की शारीरिक ऊंचाई शारीरिक मापदंड ऊंचाई अनारक्षित पिछड़ा वर्ग में पुरुष उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम 165 सेंटीमीटर, अत्यंत पिछड़ा वर्ग अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जनजाति में पुरुष उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम 160 सेंटीमीटर, सभी वर्गों की महिला उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 155 सेंटीमीटर।

0: रेलवे भर्ती बोर्ड नीचे सहायक लोको पायलट लेवल 2 के पद के लिए पात्र उम्मीदवारों के आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि है 14/6/2026। सभी प्रकार के पूर्ण आवेदन केवल ऑनलाइन मोड rrbaapply.gov.in के माध्यम से जमा किया जाएगा। आवेदन शुरू होने की तारीख है 15/5/2026। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि है 14/6/2026। पद के नाम हैं सहायक लोको पायलट, वेतमान सातवें सीपीसी के अनुसार वेतमान स्तर 2, प्रारंभिक वेतन 19,900, पद अनुसार शैक्षणिक योग्यता एवं चिकित्सा मानदंड विस्तृत CIN के अनुसार होगी। अभ्यर्थियों की आयु 1/7/2026 को 18 से 30 वर्ष की होनी चाहिए। संबंधित रिक्तियां सभी RRB 1127। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे ऑनलाइन आवेदन भले ही भरने के दौरान आधार का उपयोग करके अपनी प्राथमिक विवरण को सत्यापित करें, ताकि गैर आधार सत्यापित आवेदनों के लिए भर्ती प्रक्रिया के हर चरण में विशेष विस्तृत जांच के कारण असुविधा और देरी से बचा जा सके। आधार का उपयोग करके सफल सत्यापन प्राप्त करने के लिए आधार में नाम और जन्मतिथि को 10वीं कक्षा का उत्तीर्ण प्रमाण पत्र में उपलब्ध पूरे नाम के साथ
1: नागरिकों के जीवन को बेहतर और आसान बनाने का महत्वपूर्ण माध्यम है। उन्होंने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 19वें रोजगार मेले को संबोधित करते हुए ये बातें कहीं। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश ने अपने कर्मचारियों पर भरोसा जताया है और अब ये उनकी जिम्मेदारी है कि वे अपनी लगन, आचरण और रोजमर्रा के कामों से उस भरोसे का मान रखें और उसे मजबूत करें। श्री मोदी ने कहा कि पूरी दुनिया भारत के विकास यात्रा का हिस्सा बनने के लिए उत्सुक है।
2: दुनिया भारत के युवाओं और भारत की टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस को लेकर बहुत उत्साहित है। आज दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनना चाहती है। भारत भी दुनिया के अलग अलग देशों के साथ पार्टनरशिप कर रहा है। इसका उद्देश्य यही है कि भारत के युवाओं को अवसर मिले, रोजगार मिले, उनका सामर्थ्य खिल उठे। साथ साथ मैं चाहता हूँ मेरे देश के नौजवानों को ग्लोबल एक्सपोजर भी मिले।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि हर भारतीय देश को विकसित भारत बनाने के संकल्प के साथ काम कर रहा है।
2: आज हर भारतीय एक बड़े संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। ये संकल्प 2047 तक विकसित भारत के निर्माण का संकल्प है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आज देश अलग अलग सेक्टर्स में निवेश कर रहा है और इस निवेश से देश के युवाओं के लिए रोजगार के लाखों नए अवसर बन रहे हैं, जिसे आज भारत में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग की पूरी

0: सप्लाई चेन तैयार की जा रही है।
1: श्री मोदी ने नवनियुक्त कर्मचारियों को आईगॉट कर्मयोगी प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करने के लिए भी प्रोत्साहित किया।
0: कर्मयोगी प्रारंभ जैसे मॉड्यूल से आपको अपनी जिम्मेदारियां समझने में बहुत सहूलियत होगी। मेरा आपसे आग्रह है इसका ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाएं। आज भारत का युवा दुनिया के हर क्षेत्र में अपनी पहचान बना रहा है। यही स्पिरिट, यही ऊर्जा पब्लिक सर्विस में भी दिखाई देनी चाहिए। विकसित भारत ऐसे ही युवाओं के प्रयास से बनेगा जो अपने काम को देश सेवा का माध्यम मानते हैं।
1: 19वें रोजगार मेले में सरकार के अलग अलग विभागों और संगठनों में नवनियुक्त 51,000 से भी ज्यादा युवाओं को आज नियुक्ति पत्र सौंपे गए। संसदीय कार्य सूचना तथा प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने कहा है कि सरकार 2047 तक विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए प्रतिबद्ध है। चेन्नई स्थित ICF में आयोजित रोजगार मेले को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश बुनियादी ढांचे, डिजिटलीकरण, रोजगार के अवसरों और व्यापार में सुगमता के क्षेत्र में तीव्र प्रगति कर रहा है। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा है कि रोजगार मेले के परिणाम स्वरूप पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से नियुक्तियों में वृद्धि हुई है। नई दिल्ली में 19वें रोजगार मेले में डॉ. सिंह ने कहा कि इस पहल ने समय सीमा का सख्ती से पालन किया है, जिससे युवाओं में आत्मविश्वास बढ़ा है और योग्यता आधारित चयन प्रक्रिया सुनिश्चित हुई है। उन्होंने मिशन कर्मयोगी प्रारंभ के विकल्प के बारे में भी बताया।
2: मिशन कर्मयोगी के अंतर्गत आई गॉट प्लेटफॉर्म पर अभी तक 1,64,00,000 उम्मीदवार रजिस्टर हो चुके हैं और 4,776 से अधिक कोर्सेज उपलब्ध हैं। आज भी आपके द्वारा नियुक्ति पत्र प्राप्त करते ही प्रत्येक उम्मीदवार को साथ ही साथ मिशन कर्मयोगी प्रारंभ का विकल्प भी प्रदान कर दिया जाएगा।
1: देशव्यापी रोजगार मेला कार्यक्रम के अंतर्गत आज पश्चिम बंगाल में 3 जगहों पर नए भर्ती हुए उम्मीदवारों को 185 नियुक्ति पत्र सौंपे गए। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने मुख्य अतिथि के तौर पर इसमें भाग लिया। केरला में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस तथा पर्यटन राज्य मंत्री सुरेश गोपी ने आज तिरुवनंतपुरम में रोजगार मेले का उद्घाटन किया। सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया रोजगार मेला केवल एक भर्ती अभियान से कहीं अधिक है और इसका उद्देश्य युवा शक्ति को राष्ट्र शक्ति में बदलना है। पंजाब में आज रेल कोच फैक्ट्री RCF कपूरथला और पटियाला लोकोमोटिव वर्क्स पटियाला सहित 2 स्थानों पर रोजगार मेला आयोजित किया गया। यहां 281 नए लाभार्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए गए। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप पुरी ने कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए कहा कि रोजगार मेला एक सशक्त राष्ट्रीय संस्था बन गया है जो पारदर्शिता और योग्यता आधारित समयबद्ध भर्ती सुनिश्चित करता है। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने घोषणा की है कि राज्य में अगले 5 वर्ष में 1,00,000 शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। शिक्षा विभाग की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे हर साल कम से कम 20,000 शिक्षकों की भर्ती सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि भर्ती प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए अब शिक्षकों की नियुक्ति के लिए अधिसूचना हर साल जुलाई महीने में जारी की जाएगी। बिहार सरकार ने 21 जून को नीट UG पुनः परीक्षा में शामिल होने वाले राज्य के सभी छात्रों के लिए सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा की घोषणा की है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सोशल मीडिया पर यह जानकारी दी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे newsonair ऐप पर भी उपलब्ध हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन कॉपी प्राप्त करने की अंतिम तिथि एक और दिन बढ़ाकर कल तक कर दी है। CBSE ने निर्णय वेबसाइट पर अत्यधिक आवेदन और तकनीकी व्यवधान के बाद लिया है, जिससे वेबसाइट बाधित हो रही थी। बोर्ड ने बताया कि विद्यार्थियों को उत्तर पुस्तिका की स्कैन कॉपी मिलने के बाद पुनर्मूल्यांकन का आवेदन करने के लिए 2 दिन का समय मिलेगा। CBSE ने उम्मीदवारों को सलाह दी है कि वे इस विस्तारित समय सीमा का सदुपयोग करें और प्रक्रिया को पूरा करें। आंध्र प्रदेश के श्री सत्यसाई जिले में आज राष्ट्रीय सीमा शुल्क अप्रत्यक्ष कर और नारकोटिक्स अकादमी में भारतीय राजस्व सेवा के 76वें बैच के अधिकारियों की पासिंग आउट परेड आयोजित की गई। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस अवसर पर श्री चौधरी ने कहा कि

0: सरकार ने युवाओं को लगभग 4 करोड़ रोजगार के अवसर सृजित किए हैं। उन्होंने कहा कि युवाओं को राष्ट्र के विकास में सक्रिय भागीदार बनना चाहिए। श्री चौधरी ने कहा कि भारत एक विकसित राष्ट्र के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत 2047 तक एक विकसित भारत के निर्माण के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है और एक विकसित आत्मनिर्भर तकनीकी रूप से उन्नत और विश्व स्तर पर सम्मानित राष्ट्र को बनते हुए हम सब देख रहे हैं।
0: राजस्थान के जयपुर, जोधपुर, अजमेर और बीकानेर में आज रोजगार मेले का आयोजन किया गया। यहां 1100 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे गए। जयपुर में आयोजित राज्य स्तरीय रोजगार मेले में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव शामिल हुए। इस अवसर पर श्री वैष्णव ने कहा कि सरकार पूरे देश में युवाओं को पारदर्शी और समयबद्ध रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है।
2: रेलवे में आज करीब करीब 1,60,778 भर्तियों पे काम चल रहा है। पहले 8-8, 10-10 साल में एक बार भर्ती निकलती थी या 4-4, 5-5 साल में एक बार भर्ती निकलती थी। कांग्रेस का वो युग था। मोदी जी ने जब जिम्मेदारी ली तो उस समय को कंप्रेस किया।
0: बॉम्बे उच्च न्यायालय ने महाराष्ट्र प्रशासन को जनगणना कार्य के लिए निजी गैर सहायता प्राप्त और अल्पसंख्यक विद्यालयों के लिए शिक्षकों को तैनात करने से रोक दिया है। न्यायमूर्ति गौतम अखंड और न्यायमूर्ति संदेश पाटिल की खंडपीठ ने पाया कि जनगणना अधिनियम और नियमों के अंतर्गत शिक्षकों पर जनगणना संबंधी कार्य करने का कोई दायित्व नहीं है। न्यायालय ने राज्य भर में 500 से अधिक विद्यालयों का प्रतिनिधित्व करने वाले विद्यालय संघों को अंतरिम राहत प्रदान की है। इंडियन ऑयल ने कहा है कि देश में पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति स्थिर है और ईंधन की कोई कमी नहीं है। इंडियन ऑयल ने एक बयान में कहा कि कुछ खुदरा दुकानों पर मांग आपूर्ति असंतुलन और चुनिंदा क्षेत्रों में मांग बढ़ने के कारण अस्थिरता की खबर है। ऐसे मामले देश भर में 42,000 से अधिक खुदरा दुकानों के इंडियन ऑयल के नेटवर्क में से कुछ खुदरा दुकानों तक ही सीमित हैं। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज वृद्धि हुई है। पिछले 10 दिन में तेल के मूल्यों में ये तीसरी बार वृद्धि हुई है। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 87 पैसे बढ़कर 99.51 रुपये प्रति लीटर हो गई है, जबकि डीजल का मूल्य 91 पैसे बढ़कर 92.49 रुपये प्रति लीटर हो गया है। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने आज सीएनजी की कीमत में 1 रुपये की वृद्धि की है। इस वृद्धि के बाद राजधानी में 1 किलोग्राम सीएनजी की नई दर 81.09 रुपये हो गई है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो आज दोपहर नई दिल्ली पहुंचे। वे मंगलवार को नई दिल्ली में होने वाली क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए 4 दिन की भारत यात्रा पर हैं। श्री रूबियो आज सेवा तीर्थ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। अमेरिकी विदेश मंत्री कल विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। उत्तरी चीन के शानकसी प्रांत में किनयुआन काउंटी में एक कोयला खदान में गैस विस्फोट के कारण मरने वालों की संख्या 82 हो गई है। ये गैस विस्फोट कल सुबह ल्यूशेनियो कोयला खदान में हुआ। बचाव कार्य जारी है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने व्यापक बचाव अभियान और घायलों के उपचार के निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने दुर्घटना के बाद की स्थिति से निपटने के लिए उचित कदम उठाने का आह्वान भी किया है। बांग्लादेश में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ बढ़ती हिंसक घटनाओं पर यूनिसेफ ने गहरी चिंता जताई है। सुरक्षा प्रणालियों को मजबूत करने और पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए तत्काल कदम उठाने का आह्वान किया गया है। कल जारी एक बयान में बांग्लादेश में यूनिसेफ के प्रतिनिधि राणा फ्लावर्स ने कहा कि संगठन उन स्थानों पर बच्चों के साथ दुष्कर्म और हत्या के हालिया मामलों से बेहद आहत और दुखी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कांगो में इबोला बुंजीबुगियो स्ट्रेन से उत्पन्न सार्वजनिक स्वास्थ्य खतरे को राष्ट्रीय स्तर पर उच्चतम कर दिया है। एक रिपोर्ट।
3: विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक ट्रेडोस अदनोम ग्रिबियासिस ने कहा है कि राष्ट्रीय स्तर पर यह खतरा बहुत उच्च, क्षेत्रीय स्तर पर उच्च और वैश्विक स्तर पर निम्न है। उन्होंने बताया कि इस संक्रमण के अब तक 82 मामले सामने आए हैं और 7 लोगों की मौत हो चुकी है। संगठन ने पहले इस प्रकोप को अंतर्राष्ट्रीय चिंता का सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया था। साथ ही ये स्पष्ट किया था कि ये महामारी के स्तर पर नहीं है। इबोला एक वायरल बीमारी है जो चमगादड़ों से फैलती है और संक्रमित व्यक्तियों या जानवरों के शरीर के तरल पदार्थ या दूषित वस्तुओं के सीधे संपर्क से फैलती है। दुर्लभ मामलों में हवा के माध्यम से भी ये बीमारी फैल सकती है। इसका ऊष्मायान काल 2 से 21 दिनों तक होता है, जिसके शुरू

0: शुरुआती लक्षणों में बुखार, थकान, मांसपेशियों में दर्द और गले में खराश शामिल है। समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन को उनके जन्मदिन पर शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री ने कहा कि श्री नवीन के नए विचार, जोशीले नेतृत्व और संगठन के काम तथा प्रशासन दोनों की गहरी समझ ने उन्हें हर जगह बहुत सम्मान दिलाया है। आईपीएल क्रिकेट में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। ये मैच लखनऊ के भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। कल रात सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 55 रन से हराया था। मौसम विभाग ने कल तक पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में भीषण लू की स्थिति का रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली का आज अधिकतम तापमान 41 से 43 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभिन्न सरकारी विभागों के 51,000 से अधिक चयनित कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र सौंपे। कहा, भारत युवाओं को अवसर, रोजगार और वैश्विक अनुभव प्रदान करने के लिए विश्व के विभिन्न देशों के साथ साझेदारी कर रहा है। बिहार सरकार अगले 5 वर्ष में राज्य में 1,00,000 शिक्षकों की भर्ती करेगी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं कक्षा बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन कॉपी प्राप्त करने की अंतिम तिथि 1 दिन और बढ़ाकर कल की। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबिया आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगे। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कांगो में इबोला के बुंजीबुग्यो स्ट्रेन से उत्पन्न स्वास्थ्य खतरे को उच्चतम किया। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है, मीडियम वेव 231.5 मीटर पर। हमारे दिल्ली केंद्र से प्रसारित दोपहर समाचार के बाद आइए आनंद लेते हैं फिल्म संगीत का।

किशोर कुमार की आवाज़ में फिल्म शर्मिली का ये गीत अभी आप सुन रहे थे। आइए अगला गीत आपको सुनवाते हैं फिल्म प्रिंस से लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में।

किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ में फिल्म अपना देश का ये गीत अभी आप सुन रहे थे। आइए अगला गीत सुनते हैं मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में लव इन टोक्यो फिल्म से।

कैसे बताऊं आचार्य जरा आ लहरा किया जरा आंखों से

आंखों से दिल में समा, आजा रे आ जरा आ, लहरा के आ जरा आ, आजा रे आ जरा, लहरा के आ जरा।

फिल्म जानवर का ये गीत अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। आइए अगला गीत आपको सुनवाते हैं किशोर कुमार की आवाज़ में फिल्म लहू के दो रंग से।

तो श्रोताओं, भी आप आनंद ले रहे थे फिल्म संगीत का हमारे आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से। आइए, अब समय हो रहा है प्रादेशिक संगीत के कार्यक्रम का, तो सुनते हैं अजय कड़कड़े के स्वर में मराठी गीत।

अभी आप सुन रहे थे प्रादेशिक संगीत का हमारा कार्यक्रम, मराठी गीत आप सुन रहे थे अजय कड़कड़ी की आवाज में। मीडियम वेव 231.5 मीटर पर ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। श्रोताओं, हमारे स्टूडियो की घड़ी में 3:20 हो रहे हैं। यही समाप्त होती है आज की हमारी पहली सभा। हम अपनी दूसरी सभा में शाम 5 बजे फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दें।

इस कार्यक्रम के आखिर में हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म अमर प्रेम का गीत, आवाज किशोर कुमार की। गीत को आनंद बख्शी ने लिखा है और तर्ज बनाई है राहुल देव बर्मन ने। इस गीत को सुनने के लिए आपने हमें खत लिखे। आप हैं बोडूसरा नेला से प्रमोद कुमार साहू, बीमा, वैभवी, विनोद, विभूति, अंशु, बबली, प्रियांशु साहू। और ये खत आया है खमहरिया बिलासपुर से साबित खान, धर्मेंद्र प्रजापति, सावित्री देवी और प्रदीप कुमार का। आइए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: किशोर कुमार की गाय फिल्म अमर प्रेम के इस गीत के साथ ही आज का मनचाहे गीत कार्यक्रम अब समाप्त होता है। इस कार्यक्रम से मंदाकिनी जोशी को दें इजाजत। नमस्कार।
1: मन चाहे गीत।
0: मन चाहे गीत।
1: मन चाहे गीत।

0: शांति कीजिए।
1: आप सब यथास्थान विराजें, कार्यवाही आरंभ की जाए।
2: जो आज्ञा महाराज।
0: महाराणा की जय। राणा हाड़ा जी का विशेष दूत एक संदेश लेकर आया है और दरबार में उपस्थित होने की आज्ञा चाहता है।
1: आने दिया जाए।
3: महाराणा की जय।
4: राणा हाड़ा जी ने ये पत्र आपकी सेवा में प्रेषित किया है।
1: मंत्री जी,
0: अन्नदाता,
1: पत्र का भावार्थ व्यक्त कीजिए।
0: अन्नदाता, राणा हाड़ा जी अपनी अतीत सुंदरी कन्या का विवाह हमारे वीर सामंत चूड़ावत से करना चाहते हैं। उन्होंने इसके लिए आपकी अनुमति मांगी है।
1: यदि चूड़ावत जी को यह प्रस्ताव स्वीकार है तो हमें क्या आपत्ति हो सकती है?
0: महाराज, यदि आज्ञा हो तो मैं इस विषय में कुछ निवेदन करूं।
1: आज्ञा है मंत्री जी, कहिए आप क्या कहना चाहते हैं।
0: महाराज, सरदार चूड़ावत हमारे वीर सेनापति हैं। राणा हाड़ा ने उन्हें अपनी सुंदरी कन्या के लिए मांगकर बुद्धिमता का परिचय दिया है। पर मेरी सम्मति में तो वीर चूड़ावत की जीवन संगनी कोई वीर कन्या ही हो सकती है, हाड़ी कुमारी नहीं।
1: महामंत्री जी, ये क्या कह रहे हैं आप? क्या हाड़ी कुमारी छत्राणी नहीं है? क्या उसकी रगों में पूर्वजों का रक्त प्रवाहित नहीं हो रहा?
0: महाराज,
1: हम आपकी शंका का कारण समझने में असमर्थ हैं।
0: महाराज, जहां तक मुझे ज्ञात है, हाड़ी कुमारी में वीरोचित गुणों का अभाव है। सामंत चूड़ावत का बचपन तो तलवारों की खनखनाहट में पला है और यौवन युद्ध क्षेत्र में पल्लवित हुआ है। कहीं ऐसा ना हो कि हमारे इस उगते हुए सूर्य को ग्रहण लग जाए। विद्वानों ने कहा भी है, भार्या रूपवती शत्रु, यूं भी नारी का रूप और यौवन पुरुष की सबसे बड़ी दुर्बलता है। जानबूझकर इस दुर्बलता को गले की माला बनाने की सलाह मैं नहीं दे सकता।
1: चूड़ावत जी,
5: महाराणा,
1: आपकी इस विषय में क्या सम्मति है? क्योंकि वीर राजपूत केवल अपने ही विचारों और अपने ही भुजबल के विश्वास पर आगे बढ़ता है, इसलिए निसंकोच आप अपने विचार व्यक्त कीजिए।
5: महाराणा, हाड़ी कुमारी के अद्भुत रूप और लावण्य की चर्चा सुनकर भी मैंने कभी भावुकता का आश्रय नहीं लिया। पर मैं इतना अवश्य कहूंगा कि रूपवती भार्या को चाहे शत्रु कहा जाए अथवा उसे पुरुष की दुर्बलता की संज्ञा दी जाए, पर इन सब के साथ साथ वो पुरुष के जीवन की एक महान प्रेरणा

0: का एक शक्ति भी है, वह शक्ति जिसके अभाव में शिव भी शव के समान हो जाता है। आज एक नारी के सौंदर्य ने मेरी वीरता और पुरुषत्व को चुनौती दी है। यदि महाराणा की आज्ञा हो तो स्वीकार कर लूं इस चुनौती को।
1: हम आपको ये चुनौती स्वीकार करने की अनुमति देते हैं। मलखान सिंह
2: जी महाराज,
1: राणा हाड़ा को यह शुभ संदेश दे दो कि हमें ये संबंध स्वीकार है। महामंत्री जी।
3: जी महाराणा।
1: सामन चूड़ावत के विवाह का आयोजन राजकीय सम्मान से अतिशीघ्र किया जाए।
3: जो आज्ञा महाराज।

0: भैया भाभी बहुत ही सुंदर हैं।
1: सच
0: सच भैया, देखोगी तो पागल हो जाओगी।
1: तनिक अपनी भाभी को हमें भी तो दिखा दो।
0: इतने उतावले क्यों हो रहे हो, थोड़ी देर और ठहर जाओ ना। और हाँ, मेरे मुंह दिखला मी।
1: ये लो।
0: कितनी अच्छी है ये माला।
1: अब बोल कहाँ है तेरी भाभी।
0: अरे तारा, कहाँ चली गई? सब भाभी को ही घेर कर बैठी हैं।
1: अच्छा,
0: कोई सुनता ही नहीं। तारा तारा
2: आई।
0: देख तारा, जरा भैया को ऊपर वाले कमरे का रास्ता दिखा देना, बेचारे थक गए हैं।
2: आइए सामन, ऊपर जाकर विश्राम कीजिए, और प्रतीक्षा भी।
1: प्रतीक्षा? प्रतीक्षा किसकी?
2: चंद्रोदय की। आज आपके शयन कक्ष में पूर्ण चंद्र का आगमन जो होने वाला है।
1: ओह, अब समझा, तुम बहुत नटखट हो।
0: आओ भाभी, इधर आओ, यहाँ बैठो। हाँ, ऐसे
3: यहाँ। यहाँ क्या करना होगा मुझे?
0: ये हमारी कुल देवी हैं, सौभाग्य और यश की देवी।
3: अच्छा,
0: नववधु इनसे आशीर्वाद प्राप्त कर ही पति के दर्शन कर सकती है। आज के दिन वधु जो कुछ इनसे मांगती है वो उसे अवश्य मिलता है।
3: अच्छा
0: भाभी, मांगो जो भी इच्छा हो।
3: मैं केवल यही मांगती हूँ कि मेरे पति पर कभी भी किसी भी प्रकार का कलंक न लगे, यश और सौभाग्य की वर्षा होती रहे उन पर।
0: धन्य हो भाभी, तुमने वही मांगा जो मांगना चाहिए था।
3: इसके सिवा और मैं मांग ही क्या सकती थी?
0: भाभी, तुम्हारे ये विचार तुम्हारी सुंदरता में चार चांद लगा देती हैं। और हाँ भाभी, अब रात अधिक हो रही है, हम सब तो आज रत जगा करेंगी। तुम ऊपर जाओ, आज तुम्हारी मधु यामिनी है ना?
3: ना ना, मैं भी तुम लोगों के साथ रत जगा करूंगी।
0: रत जगा तो करोगी ही, पर ऊपर, यहाँ नहीं। भाभी शर्माओ नहीं, ऊपर जाओ। नहीं जाती? अच्छा ठहरू, मैं भैया को बुलाती हूँ, तुम्हें गोद में उठा कर ले जाएंगे। हाँ,
3: अरे रे,
0: बुलाओ भैया।
3: मैं जाती हूँ।
0: तारा सुन जी, भैया ऊपर के कमरे में ही है ना?
2: जी हाँ, सामन तो वहाँ पहले से ही हाड़ी रानी की प्रतीक्षा में बैठे हैं।
0: बस अब खूब मजा आएगा।
3: कितना सुंदर कक्ष है ये। पलंग, गुलाब की पंखुड़ियाँ, फूलों के पर्दे, और ये तलवार अवश्य मेरे स्वामी की है, और वो चित्र किसका है? ओह स्वामी, प्रियतम, कितना तेजस्वी मुख है। आज मेरी चिर संचित अभिलाषा पूर्ण हुई, अब मैं तुम्हारी हूँ और तुम मेरे। जब तुम सामने आओगे तब तो शायद लज्जा के मारे में कुछ बोल भी।

0: をあげて。
1: おあ、いや、
0: ハーティエ、メニャーカプセトマリプティクシャカラーダプリグングッキスリエ、メネトトマリルーキーチェラクパルディキエヘデネヒバラ。アチャトメヒスチェンドムクバセンコングッグビバドロバダイデタウン。
1: お
0: エセ
1: ナ
0: アプティケदेख रहा हूँ रूप का सागर विधाता के हाथों खड़ी हुई सौंदर्य की प्रतिमा पवित्रता और कोमलता की प्रत्यक्ष देवी मीनाक्षी सुहाग बिंदिया और शशि मुख पर ये मोती की नत मानो साक्षात भगवती का ही पदार्पण हुआ है मेरे घर में मेरा अपनापन मेरा व्यक्तित्व

0: हुई सौंदर्य की प्रतिमा, पवित्रता और कोमलता की प्रत्यक्ष देवी मीनाक्षी, सुहाग बिंदिया और शशि मुख वही मोती की नथ, मानो साक्षात भगवती का ही पदार्पण हुआ है मेरे घर में। मेरा अपनापन, मेरा व्यक्तित्व जैसे तुम में विलीन होता जा रहा है। मैं नहीं हूं, मैं और तुम।
1: स्वामी, मेरे देवता,
0: सच
1: मैं तुम्हारी पुजारी।
2: सभी प्रजाजनों को सूचित किया जाता है,
0: तुम सच मुझे कितनी सुंदर हो।
2: नगर की राजकुमारी
0: चंद्रमुखी पागल चकोर,
2: अपनी विशाल सेना
0: जी चाहता है कि एक तक तुम्हें देखता ही रहूं।
2: नगर के राजा ने
1: स्वामी
2: हमारे महाराणा से
1: पागल पर
2: सहायता की
0: रानी,
1: और सुनिए
0: महाराणा
2: के
0: तुम कुछ कहती जाओ और मैं सुनता रहूं।
2: अनुसार
0: मेरी रानी, मैं तुम्हारे सौंदर्य सागर के यौवन रूपी भंवर में फंस गया हूं।
1: स्वामी,
0: कमल के कोमल संपुट में बंद भंवर की तरह हैरान हूँ, मुक्त हूँ।
1: सुना आपने?
0: इधर
1: स्वामी।
0: प्रिय,
1: छोड़िए, छोड़िए मेरा हाथ।
0: प्रिय, मुझसे क्या अपराध हो गया है जो तुम इतनी प्रसन्न हो और अचानक दूर खड़ी हो गई हो?
1: स्वामी, सुनिए नगाड़े की ध्वनि। राजपूत तो इसका मतलब अच्छी तरह समझते हैं, इसीलिए मैं पीछे हट गई।
0: ओह मेरी हाड़ी रानी, मेवाड़ भूमि वीरों से शून्य नहीं है, और फिर मेरे लिए तो राणा जी का विशेष दूत आएगा।
1: जानती हूँ, पर देश की आन पर मर मिटने वाले किसी की प्रतीक्षा नहीं किया करते।
0: प्रियतमे, मैं
1: प्रियतम,
0: मैं
1: मेरी प्रार्थना है कि आप किसी की प्रतीक्षा न करें और तुरंत अपने कर्तव्य का पालन करें।
0: प्रिय, जीवन में प्रेम का महत्व किसी भी वस्तु से कम नहीं, कम से कम इस मधु यामिनी को तो बीत जाने दो। विधाता भी कैसा क्रूर है, जीवन के इस मधुर हास्य में कठोरता का अट्ठास और संगीत की मधुर लहरी में यह भयानक चीत्कार जैसा क्षण मेरे ही भाग्य में था। तुम्हें जी भर कर निहार भी न सका, एक बार हृदय से लगा भी न सका। सेज पर सजी हुई गुलाब की पंखुड़ियां भी तुम्हारी प्रतीक्षा में मुरझा जाएंगी।
1: स्वामी, यह केवल आपका मोह और वासना है।
0: रानी,
1: प्रेम प्रेरणा देता है, मोह विचलित करता है।
0: रानी,
1: स्वामी विचलित हो रहे हैं क्योंकि मोह ने प्रेम को बंदी बना रखा है।
0: हाँ रानी, मैं विचलित हो रहा हूँ। मैंने अब तक यौवन के उद्दाम वेग को केवल तलवार की धार पर ही रोक रखा था, पर तुम्हारे रूप और यौवन ने उस वेग को इतना तीव्र कर दिया है कि उसे रोकना असंभव सा हो रहा है। अपने प्राणों को अब तक मैं बर्छों और भालों की नोक पर ही उछालता फिरता था, पर आज जैसी घुटन और उलझन कभी ना हुई थी। क्या करूं?
1: तो ठीक है स्वामी, आप चूड़ियां पहनकर यहां बैठिए और मैं सैनिक वेश में युद्ध भूमि में जाती हूँ।
0: रानी ठहरो,
1: आप इस पुष्पशैया पर बैठकर अपनी घुटन का उपचार करिए, मैं आपकी इस कायरता के पाप का प्रायश्चित करने जाती हूँ।
0: ठहरो रानी,
1: यह हर अंश की तलवार है जिसने हर संकट में हमारी रक्षा की है, मैं जाती हूँ।
0: रानी ठहरो।
1: नहीं
0: रानी, सुनो तो।
1: नहीं सामन, नहीं, मैं जीते जी अपने आप पर यह कलंक नहीं आने दूंगी कि जब सहस्त्रों युवक एक अबला की सतीत्व रक्षा के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा रहे थे, उस समय सामंत रंग महल में रंगरेलियां मना रहा था। रूप और यौवन की आंधी में सामंत की वीरता एक तिनके की भांति उड़ गई। अपनी प्रियतमा के केश पुष्पों की सुगंध में मधुर सामंत तलवारों की खनखनाहट से भयभीत हो गया। नहीं, नहीं सामंत, नहीं, मैं आप पर एक कलंक का नहीं सह।
0: रानी शांत हो और जरा यहाँ बैठो।
1: छोड़िए मुझे, मैं ये तलवार लेकर आलमगीर की सेना पर टूट पड़ूंगी। एक राजपूत बाला के लिए मैं अपने प्राणों की बलि दे दूंगी। कोई पूछेगा तो कह दूंगी कि सामंत की वीरता कायरता के बंदी खाने में बड़ी तड़प रही है।
0: नहीं नहीं नहीं, ठहरो रानी, तुम चली जाओगी तो मुझे विदा कौन करेगा?
1: तो फिर शीघ्रता कीजिए स्वामी,

0: विजयी हो और शीघ्र लौटे, यही मेरी शुभकामना है।
1: रण क्षेत्र में भी मैं तुम्हारी मनोहर छवि न भूल सकूंगा। तुम मेरी रग रग में समा गई हो। मैं तुम्हारे इस निर्दोष, अछूते और अतृप्त यौवन को देख रहा हूँ। सोचता हूँ यदि मैं जीवित न लौटा तो तुम्हारा ये रूप, यौवन।
0: ऐसा न कहिए प्रियतम, यदि कहीं कुछ अनहोनी हो गई तो ये दासी स्वर्ग में आपके स्वागत के लिए पहले ही उपस्थित हो जाएगी। आप ऐसे विचार हृदय से निकाल दीजिए और निश्चिंत होकर रणभूमि में जाइए।
1: अच्छा प्रिय, विदा। जय भवानी।
0: जय भवानी। विजय प्राप्त कर शीघ्र आइए, मैं विजय मान लिए आपकी प्रतीक्षा करूंगी। भवानी आपको यह शौर्य दे।

0: कितनी सुंदर है हाड़ी रानी, कितनी मस्ती और अल्हड़पन है उसके अंग संचालन में। पात्र में भरी हुई मदिरा के समान इठलाता हुआ उसका यौवन, जैसे मदिरा की मादकता को भी चुनौती दे रहा हो। एक बार गले से भी न लगा सका, क्या करती होगी इस समय? कदाचित गुलाब की पंखड़ियों से सजी सेज पर बड़ी तड़प रही होगी। अगर मैं जीवित न लौटा तो उसका ये यौवन रूप, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। किसी को भेजना ठीक होगा, कुछ निशानी भी मांग लाएगा। रण सिंह उपयुक्त है इस कार्य के लिए, उसी को भेजता हूं।
1: रण सिंह का प्रणाम स्वीकार हो रानी जी।
2: कहिए रण सिंह जी, क्या समाचार लाए हैं?
1: महारानी, सामंत बड़े विफल हैं। उन्होंने मुझे आपके पास कुछ सेनानी लाने भेजा है, साथ ही ये संदेश भी दिया है कि आवश्यकता पड़ने पर जौहर व्रत करने से आप ना हिचके।
2: ओ, अभी तक प्रियतम का मोह नहीं टूटा। एक क्षत्रानी अपनी मान मर्यादा की रक्षा करना अच्छी तरह से जानती है। लीजिए, ये मेरे पितृकुल की तलवार है। निशानी के रूप में उन्हें ये तलवार देकर कहिएगा कि दोनों वंशों की लाज अब उनके हाथ है।
1: जो आज्ञा।
2: तारा, आज 3 दिन हुए, युद्धस्थल का कोई समाचार नहीं मिला।
3: वह रानी जी, जब रणसिंह आते हैं तब आप क्रोधित हो उठती हैं, और जब युद्ध का कोई समाचार नहीं मिलता तब व्याकुल होकर रोने लगती हैं।
2: तारा, देख तो कोई आ रहा है।
3: रणसिंह जी आए हैं।
1: रानी जी, रणसिंह का प्रणाम स्वीकार हो।
2: रणसिंह, युद्ध भूमि का क्या समाचार है?
1: महारानी जी, युद्ध किसी भी समय आरंभ हो सकता है। सामंत ने मुझे अंतिम बार आपसे कुछ सेनानी मांग लाने को कहा है। उनका शरीर रणभूमि में है पर मन आपके ही पास मंडरा रहा है।
2: रणसिंह, एक अबला के सतीत्व को संकट में देखकर भी सामंत मेरे ही बारे में सोच रही है? इस हार जाम की पुतली के मोह में उनकी सारी एकाग्रता नष्ट हो रही है। उनकी इस मानसिक कायरता का कारण मैं हूं, पर मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, ऐसा नहीं होने दूंगी। मुझे कुछ करना होगा तो फिर यही ठीक है। रणसिंह, प्रतीक्षा करो, मैं आज तुम्हें अंतिम निशानी दूंगी। ऐसी निशानी जो कभी भी किसी भी पत्नी ने अपने पति को न दी होगी। विजय मार्ग।

0: जी, आपने मुझे बुलाया?
1: हाँ तारा, मेरी प्यारी सखी, तूने मेरी बहुत सेवा की है ना, आज अंतिम बार मैं तेरी सहायता चाहती हूँ।
0: ये क्या कर रही है?
1: तारा, इधर आ, मेरी मांग में सिंदूर भर दे, मेरे केशों को सुगंधित पुष्पों से सजा दे, पैरों में बिछिया पहना और मावर लगा। जल्दी कर तारा।
0: रानी जी मुझे छोड़कर मत जाओ।
1: पगली रोती है, क्षत्रानी होकर रोती है। शिखा ताकत, रण सिंह मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। ला ला सिंदूर ला। अरे तेरे हाथ कांप रहे हैं, ठीक से मांग तो भर दे। ऐसे दर्पण ला, दर्पण इधर ला। अरे वाह, मैं कितनी अच्छी लग रही हूँ। जब मेरा विवाह हुआ था तब सब कहते थे कि मैं बहुत सुंदर लग रही हूँ, पर आज मैं कैसी लग रही हूँ ये तो तू ही बता सकती है। बता बता ना। अरे फिर रोती है? ला ला तारा, मेरे विवाह का जोड़ा और मुझे पहना दे। सुन तारा, एक बार तूने ही कहा था ना कि सावन की विजय माल का सबसे सुंदर पुष्प मैं हूँ। हाँ, आज वही पुष्प बनने में जा रही हूँ। स्वामी के जोड़े करवोलत वक्ष पर ये मेरा शीश रूपी पुष्प खूब खिलेगा, खूब खिलेगा। बस अब बहुत विलंब हो रहा है तारा, जल्दी कर लगभग। ठहरिए रानी जी, मुझे आपके चरण स्पर्श तो कर लेने दीजिए। बस अब समय नहीं है तारा, अब समय नहीं है, मेरा भग्न शीश रण सिंह को दे देना। कहना रानी ने यह विजय मार समझ के लिए दी है। विजय मार।

0: तारा तुम रो क्यों रही हो?
1: रण सिंह जी लीजिए, हाड़ी रानी ने सामंत के लिए ये विजय माल भेजी है।
0: ये कैसी विजय माल है जो इस तरह थाली में ढांक कर लाई हो?
1: आप स्वयं देख ले और सामंत तक शीघ्र पहुंचा दे।
0: ये क्या, ये रानी के शीश की विजय माल? धन्य हाड़ी रानी, तुम्हारा ये बलिदान युग युग तक भारत के नरनारियों को प्रेरणा देता रहेगा। जाता हूं तारा।
2: अभी तक रण सिंह नहीं आया और इधर आलमगीर अपनी विशाल सेना के साथ आगे बढ़ा रहा है। उसे रोकने का कोई उपाय नहीं सूझता। हाड़ी रानी नस नस में बस गई है, क्या करूं?
0: सामंत, क्या मैं आपकी सेवा में उपस्थित हो सकता हूं?
2: आओ आओ रण सिंह, मैं बड़ी उत्सुकता से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था। कहो, हाड़ी रानी कुशल से तो है? मेरे लिए कुछ सेनानी दी उन्होंने?
0: हाँ सामंत, रानी जी ने आपके लिए ये विजय माल भेजी है।
2: अच्छा,
0: इसे गले में पहनकर आप झूम पड़ेंगे।
2: सच?
0: और जो भी इस अनोखी विजय माल को देखेगा वो अपने प्राणों की बाजी लगा देगा। इस विजय माल के साथ ही हाड़ी रानी ने एक निवेदन भी किया है।
2: वो क्या?
0: कि इस युद्ध में हम सब का एक ही नारा हो और एक ही लक्ष्य हो, विजय या

0: मृत्यु।
1: हमें सब स्वीकार है पर सेनानी तो दिखाओ।
2: आगे बढ़िए सामंत, और इस ढके हुए थाल को स्वयं खोलकर रानी की दी हुई इस निशानी से अपने वक्ष स्थल को सुशोभित कीजिए।
3: रणसिंह, रणसिंह जी क्या लाए हो? हमारी रानी का भंग ऋषि, ये क्या किया तुमने रणसिंह?
2: मैंने नहीं, आपने ही ये किया। रानी के मोह में अंधे होकर आपने मुझे बार बार सेनानी लाने को भेजा। रानी आपकी दुविधा को पहचान गई और आप पर कोई कलंक न लगे।
3: मैं समझ गया, जो कुछ हुआ उसके लिए मैं ही दोषी हूं। सचमुच मेरा पतन हो गया था, रानी ने मुझे बचा दिया।
1: हरी रानी तुम साक्षात भवानी थी, मैंने तुम्हें नहीं पहचाना। इन लहराते हुए सुंदर केशों की माला बनाकर मेरे गले में पहना दो रणसिंह। मेरी प्रियतमा का शीश मेरी छाती पर लटकने दो। मेरे मृत शरीर को रानी के साथ एक ही चिता पर रखकर भस्म कर देना। अब मेरी आंखों पर से मोह का आवरण हट गया है। भूखे सिंह की तरह हम अपने शत्रुओं पर टूट पड़ेंगे। साथियों आगे बढ़ो,
4: विजय हमारी है।
2: मुगल बादशाह की सेना उल्टे पैर भाग रही।
1: सच रणसिंह, हम विजयी हुए?
2: हाँ सामंत, सच। मुगल बादशाह भी कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा, शायद वो भी रणभूमि छोड़कर भाग निकला। सामंत,
3: शत्रु भाग गया। जय भवानी, हम विजयी हुए, हम विजयी हुए।
1: मैं चाहता हूँ मेरी प्रियतमा मेरी प्रतीक्षा में होगी।
2: मैं चाहता हूँ सामंत, आप कहाँ दौड़े जा रहे हैं? सामंत ठहरिए, ठहरिए सामंत।
3: रानी सुना तुमने, हम विजयी होकर आ गए, हम लौट कर आ गए। आओ हमारा स्वागत करो, टीका लगाओ, आरती उतारो, रानी शीघ्र आओ। तारा, ओ तारा
5: जी। सामंत,
3: रानी जी कहां है? उनसे कहो कि हम विजयी होकर आ गए हैं, विजय माल लेकर जल्दी आए।
5: सामंत, रानी जी की विजय माल तो आपके गले में पहले से ही सुशोभित है।
1: हाँ, रानी, मेरी हाड़ी रानी, मेरी विजय माल

विजय माल। अभी आपने रवि शर्मा लिखित ये नाटक सुना। प्रस्तुतकर्ता बी डी माथुर।

0: साउंड, लाइट, साउंड, कैमरा, एक्शन।
1: नमस्कार श्रोताओं, बॉम्बे टॉकीज में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं जाने माने अभिनेता देवेंद्र अहिरवार से एक मुलाकात। आपसे बातचीत की है यूनुस खान।
2: दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त यूनुस खान हूं और आज विविध भारती के स्टूडियो में एक युवा अभिनेता हमारे साथ मौजूद हैं, बल्कि ये कहना चाहिए कि युवा अभिनेता, लेखक, गायक और संगीतकार देवेंद्र अहिरवार। बहुत स्वागत देवेंद्र।
3: बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच।
2: देवेंद्र, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि आपकी जो पहचान बनी है वो 120 बहादुर से बनी है।
3: जी जी।
2: ये फिल्म आपको कैसे मिली थी?
3: ये फिल्म के पहले एक बहुत लंबी कहानी है। इस पहचान तो ऐसे नहीं है कि इस फिल्म से बनी है, क्योंकि मैं लगातार थिएटर कर रहा था। लगभग 15-20 सालों से मैंने काम किया है। मैं काफ़ी छोटा तब से काम कर रहा हूँ और एक ऐसे बोल सकते हैं कि एक बहुत एक बड़ी ऑडियंस को जानने का मौका मिला कि
2: Correct.
3: इस नाम का कोई बंदा है कुछ काम करता है। तो ये फिल्म मुझे जैसे सबको मिलती है, क्योंकि हम बाहर के लोग हैं तो ऑडिशन से ही मिलती है। सो मैं ऐसे म्यूजिक में हूँ, मेरा गाने का काम है, या मैं एक्टिंग करता हूँ या नाटक बनाता हूँ। तो कास्टिंग डायरेक्टर जो अनमोल आहूजा है, उनको मालूम था कि मैं गाना गाता हूँ। तो एक कैरेक्टर था, 120 बहादुर के लिए ऑडिशन हुआ कि एक गाना गाने वाला लड़का चाहिए। तो उन्होंने मुझे ऑडिशन लिया, पर वो उस कैरेक्टर के लिए मैं बाद में फिट नहीं बैठा, मेरा लुक नहीं जा रहा था और मेरा काम, मेरा ऑडिशन अच्छा हुआ था। तो उनको लगा कि इसको हम फिल्म में इस वाले कैरेक्टर के लिए नहीं रख सकते हैं। फिर उन्होंने मुझे एक दूसरे कैरेक्टर के लिए टेस्ट किया जिसका नाम था बैंगन। तो उस बैंगन कैरेक्टर के लिए फिर मैं फाइनल हुआ। और उसके बाद बहुत सारे लोगों ने, खासकर बुंदेलखंड के पूरे एरिया ने, मध्य प्रदेश के पूरे एरिया ने और पूरे देश के लोगों ने फिर बहुत ज़्यादा प्यार दिया और मैं उसके लिए बहुत बहुत शुक्र गुजार हूँ।
2: बिल्कुल, लेकिन आपकी यात्रा यहाँ से शुरू नहीं होती है। तो मुझे लगता है कि सीधे चलते हैं बुंदेलखंड की तरफ। आप कहाँ के रहने वाले हैं और आपका बचपन कैसा था और अपने माता पिता के बारे में बताइए।
3: जी जी। सो मैं मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड के छतरपुर डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ। मेरे गाँव का नाम है पहरा।
2: क्या बात।
3: सो मैं बहुत छोटा था तब मैंने एक रेडियो पे गाना सुना था कि जब जब प्यार पे पहरा हुआ है, इश्क और भी गहरा हुआ है। तो मैं काफी छोटा था और मैं सोचता था मेरे गांव का नाम फिल्मों में आता है। मेरे गांव के नाम पे गाने बने हुए हैं। हाँ। तो तभी मैंने सोचा था कि मैं बच्चे के दिमाग में एक आइडिया आया कि चलो मैं फिल्मों में जाऊंगा।
2: अरे,
3: मुझे पता नहीं था कि ऐसा होने वाला है, सच में ऐसा होने वाला है। तो एक ऐसी छोटी सी कहानी है। और मैं रेडियो लगातार सुनता था, विविध भारती लगातार सुनता था, छतरपुर आकाशवाणी मैं बहुत सुनता था, हेलो फरमाइश में सुनता था, रेडियो मेरे साथ ही रहता था, मेरा दोस्त हुआ करता था एक तरीके से, क्योंकि मेरे पापा भी गाना गाते थे तो उनको भी शौक था। देशर पटरिया के गाना, उर्मिला पांडे जी के गाने और भी बहुत सारे लोगों के गाने मैं सुनता था। तो ऐसा एक जीवन बीता। और मेरे घर के बाहर एक चबूतरा था, चबूतरे पे शाम को लोग अपने खेतों पे खाना खाने के पहले, डिनर करने के पहले वहाँ पे बैठते थे और फिर वो वहाँ पे कुछ गाने गाते थे 1-2 घंटे और फिर अपने खेतों पे जाते थे सोने के लिए कि जानवर उनके खेतों में ना घुस पाए। सो पूरा किसान परिवार, एक छोटी सी बस्ती मैं, आप समझ सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं। सो उन लोगों में मैं और मेरा भाई लखन भी, दो छोटे छोटे बच्चे हुआ करते थे जो बैठे थे और कई दफ़ा लोग हमसे इरिटेट भी होते थे कि बच्चे बहुत ज़्यादा बैठते हैं, पढ़ते नहीं पढ़ते नहीं हैं। तो फिर क्या हुआ कि मंडली ने सोचा कि इस मंडली को थोड़ा बड़ा करते हैं। तो उस समय ऐसा होता था कि कोई गलत करता था तो उससे वो लगाते थे, जुर्माने लगाते थे।
2: अच्छा अच्छा।
3: तो ऐसा करके होता, तो किसी ने कुछ गलत किया होगा तो उन्होंने कुछ पैसा दिए, 8-10 हज़ार रुपये उधर से आए। तो उन्होंने सोचा इस पैसे का क्या करें। हाँ। तो उन्होंने सोचा अब हारमोनियम ले लेते हैं।
2: अरे वाह वाह।
3: तो उन्होंने हारमोनियम ले लिया, पर हारमोनियम बजाना तो किसी को नहीं आता था, तो अब बड़ा असमंजस हो गया। तो रात को बैठते थे पर हारमोनियम रहता था, बजा तो कोई नहीं था। तो फिर वो हमारा घर

0: बगल में था तो हमारे घर में रखते थे वो हारमोनियम। तो मैं और मेरा भाई स्कूल से आके हम दो दो तीन तीन घंटे एक्सपेरिमेंट करते रहते थे। वो ढोलक बजाता था, मैं हारमोनियम बजाता था, और ऐसे बजाते बजाते बजाते बजाते सडनली थोड़ा थोड़ा गाने के आसपास में दिखने लग गया लोगों को कि गाने के आसपास से गाने के आसपास है, कोई भी गाना गाता है तो उसके आसपास ही बजा लेता है। तो ऐसे करके मैं उस पहला जो मेरा ग्रुप था, जो मेरा पहला परफॉर्मेंस था, वो गांव के जो फोक आर्टिस्ट हैं, जो मंडली है, जिनमें मेरे पिताजी
1: चबूतरे में हुआ,
0: चबूतरे पे ही मैंने उसको एकदम से ऐसे शुरू किया और फिर स्कूल में गाने गाने शुरू किए। सो मैं ये बोलूंगा कि मेरे पिताजी भी किसान है, मेरी माँ भी किसान है, और मैं बहुत ही प्राउडली ये कहना चाहता हूँ, मैं बहुत किसान परिवार से बिलोंग करता हूँ। जिस तरह से हम प्राउडली बोल पाते हैं ना कि हम फौजी खानदान से हैं, ऐसे जय जवान जय किसान वाले जो पूरी बात है, अगर हम उन साथ में बोले तो हम बहुत सारे लोगों को एक क्राइसिस रहता है कि बोलने में कि हम किसान परिवार से, तब मैं बोलना चाहता हूँ कि मैं किसान परिवार का एक लड़का हूँ।
1: कितने दूर है छतरपुर से ये गाँव?
0: छतरपुर से 24 किलोमीटर दूर है ये, बसारी पन्ना रोड पे पड़ता है, तो बसारी के आगे है पहरा।
1: ओके,
0: बहुत ही छोटा सा गाँव है सर। बहुत
1: कितनी क्लास तक वहाँ पढ़े आप?
0: मैं वहाँ पे पढ़ा 8वीं क्लास तक, उसके बाद मैं 12वीं तक पढ़ा बसारी में। बसारी में पढ़ते हुए एक फिल्म आई थी उस समय जिसका नाम था जीजा औरे, बुंदेली फिल्म थी। उसमें एक एक्टर थे हिमालय यादव जो उसी गांव के थे, तो वो लाइक वो बहुत पॉपुलर हो गए थे उस फिल्म से। उस फिल्म को बहुत प्यार मिला, हर घर में सीडी हुआ करती थी उस समय तक।
1: अरे वाह,
0: जीजा औरे की सीडी, झूमो नाचो गाओ रे, खुशियां मनाओ रे, पता नहीं आओ रे भैया जीजा औरे, ऐसा कुछ गाना था उसका, टाइटल सॉन्ग था उसका।
1: अच्छा, जब ये सब बातें हो रही हैं तो मुझे ये भी लग रहा है कि वो जो चबूतरे पर गाने होते थे उसमें से कोई गाना याद है?
0: उसपे ऐसे कुछ भी गम्मतें होती थी, गाने होते थे, लाइक फागे होती थी।
1: हाँ।
0: तो उसी तरह से कि कहाँ ले आए राजा पहाड़िया मेरे, कहाँ ले आए ये पहाड़िया के बड़े बड़े पत्थरा, ये पहाड़िया के बड़े बड़े पत्थरा, उपटा लगत उंगरिया मेरे कहाँ ले आए,
1: उपटा लगत उंगरिया, क्या बात है,
0: कहाँ ले आए राजा कुमारिया में,
1: मतलब बुंदेलखंड,
0: लाइक कोई लव मैरिज करके किसी को डिफिकल्ट शहर में ले जाए, ये गाना मतलब इनडायरेक्ट रूप से वैसा है। ये पहाड़िया को बड़ो बड़ो चारो, ये पहाड़िया को बड़ो बड़ो चारो, लंपा लगत चुनरिया मेरे कहाँ ले आए, कहाँ ले आए राजा पहाड़िया मेरे कहाँ ले आए। सो वही है, लाइक मैं किसी लड़की को प्रॉमिस करूं कि मैं तो बम्बई रहता हूं और फिर मैं वहां छोटे से कमरे में रख दूं, तो उसी सिचुएशन को एक अलग तरीके से कवि बुंदेली बुंदेलखंड के जो लोग हैं, जो लोग कवि हैं, लोग गायक हैं, वो कैसे उसको कैप्चर करते हैं और कैसे उसको करते हैं,
1: तो मजा आ गया मुझे,
0: बहुत ही मजा आया, मतलब बहुत मजा। तो यही था फिर बुंदेली, फिर जब बसारी में पढ़ता था, हिमालय भैया से मिलना हुआ, हिमालय यादव जी से मिलना हुआ, उस समय बसारी में एक फेस्टिवल होने लग गया था, उसका नाम था बुंदेली उत्सव। तो बुंदेली उत्सव बहुत बड़ा फेस्टिवल होता, फरवरी में लगभग एक महीना 21 दिन चलता था वो।
1: अच्छा।
0: और उस समय तो क्योंकि जो वो कराते थे शंकर प्रताप सिंह बुंदेला जी, मुन्ना राजा जी कराते थे उसको, तो पूरे एमपी के फोक आर्टिस्ट सेलिब्रिटी आते थे उधर। तो पहली बार मैंने एक नाटक किया उस ग्रुप में जुड़ के, हिमालय के ग्रुप में जुड़ के, और नाटक का नाम था ददुआ भाव दिल्ली में बर्बाद।
1: अरे
0: मैं 9th क्लास में पढ़ता था उस समय।
1: ठीक है।
0: उस नाटक में मैं रेल का डिब्बा बना था, हम छोटे छोटे डायलॉग हुआ करते थे हमारे, छोटे छोटे डायलॉग हुआ करते थे, लाइक
1: तो बुंदेली में था ये।
0: हाँ, बुंदेली में नाटक था। अब मुझे कोई भी डायलॉग याद नहीं है क्योंकि मैं एक तो पहला नाटक था मेरा।
1: हाँ।
0: तो उस ग्रुप से जुड़ गया और फिर मुझे बहुत मजा आया, और मैंने अभी आपसे बात भी किया, इस तरह का जो मुझे वो सर्कल में बैठते थे लोग, एक दूसरे की आंखों में बैठ सकते हैं, देख सकते हैं, एक दूसरे से सवाल पूछ सकते हैं, कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है, उस तरह का एक भाव मुझे लगता था। तो मुझे पता चला कि मैं शायद इस फील्ड में ही जाना चाहता हूँ। तो फिर ऐसे शुरू हुआ सर, मैं जल्दी से इसको वो कर लेता हूँ, कि खजुराहो में एक वर्कशॉप हुई। खजुराहो हमारे लिए बहुत बड़ी चीज़ हुआ करती थी, हमारे घर के पास ही है खजुराहो, 30 किलोमीटर दूर ही है। सो खजुराहो में एक वर्कशॉप हुई, राष्ट्रीय नाट विद्यालय NSD की एक वर्कशॉप थी, और उसको डायरेक्ट करने आए थे इश्तियाक आरिफ खान,
1: जो
0: कि काफी बड़े एक्टर
1: हैं, पन्ना के ही
0: हैं।
1: हाँ।
0: तो वो NSD से पास होने के बाद वो वर्कशॉप के लिए आए थे, हमको पूछा गया कि खजुराहो में वर्कशॉप हो रही है। तो खजुराहो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि भाई खजुराहो अंग्रेज आते हैं, गोरे, 5-star होटल, तो हमें उधर पहुंचना है कुछ भी करके। तो घर में बोला कि एक वर्कशॉप हो रही है, तो उन्होंने बोला क्या क्या चाहिए पड़ेगा, तो हमने बोला कि उन्होंने बोला 2-2 किलो चावल लेके चलना है, 1 किलो दाल लेके चल रही है, थोड़ा नमक लेके चलते हैं, हल्दी मिर्ची लेके चलनी है, क्योंकि वहाँ पे 1 महीने रहना है। तो शिल्प ग्राम में एक वर्कशॉप हो रही थी और उसमें हमने काम किया, और वो एक नाटक उन्होंने कराया इश्तियाक जी ने, इन्हें कहीं देखा है,
1: अरे
0: इन्हें कहीं देखा है। तो एक ऐसे कैरेक्टर जिनको

0: ने कहीं ना कहीं देखा है, उसका नाटक उन्होंने बनाया था और वो नाटक बहुत अच्छा बना और मैं बहुत इम्प्रेस हुआ कि इतने छोटे से हैं वो, क्यूट से हैं, और उन्होंने इतने 20-25 लोगों को, पूरे देश के लोगों को एक नाटक में पिरो दिया और इतना अच्छा काम निकल के आया।
1: इश्तियाक भाई की एक खासियत और है कि वो बहुत म्यूजिकल आदमी है।
0: हाँ, और म्यूजिकल प्ले था वो, और म्यूजिक में मेरा रुझान भी था, तो वो भी मेरे से काफ़ी खुश थे। तो फिर मैंने सोचा था कि मैं कुछ भी हो जाए, उनसे पूछा कि सर आपने, मैं मुझे ये करना है या मैं कहाँ सीखूँ, तो उन्होंने बोला था कि मैं NSD से पढ़ा हुआ हूँ, तुम भी NSD जाओ अगर तुम्हें करना है। तो फिर मैंने तब लिख लिया था डायरी में कि मुझे कुछ भी करके NSD पहुंचना है,
1: डायरी में लिख गया।
0: हाँ, तो मैं लिख लिया अब ये मुझे पहुंचना है NSD। तो फिर वहाँ
1: आगे की कहानी थोड़ा आगे सुनाएंगे।
0: जी जी,
1: यहाँ एक फिल्मी गाने की जगह बनाते हैं।
0: हाँ जी जी,
1: तो जिस दौर में हम हैं, जिस दौर में आप ये सब कर रहे थे कि आप वो बड़े गाँव में गए और उसके बाद खजुराहो हो गए, उस दौर का कोई गाना याद आता हो तो वो गाना यहाँ बजाया जाए।
0: एक फिल्म थी वो शोला और शबनम, गाना सुनता तू पागल प्रेमी आवारा, दिल तेरी मोहब्बत का मारा, तुझे पहचान लिया रे, अपना तुझे मान लिया रे। फिर म्यूजिक आता जो आप कह रहे थे ना, ओए ओए ओए ओए ओए ओए ओए ओए ओए ओए ओए,
1: क्या बात है।
0: तो ये कुछ गाने जो ऐसे उस समय के याद है मुझे,
1: बिल्कुल वो एक जहन में बसे होते हैं और ये उस दौर की याद लेके।
0: जी जी जी, हमने बहुत देखा है फिल्म को,
1: वाह
0: बहुत देखा है फिल्म को हम। मैं तो करण अर्जुन बहुत देखी, ये देखा, पता नहीं मिथुन की फिल्में देखी, टड़ी पार जैसी फिल्में देखी, जो भी CD पे जो भी मिलता था देखते थे, जो भी मिलता था देखते, वो हमारे लिए बेस्ट फिल्म होती थी।
1: वाह, ये गाना सुनते हैं।

देवेंद्र, आपसे बातें हो रही हैं और हम तकरीबन 90s के जमाने में हैं और ये वो दौर है जब आप एक नाटक करते हैं बुंदेलखंड फेस्टिवल में और फिर इश्तियाक आरिफ खान साहब से आपका परिचय होता है, जो तब तक NSD में हैं और तब तक बंबई आके उन्होंने अपने जलवे नहीं दिखाए और वो एक शिविर लगाते हैं और वहां से आपको एक राह दिखती है, एक लड़का जो पहरा गांव का है और जिसको बाहरी दुनिया से बहुत ज्यादा जिसका परिचय नहीं है, उसका परिचय इन सब चीजों से होता है और वो अपनी डायरी में लिख

0: लेता है कि मुझे कैसे भी करके
1: यहाँ पहुँचना है।
0: उसके आगे क्या होता है?
1: उसके आगे मैं फिर स्कूल के बाद कॉलेज में पहुंचता हूं, तो अब मुझे तो कोई लोग चाहिए कि भाई ये काम करने वाले लोग कहाँ हैं, अभी मुझे 3-4 साल और पढ़ना पड़ेगा है ना, तब जाके मैं वहां पे जाऊंगा। क्योंकि मैं वर्कशॉप के निकलने के बाद मैं दिल्ली आया घूमने के लिए कि मुझे पहले वो जगह देखनी है जहां मुझे पढ़ना है।
0: तो मंडी हाउस चले
1: मैं पहले किसी दोस्त के साथ जो किसी बस्ती में रहता था, मजदूर फैमिली का, मजदूरी करने जाते थे उनके पिता जी, तो मैं उस दोस्त के साथ दिल्ली आया और दिल्ली में ढूंढते ढांढते उस बच्चे के साथ में, और मैं खुद बच्चा हूँ अभी, मैं 9th-10th class में पढ़ता हूँ, और मैं NSD की तरफ बढ़ते बढ़ते मैं वहां पहुंचा। उसमें मेट्रो बन रही थी और मैंने पहली बार देखा कि वो ऐसी सीढ़ी जिसपे पैर रखते अपने आप ऊपर पहुंचा देती है। मेरे लिए बड़ा चमत्कार था। मैं घर जाके लोगों को बता रहा हूँ कि भाई ऐसी सीढ़ी बन चुकी है धरती पे कि आपको चढ़ना नहीं पड़ता, आप अपने आप ऊपर पहुंच जाओगे। और मैं ऐसे हो गया। फिर मैं NSD के गेट पे पहुंचा और मैं NSD मैंने देखा कि ये लिखा है राष्ट्रीय नारी विद्यालय, मतलब ये वो जगह है। और मैंने वहां से निकलते हुए लड़के लड़कियों को देखा और वो बहुत ही फ्रेंडली है, किसी ने किसी का हाथ पकड़ा हुआ है, कोई डायलॉग पहन रहा है, कोई कॉस्ट्यूम पहन के घूम रहा है। और मैं देखा कि भाई ये तो अलग दुनिया है, ये तो कमाल की दुनिया है। तो मैं गेट में घुसने को हुआ तो एक उस समय एक गार्ड हुआ करते थे, उनका नाम था धुरंधर जी, रिटायर्ड फौजी थे वो
0: जी।
1: तो मैं घुसने लगा, उन्होंने बोला क्या हुआ, मैंने बोला कि मेरे को यहाँ पढ़ना है। बोले कौन सी क्लास में पढ़ते हो? मैंने कि मैं 10th class में पढ़ता हूँ। तो कह रहे हैं यहाँ पे ग्रेजुएशन के बाद अप्लाई कर सकते हैं। तो मैंने कह रही अब तो मुझे बहुत पढ़ना पड़ेगा यार। तो मैंने बोला कि मैं यहाँ पे पढ़ूंगा। तो उन्होंने बोला कह रहे ऐसे बहुत लोग आते हैं बोलने के लिए, पहले अभी 10th class में पढ़ता है, अभी तू ग्रेजुएशन करेगा फिर तेरा मन बदल जाएगा, पता चला कुछ हो जाएगा, तू नौकरी लग जाएगी तो तू नहीं आएगा। मैंने कहा नहीं नहीं सर मैं आऊँगा। मैंने बोला कि मैं आऊँगा, मुझे आना ही है इधर। तो मेरे पास उस समय नोकिया 2626 फोन हुआ करता था।
0: हाँ, वो छोटा वाला
1: फोन। तो उसमें 1 मिनट की रिकॉर्डिंग होती थी।
0: हाँ।
1: तो मैंने उनसे बोला कि मुझे क्या क्या करके आना है,
0: बस रिकॉर्ड कर दो।
1: 1 मिनट ही मेरे पास में, इससे ज्यादा टाइम नहीं मेरे पास में।
0: हाँ।
1: तो उन्होंने मुझे बताया कि 6 नाटक चाहिए जिसमें तूने एक्टिंग की हो, बैकस्टेज किया हो, 3 बड़े डायरेक्टर्स के साथ काम किया होना चाहिए, जिनके लेटर्स लिखा होगे, जिनमें लिखा होगा कि वो तुमको जानते हैं, तुमने उनके साथ काम किया है और वो तुम्हारे उज्ज्वल भविष्य की कामना कर रहे हैं।
0: अरे गजब।
1: और तुम अनुशासित हो।
0: 1 मिनट में सब
1: बता दिया, ये करके आना पड़ेगा तब तुम फॉर्म डाल सकते हो, फॉर्म डाल सकते हो। तो फिर मैंने रिकॉर्डिंग लेके, मैं रोज सुनता था मुझे ये करना है। मैं वापस आया, मैंने अपनी पढ़ाई की, कॉलेज गया। फिर मैंने सोचा यार यहाँ पे कोई नाटक ही नहीं करता उस तरह से, तो मैं ही नाटक करूंगा।
0: तो कॉलेज में इस शहर में था,
1: ये छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में महाराजा कॉलेज, तो वहां पे मैंने एक ग्रुप बना दिया और छोटे मोटे नाटक करने लगा, यूथ फेस्टिवल में नाटक करने लगा। और पता चला कि छतरपुर में कोई इफ्टा नाम का एक संस्था है जो एक्टिव है, जो उस समय शिविन शुक्ला जी चला रहे थे, अभी भी वही संभालते हैं उसको। तो उनसे जुड़ गया, फिर उनने जो भी नाटक कराया उनमें नाटक करने लग गए, बकरी नाटक किया, सर्वेश्वर सक्सेना का नाटक किया, और भी नाटक जो भी वो कराते थे उससे जुड़ गए। और वो रिकॉर्डिंग सुनता रहता था कि ये तो करना ही, भाई अभी एक नाटक हुआ है, वो नाटक हुआ। फिर ये भी सोचता था कि जिस लेवल के हम नाटक कर रहे हैं, इस लेवल के नाटक के उसमें काउंट होंगे, कि हम तो कुछ भी कर देते हैं,
0: बिल्कुल
1: कोई स्क्रिप्ट नहीं है, कहीं बोल दिया ये इम्प्रोवाइज करके कर दिया, बुंदेली में कुछ भी बोल दिया कर दिया। तो फिर सोचा ग्रेजुएशन के दौरान कि भाई ऐसे चलेगा नहीं, भोपाल निकलना पड़ेगा।
0: अच्छा,
1: कुछ भी करके अब इस जगह से निकलना पड़ेगा। अब भोपाल जाने के लिए किसी से मिलना पड़ेगा, आपको कोई जानता हो? आपको कोई भी नहीं जानता सर, एक बंदा नहीं है जिससे थिएटर आया आर्ट फील्ड से जिससे भोपाल में किसी को जानता हो। तो एक उसी जो वर्कशॉप हुई थी इश्ताक जी वाली, उसमें एक असिस्टेंट डायरेक्टर थे हरीश भैया, हरीश विश्वकर्मा उनका नाम था, उन्होंने एक नंबर दिया कि हेमंत देवलेकर नाम के एक बंदे हैं, हेमंत भाई
0: बिल्कुल
1: आप जानते होंगे, बहुत बड़े कवि हैं,
0: बिल्कुल बिल्कुल, विहान ग्रुप,
1: हाँ विहान ग्रुप अभी वो चलाते हैं, कि एक मेंबर हैं वो, और उनका नंबर दिया उन्होंने और उन्होंने बोला कि ये तुम्हारी हेल्प कर सकते हैं क्योंकि यही सज्जन पुरुष हैं। तो मैंने उनको फोन किया, मैंने उनको फोन करता था, वो मैं पागल कर देता भैया मुझे यहाँ से निकलना है, प्लीज मुझे निकलना है। फिर उन्होंने बोला कि ठीक है तुम आ जाओ, और मैं एक डायरेक्टर है अलख नंदन सिन्हा जी, मैं अलख दादा से उनसे मिलवा दूंगा, पर वो तुम्हें रखेंगे नहीं रखेंगे उसकी कोई गारंटी नहीं है। तो फिर मैंने एक समय ग्रेजुएशन करने के तुरंत बाद मैं MA के लिए मैंने अप्लाई किया था, और मैं भोपाल की बस में बैठ गया रात को, शादियों का सीजन था, बहुत बहुत ढोल बज रहे थे, बस निकल नहीं पा रही थी शहर से, और मैं बस में बैठा हूँ और मेरे घुटने कांप रहे हैं, और मैं सोच रहा हूँ कि मैं एक बंदे का नंबर जान है सिर्फ मेरा, उसकी शक्ल भी नहीं देखी और वो किस तरह के होंगे, किस तरह का व्यवहार होगा उनको, और मैं उस शहर में किसी को जानता नहीं हूँ, और मैं वैसे ही जा रहा हूँ, मेरे घुटने कांप रहे हैं, और बारात की वजह से बस धीरे धीरे चल रही है, मैं सोच रहा हूँ कहीं ये भगवान का संकेत तो नहीं है कि अभी मौका उतर ले, है ना। और मैं फिर बस से नहीं उतरा और मैं पहुंच गया उधर 5 बजे मॉर्निंग में, और मैं 5 बजे से उनको फोन कर रहा हूँ, अभी 5 बजे कोई कोई फोन उठाएगा?
0: बिल्कुल।
1: वो तो उठे, जब उठे 10 बजे उन्होंने मुझे कॉल किया, उन्होंने बोला कि वो रोशनपुरा चौराहे पे 12 बजे मिलेंगे। मैंने कहा 12 बजे तक मैं क्या करूँगा, मैं जाके कहीं, मैंने कुछ पोहा हुआ खाया, नाश्ता वास्ता किया, और मैं डिवाइडर पे खड़ा हुआ 2 घंटे के लिए। मैंने कहा, मैं उनको बोल दिया कि मैं बीच डिवाइडर पे खड़ा रहूंगा भैया, ऐसा ना हो कि मेरा फोन बंद हो जाए या आपका फोन कुछ बंद हो जाए, मैं रिस्क नहीं ले सकता। तो मैं डिवाइडर पे खड़ा रहा, और फिर एक बंदा
0: रोशनपुरा चौराहे,
1: हाँ, एक बंदा

0: शरीफ सा बंदा एक हाथ में झोला लेके एक बंदा मेरे पास आए और मैं वो उनको देखा मैंने कि मेरे को भगवान आ गए मेरे लिए ये मेरे को रास्ता दिलाएंगे ये पहला इंसान है जो मुझे कहीं पहुंचाएगा और वो मुझे मिले मैंने उनको देखा मैं बहुत इमोशनल हूँ मैंने उनके पैर छूए उन्होंने बोले कि पैर वैर नहीं छूते मैंने कि बोले हमारे यहाँ तो बड़े बड़ों के पैर छूते हैं उन्होंने बोले नहीं नहीं पैर नहीं छूते क्योंकि लोग अजीब के होते हैं तो उन्होंने मुझे समझाया और कट्टू फिर वो मुझे एक डायरेक्टर के घर में ले गए अलग दादा के घर में और हम बैठे हुए हैं और एक घंटा हो गया
1: पहले हेमंत आया
0: हेमंत दादा आए पहले और अच्छा। उन्होंने बोला कि मेरा तो कोई ग्रुप नहीं है भाई मैं किसी ग्रुप में काम करता हूँ मैं डायरेक्टर को मिलवा दूंगा और क्योंकि वो उनका ग्रुप का नाम नटबुंदी ले और तुम बुंदेलखंड से हो तो हो सकता है तुम्हें रख ले और तुमने बोला तुम गाने गाना गाते हो तो हो सकता है तुम्हें म्यूजिक बंदों को रख ले और मैं अतरंगी था सर बेल बॉटम पैंट पहना हुआ है लाल पीली कलर की शर्ट पहनी हुई है बाल मेरे तेरे नाम जैसे हैं बड़े बड़े मैंने बाल रखे हुए थे तो मैं वहां पहुंचा लगता कि उधर रहते थे प्रोफेसर कॉलोनी में तो उनके घर के बाहर हम बैठे हुए हैं एक घंटा हो गया दो घंटा हो गया बैठे बैठे पानी आया चाय आई हम पी के बैठे हुए हैं और मैं पूछूं कि क्या हुआ तो बोले कि दादा कुछ पढ़ रहे हैं और मैं सोचूं कि ऐसी क्या पढ़ाई है कि लोग घर में आके बैठे हैं बंदा पढ़ ही रहा है आ ही नहीं रहा है फिर मुझे पता चला कि लोग इतने डिसिप्लिन होते हैं कि अपना पूरा काम करके आएंगे वो उन्हें बैठना है तो बैठो फिर अलग दादा एक आए अंदर से एक बूढ़ा सा आदमी आया और उन्होंने मुझे देखा उन्होंने बोला कि कौन है ये उन्होंने बोला किसको लेके आ गए कौन है मेरी शक्ल देख के अरे मैंने कहा सर मैं देवेंद्र हिरवार और मैंने बहुत नाटक किए हैं छतरपुर में मेरा बहुत नाम है मेरे कॉलेज में पूरे लोग जानते हैं आपके ग्रुप को मैं बहुत बढ़िया कर दूंगा सर मैं बहुत कॉन्फिडेंस था मेरे को ये ताकत लगा रहा था क्योंकि मैं डरा हुआ भी था तो मुझे और ताकत लगा मरता हुआ आदमी और हाथ पे चलाता है तो मैं हाथ पे चला रहा था उन्होंने बोला भाई इससे हो ही नहीं पाएगा उनको देखे इसको भगाओ इससे हो नहीं पाएगा तो मैंने बोला सर ये ऑप्शन ही नहीं है मैं जा ही नहीं सकता मुझे कहीं जाना है और मैं उसके लिए आया हूँ मैं जा ही नहीं सकता लौट नहीं सकता मैं तो फिर उन्होंने मेरी जिद देखी उन्होंने बोला कि यार ये लड़का पता नहीं उन्होंने बोला कि देखो ऐसे लड़के जो घर से पैसे मांगते हैं उनको हम अपने ग्रुप में रखते नहीं है और हम अपने ग्रुप में तुरंत जुड़े हुए नए बंदे को पैसे देते भी नहीं है तो तुम क्या करोगे मैं सर कुछ भी करूंगा मैं आप मुझे बोलो मैं कुछ भी करूंगा आपकी रिहर्सल से साफ कर दूंगा आपको कुछ भी कर दूंगा मैं तो उन्होंने बोला कि ठीक है तो हम तुमको रहने के लिए बस व्यवस्था कर सकते हैं आपको बाकी चीजें आप खुद से देखनी पड़ेंगी तो जिस रिपेटरी कंपनी में उनका सामान रहता था हाथा एक जगह थी शामला हिल्स पे उसमें मैं हेमंत देवलेकर भैया और एक और जितेंद्र भाई एक थे जो कि पत्रकार थे वो रहते थे तो ये लोगों के साथ रहना हुआ मेरा पहली बार और ये पढ़ने लिखने वाले लोग थे भोपाल के साहित्य के लोग आते थे उस कमरे में वहां पे एक छोटी सी लाइब्रेरी भी थी और उनके साथ रहना कविताएं सुनना हेमंत भैया को सुनना और फिर मैं हिम्मत करके मैंने बोला कि भैया एक बार मैंने बोला कि मैं भी लिखता हूँ तो उन्होंने बोला कि अच्छा अच्छा तो एक महफिल थी मैंने हिम्मत करके बोल दिया उन्होंने बोला कि क्या क्या लिखा तो तुम चाहो तो पढ़ सकते हो देवेंद्र क्योंकि बहुत ही प्यारे काइंड थे और मुझे लगा कि सच में वो मेरे लिए भगवान जैसे ही हैं अभी भी मुझे बहुत प्यार करते हैं तो मैंने एक बुंदेली कविता लिखी थी जो कि मेरी एक तरीके से पहली कविता थी और मैंने उनको फिर सुनाई उस महफिल में सुनाई पहली बार मैं इधर सुना दूं आपको
1: जरूर
0: तो कविता बुंदेली में ही है कि दद्दा मोखा मेला जाने आज ते 5 रुपया दे दे गड़गड़िया है लाने दद्दा मोखा मेला जाने ऊंचे ऊंचे गड़े हिड़ोरा बिचरी खूब बराई और मेला में मिल जे है दद्दा मोखा मम्मा माई वो पुत्रा और पुतनिया हल्के कक्का से लिबवाने आज ते 5 रुपया दे दे गड़गड़िया है लाने दद्दा मोखा मेला जाने घूमत घूमत जो दद्दा मोखा मौसी मिल जे है कैया लेके बड़े प्यार से हल्के मुन्ना के है मोखा अपने मौसिया से गुब्बारो लिबवाने
1: वाह वाह
0: मोखा अपने मौसिया से गुब्बारो लिबवाने आज ते 5 रुपया दे दे गड़गड़िया है लाने दद्दा मोखा मेला जाने
1: क्या बात है
0: हरिया बूठा गिद्दा फद्दा बन के गए जे गुंडा ये उसके दोस्त हैं हरिया बूठा गिद्दा फद्दा बन के गए जे गुंडा जिनके संगे बड़ी रहान में खेलो गिल्ली डंडा जो मेलाना जा पाहो उनखा आके तिनगाने
1: वाह वाह
0: आज ते 5 रुपया दे दे गड़गड़िया है लाने दद्दा मोखा मेला जाने
1: वाह वाह
0: आखिरी बंद है कि दद्दा धीरे से मुस्काए ढीले दोई बेला और नए तंगड़िया बंठन के गए दोई घूमबे मेला फिर मेला में फिर दद्दा ने गड़गड़िया लेवाई और कंधे पे बैठा के पूरो मेला दो घुमाई कहते हैं देवेंद्र जे बचपन हमें भूल नहीं पाने और आज ते 5 रुपया दे दे गड़गड़िया हिलाने दद्दा मोखा मेला जाने
1: कहते हैं देवेंद्र
0: उस समय ये बुंदेलखंड की कभी गानों में कभी जो राइटर होता था उसका नाम छाप बोलते थे उसे छाप है तो छाप लगा के ही मैंने पहली कविता लिखी थी मेरी बुंदेली कविता थी और वहां से ही मेरा साहित्य के बारे में शेक्सपियर पढ़ना शुरू किया ब्रेक्ट पढ़ना शुरू किया चेखव पढ़ना शुरू किया मोहन राकेश पढ़ना शुरू किया गिरीश कर्नाड पढ़ना शुरू किया विजय तेंदुलकर पढ़ना शुरू किया बादल सरकार पढ़ना तो वो साहित्य से जुड़ना शुरू हुआ
1: उस समय खर्च निकालने के लिए क्या करते थे आप
0: खर्च तो मेरा कुछ था ही नहीं मैं तो आटा तो मैं घर से ले गया

0: और 10 रुपए का 5 रुपए का नमकीन का एक पैकेट आता है, भुजिया बोले ली और रोटी बना के, और रोटी में घी लगा के, घी और ये दोनों चीजें घर से ले गया था और रोल बना के उसमें नमकीन डाल देता और उसको ऐसे खाता था। खर्च कुछ था ही नहीं,
1: बस वहां खाना हो गया,
0: खाना हो गया। और वहां से रिहर्सल के लिए वॉक करता था, तो वॉक करके वहां पे जाता था, रिहर्सल करता था, टाइम से पहले पहुंचता था, तो रिहर्सल स्पेस साफ करता था। ये ड्यूटी थी मेरी, रिहर्सल फिर साफ करना है, चटाइयाँ बिछानी है, डायरेक्टर की कुर्सी लगानी है, पानी की बोतलें भरनी है। तो मैं और मेरे दो दोस्त और थे, एक दर्शित जो अभी कास्टिंग करता है कास्टिंग में, और एक मेरा दोस्त था सिद्धार्थ पांडे जो कि मेरा पहला दोस्त बना, कि उस तरह से भोपाल का पहला बेस्ट फ्रेंड मेरा बना। और हम तीन लोग जाते थे, हम पहले पहुंचते थे, हम सब कुछ काम करते थे, डायरेक्टर आते थे बैठते थे, बड़े बड़े लोग एक्टिंग करते थे ग्रुप में, और मैं देखता था भाई ये तो बहुत अच्छे पढ़ते हैं। मेरी भाषा का बहुत खराब था, एक नाटक कर रहे थे तांबे के कीड़े और दादा मुझे, और मेरी भाषा बहुत खराब थी, तो उसमें थे एक पत्ती एक पत्थर एक शब्द, ऐसे कुछ डायलॉग हुआ करते थे। वो भुवनेश्वर का नाटक था, एब्स्ट्रैक्ट नाटक था, और पहला नाटक ही मुझे वो करने को मिला। मैं कुछ ऐसे अजीब से नाटक करने के बाद अचानक से एक एब्स्ट्रैक्ट नाटक करने लग गया, तो मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा हो गया। तो उसमें एक डायलॉग था, ले लो कांच के बीच, तो मैं बोलता ले लो कांच के बीच, तो बोलते ले लो नहीं, मुझे सिखाते थे ले लो नहीं ले लो, और मैं बोलता था ले लो, और मैं बोलता था कि मैं वही तो बोलता हूँ, और मुझे इस बात पे गाली मिलती थी। और वो बोलते थे तुम बुंदेली फोड़ रहे हो, तो यार मैं समझ नहीं आता, मैं वही तो बोलता हूँ। फिर मेरे दोस्त मुझे समझाते थे, मुझे पता चला कि मेरे वो भाषा पे कितना काम करना पड़ेगा। सर मुझे अच्छे से याद है कि वो दादा के साथ काम करते करते ड्रामा स्कूल खुला भोपाल में, एक एमपी स्कूल ऑफ ड्रामा, और मुझे पता चला कि भाई यहाँ पे तो मैं पैसे मैं कमा नहीं सकता और ग्रुप में पैसे मिलते नहीं, तो मुझे अब इस इंस्टीट्यूट में जाना पड़ेगा जहाँ पे साल में इतने सारे लोग आएंगे नाटक कराने के लिए, वो खुला ही था। तो मैंने फिर एमपी स्कूल ड्रामा के लिए एग्ज़ाम दिया, पहला राउंड में मेरा सिलेक्शन हुआ, इंटरव्यू में मेरा सिलेक्शन हुआ, फिर वर्कशॉप में मैं गया, फिर वर्कशॉप में का एक माहौल। सो भोपाल में मैंने देखा कि एक नाटक कर रहे थे कि मैं कैसे मैंने म्यूजिक बनाना समझा, मैंने सीखा तो किसी नहीं है, मैंने हारमोनियम सीख लिया था, पर म्यूजिक बनाना मैंने कैसे समझा, कि एक नाटक कर रहे थे हम लोअर डेप्थ, त्रिपुराई शर्मा मैम जो कि हम उनको डायरेक्ट करने आई थी, जो कि हमारे बीच में नहीं है, पर मैम का बहुत बड़ा योगदान है मेरे को सब चीज़ों के लिए, काफ़ी एनर्जी में भी जाने ले जाने में उनका बहुत योगदान है। तो मैम का नाटक था और हम उसको कर रहे थे, और संजय उपाध्याय सर जो कि बहुत बड़ा नाम है म्यूजिक इंडस्ट्री में और थिएटर की इंडस्ट्री में बहुत बड़ा नाम है, SNA अवार्ड ही हैं वो, और मेरे गुरु हैं, मैं उनको बहुत प्यार से उनसे सीखा है मैंने। तो एक नाटक कर रहे थे, तो उस नाटक में हम उज्जैन में, हमारी वर्कशॉप लगी हुई थी और उज्जैन में हम एक महीने के लिए वहाँ पे थे, तो सर ऐसे मेरे सामने ही गाने बना रहे थे। हारमोनियम बजाना मुझे आता था पर मैंने गाने नहीं बनाए थे, तो उन्होंने गाना बनाया मेरे सामने ही, और वो गाना मुझे ही गाना था तो मेरे सामने बना रहे थे, क्योंकि मैम पूछती थी कि संजय क्या हुआ, तो बताते थे मैम हम कर रहे हैं। तो एक गाना उन्होंने बनाया, एक कविता थी, दिखती है आस क्यों पाक पसारे, सही में है मन क्यों क्यों रूठे किनारे। तो उन्होंने इस गाने को कंपोज किया। सर देखिए छोटी सी बात है पर उन्होंने मेरे सामने कंपोज किया और मैं ऐसे इंस्पायर हो, इनलाइट हो गया, मुझे लगा कि भाई ये काम तो मैं भी कर सकता हूँ। तो गाना ऐसा कुछ था।

0: क्यों रूठे किनारे। तो ये गाना मुझे लगा कि भाई ये तो इतना बढ़िया काम है। तो फिर मैं आया उधर से वर्कशॉप के बाद, मैंने कुछ दिनों में कुछ 4-5 गाने बनाने की कोशिश की और लिखने
1: क्या
0: भी शुरू
1: बात
0: किए,
1: है,
0: क्योंकि मैं पढ़ता था भावे में, लाइब्रेरी में पढ़ता था, बहुत सारे कवियों को मैंने पढ़ा हुआ था। तो मैंने कुछ कुछ गाने लिखने शुरू किए,
1: कंपोज करना शुरू किया या लिखना शुरू
0: लिखने
1: किया?
0: भी लिखना लिखता तो मैं कविताएं था ही, पर मैंने कंपोज किए फिर 4-5 गाने। और फिर मैंने भोपाल में आके स्कूल के बाद मैंने बोला सर से कि सर मैं एक 5-6 गानों का, 7-8 मिनट का, एक 15-20 मिनट का एक शो करना चाहता हूँ। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, पर ये ऐसी परंपरा बनाओ कि हर सैटरडे को कोई एक बंदा परफॉर्म करेगा। तो मैंने कहा हाँ, तो सर उसकी शुरुआत मैं ही करता हूँ अगले।
1: रुको, यहां एक गाने की जगह बनाते हैं क्योंकि बहुत दिलचस्प दास्तान है। एक गाना सुनते हैं, उसके बाद ये दास्तान सुनेंगे। तो बताओ यहां कौन सा गाना होना चाहिए देवेंद्र?
0: ओ साथी रे,
1: क्या बात है,
0: ओमकारा का
1: ओमकारा का गाना
0: ओमकारा
1: है।
0: गाना है,
1: बहुत
0: बहुत ही
1: शानदार
0: सुंदर
1: गाना
0: गाना है, बहुत
1: बहुत
0: सुंदर
1: शानदार
0: गाना
1: गाना
0: है।
1: है।

0: ये गाना हमने ओंकारा फिल्म का सुना देवेंद्र, आप बता रहे थे कि हर शनिवार को ये परंपरा शुरू करो कि कोई परफॉर्म करेगा,
1: हाँ,
0: तो इसके आगे क्या हुआ?
1: तो मैंने कुछ गाने बनाए और मैंने परफॉर्म किया, तो वो गाने परफॉर्म करने के बाद कुछ बुंदेली गाने थे, कुछ ऐसे कुछ गाने थे, और वहाँ पे अगले नाटक को डायरेक्ट करने के लिए एक डायरेक्टर आए हुए थे, उनका नाम था वीके शर्मा। तो वीके सर ने मेरे को देखा परफॉर्म करते हुए, तो उन्होंने कुछ नहीं सोचा, उन्होंने मेरे शो के बाद बोला कि अगला मेरा जो शो होने वाला है उसका म्यूजिक तुम करोगे। तो वो मेरा पहला नाटक था जिसके लिए मैंने म्यूजिक बनाया था।

उस नाटक का नाम था अपना अपना भाग। हाँ, अपना अपना भाग का मैंने पहला गाना है वो ऐसा कुछ गाना था, एक सुना देता हूँ ऐसे करके। सुबह का भोला जीरो का दिल हीरो बन के लौटा है, सुबह का भूला जीरो का दिल हीरो बन के लौटा है, फिर से जन्म हुआ है उसका फिर से मिला एक मौका है, फिर से जन्म हुआ है उसका फिर से मिला एक मौका है, मेहनत करके भाग्य जगा ले तुझको किसने रोका है, सुबह का भूला जीरो का दिल हीरो बन के लौटा है। तो एक

0: है मेहनत करके भाग्य जगा ले, तुझको किसने रोका है, सुबह का भोला जीरो कादिर हीरो बन के लौटा है। तो एक फेलियर आदमी की कहानी थी कि वो फेल हो गया था, फिर वो कैसे हीरो बन के लौट के आया है, उसके ऊपर हमने ये नाटक, और ये पहला नाटक था जिसके लिए मैंने म्यूजिक बनाया था, उसके बाद तो ये लंबा सिलसिला है और फिर
1: म्यूजिक का सिलसिला चल
0: चालू हो गया। फिर उसके बाद मैं पास आउट हुआ और फिर वीके सर ने बोल दिया कि भाई तू पास आउट होके दिल्ली आ जाना, मेरे ग्रुप में काम करना।
1: अच्छा,
0: तो एक ब्रिज में लिया कि मुझे दिल्ली जाने का मौका मिल गया, क्योंकि मुझे दिल्ली ही पहुंचना है
1: डेस्टिनेशन। वो बोर्ड और
0: वो तो छूटे नहीं है, वो रिकॉर्डिंग तो छूटी नहीं है।
1: हाँ।
0: वो तो मैं मुझे जाने थे स्कूल, उधर हुआ नहीं है। जिस समय मैंने एमपी स्कूल ड्रामा के लिए ऑडिशन किया था, उस समय मैंने एनएसडी का भी ऑडिशन किया था, पर एमपी स्कूल ड्रामा मेरा हो गया और देने गया इंटरव्यू, तो उन्होंने बोला कि भोपाल में खुद एक ड्रामा स्कूल खुला है, भोपाल में काम करते हो तो भोपाल में आपने नहीं दिया। मैंने बोला मैंने दिया था, तो उन्होंने क्या हुआ, मैंने कि हो गया, तो उन्होंने बोला पहले वहां पढ़ के आओ।
1: अरे
0: मैंने कहा अरे यार, तो फिर मुझे पढ़ने का वहां पे मौका मिला और फिर मैं जुलाई में पास आउट हुआ था। 4 अगस्त 2012 को मैं दिल्ली आ गया था वीके सर के ग्रुप में काम करने के लिए, और फिर मेरे को 14 में मेरा सिलेक्शन हुआ।
1: ओके।
0: और तो उसके बाद मैंने दिल्ली में लगातार काम किया, दिल्ली में काम किया,
1: 14 में एनएसडी में सिलेक्शन
0: हो गया
1: और वहीं वो
0: धुरंधर जी से मिलना हुआ मेरा।
1: मिले धुरंधर,
0: धुरंधर जी उस समय तक थे, धुरंधर जी पर वो मुझे भूल चुके थे तब तक।
1: हाँ हाँ।
0: मैंने बोला आपको याद है एक बच्चा आया था, आपने मुझे बोला था कि तेरा नहीं हो पाएगा, ऐसे मनगढ़ंत कहानी सुना रहे तो वो प्यार करते थे, वो थोड़ा सीनियर जैसे थे ना, जैसे बुजुर्ग कैसे होते हैं, तो ऐसे थे वो, क्योंकि वो ऐसा कल्चरल ग्रुप है, एक्टिविटी है, तो वहाँ पे गार्ड गार्ड की तरह ट्रीट नहीं किया जाता जैसे दुनिया में होता है
1: जी।
0: तो वो ऐसे होता है कि अरे आप दादा हो, मतलब प्यार मिलता है, परिवार के सदस्य हैं, सीनियर सदस्य हो आप, तो उस तरह से। तो धुरंधर जी से काफी लंबा समय तक उनसे प्यार रहा और फिर वो रिटायर्ड हो गए, तो अब मिलना कम होता है, पर मैं दुआ करता हूँ जहाँ भी हूँ, बहुत ही अच्छे थे वो।
1: एनएसडी ने आपकी दुनिया को कितना बदला?
0: सो एनएसडी में भी मैं एक्टिंग करने गया था, मैंने एक्टिंग करनी थी मुझे, और मुझे शौक था एक्टिंग करने का, और मैंने पहला एक बड़ा नाटक मैं लीड रोल किया। उसके पहले तो क्योंकि मेरी भाषा बहुत खराब थी, एमपी स्कूल ड्रामा में मैं नाटकों में रोल करता था, एक नाटक में 6 रोल करता था, और मेरे डायलॉग किसके कैसे होते थे, छोटे छोटे रोल होते थे, बंदूक किसके पास है, मैं बोलता राजगुरु के पास, मैं डायलॉग खत्म, मेरा रोल भी खत्म, मेरा रोल भी खत्म, मेरी भाषा इतनी खराब थी।
1: अच्छा,
0: क्योंकि
1: लेकिन ये फिर भाषा पर काम कैसे किया? ये हाँ, बहुत
0: मैं बता रहा हूँ कि मैं ये कविता पढ़ते पढ़ते मैंने पहली बार शामिल बोलना शुरू किया था, शामिल बोलना शुरू किया पहले, क्योंकि मैं शामिल बोलता था, शेक्सपियर बोलता था।
1: हाँ।
0: तो लोग हंसते थे।
1: हाँ।
0: तो मुझे लगा कि अरे यार ये तो मैं बहुत बड़ा मसला है।
1: हाँ हाँ।
0: तो मैंने भाषा पे काम किया, दोस्तों ने मुझे हेल्प की। हाँ। मुझे लगातार टोका, मुझे समझाया, और फिर मैं कॉन्शियस हो गया उसको लेके।
1: हाँ हाँ हाँ।
0: मैं उसको लेके कॉन्शियस हो गया कि भाई अच्छा अच्छा मैं गलत बोलता था,
1: शक को सा बोल रहे हो,
0: हमेशा ही बोलता था। तो पहली बार मैंने ये कविता जो राजेश जोशी की बहुत पॉपुलर कविता है, बाद में मैंने उसको कंपोज भी किया।
1: हाँ।
0: जो हमारे बैंड का मंडी हाउस द बैंड, हमारा जो बैंड है उसमें गाना है ना।
1: हाँ।
0: जो इस पागलपन में शामिल नहीं होंगे मारे जाएंगे।
1: हाँ।
0: तो शामिल मैंने पहली बार शब्द बोला था जिसमें मैंने सा को सही बोला था।
1: हाँ।
0: शामिल बोला था, मेरे दोस्त चौंक गए थे कि भाई बोल दिया, यही तो बोल रहा था, इतने दिन से तुमसे यही तो बोलवाना चाह रहे थे हम।
1: ओके ओके।
0: तो ये पहली बार ऐसे भाषा पे काम किया, और जब मैं पहली बार इसमें एनएसजी आया और मैंने बहुत बड़ा रोल किया लोअर डेप नाटक में, दोबारा हुआ एनएसजी में, और उसमें मैंने साचिन का रोल किया और डायरेक्ट कर रहे थे अनुरुद्ध खुटवर सर, और मेरा बड़ा नाम हुआ उस नाटक से, क्योंकि फर्स्ट ईयर में कोई लड़का आया और 2-2.5 घंटे के नाटक में 1.5-2 घंटे कम से कम स्टेज पे और लगातार बोलना है, और कैरेक्टर बहुत डिफिकल्ट, कुछ भी चीज मैं नहीं करता था सब उसको करना है, मैनरिज्म पकड़ने की कोशिश की, और लंबे अंतराल के बाद वो नाटक बहुत अच्छा हुआ। पर जैसे ही मैं सेकेंड ईयर में गया, और उस समय मुझे समझ में आया कि यार मैं जहाँ से बिलोंग करता हूँ, जिस कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ, जिन लोगों से मैं बिलोंग करता हूँ, अगर मैं एक्टिंग मैंने ले ली तो उनकी कहानियाँ कौन कहेगा। तो फिर मैंने वहाँ से अपना रुझान बदला और मैंने डिज़ाइन एंड डायरेक्शन में अपने आप को कोर्स लिया सेकेंड ईयर से, आप स्पेशलाइजेशन करते हो तो वो लिया, और फिर मैं उस तरफ आ गया, और फिर मैंने अपनी कहानियाँ लिखनी शुरू की, अपनी बात लिखनी शुरू की, जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ उस ज़मीन की सच्चाई को लिखना शुरू किया, सोसाइटी के पे क्वेश्चन करना शुरू किया। तो फिर मुझे ऐसे लगा कि मैंने ठीक किया, क्योंकि मैं अभी भी एक्टिंग तो मैं कर ही लेता हूँ, मेरे को लोग प्यार करते हैं, और मेरे को पता ही है कि मैं डायरेक्शन के हिसाब से जो मैं डायरेक्ट करता हूँ, क्योंकि मुझे इतना प्रेशर नहीं रहता क्योंकि मैं डायरेक्ट करता हूँ, तो मैं एक्टिंग भी बहुत सरल तरीके से करता हूँ, लोग मेरी एक्टिंग की तारीफ भी कर देते इस बहाने कि भाई तुम लोड नहीं लेते,
1: बिल्कुल
0: तुम्हारी एफर्टलेस दिखती है। तो ऐसे करके शुरू हुआ पूरा पूरा।
1: तो फिर दिल्ली में कौन से बड़े नाटक इस दौर की बात की है?
0: अभी दिल्ली पहुंचा उस दौर के बड़े नाटक हुए थे, विरासत एक नाटक किया था अनुराधा कपूर मैम ने, बहुत बड़ा लेवल पे वो नाटक किया था जिसका बहुत नाम हुआ। उस समय बंसी दादा भी नाटक करते थे,
1: बंसी कॉल
0: जी भी नाटक करते थे, एनएसडी में भी

0: के साथ मैंने एक नाटक किया जिसका नाम था खेल मंडी खेल, उसका म्यूजिक मैंने बनाया।
1: मुखौटा।
0: हाँ, तो वो मूवमेंट थिएटर करते थे, लार्ज लाइव थिएटर करते थे, और वो फार्स कॉमेडी करते थे, वो कन्विक्शन के साथ कराते थे, वो बहुत बढ़िया काम था। तो उनके साथ भी काम करने का, त्रिपुराई शर्मा जी का नाम उस समय बहुत था, और बहुत उनके साथ नाटक किए हम लोगों ने, और बहुत नाटक देखे उनके, और बाहर भी दिल्ली के जो ग्रुप्स थे उनके साथ भी काफ़ी नाटक देखे। एक नाटक देखा था मैंने, वाटर स्टेशन, जो कि साउथ का नाटक था, और उस समय भारंगम होते थे, तो भारंगम से भी बहुत सारे नाटक आते थे, दुनिया के सारे नाटक, बहुत सारे नाटक उस समय
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: देखे हमने। अभिलाष पिल्लई सर के नाटक देखे थे हमने, और बहुत अलग अलग तरीके के, बहुत इंटरनेशनल लोगों से मिलना हुआ, पूरे देश के अलग अलग जगह के लोगों के, अलग अलग भाषाओं के लोगों से मिलना हुआ, और पावरफुल लड़कियों से मिलना हुआ जो कि अपनी बात बहुत स्ट्रांगली कह पाती हैं, और जो सोसाइटी में स्ट्रांगली अपनी प्रेजेंस को प्रूव करती हैं, और वो दिखाती हैं कि वो किसी से कम नहीं है, इंटेलेक्चुअली और क्रिएटिवली भी वो किसी से कम नहीं है। तो उन टीचर्स से ज़्यादा हम बैचमेट्स से सीखते हैं।
1: तो वहाँ से फिर मुंबई कैसे आना हुआ?
0: मैं पास आउट हुआ 17 में, और फिर मेरे पास एक कॉल आया बहुत बड़े डायरेक्टर का, क्योंकि मैंने उस समय मेरा डिप्लोमा हुआ था, डिरेल मैंने किया था, वो नाटक उस साल का बहुत बड़ा नाटक बन गया, और वो थिएटर ओलंपिक हुआ उसकी क्लोजिंग में हुआ, वो इतना बड़ा नाटक था, उसके 1000 लोग देखते थे, और वो मैंने ही लिखा था, डायरेक्ट किया था, डिज़ाइन किया था, और MP छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पे वो मैंने बनाया एक नाटक, कि वहाँ से एक रेल की पटरी निकलती है और वहाँ पे एक गार्ड रहता है, और वहाँ पे एक फाटक है, और उस बंदे ने किसी बंदे को किडनैप कर रखा है, उसकी कहानी थी पूरा, ऐसे ओपन स्पेस में करता था मैं। तो उस नाटक में एक गाना था, तो वो गाना और उसके काफ़ी गाने ऐसे पॉपुलर हुए, वो मैंने रिकॉर्ड किया, तो दोस्तों ने मुझसे मांगे थे, मैंने दे दिए किसी को, तो कुछ पत्रकार दोस्तों को भी दे दिया, उन्होंने गाना किसी डायरेक्टर को सुना दिया, काफी बड़े डायरेक्टर थे, उनका नाम नहीं लूंगा क्योंकि मैंने उनके साथ फिर काम नहीं हो पाया, और उन्होंने मुझे कॉल किया कि तू बम्बई आ जा और मैं हम काम करेंगे। वो बहुत बड़ा नाम था वो डायरेक्टर का, और मैं ऐसे चमक गया। रात का टाइम था, 12 बजे के आसपास NSG से पास आउट होने के पहले की बात है, कुछ दिन बचे हैं, 15 दिन बचे हैं, और मेरे पास एक कॉल आता है, कुत्ते भौंक रहे हैं, हेली रोड पे मैं चल रहा हूँ मेरे दोस्तों के साथ में, और एक कॉल आया, उन्होंने बोला कि मैं फलाना बोल रहा हूँ, मैंने बोला कि मैं सर मैं समझा नहीं हूँ, उन्होंने बोला फलाना बोल रहा हूँ, सर वे कुत्तों की बहुत भौंकने की आवाज़ म्यूट हो गई है, मेरे दोस्त आगे निकल चुके हैं, आगे निकल चुके हैं, और मैं वहीं खड़ा हुआ हूँ, कुत्ते मेरे आसपास पहुँच रहे हैं, मैं सुनाई देना बंद हो गया मुझे, मैंने कहा अरे हाँ सर, अरे सर मैं तो मर जाऊंगा सर, क्या हो गया सर, मैं आप बोल रहे हो क्या? हाँ हाँ मैं बोल रहा हूँ, मैं ही बोल रहा हूँ, तो आ जाना मुंबई और अपन मिलते हैं, कुछ काम करते हैं। फिर मैं आया मुंबई, उनसे मिलना हुआ, पर वो काम नहीं बन पाया, अभी तक मैंने उनके साथ काम नहीं किया, पर उम्मीद है कि कभी ना कभी काम करेंगे। पर फिर ऐसे में मुंबई आ गया,
1: और यहाँ से फिर मुंबई में काम का सिलसिला शुरू हुआ।
0: हाँ, मुंबई में काम का सिलसिला तो सर ऐसे शुरू होता कि 3 महीने तो मैं समंदर पे जाके बैठा, क्योंकि पहली बार समंदर देखा था और पता ही नहीं रहता था जाना किधर है, पर ये बताता कि वहाँ हर हाल में पहुंचना है, जहाँ जाने का ख्वाब देखा है, तो उसी तरफ बढ़ने की कोशिश करते थे, निकलते थे। फिर एक नाटक बना लिया, क्योंकि कोई काम नहीं देगा तो क्या करोगे, फिर मैंने एक नाटक बना लिया कांजी हाउस, जो मैंने ही लिखा था, और वो भी उसी बुंदेलखंड पृष्ठभूमि पे, वो शुरू ऐसे होता था, एक आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है।
1: अच्छा।
0: हाँ, वो क्योंकि रेडियो का बंदा था, तो रेडियो पे कोई न्यूज चल रही है, और आज शाम को 4-7 बजे उसका मैंने अनाउंसमेंट ऐसे बनाया था, इतने बजे नाटक होने वाला है जिस इस पृष्ठभूमि पे है, ऐसे करके उसमें ये अभिनेता काम कर रहे हैं, ये उसमें इस तरह के गाने, इस तरह का म्यूजिक है। तो कांजी हाउस में उसको बहुत प्यार मिला, मैंने उसके 25 शो किए, और वो फिर कोविड लग गया, हम पृथ्वी करने ही वाले थे, कोविड लग गया, फिर वो पूरा का पूरा बंद हो गया नाटक। फिर अभी बहुत समय बाद मैंने एक बड़ा नाटक, मतलब कम लोगों के साथ में एक बड़ा नाटक बनाने की, बड़ी बात के साथ बनाने की कोशिश की है, जिसका नाम है बहुत जोर से प्यार लगा है, जो अभी लगातार हो रहा है।
1: और उसका एक गाना सुनाओ यार,
0: उसका टाइटल सॉन्ग सुना दूंगा मैं आपको।
1: बिल्कुल
0: सुनाता हूँ मैं आपको, उसका एक गाना है जो टाइटल सॉन्ग है। मैं एक इसकी छोटी सी अभी बात आ देता हूँ कि एक छोटा सा सेंटेंस जिस उम्र में मैं पढ़ता हूँ, छोटी उम्र में, लाइक मैं अगर 13-14 साल का हूँ, 12-13 साल का हूँ, उस समय कोई एक कोई इंसान, ऐसा इंसान जिसके होने से आप चमकते हो, जिसके होने से आपको खुशी होती है, जिसके बगल से गुजरने से आपको कोई आपका क्रश है, और वो कोई एक ऐसी बात कह दे, एक सेंटेंस ऐसा बोल दे, उस सेंटेंस का असर कितना समय रहता है, और वो सेंटेंस आपकी पूरी दुनिया कैसे बदल सकता है, वो एक सेंटेंस की कहानी है ये, एक तरीके से। अगर वो नहीं होता तो ये लड़के की जो जिंदगी है, जो गुड्डू नाम का जो कैरेक्टर है, उसकी जिंदगी कुछ और ही होती, उस घटना ने उसकी जिंदगी बदल के रख दी, बदल दी, उस पर एक कहानी है। हर किसी की जिंदगी में ऐसा होता है, एक संवाद कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है, भाषा में कितना पावर है, और अगर वो मीन करके, अगर वो सच में इंटेंसिटी के साथ बोला गया सेंटेंस है, संवाद है, तो वो क्या बदल सकता है, वो तबाही ला सकता है। तो वो कहानी है। अब ये गाना तो थोड़ा कमर्शियल गाना है, क्योंकि हमारा नाटक भी कमर्शियल है, पर बात वही है कि वो फोक से शुरू होके ऐसे

0: इंडस्ट्रियल की तरफ बढ़ता है, क्योंकि वो कैरेक्टर भी ऐसे छोटे गांव से निकल के कहां कहां पहुंचता है उसकी कहानी है। सो गाना है, अब कंट्रोल नहीं होता, अब बर्दाश्त के बाहर है, इसको कोई रोक सके, किसमें इतना पावर है, सीने के इस पार से लेके सीने के उस पार लगा है, बहुत जोर से प्यार लगा है,
1: क्या बात है,
0: पै पै पै, बहुत जोर से प्यार लगा है, पै पै पै पै पै, बहुत जोर से प्यार लगा है, सीधे लड़के के हाथों में इनलीगल हथियार लगा है, बहुत जोर से जोर से जोर से प्यार लगा है,
1: क्या बात है, क्या बात है,
0: जहन की हर एक चोट थी गायब, उन होठों में होठ थे गायब, हाथ थे गायब, बात थी गायब, दुनिया की औकात थी गायब, गायब पूरा बदन हुआ था, मैं तो उसका कफन हुआ था, बचने को बस सांस बची थी, फिर भी आधी रात बची थी।
1: वाह।
0: सुबह उठा तो कान के नीचे गर्दन पर स्कार लगा है, बहुत जोर से जोर से जोर से प्यार लगा है, पा पा पा पा पा, बहुत जोर से प्यार लगा है।
1: क्या बात है, बढ़िया गाना, कैसा रिस्पॉन्स है इस नाटक।

मीडियो वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय शाम के 5 बज चुके हैं। आरंभ होती है हमारी आज की दूसरी सभा। सभा के आरंभ में रोज की तरह आइए आपको सुनवाते हैं युवा श्रोताओं को संबोधित कार्यक्रम युवा वाणी।

दोस्तों नमस्कार, आप सुन रहे हैं युवा सोच, युवा सपनों और युवा ऊर्जा का अपना प्रिय कार्यक्रम युववाणी। जैसा कि आप जानते हैं, इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाते हैं कुछ मधुर लोकगीत जिसमें होती है अपनी मिट्टी की खुशबू, और साथ ही करते हैं विभिन्न विषयों पर चर्चा जो आपके लिए हितकारी हो, ज्ञानवर्धक हो। आज भी हम चर्चा करेंगे और आज चर्चा का विषय होगा पढ़ने की आदत और युवा। जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है हमारे लिए, आपके लिए, समाज के लिए। आज हम इसी टॉपिक पर चर्चा करेंगे, लेकिन आपका मनोरंजन भी उतना ही आवश्यक। आइए सबसे पहले कार्यक्रम की शुरुआत कर लेते हैं कुंज बिहारी मिश्र के गाए इस भगवती गीत के साथ।

युवा साथियों, पढ़ने की आदत और युवा, जी हाँ, यही हमारे चर्चा का विषय है आज के इस कार्यक्रम में। तो जैसा कि आप जानते ही हैं, आज का दौर डिजिटल दुनिया का हो चुका है। मोबाइल, सोशल मीडिया और छोटी छोटी वीडियो में युवाओं का काफ़ी समय घेर लिया है। महसूस करते होंगे आप, हम सभी अपने अगल बगल में भी देखते होंगे। कभी कभी तो ऐसा होता है कि हमको आपको ख़राब लगता है कि ये बच्चा इतना मोबाइल का यूज़ कैसे कर रहा है, ये हमारा बच्चा, ये हमारा दोस्त इतने मोबाइल में अपने समय को कैसे बर्बाद कर रहा है। तो ऐसे समय में पढ़ने की आदत केवल परीक्षा पास करने का माध्यम नहीं, बल्कि व्यक्तित्व विकास, ज्ञान और सकारात्मक सोच का मजबूत आधार बन जाती है। आप गौर कीजिए, अगर ऐसा होता, अगर सोशल मीडिया से, डिफरेंट प्लेटफॉर्म से आदमी ज्ञान अर्जित कर लेता, तो आज सारे पब्लिकेशंस बंद हो जाने चाहिए। लेकिन नहीं, किताबों का प्रकाशन वैसे ही हो रहा है जैसे आज से 20, 25, 50 साल पहले हुआ करता था, इवन ज़्यादा हो गया है। तो इससे आप सहज अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अभी भी जो युवा एक ऊंचे एम्बिशन को लेकर चलते हैं, ऊंची कामयाबियों का सपना लेकर चलते हैं, वो अध्ययन ही करते हैं, किताबों के सहारे ही आगे बढ़ते हैं। पुस्तकें हमें नई सोच देती है, कल्पना शक्ति को बढ़ाती है, आपका इमेजिनेटिव कैपेसिटी बढ़ता है, आपके कंसेप्ट में इजाफा होता है, किसी विषय पर सोचने की शक्ति आप में बढ़ती है और जीवन के अनुभवों से परिचित कराती है। जो युवा नियमित रूप से पढ़ते हैं, उनकी भाषा बेहतर होती है, आप गौर करते होंगे, आत्मविश्वास बढ़ता है और निर्णय लेने की क्षमता भी मजबूत होती है। चाहे साहित्य हो, जीवनी हो, विज्ञान, इतिहास या प्रेरणादायक पुस्तकें, कुछ भी आपको मिले, आप उसे पढ़ डालिए, कुछ न कुछ आपको अवश्य ही सिखाएगी वो किताबें। चर्चा पे हम फिर आएंगे, लेकिन आइए पहले ये एक लोक भजन सुन लेते हैं, अरविंद कुमार झा और ओम प्रकाश सिंह के युगल स्वरों में।

दोस्तों, आज आवश्यकता इस बात की है कि युवा प्रतिदिन कुछ समय पढ़ने के लिए जरूर निकालें। मोबाइल का उपयोग केवल मनोरंजन तक सीमित न रखकर ई बुक, समाचार और ज्ञानवर्धक सामग्री पढ़ने में ही करें। घर, विद्यालय और समाज में पढ़ने का सकारात्मक वातावरण बनाना भी बहुत जरूरी है। अगर आप वातावरण नहीं बनाते हैं, अपने चारों तरफ के ऑरा को उस हिसाब से डेवलप नहीं करते हैं, तो फिर पढ़ने का वो नहीं बन पाएगा। महान वैज्ञानिक APJ अब्दुल कलाम कहा करते थे कि अच्छी पुस्तकें जीवन भर साथ निभाने वाले मित्र की तरह होती है।

यह बात आज भी उतनी ही प्रेरणादायक है। अगर लाइफ टाइम फ्रेंडशिप आप बुक्स से करते हैं, किताबों से करते हैं, तो यह जरूर आपके जीवन को बदलने की क्षमता रखती है। तो इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए युवा साथियों को यह संकल्प लेना चाहिए कि पढ़ने की आदत को जीवन का हिस्सा बनाएं और ज्ञान के माध्यम से ही अपने भविष्य को उज्जवल करें। साथ ही समाज में जो भी योगदान कर सकते हैं वो आप ज्ञान के माध्यम से ही कर सकते हैं, और वो ज्ञान तभी हासिल होगा जब आप पुस्तकों की दुनिया में खो जाएंगे। आइए सुनते हैं राधा मोहन मिश्र के स्वर में ये बढ़िया सा लोकगीत।

दोस्तों, आप अवश्य ही गौर किए होंगे कि पढ़ने से, किताबों को पढ़ने से, जीवनियों को पढ़ने से, बायोग्राफी ऑटोबायोग्राफी को पढ़ने से एक नए विचार, नए अनुभव और जीवन को देखने का दृष्टिकोण में जरूर कुछ न कुछ बदलाव होता है। साहित्य हमें संवेदनशील बनाता है, सेंसिटिव जिसे हम कहते हैं। जीवनी से हम प्रेरणा लेते हैं। अगर हम किसी महापुरुष की जीवनी पढ़ते हैं तो उससे जरूर हम मोटिवेट होते हैं, उनके सद्गुणों को चाहते हैं कि हम अपनावें अपने जीवन में। ये आपको सोशल मीडिया से प्राप्त नहीं हो सकता। इतिहास से हम अपने अतीत को समझते हैं, इतिहास हमें अपने अतीत से जोड़ने का काम करता है, और विज्ञान हमें भविष्य की शिक्षा देता है, भविष्य की दिशा दिखाता है। तो इस तरह हम देखते हैं कि विभिन्न विषयों को पढ़ने से कैसे हमारा सोचने का दृष्टिकोण बृहत होता है, बड़ा होता है। किसी भी चीज़ को हमारे सोचने का एंगल में बहुत विस्तार आता है। पढ़ने की शुरुआत छोटी हो सकती है, मसलन रोज आप अखबार पढ़ लीजिए, उसी अखबार में कुछ ऐसा हर दिन एक विशेषांक करके परिशिष्ट भी होता है जिसमें कुछ ना कुछ प्रेरणादायक तथ्य होते हैं, प्रेरणादायक लेख होते हैं, उसको पढ़िए। प्रतिदिन कुछ पढ़ने किसी अच्छी पुस्तक से निकाल के पढ़ लीजिए, और तब ये धीरे धीरे आपके आदत में बदल जाएगी, और तब तो एक दिन ऐसा आएगा जब आप बिना पढ़े रह ही नहीं सकते। तो ज़रूरत है उस आदत को डेवलप करने का, और चाहने से क्या नहीं होता, हम चाहेंगे तो ज़रूर होगा। अपने अगल बगल के जो हमारे यार दोस्त हैं उनको प्रेरित करेंगे, और इस तरह से एक पढ़ने का, किताब पढ़ने का माहौल हम बना सकते हैं, और उससे अपने सोसाइटी को फायदा पहुंचा सकते हैं। आइए सुनते हैं विदुषी शारदा सिन्हा के स्वर में ये गीत।

युवा दोस्तों, पढ़ने की आदत केवल ज्ञान नहीं देती बल्कि जीवन को सही दिशा भी देती है। जो युवा किताबों से जुड़ते हैं वे विचारों से समृद्ध और आत्मविश्वास से मजबूत बनते हैं। आइए हम सभी पढ़ने को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं और एक जागरूक एवं सशक्त युवा पीढ़ी का निर्माण करें।

युववाणी, ये था युवा श्रोताओं के लिए हमारा कार्यक्रम। हम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से बोल रहे हैं और आइए अब आपको सुनवाते हैं कुछ नए फिल्मों के नगमे। सबसे पहले लीजिए सुनिए फिल्म चंदू चैंपियन का ये गीत। इस गीत को गाया है अरिजीत सिंह, नक्काश अजीज और देव नेगी ने। अमिताभ भट्टाचार्य के बोल हैं और प्रीतम का संगीत। तो सुनते हैं फिल्म चंदू चैंपियन का ये गीत।

अरिजीत सिंह को भी आप सुन रहे थे, फिल्म थी दुकान, सिद्धार्थ गरिमा की रचना थी और श्रेयस पुराणिक का संगीत। और आइए अब सुनते हैं फिल्म छत्रपति का ये गीत सुनिधि चौहान की आवाज में।

सुनिधि चौहान और नकास अजीज के गाए फिल्म छत्रपति के इस गीत के साथ ही नए फिल्मी गानों का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से बोल रहे हैं। कुछ ही पलों में हमारे दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार प्रसारित होंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज भारत अमेरिका व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में लगातार हो रही प्रगति, क्षेत्रीय तथा वैश्विक शांति और सुरक्षा

0: से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज नई दिल्ली में सेवा तीर्थ में प्रधानमंत्री से मुलाकात की। श्री मोदी ने कहा कि भारत और अमेरिका विश्व कल्याण के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। इस दौरान विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी उपस्थित रहे। श्री मार्को रूबियो 26 मई को होने वाली क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेने के लिए 4 दिन की भारत यात्रा पर हैं। श्री रूबियो आज कोलकाता पहुंचे, जहां उन्होंने मिशनरीज ऑफ चैरिटी का दौरा किया और मदर टेरेसा की विरासत को श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकारी नौकरियां नागरिकों के जीवन को बेहतर और आसान बनाने का महत्वपूर्ण माध्यम हैं। श्री मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 19वें रोजगार मेले में कहा कि देश ने अपने कर्मयोगियों पर भरोसा जताया है और अब ये उनकी जिम्मेदारी है कि वे अपनी लगन, आचरण और रोजमर्रा के कामों से उस भरोसे का मान रखें और उसे मजबूत करें। श्री मोदी ने कहा कि पूरी दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनने के लिए उत्सुक है।
1: दुनिया भारत के युवाओं और भारत की टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस को लेकर बहुत उत्साहित है। आज दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनना चाहती है। भारत भी दुनिया के अलग अलग देशों के साथ पार्टनरशिप कर रहा है। इसका उद्देश्य यही है कि भारत के युवाओं को अवसर मिले, रोजगार मिले, उनका सामर्थ्य खिल उठे। साथ साथ मैं चाहता हूं मेरे देश के नौजवानों को ग्लोबल एक्सपोजर भी मिले।
0: रोजगार मेले में आज 51,000 से भी अधिक नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे गए। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि वैश्विक उथल पुथल के बावजूद भारत में बुनियादी अर्थव्यवस्था मजबूत और निर्यात में वृद्धि बनी हुई है। उन्होंने कहा कि अप्रैल के बाद मई माह में भी निर्यात में वृद्धि जारी रही, जो वैश्विक प्रतिकूलताओं के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था के लचीलेपन को दर्शाती है। नई दिल्ली में आज श्री गोयल ने कहा कि सरकार ने किसानों को बढ़ती लागत से बचाने के लिए उर्वरकों की बढ़ी कीमतों का बोझ स्वयं वहन किया है। उन्होंने कहा कि सरकार भव्य योजना के माध्यम से कारोबारी सुगमता के लिए देश भर में 100 औद्योगिक पार्क स्थापित करेगी। श्री गोयल ने कहा कि 33,600 करोड़ रुपए से अधिक के आवंटन वाली भारत औद्योगिक विकास योजना के अंतर्गत प्लग एंड प्ले औद्योगिक पार्क बनाए जाएंगे। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि ऑयल इंडिया लिमिटेड ने राजस्थान के दांडेवाला फील्ड में एक नए गैस भंडार का पता लगाया है। श्री पुरी ने कहा कि उथली सानू भौगोलिक संरचना से पहली बार लगभग 25,000 मानक घनमीटर प्रतिदिन की दर से प्राकृतिक गैस का प्रवाह होना एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि इससे घरेलू ऊर्जा उत्पादन को मजबूत करने में सहायता मिलेगी। सरकार ने जन परामर्श के लिए विकसित भारत जी रामजी अधिनियम 2025 के अंतर्गत मसौदा नियम प्रकाशित किए हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि कोई भी व्यक्ति, हितधारक, संगठन या संस्था अगले महीने की 21 तारीख तक इन मसौदा नियमों पर आपत्तियां या सुझाव प्रस्तुत कर सकता है। पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत योजना इस वर्ष जुलाई से शुरू होगी। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज कोलकाता में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा के साथ वर्चुअल बैठक के बाद इसकी घोषणा की। राज्य की स्वास्थ्य योजना स्वास्थ्य साथी के अंतर्गत मौजूदा लाभार्थियों को आयुष्मान भारत योजना में शामिल किया जाएगा। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज वृद्धि हुई है। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 87 पैसे बढ़कर 99.51 रुपए प्रति लीटर हो गई है, जबकि डीजल का मूल्य 91 पैसे बढ़कर 92.49 रुपए प्रति लीटर हो गया है। मौसम विभाग ने केरलम में बुधवार तक अलग अलग स्थानों पर तेज बारिश का अनुमान व्यक्त करते हुए 9 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। इस बीच दक्षिण पश्चिम मानसून आज दक्षिण पश्चिम अरब सागर के कुछ हिस्सों और पूर्व मध्य बंगाल की खाड़ी के अधिकांश हिस्सों में आगे बढ़ गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम।

स्थानीय सूचनाओं के अंतर्गत आइए जानकारी प्राप्त करते हैं। आज इस सभा के शेष और कल प्रातःकालीन सभा के कुछ मुख्य कार्यक्रमों के विषय में।

महाकवि विद्यापति की कुछ रचनाएं हम आपको सुनवाएंगे अब से कुछ देर बाद अर्थात शाम 6:10 से। मैथिली संवाद शाम 6:25 पर प्रसारित होते हैं। ग्रामीण श्रोताओं को संबोधित हमारा दैनिक कार्यक्रम गांव घर हम आप तक पहुंचाते हैं प्रतिदिन संध्या 6:30 पर एवं किसान भाइयों के लिए खेती गृहस्थी शाम 7:00 से।

फिल्म संगीत का आनंद हमारे श्रोता उठा सकते हैं शाम 7:52 से। कार्यक्रम हमारा पर्यावरण रात 8:15 से आप सुन सकते हैं। समाचार संध्या रात 8:45 पर न्यूज एट 9 9 से एवं उर्दू में खबरें रात्रि के 9:15 से प्रसारित होंगे।

कार्यक्रम विज्ञान भारती का प्रसारण समय होगा रात 9:30 से, और इस कार्यक्रम को हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले कर आप तक पहुंचाएंगे। और संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम रात 10 से आप सुनते हैं प्रत्येक शनिवार, और इस कार्यक्रम को भी हम अपने दिल्ली केंद्र से ही रिले कर आप तक पहुंचाते हैं। और अब कल प्रातःकालीन सभा के कुछ मुख्य

वंदे मातरम के साथ ही आरंभ होती है हमारी प्रातःकालीन सभा सुबह सवेरे 5:45 पर। कृषि चर्चा प्रातः 5:55 पर। कल कृषि चर्चा के अंतर्गत हमारे किसान श्रोता कृषि के आधुनिक एवं उन्नत यंत्र विषय पर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। स्वास्थ्य चर्चा के अंतर्गत कल हमारे श्रोता उच्च रक्तचाप लक्षण एवं सावधानियां विषय पर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर अशोक कुमार गुप्ता। हमारे केंद्र की भक्ति में प्रस्तुति वंदना का आनंद हमारे श्रोता उठा सकते हैं प्रातः 6:10 से, और रामचरितमानस गान का रसपान हमारे श्रोता कर सकते हैं प्रातः 6:40 से। कार्यक्रम नमस्कार मिथिला प्रातः 7:05 से प्रसारित होंगे।

में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के रूपरेखा। हम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से बोल रहे हैं, आइए सुनते हैं महाकवि विद्यापति की कुछ रचनाएं।

अभी आप सुन रहे थे महाकवि विद्यापति की कुछ रचनाएं। आज के कलाकार थे गौतम मिश्र एवं काशीनाथ झा किरण। प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया गया। और अब मैथिली संवाद आपके रेडियो सेट पर।

उद्घाटन कयलनि। प्रधानमंत्री कहलनि जे देश अपन कर्मयोगी पर भरोसा कयलक अछि आ आब ई हुनक जिम्मेदारी अछि जे ओ अपन लगन आचरण आ प्रतिदिनक काज सँ ओहि भरोसाक मान राखथि आ ओकरा बेसी मजबूत करथि। प्रधानमंत्री कहलनि जे संपूर्ण दुनिया भारतक विकास यात्राक हिस्सा बनबाक लेल उत्सुक अछि। ओ कहलनि जे भारत विश्वक कतेको देशक संग साझेदारी सेहो कऽ रहल अछि, जकर उद्देश्य देशक युवा लोकनि के अवसर, रोजगार आ वैश्विक अनुभव देबाक अछि। ओ कहलनि जे देश आब पूरा दुनियाक एक भरोस भरल सप्लाई चेन पार्टनर बनैत जा रहल अछि। रोजगार मेला मे सरकारक अलग अलग विभाग आ संगठन सभ मे नवनियुक्त 51,000 सँ बेसी युवा लोकनि के नियुक्ति पत्र बांटल गेल। ई रोजगार मेला संपूर्ण देश मे 47 अलग अलग स्थान पर आयोजित कयल गेल। एम्हर पटनाक खगौल मे आयोजित रोजगार मेला मे केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह 114 अभ्यर्थी के नियुक्ति पत्र सौंपलनि। एहि अवसर पर ओ कहलनि जे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीक नेतृत्व मे केंद्र सरकार लगातार युवा लोकनि के रोजगारक नव अवसर दऽ रहल अछि। नियुक्ति पत्र लेबय वाला छात्र छात्रा मे खुशीक माहौल देखल गेल। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आइ पटनाक ऊर्जा सभागार मे आयोजित 2 दिवसीय AI समिटक उद्घाटन करैत कहलनि जे हमर संकल्प थिक जे युवा शक्ति, स्टार्टअप आ नवाचारक बल पर बिहार डिजिटल क्रांतिक अग्रणी राज्य बनय। ओ कहलनि जे AI आधारित विकास सँ शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि आ प्रशासनिक व्यवस्था के आओर बेसी प्रभावी बनाओल जायत। दोसर दिस मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी 21 जून के होबय वाला NEET UG 2026 पुनर्परीक्षाक परीक्षार्थी लोकनि के सरकारी बस मे निःशुल्क आवाजाहीक सुविधा लेल देल जयबाक घोषणा कयलनि अछि। श्री चौधरी सोशल मीडिया पोस्ट मे कहलनि जे एकर उद्देश्य दूर क्षेत्र सँ आबय वाला परीक्षार्थी के बिना कोनो आर्थिक आ मानसिक तनाव के समय पर परीक्षा केंद्र पर पहुँचेबाक अछि। मुख्यमंत्री जिला प्रशासन, स्वयंसेवी संस्था आ मठ मंदिर सभ सँ परीक्षार्थी आ हुनक अभिभावक लोकनि लेल पेयजल आ सतुआ एहन पेय पदार्थक व्यवस्था मे सहयोग करबाक अपील कयलनि अछि। भाजपाक राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन कहलनि अछि जे ऊर्जावान कार्यकर्ता पार्टीक असली ताकत छथि। श्री नवीन प्रदेश भाजपा दिस सँ पटना सिटी मे आयोजित 2 दिवसीय दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियानक उद्घाटन करैत ई बात कहलनि। ओ कहलनि जे पार्टीक कार्यकर्ता पूरा निष्ठा आ मोन लगा कऽ काज कऽ रहल छथि। हुनका एहन प्रशिक्षण कार्यक्रम सँ नीक दिशा निर्देश भेटैत अछि। एहि अवसर पर पटना साहिबक सांसद रविशंकर प्रसाद, प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी समेत पार्टीक कतेको वरिष्ठ नेता आ कार्यकर्ता उपस्थित छलाह। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी काल्हि समापन सत्र मे सम्मिलित हेताह। दरभंगाक सांसद गोपाल जी ठाकुर दरभंगा मे आमस दरभंगा एक्सप्रेस वे समेत विभिन्न NH परियोजना के लऽ कऽ समीक्षा बैसार कयलनि। बैसार मे दरभंगा शहरक चारू कात रिंग रोड निर्माण लेल चर्चा भेल। एहि बैसार मे जिला पदाधिकारी कौशल कुमार समेत दर्जन सँ बेसी अधिकारी उपस्थित छलाह। प्रदेशक विभिन्न भाग मे मौसमक मिलल जुलल रूप देखबाक लेल भेट रहल अछि। प्रदेशक दक्षिणी भाग मे भीषण गर्मी संग लू चलबाक स्थिति बनल अछि। ओतहि उत्तर पूर्वी भाग मे पश्चिमी विक्षोभक कारण अन्हर बरखाक स्थिति बनल अछि। मौसम विभाग सँ प्राप्त जनतबक अनुसार औरंगाबाद, गया, भभुआ, बक्सर, अरवल, जहानाबाद समेत राज्यक दक्षिण पश्चिम आ दक्षिण मध्य भाग मे गर्मीक प्रकोप सँ जनजीवन प्रभावित भेल अछि। पटना आलोक पासक क्षेत्र सभ मे सेहो अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस के पार कऽ गेल अछि। एम्हर सुपौल, अररिया, किशनगंज आ कटिहार समेत राज्यक उत्तर पूर्व आ दक्षिण पूर्वक विभिन्न स्थान पर तेज हवाक संग मध्यम वर्षा भेल अछि। पूर्णियाक बायसी मे सभसँ बेसी 68.8 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड कयल गेल। विभाग अपन पूर्वानुमान मे कहलक अछि जे राज्यक उत्तर मध्य आ उत्तर पूर्व भाग के छोड़ि कऽ अधिकांश क्षेत्र मे अगला किछु दिन धरि गर्मी सँ राहत भेटबाक संभावना नहि अछि। एहि संग आकाशवाणी दरभंगा आ FM रेनबो पटना सँ प्रसारित संवादक ई अंक समाप्त भेल।

आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलोहर्ट्ज़ पर। प्रस्तुत है ग्रामीण श्रोताओं को संबोधित हमारा दैनिक कार्यक्रम गांव घर।

कार्यक्रम गाम घर अंतर्गत झरोखा सुननिहार समस्त श्रोतागण का आशुतोष कुमार झा दिस स्वागत आ नमस्कार। श्रोतागण, झरोखा केवल एक कार्यक्रम ने बल्कि बितलाहा पल पुरन का याद आ जीवन का अनमोल अनुभव का फेर से जीवंत करवा के क्या अपना सबके बीच सुंदर माध्यम है। एक कार्यक्रम अपना सभक पुरनका स्मृति अपना सबके बितलाहा दिन परिवार के रिश्ता सामाजिक संस्कृति से जोड़बाक काज करित है। जेना कोनो पुरनका घरक खिड़की जकरा अपना सब झरोखा सेहो कहै छी बाहर के दुनिया देखबैत अछि, ओनहिए ई कार्यक्रम याद के दुनिया के रास्ता खोल दैत अछि। ई कार्यक्रम में अपना सब केवल गीते संगीत टा नहीं सुनै छी, अपन अनुभव सेहो साझा करै छी। यादक झरोखा अपना सबके ई एहसास करबैत अछि जे जीवन का असली खुशी रिश्ता संस्कार आ बितलाहा जे पल अछि ओहिए में निकाल होइत अछि। आधुनिक भाग दौड़ से भरल जीवन में एहन जे अपना सबके कार्यक्रम रहित अछि ओ मन के एकटा अलगे सुकून दैत अछि और अपना सबके बीच एकटा अपनापन सेहो बढ़बैत अछि। ते दुआरे अपना सब कहि सकै छी जे झरोखा कार्यक्रम अपना सबके संस्कृति स्मृति और भावना के जे छै से बचा के रखबाक एकटा सुंदर प्रयास अछि। ते दुआरे अपना सब निश्चित रूप से जे छै से कार्यक्रम से जुड़ि के रही और देखबे करै छी जे गाम घर जाय छी अपना सब। एहि बेर तऽ बहुतो बेर हमरा गाँव जेबाक मौका लागल, उपनयन में विवाह दान में बहुतो ठाम गेलहुँ और देखै छी तऽ बड़ा नीक लागल जे आब पक्का मकान हमरा बहुतो ठाम देखबा में आयल। श्रोतागण, मनुख के मूलभूत आवश्यकता में रोटी कपड़ा और मकान के विशेष महत्व है। एकटा सुरक्षित और नीक आवास केवल रहबाक जगह नहीं होइत अछि बल्कि इस सम्मान सुरक्षा आ सुखद जीवन का आधार सेहो होइत अछि। हर एक व्यक्ति चाहै छै जे हुनका लोग अपन घर हुए जतय वो अपन परिवारक संग सुरक्षित और शांतिपूर्ण जीवन जीव सकैत। नीक आवास मनुख के गर्मी ठंडा बरसात आ आन प्राकृतिक आपदा से बचबैत अछि। बच्चा सबके नीक पालन पोषण आ शिक्षा के लेल सेहो उचित घर आवश्यक होइत अछि। जे सब लोग जिनका लग में छनि पक्का मकान और जिनका लग में सुरक्षित मकान नहीं छनि हुनका लग में अनेकहूँ कठिनाई आबै छनि। सरकार गरीब आ जरूरतमंद लोग सबके घर उपलब्ध करबै के लेल कई एकटा योजना सब चला रहल अछि। ओनहियो अपना सब जे पहले हो कहलिए हैं जे भारत एहन विशाल और विकासशील देश में रोटी कपड़ा और मकान जीवन के मूलभूत आवश्यकता में गिनल जाइत अछि। तो सरकार यह समस्या के दूर करवाक उद्देश्य से प्रधानमंत्री आवास योजना के शुरुआत कयने छल। ई योजना के मुख्य उद्देश्य सबहक लेल आवास उपलब्ध करेनाय अछि, जाहि से कि देशक हरेक नागरिक सम्मानपूर्वक जीवन जीव सकथि। श्रोतागण, प्रधानमंत्री आवास योजना दूटा प्रमुख भाग में संचालित होइत अछि। ग्रामीण क्षेत्र के लेल प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण आ शहरी क्षेत्र के लेल

प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी ग्रामीण योजना के अंतर्गत एहन गरीब परिवार के पक्का मकान उपलब्ध कराओल जात है जिनका लोग रहबाक योग्य घर नहीं होत होते। शहरी योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, निम्न आय वर्ग संग ही मध्यम वर्ग के लोग सब के घर किनवा या बनेवा में सहायता देल जाय छन। श्रोतागण, ई योजना के सबसे पैघ विशेषता यह है जे सरकार लाभार्थी के आर्थिक सहायता सीधा हुनका बैंकक खाते में प्रदान करैत अछि। ग्रामीण क्षेत्र में लाभार्थी के पक्का मकान बनेबाक लेल किस्त में राशि देल जाइत अछि, संगहि शौचालय निर्माण के लेल अलग से सहायता सेहो देल जाइत अछि, जैसे कि स्वच्छता अभियान के सेहो मजबूती भेट सके। श्रोतागण, ई योजना से जे अपना सबके मध्यम वर्ग के लोग सब छथि हुनका घरक सपना साकार भ रहल अछि। प्रधानमंत्री आवास योजना देश के लाखों परिवार के जीवन में सकारात्मक बदलाव अनलक हँ। जाहि लोग सब लग में पहले कच्चा मकान छलनि, ओ आइ पक्का मकान में सुरक्षित जीवन जीव रहल छथि। प्राकृतिक आपदा जकर अपना सब चर्चा केने रहौं, बरखा, ठंडा, गर्मी से बचाव के संगहि संग योजना लोक सबके सामाजिक सम्मान सेहो प्रदान करैत अछि। एकटा पक्का घर केवल ईंटा और सीमेंट का ढांचा नहीं होइत अछि, बल्कि ई सुरक्षा, आत्मविश्वास और नीक भविष्य के प्रतीक होइत अछि। ई योजना के एकटा महत्वपूर्ण पहलू महिला सशक्तिकरण सेहो अछि। कएक मामला में मकानक स्वामित्व महिला के नाम या फिर पति पत्नी के संयुक्त नाम पर देल जात अछि, एहिसँ महिला के आर्थिक और सामाजिक स्थिति मजबूत होइत अछि। एकर अतिरिक्त एहि योजना के अंतर्गत घर में बिजली, गैस, पानि और शौचालय एहन सुविधा के सेहो जोड़े के प्रयास कयल गेल हँ, जाहिसँ लोक सभक जीवन स्तर नीक भ सकनि। श्रोतागण, प्रधानमंत्री आवास योजना रोजगार सृजन में सेहो महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह कऽ रहल अछि। मकान निर्माण के कारणे निर्माण काज से जुड़ल मजदूर भाई, राजमिस्त्री सब, ठेकेदार सब और निर्माण सामग्री उद्योग से जे जुड़ल छथि हुनका रोजगार के अवसर भेट रहल छनि। एहिसँ देश के अर्थव्यवस्था के सेहो गति भेट रहल अछि। एहि योजना में अपना सबके निश्चित रूप से फायदा भेट सकैत अछि, मुदा आवश्यकता अछि जे एकरा लेल आवश्यक जरूरी चीज सब अछि ओकर अपना सब पूर्ति कऽ के राखिए। कहल जा सकैत अछि जे प्रधानमंत्री आवास योजना केवल एकटा सरकारी योजना नहि, बल्कि करोड़ों गरीब परिवार के सपना के साकार करबाक एकटा अभियान अछि। ई योजना सामाजिक समानता, आर्थिक विकास और मानव सम्मान के दिशा में एकटा महत्वपूर्ण डेग अछि। यदि एहि प्रकार पारदर्शिता और प्रभावी ढंग से योजना के संचालन होइत रहल तो निश्चित रूप से आबो वाला समय में भारत वास्तव में हर परिवार के लोग अपन घरक लक्ष्य के प्राप्त कऽ सकत। और जखन अपना सब लग में अपन घर होइत अछि तहन गीतोनाद नीक लागै छै, तो किया ने एकटा सुंदर सन पहले गीत सुनी, तकर बाद फिर हेतु गपशप।

अछि, मानव जीवन के एकटा महत्वपूर्ण हिस्सा अछि। ई केवल शरीर, घर या लोग पास के सफाइए तक सीमित नहि, बल्कि स्वस्थ जीवन, नीक विचार आ सभ्य समाज के पहचान सेहो अछि। कहल जाइत अछि जे स्वच्छता से अपना सबके स्वस्थ आधार भेटैत अछि। यदि व्यक्ति और समाज स्वच्छ रहे तो अनेक बीमारी से बचल जा सकैत अछि, संगहि जीवन के सुखी और सुरक्षित सेहो बनाओल जा सकैत अछि। श्रोतागण, आजुक आधुनिक युग में स्वच्छता का महत्व और बेसी बढ़ गेल अछि, कियाकि बढ़ैत जनसंख्या, प्रदूषण और गंदगी मानव स्वास्थ्य आ पर्यावरण दुनू के लेल गंभीर खतरा बने जा रहल अछि। ताहि कारणे स्वच्छता के जीवन के सबसे आवश्यक आदत में अपना सबके शामिल कऽ लेबाक चाही। अपना सब पहले हो गप कयलहुँ जे स्वच्छता का अर्थ केवल शरीर के साफ रखनाइ नहि अछि, बल्कि अपन घर, लग पास के वातावरण, भोजन, पानि आ विचार के सेहो शुद्ध और साफ रखनाइ अछि। जखन व्यक्ति साफ सुथरा रहै छथि और अपन लग पास गंदगी नहि पसारै छथि, तखने वास्तविक स्वच्छता स्थापित होइत अछि। स्वच्छता अपना सबके स्वस्थ, अनुशासित आ जिम्मेदार नागरिक बनबाक प्रेरणा दैत अछि। श्रोतागण, स्वच्छता के सीधा संबंध स्वास्थ्य से होइत अछि। गंदगी अनेक प्रकार के बीमारी के जन्म दैत अछि। दूषित पानि, कचरा, खुलल में गंदगी और अस्वच्छ भोजन के कारणे हैजा, डायरिया, मलेरिया, डेंगू, टाइफाइड एहन अनेको बीमारी पसरि जाइत अछि। यदि अपना सब नियमित रूप से स्नान करी, साफ कपड़ा पहिरी, हाथ धोए और स्वच्छ भोजन ग्रहण करी तो ई सबटा बीमारी से बहुत हद तक बचल जा सकैत अछि। डॉक्टर साहब तो सेहो कहै छथि जे इलाज से नीक बचाव अछि और स्वच्छता सबसे पैघ बचाव अछि। एकटा स्वच्छ व्यक्ति शारीरिक रूप से बेसी जे छथि स्वस्थ रहै छथि और हुनका कार्य क्षमता जे छै सेहो नीक रहै छनि। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन के निवास होइत अछि, अपना सब बुझते छै। श्रोतागण, व्यक्तिगत स्वच्छता हरेक व्यक्ति के लेल आवश्यक अछि। एहिमे अपना सबके नियमित रूप से स्नान केनाइ, दांत साफ केनाइ, नोह काटनाइ, साफ कपड़ा पहिरनाइ आ भोजन से पहले हाथ धोनाइ ई सब शामिल अछि। यदि व्यक्ति अपन व्यक्तिगत स्वच्छता पर ध्यान नहि दै छथि तऽ ओ स्वयं बीमार भऽ सकै छथि आ दोसरा के सेहो बीमारी के कारण बनि सकै छथिन। विशेष रूप से बच्चा सबके बच्चे से स्वच्छता का आदत सिखेनाइ जरूरी अछि। यदि बच्चा सुबह से साफ सफाई के महत्व बुझता तखन ओ भविष्य में जागरूक आ जिम्मेदार नागरिक बनता। श्रोतागण, बच्चा कांच करछी होइ छथि, हुनका अपना सब जेना लेबनि तहिना लेबैत, तो अपना सब शुरुए से अगर हुनकर आदत पर नियंत्रण बना कर राखब तो निश्चित रूप से आगू जाकर वो अपना सबके काज अता। केवल शरीर के सफाई पर्याप्त नहीं, बल्कि घर और लोग पास का वातावरण सेहो साफ होबाक चाहिए। घर के लोग पास कचरा जमा भेला से मच्छर और माछी उत्पन्न भऽ जाइत अछि, जे बीमारी पसारैत अछि। ताहि दुआरे कूड़ा सदैव अपना सबके एकटा कोनो कूड़ेदान में देबाक चाही आ नियमित रूप से एकरा सफाई करबाक चाही। अपना सबके मिथिलांचल में तो देखते छी जे पावनि त्यौहार के माध्यम से अपना सबके साफ सफाई के बारे में कतेक बेसी जागरूक कयल जाइत अछि। दीपावली में अपना सब घर के पूरा साफ सफाई करते छी, सबटा साफ सुथरा कऽ के जहन पोखरि के कछेर में राखै छी तो छठि में फेर ओकरा साफ कऽ के एकटा कोनो जे अपना सबके निश्चित जगह अछि ओतऽ दऽ कऽ ओकरा निस्तारण कऽ दै छी। स्वच्छ जगह पर रहबासँ मोन प्रसन्न रहैत अछि और सकारात्मक वातावरण बनैत अछि। एहि प्रकारे यदि सड़क, अपना सबके खेलबाक जगह, इसकुल या कोनो सार्वजनिक स्थान साफ रहे तऽ समाज बेसी सुंदर आ नीक देखा दैत अछि। ई पोखरि के घाट हुए या कोनो मंदिर के चबूतरा। श्रोतागण,

श्रोतागण, ई चौमासा केदारनाथ कुंवर और नंद शंकर झाक स्वरम अपना सब सुनि रहल छलहुँ और बहुत नीक प्रस्तुति छल। अपना सब गप करै छलहुँ आवासके सम्बन्धमे। श्रोतागण, आवास तखने नीक लागैए जखन साफ सुथरा रहैत अछि, किएकि स्वच्छता जे

स्वच्छता पर्यावरण संरक्षण में सेहो महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करैत अछि। यदि लोग इमहर उमहर कचरा फेंके छथि, प्लास्टिक के बेसी उपयोग करै छथि आ नाली सबके गंदा करै छथि तऽ पर्यावरण प्रदूषित होइत अछि। एहिसँ जल, वायु और भूमि प्रदूषण बढ़ैत अछि। आजुक दुनिया जे अपना सब देखै छी जे पर्यावरण संकट के सामना कऽ रहल अछि, एहन समय में स्वच्छता अपना आ पर्यावरण के साफ राखि कऽ हरेक नागरिक अपन देश के प्रति अपन जिम्मेदारी के पूरा कऽ सकै छथि। गाछ वृक्ष लगेनाइ, प्लास्टिक के कम उपयोग केनाइ आ कचरा के सही प्रबंधन केनाइ स्वच्छता के दिशा में एकटा महत्वपूर्ण डेग अछि। कोनो समाजक पहचान ओकर स्वच्छते से होइत अछि। जे समाज, जे गाम साफ सुथरा रहैत अछि ओतऽ बेसी लोक आबै छथि आ लोकक जीवन स्तर बेसी नीक होइत अछि। स्वच्छ समाज में बीमारी कम होइत अछि, एहिसँ लोक सबके जे छै से दिक्कत सेहो कम होइ छनि। श्रोतगण, विद्यालय बच्चा सबके निर्माण केन्द्र होइत अछि। यदि स्कूल साफ सुथरा रहत तऽ बच्चा के मोन पढ़ाई में सेहो लागत और ओ स्वस्थ रहता। विद्यालय में स्वच्छ शौचालय, साफ पानि और साफ परिसर भेनाइ बहुत आवश्यक होइत अछि। श्रोतागण, स्वच्छता केवल बाहरी नहि बल्कि मानसिक सेहो हेबाक चाही। मनमे खराब विचार, ईर्ष्या, घृणा आ नकारात्मक सोच रखनाइ मानसिक गंदगी के समान अछि। सकारात्मक सोच, नीक संस्कार और नीक व्यवहार से मानसिक स्वच्छता बनल रहैत अछि। स्वच्छ मन वाला व्यक्ति समाज में प्रेम और सद्भाव पसारे छथि। तखने न अपना सबके गीतो नाद नीक लागैया, तो किया ने पहले एकटा सुंदर सन गीत सुनी, तकर बाद फिर हेतै गपशप।

कोना भेलै एहन हमर भाग्यो। अरविंद कुमार झा और ओम प्रकाश सिंह के स्वर में सुंदर संगीत सुनलहुँ और एकरे संग अपना सब जे छै ई अपन झरोखा के आब बंद करैत आब खेती गृहस्थी में अन्नदाता किसान लोकनि के स्वागत करियन। बहुत बहुत स्वागत और नमस्कार श्रोतागण। अपना सब बहुतो रास खेती करै छी और अपना सब पशुपालन सेहो करै छी, मुदा देखभाल के आवश्यकता अपना सबके हर एक चीज में होइत अछि। अपना सब देखै छी जे घरक नेनो के अगर अपना सब कतौ पढ़े ले दै छियनि तऽ हुनका पर पूरा पूरा अपना सबके निगरानी राखऽ पड़ैत अछि। अगर पशुधन के अपना सब कतौ बान्है छी ओहियो पर अपना सबके पूरा पूरा ध्यान राखऽ पड़ैत अछि। जेनाकि एखन गर्मी के समय अछि तऽ अपना सब देखै छी जे बेसी रौद भऽ गेल हँ, तऽ केना हुनका छाहमे ठाढ़ करी, हुनका केना समय समय पर पानि दियनि। तहिना जखन अपना सब कोनो फसिल लगबै छी तऽ अपना सबके ई पूरा ध्यान रहैत अछि जे केना ओ फसिल नीक बनल रहै, ओहिमे कोनो गड़बड़ी नहि हुए। आइ अपना सब गप करब कुसियार फसिल के देखभाल के संबंध में। श्रोतागण, कुसियार अपना सबके क्षेत्र के एकटा प्रमुख नकदी फसिल में से एकटा अछि। नीक उपजा और बेसी मिठास पेबाक लेल कुसियार के फसिल के सही समय पर देखभाल केनाय बहुत बेसी आवश्यक होइत अछि। यदि अपना सब उचित पटौनी, खाद, निकौनी कमौनी आ रोग नियंत्रण पर ध्यान दी तऽ उत्पादन में बेस वृद्धि भऽ सकैत अछि। कुसियार के फसिल के पर्याप्त पानि के आवश्यकता होइत अछि। गर्मी के मौसम में 10-15 दिन के अंतराल पर पटौनी करबाक चाही, जखन कि ठंडा में 20-25 दिन पर पानि देनाय पर्याप्त होइत अछि। खेत में जल भराव नहि हेबाक चाही, कियाकि एहिसँ जड़ि सड़बाक समस्या भऽ सकैत अछि। फसिल के शुरुआती 2-3 महीना में खर पतवार तेजी से बढ़ैत अछि। समय समय पर निकौनी कमौनी करबा से पौधा के पर्याप्त पोषण भेटैत अछि और वृद्धि सेहो नीक होइत अछि। माटि चढ़ेवा यानी कि अर्थिंग अप से गाछ मजबूत होइत अछि और खोसे नहि अछि। श्रोतागण, नीक पैदावार के लेल गोबर के सरलाहा, खाद के संग नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटास के संतुलित उपयोग करबाक चाही। नाइट्रोजन के मात्रा 2 या 3 बेर देबाक चाही, ई लाभकारी होइत अछि। जैविक खाद के उपयोग माटि के उर्वरता के बढ़बैत अछि। एहि पर अपना सब निरंतर बात करते रहै छी, एहि पर अपना सबके ध्यान देबाक चाही। संगहि अपना सब पहले हो चर्चा केलहुँ हँ जे अपना सब कोनो फसिल लगबै छी, अगर ओहि पर ध्यान नहि दै छी तऽ कखनो कोनो समस्या भऽ सकैत अछि। तऽ अपना सबके एहिमे रोग आ कीट नियंत्रण पर सेहो ध्यान देनाय आवश्यक अछि। आगू अपना सब और गप करब, मुदा एखन बेर भऽ गेल अछि प्रायोजित कार्यक्रम उड़ान के, तऽ सुनी पहले ई प्रायोजित कार्यक्रम।

नमस्कार, मैं एना कर्मा आप सभी का स्वागत करती हूं कार्यक्रम उड़ान में। जी हां, उड़ान हौसलों की, उड़ान कुछ नए सपनों की, उड़ान उन मंजिलों की और जो बाहें फैलाकर बेताबी से आपका इंतजार कर रही हैं। श्रोताओं, कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले आप हमारा पता जरूर लिख लें ताकि कार्यक्रम के दौरान

0: अगर आपके जहन में कोई सवाल आता है या फिर आप हमसे अपनी कोई बात साझा करना चाहते हैं तो हमें जरूर लिखें। हमारा पता है कार्यक्रम उड़ान, पोस्ट बॉक्स नंबर 6, नई दिल्ली 110001, और हमारा फोन नंबर है
1: 8860088827। जी हाँ, 8860088827।
2: श्रोताओं, शराब सुनने में एक छोटा सा शब्द लगता है, परंतु आज की युवा पीढ़ी शराब के नशे में ऐसी उलझी पड़ी है कि अपने भविष्य को घोर अंधकार की ओर ले जा रही है।
3: तो बढ़ते हैं आगे की ओर, जिसका शीर्षक है अंधेरे से उजाले की ओर।

0: दोस्तों, नशा एक ऐसा धीमा जहर है जो इंसान के शरीर से पहले उसके सपनों को मार देता है। नशा केवल एक इंसान को नहीं, पूरे परिवार को सजा देता है। घर की हंसी कब रोने में बदल जाती है पता ही नहीं चलता। आज की ये कहानी उन लोगों की है जिन्होंने नशे के अंधेरे में अपनों को खोया और फिर उसी अंधेरे को हरा कर उजाले का रास्ता चुना। आज हम एक ऐसी सच्ची कहानी लेकर आए हैं जो आपके आसपास, आपके पड़ोस, शायद आप ही के घर में घट रही हो, जो इंसान से उसका विवेक और परिवार से उसकी मुस्कान छीन लेता है। नशे की आवाज घर की शांति को चीर देती है। सुबह की शुरुआत भी चिंता के साथ होती है जब घर में खुशियों से ज्यादा समस्याएं बोलती हैं।
1: मोहन, फिर शराब पीकर आ गए हो? बच्चों की फीस बाकी है, घर पे राशन नहीं है।
2: बस बस, मुझे मत सिखाओ, मेरी जिंदगी है, मैं जो चाहे करूं।
1: राधा, आज सब्जी मत बनाना, नमक रोटी ही से काम चला लेंगे।
3: दीदी, कब तक ऐसे जिएंगे हम? हर दिन समझौता, हर रात डर।
1: मजबूरी है राधा, जब घर का मुखिया ही रास्ता भटक जाए तो?
3: दीदी, हर दिन यही होता है, ये नशा हमें खत्म कर देगा। कभी कभी लगता है दीदी, हम भी उसी नशे में डूब रहे हैं बिना पिए।
1: राधा, आज फिर चावल कम पड़ गए।
3: दीदी, महीने भर का बजट बिगड़ गया है।
2: खाना मिलेगा या नहीं?
1: मोहन, बच्चों के सामने तो मत चिल्लाओ।
2: अरे, आज खाना ठंडा है क्या?
1: रोज शराब, गर्म रहती है मोहन, घर का चूल्हा ठंडा पड़ गया है।
2: ताना मत मारो, मैं बाहर मर मर के कमाता हूँ।
3: जीजा जी, कमाई से ज्यादा तो शराब की बोतल दिखती है।
2: मेरी जिंदगी है, तुम लोग कौन होते हो रोकने वाले?
1: हम तुम्हारे अपने हैं मोहन, और अपने ही सबसे ज्यादा दर्द सहते हैं।
4: नमस्ते बहन जी, आज गांव में नशा मुक्ति अभियान की बैठक है। गांव में नशा मुक्ति शिविर लगने वाला है। सरकार मुफ्त इलाज और काउंसलिंग दे रही है।
1: मुफ्त? हमें तो लगा ये सब बड़े शहरों के लिए होता है। सच? क्या कोई रास्ता है इस अंधेरे से बाहर निकलने का?
4: दीदी, जिला नशा मुक्ति केंद्र में दवा, काउंसलिंग सब फ्री है। और हाँ दीदी, अगर चाह हो तो आज नहीं रुकें, कल तो बहुत देर हो जाएगी।
3: और अगर कमाई रुक जाए तो?
4: मनरेगा योजना है ना, रोजगार मिलेगा, बच्चों के लिए सरकारी छात्रवृत्ति भी।
1: मतलब सरकार भी हमारे साथ खड़ी है?
4: हाँ दीदी, बिल्कुल, बस पहला कदम हमें ही उठाना पड़ेगा।

0: काउंसलिंग के बाद मोहन बदला हुआ दिखता है।
1: सब मुझसे क्यों दूर हो रहे हैं? क्या सच में मेरी गलती है? मैं क्या बन गया हूँ? मेरे कारण मेरे अपने मुझसे डरते हैं? क्या यही मर्दानगी है? मैं कहाँ गलत हो गया? अगर आज भी नहीं सुधरा तो कल मुझे माफ करने वाला भी कोई नहीं होगा।
0: जब इंसान खुद से बात करने लगे तो समझो बदलाव की शुरुआत हो चुकी है।
1: मैं बदलना चाहता हूँ।
2: ये मेरी सबसे बड़ी जीत है।
0: काउंसलिंग के बाद मोहन।
1: सीमा, मुझे माफ कर दो। मैंने नशे में अपना वर्तमान भी खोया और भविष्य भी।
2: गलती मान लेना ही सबसे बड़ी जीत है मोहन।
3: आज मेरा भाई फिर से जिंदा हो गया।

0: आज फिर मन कर रहा है।
1: एक घूंट ने आपको यहाँ तक पहुँचाया था, अब एक फैसला आपको बचा सकता है जीजाजी। अगर मन डगमगाए तो याद कर लेना।
2: मोहन, आज अगर रुके तो हमारे बच्चे एक नई सुबह को देखेंगे।
0: हर दिन एक युद्ध है राधा, लेकिन आज हार मान ली तो सब खत्म हो जाएगा। नहीं, अब नहीं।
2: हम तुम्हारे साथ हैं मोहन, इस बार सच में।

0: 6 माह बाद मोहन काम पर जाने को तैयार, आशा पढ़ाई में व्यस्त।
1: आज मैंने समाज सेवा का कोर्स ज्वाइन किया है, मैं दूसरों को भी नशे से बचाऊंगी।
2: अगर मेरी कहानी किसी को बचा सके तो मेरा संघर्ष सफल हो जाएगा।
1: मैं समाज सेवा में जाना चाहती हूँ
2: ताकि कोई और मेरी तरह ना गिरे।
3: मोहन, आज मनरेगा का काम कैसा रहा?
2: मेहनत की कमाई है सीमा, और सुकून भी।
4: बच्चों की छात्रवृत्ति का फॉर्म भी भर दिया गया है।
1: और दीदी, आज आंगनवाड़ी मीटिंग में नशा विरोधी अभियान की तारीख तय हुई है।
2: अगर सहारा ना मिलता तो शायद मैं आज भी अंधेरे में होता।
0: श्रोतो, नशा कोई स्टाइल नहीं, ये एक धीमी मौत है, लेकिन अगर इरादा मजबूत हो तो हर अंधेरा रोशनी में बदला जा सकता है। आज नहीं तो कभी नहीं, नशे को ना कहें, जीवन को हाँ कहें। हर अंधेरे में एक दिया होता है, बस जरूरत है उसे जलाने की। रेडियो पर ना सुनाई देने वाला संघर्ष असल जिंदगी में बहुत शोर मचाता है। जब परिवार साथ खड़ा हो तो सबसे बड़ी लत भी हार जाती है। श्रोतो, जिला नशा मुक्ति केंद्र और मनरेगा के बारे में मैं आपको थोड़ी सी विस्तृत जानकारी दे देती हूँ। जिला नशा मुक्ति केंद्र, आप सभी जानना चाहेंगे कि ये क्या है। ये भारत सरकार द्वारा चलाए जा रहे सरकारी नशा मुक्ति केंद्र हैं, जो जिले स्तर पर होते हैं। यहाँ पर मुफ्त इलाज, डॉक्टर द्वारा जांच, काउंसलिंग, जिसे आप लोग मानसिक सलाह के रूप में जानते हैं, जहाँ पर मुफ्त दवाइयाँ वे परिवार को मुफ्त सलाह भी दी जाती है। कुछ जगहों पर कुछ दिन रहने की सुविधा भी प्रदान की जाती है। अब सवाल आता है कि वहाँ कैसे जाएं?

0: इसके लिए आप अपने जिले के सरकारी अस्पताल जाएं, वहां पर आप पूछ सकते हैं कि नशा मुक्ति केंद्र कहां है। वहां आप अपना आधार कार्ड या कोई भी पहचान पत्र साथ ले जाएं। डॉक्टर या काउंसलर से मिलकर वहां पर इलाज आपका शुरू किया जाएगा। आप सभी जानते हैं कि पूरे भारत में एक हेल्पलाइन नंबर भी दिया गया है, जिसे 1446 के नाम से जानते हैं। ये सरकारी टोल फ्री नंबर है। मैं एक बार फिर से दोहरा देती हूँ, 1446, जिसे हमारी भाषा में हम बोल सकते हैं 1446। यहाँ से आपको आपके जिले के नशा मुक्ति केंद्र की जानकारी मिलती है, जहाँ इलाज, दवा और सलाह सब कुछ मुफ्त मिलता है। दूसरा, आपने मनरेगा योजना के बारे में सुना होगा। अब आप जानना चाहेंगे कि ये क्या है, मैं इसके बारे में भी आपको थोड़ी विस्तृत जानकारी दे देती हूँ। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के नाम से इसे जाना जाता है, जिसमें ग्रामीण परिवार को साल में 100 दिन का काम मिलने की गारंटी दी जाती है। और इसमें किसे काम मिलता है वो भी मैं बता देती हूँ। ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाला वयस्क व्यक्ति, जिसमें पुरुष या महिला दोनों हो सकते हैं, नशा छोड़ने के बाद काम पाने का बेहतरीन साधन है। और अब मैं आपको बताती हूँ कि काम कैसे मिलेगा। इसमें पहला स्टेप होता है, आपका एक कार्ड बनवाया जाएगा जो ग्राम पंचायत सरपंच के माध्यम से बनता है। उसके बाद वह सचिव के पास जाता है, जिसमें आपका आधार कार्ड और आपकी एक फोटो होती है। जब मनरेगा कार्ड बनता है, उसके बाद काम की मांग कर सकते हैं। आप पंचायत में जाके बोलिए कि मुझे मनरेगा में काम चाहिए। 15 दिन के अंदर काम देना अनिवार्य होता है। किस प्रकार के काम इसमें होते हैं, जैसे सड़क का निर्माण, तालाब की खुदाई, नाली या मिट्टी भराई, वृक्षारोपण, आपके आसपास के स्कूल या आंगनबाड़ी से जुड़े काम। मजदूरी का भुगतान सीधा आपके बैंक से खाते में आता है। श्रोता, ये सरकार के द्वारा दी जाने वाली सेवाएं हैं, जो हम जानते हुए भी जिनका लाभ हम नहीं उठा पाते। तो श्रोता, मैं आशा करती हूँ आज की इस कहानी ने आपको जरूर जागरूक किया होगा।
1: दोस्तों, जीवन बहुमूल्य है और हमें अपने जीवन को स्वस्थ रखना है। यदि हम अपने जीवन को स्वस्थ रखेंगे तो हम दीर्घायु को प्राप्त करेंगे, क्योंकि यदि व्यक्ति अपने शरीर पर ध्यान नहीं रखेगा, वो बीमारियों से भर जाएगा और धीरे धीरे उसकी आयु भी कम होती चली जाएगी। इसलिए अपने आप को स्वस्थ रखें, अपने शरीर पर ध्यान दें और अच्छा भोजन करें, और इस प्रकार के नशों से अपने आप को दूर रखें। हम यही आशा करते हैं कि यदि कोई भी व्यक्ति हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहा है और वो किसी भी प्रकार का नशा करता है, तो आज ही वो ये वादा करे अपने आप से कि वो आज के बाद उस नशे को नहीं करेगा, जो उसके जीवन को बर्बाद कर सकता है।
2: तो श्रोताओं, अब हमें जरूर बताएं कि आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा। अगर आप हमें कुछ सुझाव देना चाहते हैं या फिर आप अपने अनुभवों को हमसे बांटना चाहते हैं, तो हमें जरूर लिखें। हमारा पता है, कार्यक्रम उड़ान, पोस्ट बॉक्स नंबर 6, नई दिल्ली 110001। और हमारा फोन नंबर है 8860088827। जी हाँ, 8860088827। तो अब मुझे दीजिए अनुमति, अगले सप्ताह फिर होगी मुलाकात। तब तक खुश रहें, स्वस्थ रहें। नमस्कार।

श्रोतागण एखन अपना सब सुनि रहल छलहुँ प्रायोजित कार्यक्रम उड़ान, आओर एकटा कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना सेहो अछि। श्रोतागण, गर्मीके मौसम अगर सावधानी नहि राखल जाय तऽ लू लगबाक अलावा स्वास्थ्य सम्बन्धी कएकटा आन समस्या सेहो भऽ सकैत अछि। गर्मीके मौसममे स्वास्थ्य सम्बन्धी सावधानी सब इएह अछि आकाशवाणी दरभंगाके फोन इन कार्यक्रम हेलो जिंदगीके अगिला अङ्कक विषय। विशेषज्ञ हेता डॉक्टर फूलेश्वर झा। प्रसारणके दौरान कार्यक्रमसँ जुड़बाक लेल फोन नम्बर हैत 9430।

शून्ना 2935 एक और नंबर है, शून्ना 6272 222 481 फोन नंबर एक बेर फिर से सुन लेल जाए, 9430002935 एक आन नंबर 0627222481 समय याद राखी, रवि दिन 24 मई दिन के 11 बजे तल कार्यक्रम संबंधी सूचना। और श्रोतागण अपना सब लग में एखन मौसम संबंधी सूचना से हो है या कि अखन देख रहा छी जे लगातार ये मौसम बदल रहा है तो जे अपना सब लग में मौसम के संबंधी सूचना आयल है, ग्रामीण कृषि मौसम सेवा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा समस्तीपुर और भारत मौसम विज्ञान विभाग के सहयोग से जारी 23 से 27 मई तक के मौसम पूर्वानुमान है, ओकरा अनुसारे पूर्वानुमान के अवधि में उत्तर बिहार के जिला सब में गरज वाला मेघ बन सकते है, एकर प्रभाव से 24 से 25 मई के लगपास अनेकों स्थान पर हल्लुक बरखा भ सकते है, बरखा के समय तेज हवा चलबाक सेहो संभावना है, कतौ कतौ बिजली खसबाक सेहो अनुमान है, अवधि में सामान्य से बेसी तापमान रही सकते है, जकरा कारण एक दू दिन तक हीट वेव एहन स्थिति बन सकते है, पूर्वानुमानित अवधि में अधिकतम तापमान 37 से 39 डिग्री सेल्सियस के बीच रही सकते है, जखन कि न्यूनतम तापमान 27 से 28 डिग्री सेल्सियस के लगपास रही सके है, सापेक्ष आर्द्रता भोर में 70 से 75% आ दुपहरिया में 35 से 40% रहबाक अनुमान है, पूर्वानुमानित अवधि में औसतन 18 से 22 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से पूर्वावसात चलबाक संभावना है, तो मौसम संबंधी सूचना अपना सबके सतर्क रहबाक है कियाकि एतो अपना सबके हीट वेव से बचबाक है और तेज हवा से बच के रहबाक है, आब किछ समसामयिक सुझाव है, किसान सबके सलाह देल जात है जे 25 मई से नम्हर अवधि के धान के किस्म के लेल खेत के तैयारी और नर्सरी खसेबा काज शुरू कऽ दैथ, नर्सरी में नीक जकाँ सरलाह गोबर का खाद दी, उपचार हेतु कार्बेंडाइजीम 1 से 5 ग्राम प्रति किलोग्राम बिया के दर से हिसाब से व्यवहार करी, मकई के लेल किसान भाई के सलाह देल जात है जे ओ रवि मकई के कटाई और थ्रेसिंग पूरा करैथ और ग्रीष्मकालीन मकई में तना छेदक जे कीट है ओकर आक्रमण हेतु निगरानी सेहो राखैथ, खरीफ मक्का में बुआई के लेल खेत के तैयारी शुरू करी, जोताई के समय 100 से 150 क्विंटल सरलाह गोबर का खाद, 30 किलोग्राम नेत्रजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस आ 50 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर के दर से उपयोग अपना सबके करबाक चाही, आम के लेल किसान भाई के सलाह देल जात है जे ओ आम के जे अपना सबके बाड़ी है ओहिमे लाल बैड केटल पीलर जे होइत अछि, लाल बैड केटल पीलर ओकर संक्रमण के नियमित रूप से निगरानी करी आ संक्रमण के स्थिति में जे छे से अपना सब ओकर उचित उपचार सेहो करी, संगे बाग में नमी बना के राखी, आब समय कहि रहल अछि जे अपना सब आब कार्यक्रम के समाप्त करी, तो श्रोतागण।

0: ये था हमारा ग्रामीण प्रसारण। आप सुन रहे थे कार्यक्रम गांव घर एवं खेती गृहस्थी, प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया गया। थोड़ी ही देर में हमारे पटना केंद्र से
1: प्रतीक्षा करें।

आकाशवाणी एट 90 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर, घने बादलों को चीरकर, रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।

नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभिन्न सरकारी विभागों के 51,000 से अधिक चयनित कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र सौंपे। पटना में 114 अभ्यर्थियों को मिला नियुक्ति पत्र। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा, राज्य में AI के माध्यम से शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि समेत अन्य क्षेत्रों में विकास का लक्ष्य प्राप्त किया जाएगा। पटना विश्वविद्यालय सीनेट की वार्षिक बैठक में 535 करोड़ रुपए का बजट पारित। और दक्षिण बिहार के अधिकतर भागों में पारा 40 डिग्री के पार पहुंचा। रोहतास

0: का डेहरी 44.8 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ सबसे गर्म स्थान रहा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकारी नौकरियां नागरिकों के जीवन को बेहतर और आसान बनाने का महत्वपूर्ण माध्यम है। श्री मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 19वें रोजगार मेले का उद्घाटन करते हुए कहा कि पूरी दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनने के लिए उत्सुक है।
1: दुनिया भारत के युवाओं और भारत की टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस को लेकर बहुत उत्साहित है। आज दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनना चाहती है। भारत भी दुनिया के अलग अलग देशों के साथ पार्टनरशिप कर रहा है। इसका उद्देश्य यही है कि भारत के युवाओं को अवसर मिले, रोजगार मिले, उनका सामर्थ्य खिल उठे। साथ साथ मैं चाहता हूं मेरे देश के नौजवानों को ग्लोबल एक्सपोजर भी मिले।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि हर भारतीय आज देश को विकसित भारत बनाने के संकल्प के साथ काम कर रहा है। श्री मोदी ने नव नियुक्त कर्मचारियों को आई गॉट कर्मयोगी प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करने के लिए प्रोत्साहित भी किया।
1: कर्मयोगी प्रारंभ जैसे मॉड्यूल से आपको अपनी जिम्मेदारियां समझने में बहुत सहूलियत होगी। मेरा आपसे आग्रह है कि इसका ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाएं। आज भारत का युवा दुनिया के हर क्षेत्र में अपनी पहचान बना रहा है। यही स्पिरिट, यही ऊर्जा पब्लिक सर्विस में भी दिखाई देनी चाहिए। विकसित भारत ऐसे ही युवाओं के प्रयास से बनेगा जो अपने काम को देश सेवा का माध्यम मानते हैं।
0: हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के संरक्षक और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर साल 2 करोड़ लोगों को नौकरी देने का संकल्प लिया है। इसी संकल्प को पूरा करने का यह प्रयास है।
2: हर साल हम 2 करोड़ लोगों को नियोजन देंगे, नौकरी देंगे और उसी के तहत हर साल मेला लगाई जा रही है। आज कई एक जगहों में मेला लगी है, हजारों लोगों को आज नियुक्ति पत्र बटे हैं। गया का सौभाग्य है कि ये दूसरा बार हम लोग यहाँ इस भवन में उपस्थित हैं और यहाँ पर लगभग 74 लोगों को हम लोगों ने नियुक्ति पत्र बांटा।
0: विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम कुमार ने देश भर के युवाओं को बड़ी संख्या में नियुक्ति पत्र दिए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद किया है। गया में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार युवाओं से किए वादे पूरा कर रही है।
3: रोजगार मेला के तहत आज देश के 47 स्थानों पर 51,000 से अधिक अभ्यर्थियों को विभिन्न विभागों में नियुक्ति पत्र दिया गया है। केंद्र सरकार ने घोषणा जो की उसके अधिकारों को लगातार मतलब और उसमें 51,000 अधिक लोगों को नौकरी दी जा रही है, रोजगार दिए जा रहे हैं। तो माननीय प्रधानमंत्री जो वादा किया देश के वासियों से उस पर पूरा करने का काम कर रहे हैं। इस मौके पर हम माननीय प्रधानमंत्री जी को शुभकामना बधाई देते हैं।
0: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि युवा शक्ति, स्टार्टअप और नवाचार के बल पर बिहार डिजिटल क्रांति का अग्रणी राज्य बनेगा। श्री चौधरी ने पटना के ऊर्जा सभागार में आयोजित 2 दिवसीय एआई समिट का उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि एआई आधारित विकास से शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और प्रशासनिक व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाया जाएगा।
4: लोग कहते हैं बिहार पीछे छूट गया है, अर्थव्यवस्था हो, सामाजिक संरचना हो या हमारे नौजवान यहाँ से पलायन कर रहे हैं, इस पूरे चीजों पर चर्चा हमको करनी है। और एआई ऐसा सेंटर है, समिट जो आज आप लोगों ने रखा है और आगे भी आईटी डिपार्टमेंट आगे भी इसी तरह के समिट को लगातार करते रहेगा जब तक हम एआई के स्तर पर खड़ा नहीं होगा।
0: श्री चौधरी ने कहा कि इस समिट का मुख्य उद्देश्य राज्य को टेक्नोलॉजी हब बनाना और युवाओं को कौशल विकास के नए अवसर प्रदान करना है। कार्यक्रम में देश भर के एआई विशेषज्ञ, स्टार्टअप, डेवलपर्स और शोधकर्ता समेत हजारों की संख्या में छात्र शामिल हो रहे हैं। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज बक्सर जिले के डुमराव अनुमंडल में विभिन्न योजनाओं का शुभारंभ किया। श्री चौधरी ने अनुमंडल कार्यालय परिसर स्थित बक्सर के प्रथम सांसद महाराजा कमल सिंह की प्रतिमा का लोकार्पण भी किया। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग की ओर से आयोजित एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के तहत युवा संगम के 6ठे चरण में पंजाब के आईआईटी रोपड़ के 60 चयनित युवा बिहार दौरे पर पहुंचे हैं। एक रिपोर्ट।
5: प्रधानमंत्री

0: मोदी द्वारा शुरू किए गए एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के तहत आज पटना के राजेंद्र नगर रेलवे स्टेशन पर आईआईटी रोपड़ के चयनित युवाओं का जत्था पहुंचा। आईआईटी पटना के नोडल अधिकारी डॉ. सतीन्द्र कुमार और कृपा शंकर ने उनका स्वागत किया। इस दौरान प्रतिनिधि मंडल के सदस्यों ने खुशी जाहिर की।
1: मैं दूसरी बार बिहार आई हूं। मैं पहले पटना साहिब जाके आई थी, तब मैं काफी छोटी थी, पर ये एक्सपीरियंस अच्छा है। कमिंग फ्रॉम आईआईटी रोपड़ इन अ ग्रुप विद स्टूडेंट्स टू एक्सप्लोर द कल्चरल हेरिटेज, तो आई थिंक अभी तक का एक्सपीरियंस कह रहा है कि आगे कुछ अच्छा ही होगा।
0: युवा संगम कार्यक्रम के तहत बिहार दौरे पर आए प्रतिनिधियों को राज्य की सांस्कृतिक विविधता, परंपरा और सामाजिक जीवन से अवगत कराया जाएगा। समाचार कक्ष से मैं नंदिनी।
2: शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
3: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_पटना को फॉलो कर सकते हैं। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने 21 जून को होने वाली नीट यूजी 2026 पुनर्परीक्षा के परीक्षार्थियों को सरकारी बसों में निःशुल्क आवागमन की सुविधा दिए जाने की घोषणा की है। श्री चौधरी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इसका उद्देश्य दूरदराज के क्षेत्रों से आने वाले विद्यार्थियों को बिना किसी आर्थिक और मानसिक तनाव के समय पर परीक्षा केंद्रों तक पहुंचाना है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि राज्य में अगले 5 वर्षों में 1,00,000 शिक्षकों की नियुक्ति होगी। इसके अंतर्गत हर साल कम से कम 20,000 शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। एक रिपोर्ट।
1: शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि हर वर्ष जुलाई महीने में शिक्षक नियुक्ति विज्ञापन जारी किया जाएगा। शिक्षकों की स्थानांतरण नीति पारदर्शी होगी। महिला शिक्षकों का स्थानांतरण यथासंभव गृह जिले के प्रखंड के पंचायत में होगी। पुरुष शिक्षकों का गृह जिला के गृह प्रखंड के बगल के प्रखंड में तबादला किया जाएगा। सभी विद्यालयों में छात्र छात्राओं को पोशाक की आपूर्ति जीविका के माध्यम से की जाएगी। समाचार कक्ष से रजनीकांत चौधरी।
0: बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने मैट्रिक और इंटरमीडिएट कंपार्टमेंटल परीक्षा 2026 का परिणाम जारी कर दिया है। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने बोर्ड कार्यालय में परीक्षा परिणाम जारी किया। इंटरमीडिएट कंपार्टमेंटल परीक्षा में 3,711 परीक्षार्थी सफल हुए हैं, जबकि मैट्रिक कंपार्टमेंटल परीक्षा में 3,450 छात्रों ने सफलता प्राप्त की है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा है कि ऊर्जावान कार्यकर्ता ही पार्टी की असली ताकत हैं। श्री नवीन ने प्रदेश भाजपा की ओर से पटना सिटी में आयोजित 2 दिवसीय दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाभियान का उद्घाटन करते हुए ये बात कही। इस अवसर पर पटना साहिब के सांसद रविशंकर प्रसाद, प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी समेत पार्टी के कई वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता मौजूद थे। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी कल समापन सत्र में शामिल होंगे। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज वृद्धि की गई है। बिहार में पेट्रोल की कीमत में 87 पैसे प्रति लीटर और डीजल की कीमत में 91 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई है। पिछले 10 दिनों में पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्य में तीसरी बार वृद्धि हुई है। प्रदेश के विभिन्न भागों में मौसम का मिला जुला रूप देखने को मिल रहा है। राज्य के दक्षिणी भागों में भीषण गर्मी और लू की स्थिति बनी हुई है। वहीं उत्तर पूर्वी भागों में पश्चिमी विक्षोभ के कारण आंधी बारिश की परिस्थितियां बनी हुई हैं। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार औरंगाबाद, गया, भभुआ, बक्सर, अरवल, जहानाबाद समेत राज्य के दक्षिण पश्चिम और दक्षिण मध्य भागों में गर्मी के प्रकोप से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित है। पटना और आसपास के क्षेत्रों में भी अधिकतम पारा 41 डिग्री सेल्सियस को पार कर गया है। मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि राज्य के उत्तर मध्य और उत्तर पूर्व भागों को छोड़कर अधिकतर क्षेत्रों में अगले कुछ दिनों तक गर्मी से राहत की संभावना नहीं है। इधर विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान सुपौल, अररिया, किशनगंज और कटिहार समेत राज्य के उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व भागों में विभिन्न स्थानों पर तेज हवा के साथ मध्यम बारिश का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। हमारे

0: हमारे संवाददाता ने बताया है कि जिले के विभिन्न भागों में आज शाम तेज आंधी के साथ बारिश हुई है। इस दौरान कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि भी हुई। पटना विश्वविद्यालय के सीनेट की आज संपन्न वार्षिक बैठक में 535 करोड़ रुपए का बजट पारित किया गया है। एक रिपोर्ट।
1: पटना विश्वविद्यालय के सीनेट हॉल में आयोजित बैठक में विश्वविद्यालय में शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने, छात्र छात्राओं को छात्रावास की बेहतर सुविधा तथा वाचनालय और पुस्तकालय को आधुनिक बनाने संबंधी विभिन्न प्रस्तावों पर चर्चा की गई। विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर अजय कुमार सिंह ने अपने अध्यक्षीय भाषण में विश्वविद्यालय की उपलब्धियों और जारी कार्यों की जानकारी दी। इस अवसर पर विधान पार्षद नीरज कुमार समेत सीनेट के अन्य सदस्य और विश्वविद्यालय के अधिकारी मौजूद रहे। नीरज कुमार ने आकाशवाणी से विशेष बातचीत में बैठक के दौरान हुई चर्चा के बिंदुओं की जानकारी दी।
2: सीनेट में छात्र शिक्षक कर्मचारियों संवाद का माध्यम, उनका प्रोन्नति, मातृत्व अवकाश, कर्मचारी संघ के नेता का स्थानांतरण, छात्र नेता जो बच्चे पीएचडी के लिए है, दूसरी मांगों के लिए है, हम लोगों ने अनुरोध किया है कि कुलपति महोदय इनसे वार्ता करके समस्या का निदान करिए।
1: बैठक के दौरान परिसर के बाहर आईसा, AISF और

0: व्यवस्था को बेहतर बनाने, छात्र छात्राओं को छात्रावास की बेहतर सुविधा तथा वाचनालय और पुस्तकालय को आधुनिक बनाने संबंधी विभिन्न प्रस्तावों पर चर्चा की गई। विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर अजय कुमार सिंह ने अपने अध्यक्षीय भाषण में विश्वविद्यालय की उपलब्धियों और जारी कार्यों की जानकारी दी। इस अवसर पर विधान पार्षद नीरज कुमार समेत सीनेट के अन्य सदस्य और विश्वविद्यालय के अधिकारी मौजूद रहे। नीरज कुमार ने आकाशवाणी से विशेष बातचीत में बैठक के दौरान हुई चर्चा के बिंदुओं की जानकारी दी।
1: सीनेट में छात्र शिक्षक कर्मचारियों संवाद का माध्यम, उनका प्रोन्नति, मातृत्व अवकाश, कर्मचारी संघ के नेता का स्थानांतरण, छात्र नेता जो बच्चे पीएचडी के लिए है, दूसरी मांगों के लिए है, हम लोगों ने रोज किया है कि कुलपति महोदय इनसे वार्ता करके समस्या का निदान करिए।
0: बैठक के दौरान परिसर के बाहर आईसा, AISF और अन्य छात्र संगठनों ने विभिन्न मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। सीनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। पूर्व में किए गए कार्यों की समीक्षा की गई और भविष्य में किए जाने वाले योजनाओं पर विचार विमर्श किया गया। समाचार कक्ष से सत्यम कुमार।
2: भाकपा माले ने राज्य में शिक्षा व्यवस्था में गड़बड़ी, शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ अन्याय और नीट पेपर लीक मामले को लेकर आंदोलन की घोषणा की है। पार्टी महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने पटना में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि 24 मई को पटना में विरोध प्रदर्शन मार्च निकाला जाएगा। उन्होंने राज्य सरकार पर लोगों की असली समस्याओं की अवहेलना करने का आरोप लगाया है। बेगूसराय के बरौनी रेलवे स्टेशन पर टाटानगर थावे एक्सप्रेस की एक बोगी से पुलिस ने 52 लीटर विदेशी शराब बरामद की है। वहीं जिले के लाखो थाना क्षेत्र अंतर्गत बाजितपुर गांव के पास सड़क हादसे में एक किसान की मौत हो गई। नवादा के कृष्णा प्रसाद स्टेडियम में आज से 2 दिवसीय जिला एथलेटिक्स प्रतियोगिता की शुरुआत हुई है। जिला एथलेटिक्स एसोसिएशन के तत्वावधान में आयोजित प्रतियोगिता में सरकारी और निजी विद्यालयों के छात्र छात्राएं भाग ले रहे हैं। पश्चिम चंपारण जिले के बेतिया GMCH अस्पताल रोड में अतिक्रमण हटाने गई पुलिस पर असामाजिक तत्वों ने पथराव कर दिया। इस घटना में 2 पुलिसकर्मी और 1 नगर निगम कर्मचारी घायल हो गया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभिन्न सरकारी विभागों के 51,000 से अधिक चयनित कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र सौंपे। पटना में 114 अभ्यर्थियों को मिला नियुक्ति पत्र। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा, राज्य में AI के माध्यम से शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि समेत अन्य क्षेत्रों में विकास का लक्ष्य प्राप्त किया जाएगा। पटना विश्वविद्यालय सीनेट की वार्षिक बैठक में 535 करोड़ रुपए का बजट पारित। और दक्षिण बिहार के अधिकतर भागों में पारा 40 डिग्री के पार पहुंचा। रोहतास का डेहरी 44.8 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ सबसे गर्म स्थान रहा। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। प्रस्तुत है सहरसा जिले की हलचल। इसे प्रस्तुत कर रही हैं हमारी संवाददाता आरती कुमारी।
1: आम लोगों की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए सहरसा जिले के सभी 10 प्रखंडों के चिन्हित स्थलों पर सहयोग शिविरों का आयोजन किया गया। शिक्षा मंत्री और जिले के प्रभारी मंत्री मिथिलेश तिवारी भी इस शिविर में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने आम जनों से सीधे संवाद स्थापित कर उनकी समस्याओं, शिकायतों एवं आवश्यकताओं को गंभीरतापूर्वक सुना तथा संबंधित अधिकारियों को त्वरित निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। सहयोग शिविर में बड़ी संख्या में ग्रामीणों की सहभागिता देखने को मिली। लोगों ने भूमि विवाद, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, राशन कार्ड, आवास योजना, पेयजल, सड़क, बिजली, स्वास्थ्य सहित अन्य जनहित से जुड़े मामलों को मंत्री के समक्ष रखा। इस दौरान मिथिलेश तिवारी ने विभिन्न शिविरों का निरीक्षण भी किया। मंत्री ने कहा कि अब प्रत्येक महीने में 2 बार शिविर लगाए जाएंगे, जिससे जनता को ब्लॉक नहीं जाना पड़ेगा। जिले में भारत की जनगणना 2027 के प्रथम चरण के तहत मकान सूचीकरण और मकानों की गणना का कार्य तेजी से किया जा रहा है। यह अभियान 2 मई से शुरू हुआ है, जो आगामी 31 मई तक जारी रहेगा। जिलाधिकारी दीपेश कुमार ने बताया कि जिले में मकान सूचीकरण का कार्य लगातार प्रगति पर है। उन्होंने कहा कि जनगणना के तहत नियुक्त प्रगणक घर घर जाकर मकानों से संबंधित आवश्यक जानकारियां एकत्र कर रहे हैं। जिलाधिकारी ने आम लोगों से अपील की कि जब प्रगणक उनके घर पहुंचे तो उन्हें सही और पूरी जानकारी उपलब्ध कराई जाए, ताकि जनगणना कार्य को सफलतापूर्वक और पारदर्शी तरीके से संपन्न कराया जा सके। वैश्विक ऊर्जा संकट के बीच सहरसा जिले में घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की आपूर्ति स्थिति सामान्य बनी हुई है। गैस एजेंसियों द्वारा उपभोक्ताओं को नियमित रूप से होम डिलीवरी सेवा प्रदान की जा रही है। जिला प्रशासन ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे घबराकर या पैनिक में आकर घरेलू गैस सिलेंडरों की अनावश्यक बुकिंग न करें। जिले में सौर बाजार प्रखंड क्षेत्र में सड़क सुरक्षा नियमों के प्रति आम नागरिकों को जागरूक करने तथा नियमों के प्रभावी अनुपालन को सुनिश्चित कराने के लिए विशेष वाहन जांच अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान वाहन चालकों को सड़क सुरक्षा के महत्वपूर्ण नियमों के पालन के लिए जागरूक किया गया। निगरानी अन्वेषण ब्यूरो की टीम जिले में भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है। इसी क्रम में सहरसा जिले के महिषी अंचल कार्यालय में कार्रवाई करते हुए टीम ने रिश्वतखोरी के आरोप में एक राजस्व कर्मचारी और उसके निजी सहयोगी को रंगे हाथ गिरफ्तार किया। गिरफ्तार राजस्व कर्मचारी पर रसीद काटने के नाम पर 16,000 रुपये रिश्वत मांगने का आरोप है। सहरसा पुलिस द्वारा कोशी क्षेत्र में जनवरी 2026 से 8 मई 2026 तक नशा मुक्ति अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान पुलिस ने 448 तस्करों एवं आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा। इस दौरान लगभग 2,92,64,000 रुपये मूल्य के नशीले पदार्थ एवं शराब बरामद किए गए। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 35वीं पुण्यतिथि के अवसर पर जिले के विभिन्न स्थानों पर श्रद्धांजलि सभाओं का आयोजन किया गया। कांग्रेस कार्यालय में कार्यकर्ताओं ने उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। सहरसा जिले के सलखुआ प्रखंड अंतर्गत चानन पंचायत में जीविका हाट का उद्घाटन किया गया। यह पहल ग्रामीण महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण और स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। यह जीविका हाट सप्ताह में 2 दिन संचालित किया जाएगा, जहां जीविका दीदियां ताजी सब्जियां और दैनिक उपयोग की वस्तुओं का विक्रय करेंगी। बीते दिनों अपर समाहर्ता निशांत कुमार ने सहरसा जिला एथलेटिक्स मीट के 41वें संस्करण का उद्घाटन मशाल प्रज्वलित कर किया। इस प्रतियोगिता में जिले के 370 खिलाड़ियों ने विभिन्न आयु वर्गों में भाग लिया। बेहतर प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को 10 से 13 जून 2026 तक पटना में आयोजित राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेने का अवसर मिलेगा।
0: अभी आप सुन रहे थे सहरसा जिले की

एक बार पुनः आप सभी श्रोताओं का आकाशवाणी के दरभंगा स्टूडियो में स्वागत है। आप सुन रहे हैं दूसरी सभा के कार्यक्रमों को। दूसरी सभा के कार्यक्रमों को आगे बढ़ाते हुए अब आपको सुनवाते हैं फिल्म संगीत।

ये थे अनुपम आमोद और फिल्म थी आक्रोश। अगला गाना हमने लिया है फिल्म बिच्छू से। इस गीत को गाया है श्वेता शेट्टी और हंसराज हंस ने। समीर की रचना है और हंसराज हंस का संगीत। सुनते हैं फिल्म बिच्छू का ये गीत।

श्रेया घोषाल और राहत फतेह अली खान को भी आप सुन रहे थे फिल्म बोल बच्चन में। शमीर अहमद के बोल थे और हिमेश रेशमिया का संगीत। कार्यक्रम के अंत में आइए आपको सुनवाते हैं गुरु रंधावा की आवाज में फिल्म ब्लैकमेल का ये गीत। गीत और संगीत गुरु रंधावा का ही है।

गुरु रंधावा के गाए फिल्म ब्लैकमेल के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से बोल रहे हैं।

श्रोताओं नमस्कार। कार्यक्रम हमारा पर्यावरण के आज के इस अंक में आपका स्वागत है। आज के इस अंक के साथ मैं कल्याण कुमार झा। श्रोताओं आज के परिदृश्य में हमारा पर्यावरण हमारी असंयमित जीवन शैली के कारण कई तरह से प्रदूषित हो रहा है। इस प्रदूषण के विभिन्न कारकों में एक है ध्वनि प्रदूषण, जो हमारे पर्यावरण को किस तरह प्रभावित कर रहा है। आज के इस अंक में कार्यक्रम हमारा पर्यावरण की चर्चा का विषय इसी पर आधारित है। ध्वनि प्रदूषण पर्यावरण को किस प्रकार प्रभावित करता है? श्रोताओं ध्वनि प्रदूषण से संबंधित आज के इस अंक में हमारी दूसरी चर्चा का विषय होगा ध्वनि प्रदूषण से हमारे स्वास्थ्य पर पड़ता प्रभाव। तो हम बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और बातें करते हैं कि ध्वनि प्रदूषण हमारे पर्यावरण को किस प्रकार

प्रभावित करता है। श्रोताओं, ध्वनि प्रदूषण हमारे पर्यावरण को प्रभावित करता है। इसके बारे में बातें करने से पहले हमें यह जानना आवश्यक है कि ध्वनि प्रदूषण क्या है। श्रोताओं, भौतिक दृष्टि से ध्वनि दो प्रकार की होती है, संगीत और शोर। किसी ध्वनि उत्पन्न करने वाली वस्तु के नियमित कंपन से उत्पन्न ध्वनि, जो एक निश्चित स्वर पर आधारित होती है, संगीत कहलाता है, जो कर्णप्रिय होता है। लेकिन यही ध्वनि जब अपने मानक स्तर से अधिक तीव्र हो जाती है तो शोर कहलाती है। वह ध्वनि जो लोगों को चिड़चिड़ा बना दे या जिसकी आवाज़ बहुत तेज हो और पर्यावरण को विभिन्न प्रकार से दुष्प्रभावित करे, तो ध्वनि प्रदूषण कहलाता है। ध्वनि प्रदूषण का अर्थ है कि उत्पन्न होने वाला शोर निर्दिष्ट उत्सर्जन शोर मानक से अधिक होता है और दूसरों के सामान्य अध्ययन और कार्य में बाधा डालता है। यूं तो ध्वनि किसी वस्तु के कंपन के प्रति मानव कान की व्यक्तिपरक धारणा है, जबकि शोर न केवल लोगों के मूड, काम और अध्ययन को प्रभावित करता है, बल्कि लोगों के स्वास्थ्य को भी नुकसान पहुंचाता है। श्रोताओं, ध्वनि प्रदूषण अवांछित या तेज आवाज है जो मानव स्वास्थ्य और संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाती है। यह पारिस्थितिकी संतुलन को बिगाड़ता है, वन्य जीवों के संचार और प्रजनन को भी बाधित करता है तथा मनुष्यों में शारीरिक और मानसिक बीमारियों का कारण बनता है। श्रोताओं, ध्वनि प्रदूषण के प्रमुख प्रभावों की बात करें तो इसके अंतर्गत हम सबसे पहले जानते हैं वन्य जीवों और जैव विविधता पर पड़ने वाले इसके प्रभावों के बारे में। संचार और दिशा निर्देशन में बाधा। श्रोताओं, कई जानवर और पक्षी शिकारियों से बचने, भोजन की तलाश या साथी को आकर्षित करने के लिए ध्वनि का उपयोग करते हैं। अत्यधिक शोर के कारण वे एक दूसरे की आवाज़ नहीं सुन पाते हैं, जिससे उनके संचार और दिशा निर्देशन में बाधा पहुंचती है। प्रजनन क्षमता में कमी। शोर के कारण पक्षियों और स्तनधारियों में तनाव बढ़ता है, जिससे उनके प्रजनन और बच्चों के पालन पोषण में बाधा उत्पन्न होती है। फलस्वरूप जैव विविधता में क्षरण होता है और जीवों की आबादी घटने लगती है। समुद्री जीवन को खतरा। जहाज़ों के इंजन और तेल उत्खनन से महासागरों का शांत वातावरण अशांत हो गया है। व्हेल और डॉल्फिन जैसे समुद्री जीव जो इकोलोकेशन पर निर्भर हैं, अत्यधिक शोर के कारण भ्रमित होकर तटों पर आ जाते हैं, जिससे उनका जीवन खतरे में पड़ जाता है। श्रोताओं, ध्वनि प्रदूषण के प्रमुख प्रभावों में मानव स्वास्थ्य पर ध्वनि प्रदूषण का पड़ता प्रभाव, इसके बारे में हम कार्यक्रम की दूसरी चर्चा में बातें करेंगे, जिसका विषय है ध्वनि प्रदूषण से हमारे स्वास्थ्य पर पड़ता प्रभाव। तत्काल हम ध्वनि प्रदूषण के प्रमुख प्रभावों के अंतर्गत

बातें करते हैं, पर्यावरण और पारिस्थितिकी तंत्र पर पड़ने वाले ध्वनि प्रदूषण के प्रभावों के बारे में। इसके अंतर्गत हम जानते हैं कि किस तरह इसका प्रभाव पेड़ पौधों पर पड़ता है। श्रोताओं, कुछ पर्यावरणीय शोधों से पता चलता है कि अत्यधिक शोर पौधों के विकास और बीजों के अंकुरण की प्रक्रिया को प्रभावित करता है। प्राकृतिक संतुलन में असंतोष। हाँ श्रोताओं, जब शोर के कारण शिकार करने वाले जीव या अन्य जीव की विभिन्न प्रजातियाँ अपना स्थान बदल लेती हैं तो पूरी खाद्य श्रृंखला असंतुलित हो जाती है, जिससे प्राकृतिक संतुलन में असंतोष उत्पन्न होता है। लोगों के जीवन पर पड़ता प्रभाव। लोगों के दैनिक जीवन में वे अक्सर विभिन्न पहलुओं के माध्यम से शोर से परेशान होते हैं, जैसे कार की सीटी का शोर, निर्माण शोर, यांत्रिक संचालन शोर और शॉपिंग मॉल शोर इत्यादि। ये शोर न केवल मानव के सामान्य जीवन को प्रभावित करता है, बल्कि उनके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को भी बहुत नुकसान पहुंचाता है। अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। इसके अंतर्गत ध्वनि प्रदूषण हमारे आर्थिक विकास में एक महत्वपूर्ण बाधा है, क्योंकि शोर विभिन्न उद्योगों में श्रमिकों में अवसाद और चिड़चिड़ापन पैदा करता है, जिससे कार्यकुशलता में कमी आती है और परिणाम स्वरूप उद्यमों के आर्थिक लाभ और आय पर भी असर पड़ता है। खरीद फरोख्त में भी इसके कारण हानि पहुंचती है, क्योंकि क्षेत्र में यदि ध्वनि प्रदूषण गंभीर है या इमारत की ध्वनि निरोधक क्षमता स्वयं मजबूत नहीं है तो अधिकांश लोग इन इमारतों को खरीदने या पट्टे पर लेने से हिचकिचाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप अचल संपत्ति का मूल्य ह्रास होता है। इससे अर्थव्यवस्था प्रभावित होती है। श्रोताओं, ध्वनि प्रदूषण के मापन की बात करें तो इसके मापन में इसके स्तर का मात्रात्मक मूल्यांकन और स्रोतों की पहचान तथा पर्यावरण पर इसके प्रभाव शामिल हैं। ध्वनि प्रदूषण को मापने के लिए आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाले मापदंडों में ध्वनि दबाव स्तर अर्थात SPL, आवृत्ति अवधि और विशिष्ट शोर स्रोतों की उपस्थिति भी शामिल हैं। ध्वनि स्तर मीटर अर्थात SLM शोर मापने के लिए प्रयोग किया जाने वाला प्राथमिक उपकरण है। यह SLM किसी दिए गए वातावरण में समग्र ध्वनि स्तर को मापता है तथा ध्वनि प्रदूषण को प्रायः मानव स्वास्थ्य और मानव कल्याण पर इसके प्रभाव के संदर्भ में मापा जाता है। आवासीय, वाणिज्यिक और औद्योगिक क्षेत्रों जैसे विभिन्न स्थानों में स्वीकार्य शोर के स्तर को परिभाषित करने के लिए नियामक निकायों द्वारा दिशा निर्देश और मानक स्थापित किए जाते हैं। श्रोताओं, अब जानते हैं ध्वनि प्रदूषण के प्रमुख कारणों के बारे में। सबसे पहला कारण है औद्योगिकरण। महानगरीय क्षेत्रों में फैलते उद्योग, जिनमें अधिक शोर करने वाली मशीनें लगी होती हैं, वर्तमान में ध्वनि प्रदूषण के मुख्य स्रोतों में से एक है। दूसरा कारण है अप्रभावी शहरी नियोजन। इससे शहर के निवासियों को अधिक परेशानी होती है। उदाहरण के तौर पर तंग क्वार्टरों में रहने वाले बड़े परिवार, भीड़ भाड़ वाले घर, पार्किंग विवाद इत्यादि भी ध्वनि प्रदूषण का एक प्रमुख कारण है। फैक्ट्री उपकरण। श्रमिकों को मिलों, मशीनों और वायवीय ड्रिलों के निरंतर

निरंतर संचालन से उत्पन्न असहनीय शोर, जिससे काफ़ी परेशानी सहनी पड़ती है। सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी ध्वनि प्रदूषण के प्रमुख कारणों में से एक कारण है। सामाजिक या सांस्कृतिक कार्यक्रमों जैसे विवाह, मुंडन आदि के दौरान हम प्रायः काफ़ी तेज आवाज़ में संगीत बजाते हैं, जिससे बृहत स्तर पर ध्वनि प्रदूषण होता है। पटाखों का इस्तेमाल भी ऐसे कार्यक्रमों में शोर उत्पन्न करता है जो सभी उम्र के लोगों के लिए कभी कभी घातक सिद्ध होता है। सड़क पर वाहनों की संख्या में दिनानुदिन हो रही वृद्धि भी ध्वनि प्रदूषण का एक प्रमुख कारण है। सेना द्वारा किए जाने वाले अभ्यास में या युद्ध के दौरान होने वाले फायरिंग, रॉकेट प्रक्षेपण, विस्फोट, जेट प्रशिक्षण, टैंक आदि से घोर शोर उत्पन्न होता है जो ध्वनि प्रदूषण को बढ़ाता है। घरेलू गैजेट जैसे कूलर, एयर कंडीशनर, एग्जॉस्ट पंखे, वैक्यूम क्लीनर, वॉशिंग मशीन, प्रेशर कुकर, फूड मिक्सर, सामान्य बिजली पंखे सहित अन्य घरेलू उपकरण भी शोर उत्पन्न करते हैं तथा ध्वनि प्रदूषण में वृद्धि करते हैं। इसके अलावे कृषि यंत्र जैसे ट्रैक्टर, ट्रॉलियां, हार्वेस्टर, ट्यूबवेल इत्यादि ध्वनि प्रदूषण के प्रमुख कारकों में शामिल हैं। निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि ध्वनि प्रदूषण परिवहन और अन्य चीज़ों जैसे सड़क, वायु और रेल यातायात, औद्योगिक गतिविधि, निर्माण कार्य और शहरीकरण जैसे स्रोतों से होने वाला शोर ध्वनि प्रदूषण का घातक स्तर है। ध्वनि प्रदूषण की रोकथाम के लिए भारत में कानून की बात करें तो यह ध्वनि प्रदूषण विनियमन और नियंत्रण नियम 2000 द्वारा शासित है, जिसके द्वारा औद्योगिक, वाणिज्यिक, आवासीय और शांत क्षेत्रों जैसे विभिन्न क्षेत्रों के लिए डिसिबल सीमा निर्धारित की गई है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB इसके अतिरिक्त अपने राज्य समकक्षों के साथ मिलकर लोगों को जागरूक करने के लिए शैक्षिक कार्यक्रमों का आयोजन करते रहते हैं। ध्वनि स्तर मीटर का उपयोग करके शोर के स्तर को मापा जाता है। इस डेटा का उपयोग सीमाओं के अनुपालन की जांच करने, प्रभावों का आकलन करने और नीति पर निर्णय लेने के लिए किया जाता है। इसके द्वारा नियंत्रण उपायों जैसे जोनिंग कानून, इमारतों की ध्वनिरोधी व्यवस्था, हरित अवरोधक, लाउडस्पीकरों के उपयोग पर ध्वनि सीमा तथा आतिशबाजी के उपयोग को सीमित करना शामिल है। तकनीकी नवाचार के तहत शोर को कम करने वाली शांत मशीनरी, वाहन और बुनियादी ढांचे के डिजाइन का विकास और संवर्धन शामिल है। इन सभी उपायों से कहीं बेहतर उपाय है जनभागीदारी और जागरूकता। इसके अंतर्गत लोगों को ध्वनि प्रदूषण के प्रतिकूल प्रभावों के बारे में शिक्षित किया जाता है, उल्लंघनों की रिपोर्ट करने और शांत व्यवहार को प्रोत्साहित करके जनभागीदारी बढ़ाई जा सकती है। श्रोताओं, ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने में हमारा सहयोग अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके लिए हमें CPCB अर्थात केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण ब्यूरो द्वारा भारत में विभिन्न स्थानों के लिए स्वीकार्य ध्वनि स्तर जो निर्धारित किए गए हैं उसका पालन करना और समाज के साथ मिलकर इसका पालन करवाने के लिए जागरूकता पैदा करना अनिवार्य है। दिन और रात के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में ध्वनि का स्वीकार्य स्तर ध्वनि प्रदूषण विनियमों द्वारा निर्धारित किया गया है। इसके अंतर्गत दिन और

रात के दौरान अलग अलग जगहों के लिए अलग अलग ध्वनि स्तर स्वीकार्य है। औद्योगिक क्षेत्रों में स्वीकार्य अधिकतम सीमा दिन के दौरान 75 डीबी और रात के दौरान अर्थात रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक 70 डीबी है। वाणिज्यिक क्षेत्रों में दिन के दौरान 65 डीबी और रात के दौरान 55 डीबी है। वहीं आवासीय क्षेत्रों में दिन के दौरान 55 डीबी और रात के दौरान 45 डीबी है। राज्य सरकारों ने शांत क्षेत्र भी स्थापित किए हैं। ऐसे क्षेत्र हैं स्कूलों, कॉलेजों, अस्पतालों और अदालतों के स्थानों से 100 मीटर तक की दूरी पर स्थित क्षेत्र। इस क्षेत्र में दिन के दौरान अनुमत शोर सीमा 50 डीबी और रात में 40 डीबी है। श्रोताओं, ध्वनि की सापेक्ष तीव्रता व्यक्त करने के लिए एक इकाई है डीबी अर्थात डेसिबल। श्रोताओं, सार्वजनिक स्थानों पर विभिन्न स्रोतों से बढ़ते परिवेशीय शोर के स्तर को नियंत्रित करने के लिए केंद्र सरकार ने 14 फरवरी 2020 को ध्वनि प्रदूषण विनियमन और नियंत्रण नियम 2000 लागू किए। यह पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत दिए गए अधिकार के अनुसार किया गया था। लाउडस्पीकरों और सार्वजनिक संबोधन प्रणालियों का उपयोग शोर नियम 2000 के नियम 5 द्वारा प्रतिबंधित है। ध्वनि उत्पन्न करने वाले उपकरणों के उपयोग पर रोक लगाने के लिए नियम 5 को 2010 में संशोधित किया गया था। इनमें से प्रत्येक परिदृश्य में ऐसी तकनीक को उपयोग में लाने से पहले लिखित प्राधिकरण की आवश्यकता होती है। ध्वनि नियम 2000 के अनुसार कार्यान्वयन प्राधिकारी, जिला मजिस्ट्रेट, पुलिस आयुक्त तथा कोई अन्य अधिकारी जो पुलिस अधीक्षक स्तर से नीचे का न हो, राज्य सरकार के पास पूरे वर्ष में कुल 15 दिनों से अधिक नहीं चलने वाले किसी भी सीमित अवधि के धार्मिक या सांस्कृतिक समारोह के दौरान लाउडस्पीकर के इस्तेमाल को अधिकृत करने का अधिकार है। लेकिन रात्रि 10 बजे से रात्रि 12 बजे के बीच ऐसी छूट की अनुमति नहीं है। रात के समय बिजली के उपकरणों, तेज आवाज वाले संगीत, लैंड मूवर्स, लाउड स्पीकर वाले सार्वजनिक कार्यक्रमों आदि का उपयोग प्रतिबंधित होना चाहिए। हॉर्न, अलार्म, रेफ्रिजरेटर और अन्य उपकरणों का अत्यधिक उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। तेज आवाज वाले वायु प्रदूषण फैलाने वाले पटाखों का उपयोग सीमित करना उपयुक्त है। वनस्पति से भरे शोर अवशोषित बफर जोन बनाने के लिए बहुत सारे पेड़ लगाना, संगीत वाद्य यंत्रों की ध्वनि को स्वीकार्य सीमा के भीतर रखा जाना अनिवार्य है। एकीकृत रणनीतियों के माध्यम से ध्वनि प्रदूषण को पर्यावरण संबंधी चिंताओं की एक विस्तृत श्रृंखला के अंतर्गत ध्यान में रखा जाना चाहिए, विशेष रूप से ध्वनि और वायु प्रदूषण के संयोजन के लिए। श्रोताओं, कार्यक्रम में हम आगे बढ़ते हैं और रुख करते हैं कार्यक्रम की दूसरी चर्चा की ओर, जिसका विषय है ध्वनि प्रदूषण से हमारे स्वास्थ्य पर पड़ता प्रभाव। श्रोताओं, उत्सवों, त्योहारों, समारोहों, जलसों या सामान्य दिनों में भी हम ध्वनि प्रदूषण के प्रतिकूल प्रभावों का शिकार होते रहते हैं और तीव्रतम ध्वनि में संगीत सुनते हुए हम नाचते झूमते रहते हैं। लेकिन हम इस बात से बिल्कुल निश्चिंत रहते हैं कि ध्वनि प्रदूषण किस प्रकार चुपचाप हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है। हमारे शोधकर्ता दर्शकों से ध्वनि प्रदूषण के बारे में चेतावनी देते आ रहे हैं, लेकिन फिर भी

समस्या अपने स्तर पर बढ़ती ही चली जा रही है। आखिर क्यों हम इस ओर ध्यान नहीं देते? हम क्षणिक मस्ती के लिए दीर्घकालिक स्वास्थ्य समस्याओं से ग्रस्त हो जाते हैं। हम चाहे ग्रामीण इलाके में रहते हैं या किसी हलचल भरे शहर के बीचों बीच, आधुनिक जीवन की निरंतर गूंज उतनी ही स्थिर है जितनी कि लगातार चलने वाली डिजिटल ध्वनि, जो हमारी श्रवण इंद्रियों सहित अन्य ज्ञानेंद्रियों पर भी अपना बुरा प्रभाव डालती है। श्रोताओं, ध्वनि प्रदूषण का मानव स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभावों में श्रवण क्षमता का नुकसान सबसे बड़ा प्रभाव है। इसके अंतर्गत लगातार तेज आवाज के संपर्क में रहने से हमारी सुनने की क्षमता स्थायी रूप से कम हो सकती है। मानव व्यवहार और मानसिक स्थिति पर दुष्प्रभाव, हाँ, इसके तहत लगातार शोर के कारण चिड़चिड़ापन, तनाव, अवसाद और अनिद्रा जैसी समस्याएं उत्पन्न होती हैं तथा इससे एकाग्रता में कमी आती है और कार्यक्षमता भी घटती है। शारीरिक बीमारियां भी ध्वनि प्रदूषण से उत्पन्न होती है, जैसे उच्च रक्तचाप, हृदय रोग और पाचन तंत्र की समस्याएं इत्यादि। शोर से तंत्रिका तंत्र सक्रिय हो जाता है, जिससे नींद खंडित हो जाती है और कुल नींद का समय कम हो जाता है। विशेष रूप से किशोरों अर्थात विद्यार्थियों में देर से सोने का संबंध खराब मानसिक स्वास्थ्य, मादक पदार्थों के सेवन में वृद्धि और शैक्षणिक प्रदर्शनों में गिरावट से पाया गया है। एक व्यवस्थित समीक्षा के अंतर्गत परिवहन, शोर और बच्चों तथा किशोरों में व्यावहारिक और भावनात्मक विकारों के बीच संबंध पर किए गए कई अध्ययनों के परिणामों का विश्लेषण किया गया, जिसमें पाया गया कि सड़क यातायात के शोर से 10 डेसिबल के साथ अतिसक्रियता, ध्यान की कमी और कुल कठिनाइयों की संभावना में 9 से 11% तक वृद्धि हुई। 2023 के एक अध्ययन में 1,14,000 से अधिक महिलाओं में दिन और रात दोनों ही समय कृत्रिम शोर के दीर्घकालिक संपर्क का विश्लेषण किया गया। शोधकर्ताओं ने सैकड़ों शहरी और ग्रामीण अमेरिकी समुदायों से प्राप्त ध्वनिक डेटा के आधार पर स्वास्थ्य परिणामों का विश्लेषण किया। इस विश्लेषण में उन्होंने पाया कि बाहरी शोर से हृदयाघात एवं स्ट्रोक के जोखिम के बीच गहरा संबंध है और रात के शोर का हृदय रोग से संबंध स्ट्रोक की तुलना में अधिक है। शोधकर्ताओं ने दिन के साथ साथ रात के शोर को भी हृदय रोग से होने वाली मृत्यु से जोड़ा और महिलाओं में यह संबंध अधिक मजबूत पाया। श्रोताओं, शोधकर्ताओं को अब यह पता चल रहा है कि लगातार शोर का असर पूरे शरीर पर पड़ सकता है, साथ ही अलग अलग तरह की आवाज़ें शरीर पर और भी सूक्ष्म तरीके से प्रभाव डाल सकती हैं। चाहे हमारे घर के पीछे आती हाईवे की तेज़ आवाज़ हो, जिससे हमें अपनी बात सुनाने के लिए ऊंची आवाज़ में बोलना पड़े, या किसी सांगीतिक कार्यक्रम में हमारे बगल में लगे स्पीकर से अचानक निकलने वाली गिटार की तेज़ आवाज़। ये शोर हमें कई तरह से नुकसान पहुंचा सकता है। इस प्रकार के शोर के लगातार संपर्क में रहने से मस्तिष्क में एक समान तनाव प्रतिक्रिया उत्पन्न होती है, जो HPA अक्ष को सक्रिय करती है, जिससे भय, चिंता और शरीर में सूजन की भावना उत्पन्न हो सकती है। रोजमर्रा का पर्यावरणीय शोर बढ़ता जा रहा है और समस्या का कारण बनता जा रहा है। संयुक्त

संयुक्त राष्ट्र के अनुसार विश्व की आधी से अधिक आबादी वर्तमान में शहरी क्षेत्रों में रहती है। 2050 तक यह संख्या बढ़कर 70% होने की उम्मीद है। जैसे जैसे अधिक लोग एक साथ रहने लगेंगे, मानव जनित शोर की समस्या और भी गंभीर होती जाएगी और इसे कम करना और भी मुश्किल हो जाएगा। आज सबसे ज्यादा जरूरत राजनीतिक समर्थन और शोर के साथ जीने के हमारे तरीके को बदलने की

कई नियम मौजूद हैं, लेकिन हर चुनौती और उलटफेर यह साबित करता है कि नियम पर्याप्त नहीं है। शोर प्रदूषण क्या है और यह हमें कैसे नुकसान पहुंचाता है, इस पर आम सहमति ही वास्तविक बदलाव की नींव है। शोर के स्वास्थ्य प्रभावों पर शोध के लिए प्रभावी नीति और धन के बिना इस देश में शोर के स्तर को कम करने की दिशा में कोई ठोस कदम उठाना असंभव है। जेम्स कहते हैं, शोर के कई स्वास्थ्य परिणामों को प्रभावित करने के बढ़ते प्रमाणों के साथ हमें शोर के स्तर का मॉडल तैयार करने, मानव स्वास्थ्य पर इसके प्रभावों का मात्रात्मक विश्लेषण करने और शोर के स्तर को कम करने के लिए उपाय विकसित करने हेतु तत्काल कार्रवाई करने की आवश्यकता है। श्रोताओं, कोई भी नियम या प्रावधान स्वतः समस्याओं का समाधान नहीं करता, बल्कि इसे हमें अपने स्तर से अमल में लाना पड़ता है। अतः तीव्र ध्वनि से बचने का हर संभव प्रयास करना हमारा कर्तव्य बनता है। इसी के साथ कार्यक्रम हमारा पर्यावरण के इस अंक से प्रस्तुतकर्ता अशअद दाऊद के साथ मुझे यानी कल्याण कुमार झा को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

हमारा पर्यावरण। अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम, हम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से बोल रहे हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार संध्या हमारे दिल्ली केंद्र से।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार बल। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संवाद और कूटनीति के माध्यम से संघर्षों के शांतिपूर्ण समाधान के लिए भारत के निरंतर समर्थन की पुष्टि की। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत को अमेरिका के दृष्टिकोण से हिंद प्रशांत क्षेत्र की आधारशिला बताया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, देश रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भर बन रहा है। महाराष्ट्र के शिरडी में तोप के गोले बनाने के संयंत्र का भी उद्घाटन किया। केंद्र सरकार ने नई दिल्ली के जिमखाना क्लब को रक्षा अवसंरचना को मजबूत करने के लिए अगले महीने की 5 तारीख तक अपना परिसर सौंपने को कहा। चीन के कोयला खदान में विस्फोट में 90 लोगों की मौत और भारतीय पहलवान सूरज वशिष्ठ और सागर सिंह ने वियतनाम में आयोजित एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक जीता। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज भारत अमेरिका व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में लगातार हो रही प्रगति, क्षेत्रीय तथा वैश्विक शांति और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज दिल्ली में सेवा तीर्थ में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। श्री मोदी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत और अमेरिका विश्व कल्याण के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। इस बैठक के दौरान विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी उपस्थित रहे। प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक बयान में कहा कि अमरीकी विदेश मंत्री ने श्री मोदी को रक्षा, रणनीतिक तकनीकों, व्यापार तथा निवेश, ऊर्जा सुरक्षा, कनेक्टिविटी, शिक्षा और लोगों के बीच संबंधों सहित कई क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग में लगातार हो रही प्रगति के बारे में जानकारी दी। श्री मार्को रूबियो ने पश्चिम एशिया की स्थिति सहित विभिन्न क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर अमेरिका का दृष्टिकोण साझा किया। श्री मोदी ने शांति प्रयासों के लिए भारत के निरंतर समर्थन की पुष्टि की और बातचीत तथा कूटनीति के माध्यम से संघर्षों के शांतिपूर्ण समाधान की अपनी अपील दोहराई। श्री मार्को रूबियो इस महीने की 26 तारीख

0: होने वाली क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेने के लिए 4 दिन की भारत यात्रा पर हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि अमेरिका जिस तरह से हिंद प्रशांत क्षेत्र को देखता है उसमें भारत की भूमिका सबसे अहम है। नई दिल्ली में अमेरिकी दूतावास की सपोर्ट एनेक्स बिल्डिंग का उद्घाटन करते हुए श्री रूबियो ने कहा कि भारतीय कंपनियों ने अमेरिका में 20 अरब डॉलर का निवेश किया है।
1: अब हमारे व्यापारिक संबंध और भी बढ़ गए हैं। इसमें भारतीय कंपनियों का अमेरिका में 20 अरब डॉलर से अधिक का निवेश शामिल है। हमने हिंद प्रशांत क्षेत्र में सैन्य अभ्यासों के माध्यम से अपनी सुरक्षा साझेदारी को और भी मजबूत बनाया है। निश्चित रूप से इस महत्वपूर्ण रिश्ते को और मजबूत बनाने के लिए एक व्यवस्थित और सुरक्षित काउंसलर प्रणाली की अत्यंत आवश्यकता है।
0: श्री रूबियो ने कहा कि उनकी इस यात्रा से दोनों देशों के आपसी संबंध और मजबूत होंगे तथा उनमें और अधिक प्रगति होगी।
1: इस रिश्ते की बुनियाद राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी के बीच का आपसी संबंध है। ये एक निजी रिश्ता है। इसकी शुरुआत पहले कार्यकाल के दौरान हुई थी जब राष्ट्रपति ट्रंप को भारत आने का मौका मिला था। ये रिश्ता दूसरे कार्यकाल में भी कायम रहा। आप उन दोनों के बीच के जुड़ाव को साफ साफ देख सकते हैं और मुझे लगता है ये बेहद अहम है।
0: विदेश मंत्री रूबियो ने विश्वास व्यक्त किया कि भारत और अमेरिका के बीच संबंधों को और अधिक मजबूत बनाने के लिए दोनों देशों की ओर से आने वाले समय में कई और रोमांचक तथा नई घोषणाएं की जाएंगी। श्री रूबियो ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को दो ऐसे बेहद गंभीर नेता बताया जिनका पूरा ध्यान दीर्घकालिक लक्ष्यों पर केंद्रित है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

दिशा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज महाराष्ट्र के शिरडी स्थित सावली विहिर औद्योगिक क्षेत्र में स्थापित तोप के गोले बनाने वाले संयंत्र का उद्घाटन किया। इस परियोजना को निबे ग्रुप ने विकसित किया है। इस दौरान श्री सिंह ने कहा कि मेक इन इंडिया पहल के माध्यम से देश रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भर बन रहा है।
3: हमने यह समझा, सेल्फ रिलायंट इंडिया, आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया के लिए प्राइवेट सेक्टर की एनर्जी का उपयोग आवश्यक है। इसलिए पॉलिसी रिलेटेड रिफॉर्म्स, नीतिगत सुधार भी किए गए। FDI को, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को लिबरलाइज किया गया, पॉजिटिव इंडिजनाइजेशन लिस्ट लाई गई। हम लोगों ने एक लंबी लिस्ट मोर देन 5000 आइटम्स की तैयार की है। इस पॉजिटिव इंडिजनाइजेशन लिस्ट में आइटम्स हैं, हम उनको निर्धारित समय के अंदर हम भारत की धरती पर बनाएंगे, हम दुनिया के किसी देश से उसको इम्पोर्ट नहीं करेंगे।
2: श्री सिंह ने कहा कि रक्षा क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी लगभग 30-35% है, जिसे भविष्य में बढ़ाकर 50% किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के युवा विकसित भारत की ओर अग्रसर होने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने आज वर्चुअल माध्यम से 19वें रोजगार मेले को संबोधित करते हुए ये बात कही।
4: दुनिया भारत के युवाओं और भारत की टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस को लेकर बहुत उत्साहित है। आज

0: दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनना चाहती है। भारत भी दुनिया के अलग अलग देशों के साथ पार्टनरशिप कर रहा है। इसका उद्देश्य यही है कि भारत के युवाओं को अवसर मिले, रोजगार मिले, उनका सामर्थ्य खिल उठे। साथ साथ मैं चाहता हूं मेरे देश के नौजवानों को ग्लोबल एक्सपोजर भी मिले।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पूरी दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनने के लिए उत्सुक है। रोजगार मेले में आज सरकार के अलग अलग विभागों और संगठनों में चयनित 51,000 से भी अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे गए। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में सरकार का मुख्य प्रयास भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करना रहा है। नई दिल्ली में 19वें रोजगार मेले को संबोधित करते हुए उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि नए भर्ती हुए लोग वर्ष 2047 तक देश को विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान देंगे।
2: विकसित भारत 2047, जब उस गोल उस विजन को सामने रखते हैं तो हमारा काम भी बड़ा सुगम हो जाएगा। और हिम्मत से काम करें, अच्छा काम करें, बदलाव में पहल करें। जहां जहां कोई चीज में हमारे नई सोच है, नए आइडियाज हैं, अगर हम सब ने नई नई टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट किया, हम भी अपने आप को रीट्रेन करें, रीस्किल करें, अपग्रेड करें हमारी नॉलेज, और आगे बढ़ने के लिए कंटिन्यूस लर्निंग शुड बी अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ।
1: श्री गोयल ने कहा कि वैश्विक उथल पुथल के बावजूद भारत में बुनियादी अर्थव्यवस्था मजबूत और निर्यात में जबरदस्त वृद्धि बनी हुई है। उन्होंने कहा कि अप्रैल के बाद मई माह में भी निर्यात वृद्धि जारी रही, जो वैश्विक प्रतिकूलताओं के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था के लचीलेपन को दर्शाती है। नई दिल्ली में आज श्री गोयल ने कहा कि सरकार ने किसानों को बढ़ती लागत से बचाने के लिए उर्वरकों की बढ़ी कीमतों का बोझ स्वयं वहन किया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि ऑयल इंडिया लिमिटेड ने राजस्थान के दांडेवाला फील्ड में एक नए गैस भंडार का पता लगाया है। श्री पुरी ने कहा कि उथली सानू भौगोलिक संरचना से पहली बार लगभग 25,000 मानक घन मीटर प्रतिदिन की दर से प्राकृतिक गैस का प्रवाह होना एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि इससे घरेलू ऊर्जा उत्पादन को मजबूत करने में सहायता मिलेगी। सरकार ने जन परामर्श के लिए विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 2025 के अंतर्गत मसौदा नियम प्रकाशित किए हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: विकसित भारत जी राम जी एक्ट ने 20 साल पुराने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की जगह ली है। नए कानून के तहत अब एक वित्तीय वर्ष में रोजगार की गारंटी 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन कर दी गई है। मंत्रालय के अनुसार इस कानून के मसौदा नियम धारा 33 और अन्य संबंधित प्रावधानों के तहत तैयार किए गए हैं। मंत्रालय ने बताया कि मसौदा नियमों को जनता से सुझाव और राय लेने के लिए सार्वजनिक किया गया है। इनमें संक्रमण प्रावधान नियम, राष्ट्रीय स्तर संचालन समिति नियम, केंद्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद नियम, प्रशासनिक खर्च नियम और शिकायत निवारण नियम शामिल हैं। नए कानून में मजदूरी का भुगतान समय पर पारदर्शी और जवाबदेही के साथ करने पर विशेष जोर दिया गया है। इसके अलावा तय समय के भीतर काम नहीं मिलने पर बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान किया गया है। वीबी जी राम जी एक्ट 2025 को इस महीने की 11 तारीख को अधिसूचित किया गया था और यह इस साल 1 जुलाई से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू होगा। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। केंद्र ने रक्षा अवसंरचना को मजबूत करने के लिए भूमि की आवश्यकता के मद्देनजर नई दिल्ली स्थित जिमखाना क्लब को 5 जून तक परिसर खाली करने का निर्देश दिया है। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के अधीन भूमि और विकास कार्यालय के आदेश में कहा गया है कि ये भूमि तत्काल संस्थागत आवश्यकताओं, शासन अवसंरचना और जनहित परियोजनाओं को पूरा करने के लिए आवश्यक है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने दिल्ली के जामिया नगर में एक दलित महिला के कथित अपहरण, सामूहिक दुष्कर्म और जबरन धर्म

0: परिवर्तन से संबंधित मीडिया रिपोर्ट का स्वतः संज्ञान लिया है। आयोग ने इस संदर्भ में दिल्ली पुलिस आयुक्त से 7 दिन के भीतर विस्तृत कार्रवाई रिपोर्ट मांगी है। चीन के शांक्सी प्रांत में कोयला खदान में गैस विस्फोट में मरने वालों की संख्या बढ़कर 90 हो गई है। ये विस्फोट कल कियुआन काउंटी की लियू शेन्यू कोयला खदान में हुआ। अब तक 201 खनिकों को बचाया जा चुका है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने व्यापक बचाव अभियान और घायलों के उपचार और दुर्घटना के कारणों की जांच का आदेश दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस हादसे में हुई जानमाल की हानि पर गहरा दुख व्यक्त किया है। भारतीय सूचना सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी त्रिलोकीनाथ का आज दोपहर निधन हो गया। वे 79 वर्ष के थे। वे कुछ समय से बीमार थे। श्री त्रिलोकीनाथ ने आकाशवाणी के हिंदी समाचार कक्ष में संपादक के रूप में वर्षों तक अपनी सेवाएं दी। वियतनाम के दानांग में आज एशियाई अंडर-23 कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवान सूरज वशिष्ठ और सागर सिंह ने रजत पदक अपने नाम किए। 60 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में सूरज वशिष्ठ को एबेक एतबेकोव से, वहीं 67 किलोग्राम वर्ग में सागर सिंह को एतजान खलमा खानव से हार का सामना करना पड़ा। लखनऊ में आईपीएल क्रिकेट में लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला पंजाब किंग्स से जारी है। ताजा समाचार मिलने तक लखनऊ ने 17वें ओवर में 4 विकेट पर 158 रन बना लिए हैं। मौसम विज्ञान विभाग ने कल पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और विदर्भ में लू से लेकर भीषण लू की स्थिति का रेड अलर्ट जारी किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संवाद और कूटनीति के माध्यम से संघर्षों के शांतिपूर्ण समाधान के लिए भारत के निरंतर समर्थन की पुष्टि की। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत को अमेरिका के दृष्टिकोण से हिंद प्रशांत क्षेत्र की आधारशिला बताया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, देश रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भर बन रहा है। महाराष्ट्र के शिरडी में तोप के गोले बनाने के संयंत्र का उद्घाटन किया। केंद्र सरकार ने नई दिल्ली के जिमखाना क्लब को रक्षा अवसंरचना को मजबूत करने के लिए अगले महीने की 5 तारीख तक अपना परिसर सौंपने को कहा। चीन के कोयला खदान विस्फोट में 90 लोगों की मौत। इसके साथ ही समाचार संध्या का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: Good evening, this is Akashvani and I am Valsa Williams with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi reaffirms India's consistent support for peaceful resolution of conflicts through dialogue and diplomacy. US Secretary of State Marco Rubio terms India as cornerstone of United States' approach towards Indo-Pacific region. Defense Minister Rajnath Singh asserts the country is becoming self-reliant in defense manufacturing, inaugurates artillery shell manufacturing plant at Shirdi in Maharashtra. Center asks Gymkhana Club in New Delhi to hand over its premises by 5th of next month for strengthening defense infrastructure. 90 people killed in a coal mine explosion in China. And Indian grapplers Suraj Vashishth and Sagar Singh clinch silver medals at Asian Under-23 Wrestling Championships in Vietnam. Prime Minister Narendra Modi and US Secretary of State Marco Rubio today discussed sustained progress in the India-US Comprehensive Global Strategic Partnership and issues related to regional and global peace and security. Mr. Rubio called on Prime Minister Modi at Seva Tirth in New Delhi this afternoon. Mr. Modi said in a social media post that India and the US will continue to work closely for the global good. External Affairs Minister Dr. Jaishankar and NSA Ajit Doval were also present during the meeting. The Prime Minister's office said in a statement that Secretary Rubio briefed Mr. Modi on the sustained progress in bilateral cooperation across a wide range of sectors, including defence, strategic technologies, trade and investment, energy security, connectivity, education and people-to-people ties. Mr. Rubio shared the US perspective on various regional and global issues, including the situation in West Asia. The Prime Minister reaffirmed India's consistent support for peace efforts and reiterated the call for peaceful resolution of the conflicts through dialogue and diplomacy. He requested

0: Grapplers Suraj Vashisht and Sagar Singh clinched silver medals in the men's Greco-Roman categories at the Asian Under-23 Wrestling Championships in Da Nang, Vietnam today. In the 60-kilogram category, Suraj Vashisht went down to Kazakhstan's Aybek Atbekov 4-0 in the summit clash. While in the 67-kilogram category, Sagar Singh lost to Uzbekistan's Etjan Kalmakhanov 9-0 in the final. In tennis, India's Yuki Bhamre and his New Zealand partner Michael Venus finished runners-up at the Geneva Open after suffering a hard-fought defeat in the ATP 250 men's doubles final today. The third-seeded Indo-Kiwi pair lost to Romain Arnedo of Monaco and Australia's Mark Polmans in a closely contested summit clash that lasted nearly 2 hours. In IPL cricket, Lucknow Super Giants were 179 for 6 in 19 overs against Punjab Kings in Lucknow when reports last came in. Earlier, Punjab Kings won the toss and opted to field. Retired officer of the Indian Information Service, Triloki Nath, passed away in New Delhi today. He was 79 years old and was unwell for some time. He served for many years as news editor in All India Radio. The Intermeteorological Department has issued a red alert for heat wave to severe heat wave conditions over East Madhya Pradesh, East Uttar Pradesh and Vidarbh tomorrow. Similar conditions will prevail over Haryana, Chandigarh and Delhi. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi reaffirms India's consistent support for peaceful resolution of conflicts through dialogue and diplomacy. U.S. Secretary of State Marco Rubio terms India as cornerstone of United States approach towards Indo-Pacific region. Defense Minister Rajnath Singh asserts the country is becoming self-reliant in defense manufacturing, inaugurates artillery shell manufacturing plant at Shirdi in Maharashtra. Center asks Gymkhana Club in New Delhi to hand over its premises by 5th of next month for strengthening defense infrastructure. 90 people killed in a coal mine explosion in China, and Indian grapplers Suraj Vashisht and Sagar Singh clinched silver medals at Asian Under-23 Wrestling Championships in Vietnam. That is all in the news at 9. Good night.
1: आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं फैसल खान। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मुज़ाकरात और सफारतकारी के जरिए तनाजात का पुरअमन हल निकाले जाने के लिए भारत की लगातार हिमायत का इरादा किया है। अमरीका के वजीर खारजा मार्को रूबियो ने भारत बहरुल काहिल खित्ते के तई अमरीका की हिकमत अमली में भारत को मजबूत बुनियाद करार दिया है। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने जोर देकर कहा कि भारत दिफाई सामान तैयार करने के शोबे में खुद कफील बन रहा है। वजीर मौसूफ ने महाराष्ट्र में शिरडी के मकाम पर तोपखाने के गोले तैयार करने के प्लांट का इफ्तिताह किया। मरकज ने नई दिल्ली में जिमखाना क्लब से कहा है कि वो दिफाई बुनियादी ढांचे को मुस्तहकम बनाने की खातिर अगले महीने की 5 तारीख तक अपनी जमीन हवाले कर दे। चीन में एक कोयला कान में धमाका होने से 90 अफराद की मौत हो गई। और भारतीय पहलवानों सूरज वशिष्ठ और सागर सिंह ने वियतनाम में 23 साल तक की उम्र के खिलाड़ियों की एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में चांदी के तमगे जीते हैं। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और अमरीका के वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने आज नई दिल्ली में भारत अमरीका जामे आलमी कलीदी साझेदारी में पेशरफ्त और इलाकाई और आलमी अमन सलामती से वाबस्ता मामलों पर तबादले ख्याल किया। अमरीकी वजीर खारजा ने आज दोपहर नई दिल्ली में सेवा तीर्थ में वजीर आजम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। जनाब मोदी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट पर कहा कि भारत और अमरीका आलमी सतह पर फलाह बहबूद के लिए करीबी इश्तराक से काम करते रहेंगे। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर और कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल भी मीटिंग के दौरान मौजूद थे। वजीर आजम के दफ्तर ने एक बयान में कहा है कि जनाब मार्को रूबियो ने वज़ीर आज़म मोदी को मुख्तलिफ शोबों में बाहमी इश्तराक की पेशरफ्त से वाकिफ कराया। इनमें दिफा कलीदी टेक्नोलॉजी तजारत सरमायाकारी तवानाई की यकीनी फराहमी कनेक्टिविटी तालीम और आवाम से आवाम के राबते शामिल हैं। जनाब मोदी ने मुज़ाकरात और सफारत

0: फ्रंट को लिबरलाइज किया गया, स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप मॉडल को लागू किया गया, पॉजिटिव इंडिजनाइजेशन लिस्ट लाई गई। हम लोगों ने एक लंबी लिस्ट मोर देन 5000 आइटम्स की तैयार की है। इस पॉजिटिव इंडिजनाइजेशन लिस्ट में आइटम्स हैं, उनको निर्धारित समय के अंदर हम भारत की धरती पर बनाएंगे, भारतीयों के हाथों से बनाएंगे, हम दुनिया के किसी देश से उसको इम्पोर्ट नहीं करेंगे।
1: ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। मरकज ने नई दिल्ली के जिमखाना क्लब से कहा है कि वो अगले महीने की 5 तारीख तक अपना अहाता हवाले कर दे। मरकज ने कहा है कि दिफाई बुनियादी ढांचे को मुस्तहकम बनाने के लिए जमीन की जरूरत है। हाउसिंग और शहरी उमूर की वजारत के तहत अराजी और तरक्याती दफ्तर की जानिब से जारी किए गए एक हुक्मनामे में कहा गया है कि फौरी इदारा जाती जरूरियात पूरी करने, हुक्मरानी के बुनियादी ढांचे और मफाद अम्मा के प्रोजेक्ट के लिए ये जमीन जरूरी है। इसमें कहा गया है कि दिफाई बुनियादी ढांचे को महफूज बनाने, नीज दीगर अहमियत के हामिल अवामी सिक्योरिटी मकासद के लिए दिल्ली के इंतहाई हसास और अहम इलाके में वाकई इस ठिकाने की जरूरत है। मजकूरा हुक्मनामे में यह भी कहा गया है कि हुक्म की तामील न होने की सूरत में कानून के मुताबिक इसे कब्जे में लिया जाएगा। मगरबी बंगाल में आयुष्मान भारत स्कीम इस साल जुलाई से शुरू हो जाएगी। वजीर अला शुभेंदु अधिकारी ने मरकजी वजीर सेहत जेपी नड्डा के साथ वर्चुअल मीटिंग के बाद कोलकाता में ये ऐलान किया। रियासती सेहत स्कीम स्वास्थ्य साथी के तहत मुस्तफीद होने वाले मौजूदा अफराद को आयुष्मान भारत स्कीम में शामिल किया जाएगा। आयुष्मान भारत आरोग्य मंदिर के सिलसिले में अगले महीने नई दिल्ली में एक मुफाहमतनामे पर दस्तखत किए जाएंगे। सेहत और खानदानी बहबूद के वजीर जेपी नड्डा ने कहा है कि हिफ्जान सेहत के बुनियादी ढांचे के साथ साथ सेहत माहरीन और तिब्बी पेशावर अफराद की तरबियत भी उतनी ही अहमियत की हामिल है। उन्होंने आज नई दिल्ली में मेडिकल साइंसेज में कौमी बोर्ड इम्तहानात इदारे की तकसीम असनाद की 23वीं तकरीब से खिताब करते हुए ये बात कही। जनाब नड्डा ने जोर देकर कहा कि डॉक्टर हिफ्जान सेहत निज़ाम के सॉफ्टवेयर के तौर पर काम करते हैं, जबकि बुनियादी ढांचा और दीगर सहूलियात मुल्क के हार्डवेयर के मानिंद काम करती हैं। वजीर मौसूफ ने कहा कि हिफ्जान सेहत का शोबा और सेहतमंद भारत का नजरिया विकसित भारत मिशन के हुसूल में मरकजी रोल अदा करेंगे, लिहाजा तिब्बी पेशावर अफराद का रोल मुल्क के लिए बहुत अहमियत का हामिल है। हुकूमत ने वसीतर अवामी सलाह मशवरे के लिए विकसित भारत जी राम जी एक्ट 2025 के तहत जाब्तों का मसौदा शाया किया है। दही तरक्की की वजारत ने कहा है कि कोई शख्स, मुतल्लिका फरीक, तंजीम या इदारा जाब्तों के मसौदे के सिलसिले में गौर खोज के लिए इस माह की 21 तारीख तक एतराजात या मशवरे दाखिल कर सकता है। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
2: विकसित भारत जी राम जी एक्ट 20 साल पुराने महात्मा गांधी कौमी देही रोजगार गारंटी एक्ट MG मनरेगा 2005 की जगह लेगा। इस नए कानून का मकसद इस माली बरस में रोजगार की कानूनी गारंटी के दिन 100 से बढ़ाकर 125 दिन करना है। वजारत के मुताबिक जाब्तों का मुसवदा दफा 33 और कानून की दीगर मुतालिका दफात से मुताबिकत रखते हुए तैयार किया गया है। वजारत ने कहा है कि कौमी सतह की रहबर कमेटी के जाब्तों, मरकजी ग्रामीण रोजगार गारंटी कौंसिल के जाब्तों, इंतजामी अखराजात से मुतालिक जाब्तों और शिकायत के इजाले से मुतालिक जाब्तों को सलाह मशवरे के लिए अवाम के सामने रखा गया है। नए कानून में बरवक्त, शफाफ और जवाबदेह तरीक़ेकार के तहत उजरत की अदायगी पर जोर दिया गया है। इस कानून के तहत अगर मुकर्रर मुद्दत के दौरान रोजगार फराहम नहीं किया जाता तो बेरोजगारी भत्ते की भी सहूलत है। दिल्ली से अक्षित वैद्यन की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए अर्जुमंद अली खान।
1: चीन के शांक्सी सूबे में कोयले की एक कान में हुए गैस के एक धमाके में हलाक होने वालों की तादाद बढ़कर 90 हो गई है। गैस का यह धमाका कल हुआ था। सरकारी मीडिया ने खबर दी है कि कान में काम करने वाले 201 कानकुनों को अब तक बचा लिया गया है, जबकि बचाव कार्रवाई जारी है। चीन के सदर शी जिनपिंग ने एक जामे बचाव कार्रवाई और जख्मियों के इलाज के लिए हिदायत जारी की है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने चीन के शांक्सी सूबे में कान में हुए हादसे में जान गंवाने वालों के तई दुख का इजहार किया है। सोशल मीडिया की एक पोस्ट में वजीर आजम ने भारतीय अवाम की जानिब से चीन के सदर शी जिनपिंग और चीन के लोगों से अपनी ताजियत का इजहार किया। उन्होंने सभी बाकी लापता अफराद की जल्द और बाहिफाजत बाजियाबी की भी दुआ की और इस मुश्किल घड़ी में सोगवार कुंभों से यकजहती का इजहार किया।

0: नमस्कार, आकाशवाणी की राष्ट्रीय विज्ञान पत्रिका विज्ञान भारती में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं अल्पी कुमारी।
1: और मैं संजय किशोर।
0: विज्ञान भारती में हम विज्ञान, तकनीक, शोध, नवाचार और समाज पर उनके प्रभाव से जुड़े विषयों को आप तक पहुंचाते हैं।
1: आज के अंक में हम चर्चा करेंगे आकाशवाणी के 90 वर्षों की गौरवशाली यात्रा, विज्ञान और तकनीक के प्रचार प्रसार में आकाशवाणी की भूमिका पर।
0: इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पटना की उपलब्धियों और सुपर कंप्यूटर,
1: दुर्लभ खनिजों के निष्कर्षण की नई तकनीक,
0: विश्व प्रवासी पक्षी दिवस और बिहार में प्रवासी पक्षियों की गणना, खरीफ फसलों के नई किस्में एवं जैविक उर्वरक,
1: साथ ही सुनेंगे विज्ञान जगत की बातें, मई माह में जन्मे और दिवंगत महान वैज्ञानिकों के योगदान तथा मई माह के प्रमुख विज्ञान दिवस।

गौरवशाली 90 वर्षों की यात्रा, इन 9 दशकों में आकाशवाणी ने केवल समाचार और मनोरंजन ही नहीं बल्कि विज्ञान और तकनीक के जन जागरण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भारत में रेडियो प्रसारण की शुरुआत होती है वर्ष 1927 से, किंतु वर्ष 1936 में ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना की गई। बाद में 1957 में इसे आकाशवाणी नाम मिला। स्वतंत्रता के समय देश में केवल 6 रेडियो स्टेशन थे और इनकी पहुंच लगभग 11% आबादी तक थी। आज स्थिति पूरी तरह बदल चुकी है। वर्तमान में आकाशवाणी के 470 से भी अधिक केंद्र कार्यरत हैं, जो देश के लगभग 92% भौगोलिक सीमा और 99% जनसंख्या तक पहुँच रखते हैं। यह दुनिया के सबसे बड़े रेडियो नेटवर्कों में से एक है। यह आंकड़ा केवल प्रसारण क्षमता का संकेत नहीं देता बल्कि यह दर्शाता है

0: कि आकाशवाणी ने भारत के दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों तक विज्ञान और तकनीक की जानकारी पहुंचाने में कितनी प्रभावी भूमिका निभाई है। आज FM, डिजिटल रेडियो और ऑनलाइन स्ट्रीमिंग के माध्यम से विज्ञान आधारित कार्यक्रम नई पीढ़ी तक पहुंच रहे हैं। आकाशवाणी के 90 वर्ष केवल प्रसारण की यात्रा नहीं बल्कि ज्ञान, शिक्षा और वैज्ञानिक चेतना के प्रसार की गौरव गाथा है। स्वतंत्रता के बाद देश खाद्यान्न संकट से जूझ रहा था। कम उत्पादन, पारंपरिक खेती और वैज्ञानिक जानकारी के अभाव के कारण किसान आर्थिक कठिनाइयों में थे। ऐसे समय में आकाशवाणी किसानों का सबसे बड़ा वैज्ञानिक मार्गदर्शक बनकर सामने आया। कोविड-19 महामारी के दौरान सोशल मीडिया पर अफवाहें तेजी से फैल रही थी, वहीं लोग वैक्सीन से डर भी रहे थे, कहीं घरेलू उपचारों को वैज्ञानिक सत्य मान लिया गया था। ऐसे समय में आकाशवाणी ने डॉक्टरों, वैज्ञानिकों और स्वास्थ्य विशेषज्ञों के माध्यम से प्रामाणिक जानकारियां प्रसारित की। ग्रामीण क्षेत्रों में जहां इंटरनेट की पहुंच सीमित थी, वहां रेडियो सबसे विश्वसनीय माध्यम बना। बाढ़, चक्रवात, भूकंप, सूखा और समुद्री तूफान जैसे आपदाएं हर वर्ष लाखों लोगों को प्रभावित करती हैं। ओडिशा चक्रवात, बिहार बाढ़, असम की बाढ़ और सुनामी जैसी आपदाओं के दौरान रेडियो जीवन रक्षक माध्यम के रूप में सामने आया। इंटरनेट और सोशल मीडिया के दौर में आकाशवाणी ने स्वयं को तकनीकी रूप से आधुनिक भी बनाया है। विज्ञान एवं तकनीक के प्रचार प्रसार में आकाशवाणी की भूमिका के बारे में आइए जानते हैं ICMR के पूर्व वैज्ञानिक डॉक्टर VK श्रीवास्तव से।
1: 1990-92 के बीच में ICMR ने आकाशवाणी के साथ मिलकर के एक रेडियो डेट प्रोग्राम किया। डेट मतलब ड्रग, अल्कोहल, टोबैको, एजुकेशन। ये ऑल इंडिया रेडियो के 84 स्टेशन से ब्रॉडकास्ट हुआ प्रोग्राम, 30 एपिसोड का, 16 लैंग्वेजेस में। तो ये प्रोग्राम बहुत सक्सेसफुल रहा। सबसे ज्यादा इसका फायदा ग्रामीण क्षेत्रों में हुआ। इसका इवेल्युएशन हम सिर्फ 2 जगह कर पाए, कर्नाटक और गोवा के ग्रामीण क्षेत्रों में। उससे पता चलता था 4-6% लोगों में, कहीं 4%, कहीं 6% लोगों ने इस प्रोग्राम को सुनने के बाद में इन बुरी आदतों से छुटकारा पाया। एक सबसे और अच्छी बात थी, ये अपने से छोटे बच्चों को सिखाते थे, उनमें बुराइयां बताते थे, उनको शिक्षित करते थे। 2 तरह का फायदा हुआ इस प्रोग्राम से। तो हम तो चाहते हैं इस तरह के प्रोग्राम और होते रहने चाहिए। सन 86 के आसपास भारतवर्ष में HIV का दौर शुरू हुआ। सन 88 में फिर मैंने HIV पर एक नेशनल फीचर, आधे घंटे का फीचर किया। उसमें हिंदुस्तान भर में जा जाकर जो उस समय के अपने एक्सपर्ट थे, मुंबई में डॉक्टर गिलाडा थे, चेन्नई में डॉक्टर सोलोमन थे, और यहाँ के उनकी पेशेंट्स के इंटरव्यू किए, यहाँ होम्योपैथिक एक्सपर्ट्स, आयुर्वेदिक एक्सपर्ट्स, एलोपैथिक एक्सपर्ट्स, WHO, इन सबके से इंटरव्यू करके, इनकी रिकॉर्डिंग करके 30 मिनट का प्रोग्राम एक फीचर किया।
0: विज्ञान जगत में किए गए अपने योगदान को याद करते हुए आकाशवाणी में कार्यरत पूर्व ADG मनोज पटेरिया ने अपने अनुभव इस तरह साझा किए।
2: मैंने नाटक भी लिखे विज्ञान पर जो ब्रॉडकास्ट हुए। समय नाम का नाटक था जो टाइम मशीन के ऊपर था, एक प्रदूषण के ऊपर था, जिसमें ये था कि किस प्रकार से प्रदूषण आने वाले समय में मुश्किलात पैदा कर सकता है।
3: अब बात करते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पटना की उपलब्धियों और नवीन अनुसंधानों की। संस्थान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, डेटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, सस्टेनेबल एनर्जी और बिहार का पहला सुपर कंप्यूटर जैसे क्षेत्रों में महत्वपूर्ण कार्य किए जा रहे हैं। IIT पटना के निदेशक डॉक्टर TN सिंह,
4: यहाँ पर 3 शोध के एक नए आयाम खुले हैं जिनको हम इनक्यूबेशन सेंटर कहते हैं, TBI, TIH। इन तीनों का मैंडेट अलग अलग है और इसमें एक नए नवाचार और नए तरह की शोध करने वाले विद्यार्थियों, न केवल IIT पटना के लेकिन बिहार और सुदूर राज्यों से भी आए हुए विद्यार्थी इसमें काम करते हैं। नई एक शोध हमारे यहाँ के एक शिक्षक और विद्यार्थियों ने मिलकर किया है कि डिमेंशिया की बीमारी को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कैसे डिटेक्ट किया जा सकता है, और उसके तहत उनका पेटेंट भी ग्रांट हुआ है। इस तरह से हमारे यहाँ 100 से ऊपर के पेटेंट फाइल हुए हैं और बहुत सारे ग्रांट भी हुए हैं। अभी भाषिनी प्रोजेक्ट चल रहा है जो अंतर इंस्टीट्यूशनल कार्यक्रम है, जिसमें कि कुछ IIT, कुछ NIT, कुछ यूनिवर्सिटी सभी मिलकर के ऐसी व्यवस्था कर रहे हैं जिसमें एक भाषा में यदि कोई व्यक्ति बोल रहा है तो सुनने वाला अपनी लोकल भाषा में उसको समझ सके और उसको सुन सके और प्रश्न भी कर सके अपनी भाषा में, तो वक्ता के पास उसकी भाषा में जिसमें वो बोल रहा है उसको वो प्रश्न का उत्तर देगा। बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम एक बहुत ही सफल प्रयोग है यहाँ के शिक्षक और विद्यार्थियों के लिए, और पहली बार IIT पटना से विदेश में बैटरी गई है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में। बिहार में

0: सुपर कंप्यूटर आईआईटी पटना के प्रांगण में स्थित है। हमारे यहाँ जो सुपर कंप्यूटर है ये ब्रह्मास्त्र का हम बोलते हैं, ये सुपर कंप्यूटर की टेराबाइट में इसकी स्पीड हो, टेराबाइट बहुत ही फास्ट स्पीड, त्वरित काम को निष्पादित करने का इसके अंदर जो है काम है। एआई के क्षेत्र में काफी यहाँ काम हो रहा है, केवल हम भाषा तक ही नहीं लेते, हम एआई के क्षेत्र में इन्फॉर्मेशन तक के अंदर किस तरह से 5-6G को स्पीड अप किया जाए उसके लिए भी, और क्वांटम में भी यहाँ का फिजिक्स और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का विभाग जो है वो राष्ट्रीय स्तर के जो मिशन है क्वांटम का उसके साथ जुड़े हुए हैं।
1: दुर्लभ खनिज यानी रेयर मिनरल्स या क्रिटिकल मिनरल्स, ये ऐसे खनिज हैं जो स्वच्छ ऊर्जा, विद्युत, वाहन, रक्षा, अंतरिक्ष, इलेक्ट्रॉनिक्स तथा उन्नत विनिर्माण उद्योगों के लिए अत्यंत आवश्यक होते हैं। वर्तमान समय में वैश्विक स्तर पर 17 खनिजों को दुर्लभ खनिज का दर्जा दिया गया है, जिनकी मांग तेजी से बढ़ रही है क्योंकि विश्व ऊर्जा परिवर्तन यानी एनर्जी ट्रांजिशन और हरित प्रौद्योगिकी की ओर अग्रसर है। भारत का राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन या ANRF देश के विश्वविद्यालयों, कॉलेजों और अनुसंधान संस्थानों में वैज्ञानिक अनुसंधान और नवाचार के लिए धन देने, बढ़ावा देने और रणनीतिक दिशा प्रदान करने के लिए अनिवार्य सर्वोच्च निकाय है। ANRF ने IIT पटना के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर सुब्रत हती के परमानेंट मैग्नेट यानी स्थायी चुंबक से दुर्लभ खनिज के निष्कर्षण के अनुसंधान को ग्रांट दिया है।
2: जो आपका दुर्लभ खनिज है और हम लोग बोलते हैं कि क्रिटिकल मिनरल्स है, ये है कि आपका जो हम लोगों का डेवलपमेंट विद रिस्पेक्ट टू एनी काइंड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स या इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स होता है, तो वो सब चीजों में ये दुर्लभ खनिज इस्तेमाल होता है। हर देश में किसी किसी जगह में आपका ये दुर्लभ खनिज के जो डिपोजिट्स होता है, सो ये डिपोजिट से अगर आप एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं, जो हम लोग उनको बोलते हैं कि प्राइमरी सोर्स या प्राइमरी रिसोर्स, तो वो उसके जियोलॉजिकल हैजर्ड्स हो सकते हैं। तो नेक्स्ट जो होता है हमारे पास सेकेंडरी रिसोर्स होता है। सेकेंडरी रिसोर्स ये होता है कि जैसे ई वर्ज्य होता है, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जो है आपका जो भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है, जो भी हम लोग डे टू डे यूज करते हैं, तो सारा चीज एक यूजुअल लाइफ पीरियड के बाद वो ऑब्सोलीट हो जाता है, और ऑब्सोलीट हो जाने के बाद क्या है कि उसमें उससे हम लोग सेकेंडरी रिसोर्स से उसको हम लोग निष्कासित करते हैं। निष्कासित करने के लिए आपके पास तरीका जो होता है, टेक्निकल तरीका, वो बोलते हैं कि पायरोमेटलर्जी, हाइड्रोमेटलर्जी एंड बायोमेटलर्जी। पायरोमेटलर्जी में हम लोग क्या करते हैं कि आपको हीट ट्रीटमेंट देते हैं, और उससे क्या है कि अगर आप मटेरियल प्राइमरी सोर्स पे अगर कोई मटेरियल है, प्लास्टिक्स है, तो उसको जलाया जाता है, तो उससे प्रदूषण हो सकता है। तो इसलिए दूसरा तरीका क्या होता है कि आपके पास हाइड्रोमेटलर्जी होता है। हाइड्रोमेटलर्जी में जनरली लोग क्या करते हैं कि एसिड और अल्काली यूज करते हैं, तो वो जो एसिड और अल्काली होता है वो जनरली कन्वेंशनली लोग उसका स्ट्रॉन्ग एसिड और अल्काली यूज करते हैं। तो उसके बदले में अगर कुछ अल्टरनेटिव्स ये है कि अगर आप कुछ नेचुरल ऑर्गेनिक एसिड यूज करें, और नाउडेज क्या है कि नोबेल जो टेक्निक आया है उसको बोलते हैं कि हम लोग डीप यूटेक्टिक सॉल्वेंट, उससे हम लोग इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जो हमें एनआरएफ से जो रिसर्च ग्रांट मिला है, इससे हम लोग कर रहे सेकेंडरी रिसोर्स परमानेंट मैग्नेट। उससे परमानेंट मैग्नेट जनरली आप देखेंगे व्हीकल्स में यूज होता है, जनरली देखेंगे विंड मिल में यूज होता है। सो परमानेंट मैग्नेट जब वो ऑब्सोलीट हो जाता है, उस परमानेंट मैग्नेट से, और मेजोरिटी ऑफ द सोर्स ऑफ परमानेंट मैग्नेट आपका चाइना है, तो वो सब आप एक्सपोर्ट सब बंद कर दिया। जो डेवलप कंट्रीज है जिनके पास क्रिटिकल मिनरल का मेजोरिटी ऑफ द रिजर्व्स है, वो लोग इसका दुर्लभ खनिज का एक्सपोर्ट बंद कर दिया है। जो अगर स्वावलंबी बनना है भारत को, तो इसलिए क्या है कि हम लोग सेकेंडरी रिसोर्स से ये सब पदार्थ और दुर्लभ खनिज निष्कासित करना है। तो इसी संदर्भ में ये जो परमानेंट मैग्नेट से क्रिटिकल मिनरल निष्कासित करना डीप यूटेक सॉल्वेंट लेके, ये एक हमारा पहल है जिसमें हम लोग काफी शोध कर चुके हैं और आगे शोध को हम लोग स्केल अप करेंगे।
3: और अब हम जानेंगे प्रवासी पक्षी के बारे में। प्रत्येक वर्ष हजारों लाखों किलोमीटर का सफर तय करके हमारे देश, हमारे शहर और हमारे इर्द गिर्द पहुंचते हैं, और इन्हीं पक्षियों के लिए 9 मई 2026 को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया गया। इस बार विश्व प्रवासी पक्षी दिवस का थीम था, हर पक्षी महत्वपूर्ण है, आपका नजरिया मायने रखता है। वैज्ञानिकों के अनुसार पक्षी दो प्रमुख वजहों से प्रवास करते हैं, भोजन और घोंसले की तलाश में ये पूरी दुनिया में प्रवास करते हैं। वर्ल्ड लाइफ के अनुसार विश्व के पक्षियों की 40% प्रजातियां अब घट रही हैं। प्रवासी पक्षी पारिस्थितिकी तंत्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, और उनकी घटती संख्या जल की गुणवत्ता, खाद्य सुरक्षा और जलवायु परिवर्तन के प्रति कमजोर सहनशीलता का कारण बन रही है। भारत में हर साल 370 से अधिक प्रजातियों के प्रवासी पक्षी आते हैं। बिहार में 70 से अधिक प्रवासी पक्षियों सहित कुल 260 से ज्यादा प्रजातियों के 10,000 से अधिक पक्षियों की गणना की गई है।

0: आप ई बर्ड बिहार पर जाकर राज्य के विभिन्न क्षेत्रों जैसे पटना, भागलपुर या और भी जो क्षेत्र हैं, उनमें हाल ही में देखे गए पक्षियों की सूची और चेकलिस्ट को देख सकते हैं। बिहार में प्रवासी पक्षियों के बारे में विस्तृत जानकारी देने के लिए हमारे साथ है डॉक्टर देव नारायण चौधरी, एसोसिएट प्रोफेसर जूलॉजी डिपार्टमेंट, तिलका मांझी विश्वविद्यालय, भागलपुर।
1: पिछले कई सालों से बिहार का जो वन मंत्रालय है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज और बॉम्बे की है BNHS, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, इन दोनों के प्रयास से पक्षियों की गणना शुरू हुई है।

0: ये प्रवासी पक्षी जहाँ से आकर के पनाह लेते हैं वहाँ पर इसकी गिनती शुरू हुई और इसमें जो भी पक्षी विशेषज्ञ थे, जो बर्डर थे, जो ट्रेनर थे, उन लोगों को इसमें लगाया गया और हर डिस्ट्रिक्ट में एक कोऑर्डिनेटर की बहाली हुई जो एक्सपर्ट के रूप में काम करते हैं। इससे अच्छे परिणाम आए तो धीरे धीरे हर साल कुछ कुछ वेटलैंड की संख्या भी बढ़ती चली गई, उसको भी हम लोग कवर करते हैं। तो इसमें देखा गया कि एक अच्छा डाटा तैयार हो गया और आने वाले दिनों में बिहार के पक्षियों पर एक अच्छा डॉक्यूमेंटेशन हो सकता है। जो इसके पहले 2012 में ही एक पब्लिश हुआ था मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट के द्वारा, बर्ड्स ऑफ बिहार, उसका जो इन्फॉर्मेशन था उससे कहीं ज्यादा इस रिपोर्ट के बाद जो ये छपेगा तो आने वाले दिनों में जो एकेडमिक्स के फील्ड में ये एक अच्छी जानकारी साबित होगी।
1: और अब जानते हैं विज्ञान जगत की नवीनतम घटनाओं के बारे में। वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि आने वाला सुपर एल नीनो 1950 के बाद सबसे शक्तिशाली में से एक हो सकता है जो दुनिया भर में करोड़ों लोगों को प्रभावित कर सकता है। यह कई क्षेत्रों में बाढ़, सूखा, हीट वेव और जंगलों में आग जैसी घटनाओं को बढ़ा सकता है। जलवायु परिवर्तन इसकी प्रकृति को और अधिक अनिश्चित बना रहा है। सुपर एल नीनो का मतलब समुद्र के तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस से अधिक की असामान्य बढ़ोतरी से है, जिससे वैश्विक तापमान बढ़ता है। खासकर दक्षिण एशिया पर इसका अधिक असर पड़ता है।
2: भारत के असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में पहली बार सैटेलाइट ट्रैक की गई गंगा सॉफ्ट शेल कछुए को छोड़कर संरक्षण के क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि हासिल की गई है। यह संवेदनशील मीठे पानी की प्रजाति का कछुआ है जो नदी के पारिस्थितिकी तंत्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब इसके व्यवहार, प्रवास और पर्यावरणीय खतरों के प्रति प्रतिक्रिया का अध्ययन करने के लिए ट्रैक की जा रही है। यह पहल वैज्ञानिकों को इस जलीय सरीसृप प्रजाति के दीर्घकालिक संरक्षण को सुनिश्चित करने में मदद करेगी। इस प्रजाति को असुरक्षित श्रेणी में शामिल किया गया है। और अब स्वाद और सेहत से भरपूर बिहार की पहचान मखाना के बारे में जानते हैं। सुपर फूड बन चुका मखाना अब वैज्ञानिक अनुसंधान के माध्यम से नई ऊंचाइयों तक पहुंच रहा है। मखाना अनुसंधान केंद्र में मखाना की नई प्रजातियों और उत्पादन तकनीकों पर कार्य किया जा रहा है। इस संबंध में ICAR राष्ट्रीय मखाना अनुसंधान केंद्र दरभंगा के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर मनोज कुमार।
3: कोरोना काल के बाद से जब स्वास्थ्य के प्रति लोगों की जागरूकता काफी तेजी से बढ़ी है तो मखाना में पाए जाने वाले जितने औषधीय गुण हैं, इसमें पाई जाने वाली जितनी पौष्टिकताएं हैं, तो इन गुणों के प्रति, इन स्वास्थ्य लाभों के प्रति बहुत तेजी से दुनिया भर में जागरूकता हुई है। इसमें मिनरल्स काफी प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, जैसे मैग्नीशियम, कैल्शियम, फास्फोरस, पोटाशियम। पोषक तत्व तो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है हमारे न्यूट्रिशन के लिए, जैसे आयरन, जिंक इत्यादि बहुत अच्छी मात्रा इसमें पाई जाती है। इसके अलावा ये जीरो फैट फूड इसे मानते हैं। इसमें फैट की मात्रा बहुत ही कम है, कोलेस्ट्रॉल बहुत कम है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स इसमें बहुत कम होता है। मधुमेह के जो मरीज हैं वो भी बहुत सुगमता से इसका इस्तेमाल कर पाते हैं। मोटापे की समस्या से जो ग्रसित है वो भी आसानी से इसका इस्तेमाल कर पाते हैं क्योंकि फैट इसमें बहुत कम है। इसके अलावा इसमें बहुत सारे औषधीय गुण हैं। राष्ट्रीय मखाना अनुसंधान केंद्र दरभंगा के माध्यम से भी एक नई प्रजाति अभी विकसित की जा रही है और मेरा मानना है कि अगले एक वर्ष में ये वैरायटी आ जाएगी जिसकी उत्पादन क्षमता यहाँ से करीब 15-20% और ज्यादा होगी। और इसके अतिरिक्त कांटे रहित मखाना के प्रभेदों के विकास पर भी अभी चर्चा हो रही है।
1: हाल ही में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रासायनिक उर्वरकों के उपयोग को सीमित करने की बात कही है ताकि खाद्य सुरक्षा से पोषण सुरक्षा को प्राप्त किया जा सके। बिहार के 13 जिलों में जैविक खेती की जा रही है। कृषि विज्ञान में खरीफ खाद्यान्न की नई प्रजाति के विकास एवं ब्लू अलगी जैविक उर्वरकों के उपयोग के संबंध में बता रहे हैं डॉक्टर दिव्यांशु शेखर, कृषि विज्ञान केंद्र जाले दरभंगा।
4: जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी देश को प्राथमिकता में रखा है कि हम रासायनिक उर्वरकों से हटकर प्राकृतिक या जैविक उर्वरकों की तरफ बढ़े, जिससे कि न कि हमारा फसल की उत्पादकता बनी रहे, साथ में ही उसकी गुणवत्ता में भी कोई खराब न हो। खास तौर पे धान की फसल में जो हमारा ब्लू ग्रीन एल्गी या जिसको हम अजोला कहते हैं, उसका यदि हम प्रयोग करते हैं तो हमारी नाइट्रोजन की जो रिक्वायरमेंट है या आवश्यकता है वो 10-20% तक हम उसके द्वारा कम कर सकते हैं। साथ में ही इसके प्रयोग करने से हमारे भूमि में कार्बनिक तत्वों की भी मात्रा बढ़ती है और साथ साथ जो खरपतवार होते हैं उनकी भी संख्या कम होती है।
2: और अब अंतरिक्ष की बात। हाल ही में विश्व का पहला ऑप्टो SAR सैटेलाइट मिशन दृष्टि लॉन्च किया गया। यह एक भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप के द्वारा बनाया गया सैटेलाइट है। अंतरिक्ष क्षेत्र में अर्जित उपलब्धियों के बारे में हमसे बात की भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान तिरुवनंतपुरम के कुलपति प्रोफेसर दीपांकर बनर्जी ने।
5: दो चीज होता है, देखिए आप जो 100 साल से

0: हम लोग कुडाई कनाल से सूर्य का अध्ययन कर रहे हैं। ये जरूरी इसीलिए है कि वो हमारे सबसे नजदीकी तारे है, उसका चुंबक क्षेत्र का कुछ परिवर्तन होता है। वो परिवर्तन का एक 11 साल का एक हम बोलते हैं सोलर साइकिल जैसा है। तो कभी कभी उसमें चुंबक क्षेत्र थोड़ा ज्यादा हो जाता है, कभी कभी थोड़ा कम होता है। एंड ये जो बढ़ना और कमना का जो ऑसिलेटन पैटर्न जो है, उसको स्टडी करने के लिए एक डायनमो मैकेनिज्म को हम लोग मैथमेटिकली हम इस्तेमाल करते हैं। सोलर डायनमो एक थ्योरी है जो हमको समझने के लिए ये करते हैं कि क्यों ऐसा सूर्य में चुंबक क्षेत्र 11 साल का एक पीरियोडिसिटी क्यों रहता है। बट ये तो एक थ्योरी हो गया, थ्योरी को तो मैच करने के लिए आपको ऑब्जर्वेशन चाहिए। ऑब्जर्वेशन जितना लंबा होगा तभी इतना अच्छा है। इसीलिए ये कुडाईकनाल में ऑब्जर्वेशन हम लोग 1904 साल से चालू किया। उसी जमाने में तो फोटोग्राफिक प्लेट होता था, फिल्म होता था। हमने वो पूरा जो आर्काइव है उसको पूरा डिजिटाइज किया। आजकल का जमाना में तो कोई हाथ से तो कुछ करते नहीं, आपको इमेज होना चाहिए जो डिजिटल मोड है। एक्चुअली पुराना आर्काइव है उसको डिजिटाइजेशन करना भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एक प्रोजेक्ट है। तो ये 100 साल का पूरा डेटा डिजिटाइज करने के बाद हमने अभी अध्ययन किया कि ये 11 ईयर साइकिल कैसा होता है। कभी कभी एक साइकिल थोड़ा बड़ा होता है, कभी थोड़ा छोटा होता है। जब बड़ा होगा उसमें सोलर जो तूफान वो और ज्यादा होगा, जब थोड़ा चुंबक क्षेत्र थोड़ा कम होगा तो वो भी जानकारी होना चाहिए। एक तो है कि अभी हाल ही में ये तूफान आने वाला है या नहीं आने वाला, ये जानकारी। और एक है कि पहले ऐसा तूफान होता था कि नहीं होता था। अभी सन जो स्टार वो मिडिल एज में है, वो जब बड़ा हो जाएगा, वो रेड जायंट हो जाएगा, हम तो बच नहीं पाएंगे। अभी मिलियनेयर में नहीं होने वाला है तो अभी सोचने का नहीं है, बट ये सब जानकारी होना चाहिए।
1: मई का महीना विज्ञान के इतिहास में बेहद खास है। कई महानतम वैज्ञानिकों का जन्म हुआ जिन्होंने भौतिकी, चिकित्सा और रसायन विज्ञान की दिशा हमेशा के लिए बदल दी। इस महीने देश के कुछ ऐसे महान वैज्ञानिक और गणितज्ञों का जन्म हुआ जिन्होंने न केवल भारत में आधुनिक विज्ञान और परमाणु कार्यक्रम की नींव रखी बल्कि पूरी दुनिया में देश का नाम रोशन किया। डॉक्टर राजा रमन्ना, आप भारत के परमाणु कार्यक्रम के शिल्पकार कहे जाते हैं। आपका जन्म 28 मई 1925 को तुमकुर कर्नाटक में हुआ। के आर रामनाथन, आप भारत के मौसम विज्ञान और ओजोन अनुसंधान के जनक माने जाते हैं। आपका जन्म 28 मई 1893 को पलक्कड़ केरल में हुआ। हरीश चंद्र, जो कि गणित और भौतिकी के महान सेतु कहे जाते हैं, आपका जन्म हुआ 11 मई 1923 को कानपुर उत्तर प्रदेश में। आप महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन के सहायक भी रहे। आपने लाइट ग्रुप्स और रिप्रेजेंटेशन थ्योरी में क्रांतिकारी सिद्धांत दिए जिन पर आज भी क्वांटम मैकेनिक्स और आधुनिक गणित टिकी हुई है। हमारे अगले वैज्ञानिक हैं डॉक्टर विजय भटकर, आप भारतीय सुपर कंप्यूटर के जनक हैं। आपका जन्म 11 मई 1946 को मोरंबा महाराष्ट्र में हुआ। आपके नेतृत्व में सीडेक ने साल 1991 में भारत का पहला स्वदेशी सुपर कंप्यूटर परम 8000 बनाया। आगे नाम आता है प्रोफेसर डॉक्टर बलराम भार्गव का, जिनका जन्म 3 मई 1961 को हुआ था। आप भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के महानिदेशक रहे। पूरी दुनिया जब सबसे बड़ी महामारी कोविड-19 से जूझ रही थी, तब भारत की वैज्ञानिक लड़ाई का नेतृत्व करने वाले मुख्य चेहरों में डॉक्टर भार्गव का नाम सबसे आगे था। और अब हम जानेंगे मई महीने में दुनिया ने विज्ञान जगत के कुछ बेहद प्रतिष्ठित चेहरों को खोया है। डॉक्टर मोनिका मोंटे फाल्कोन, आपका निधन 14 मई 2026 को हुआ। आपने समुद्री पारिस्थितिकी और जीव विज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। डॉक्टर विलियम चार्ल्स लिविंगस्टन, आपका निधन 2 मई 2026 को 98 वर्ष की आयु में हुआ। आपने सौर्य खगोल विज्ञान के क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य किया।
2: आज विज्ञान पत्रिका के इस अंक में आकाशवाणी के 90 वर्षों की गौरवशाली यात्रा को याद करते हुए हमारे सुधी श्रोताओं ने अपने विचार कुछ इस तरह व्यक्त किए। बिहार विधानसभा अध्यक्ष माननीय डॉक्टर प्रेम कुमार,
3: शब्द ब्रह्म के मूल मंत्र को चरितार्थ करते हुए देश के जन जन की आवाज एवं सूचना क्रांति के उद्घोष के प्रतीक आकाशवाणी ऑल इंडिया रेडियो के गौरवमयी चरित्र के 90 वर्ष पूर्ण होने पर संपूर्ण आकाशवाणी परिवार और इसे करोड़ों श्रोताओं को मैं प्रेम कुमार, अध्यक्ष

0: विधानसभा हार्दिक बधाई एवं शुभकामना देता हूँ। 8 जून 1936 को अपनी औपचारिक यात्रा शुरू करने वाला आकाशवाणी आज केवल एक प्रसारण माध्यम नहीं बल्कि स्वतंत्र भारत के सामाजिक, सांस्कृतिक और लोकतांत्रिक विकास का आजीवन साक्षी है। स्वाधीनता संग्राम से लेकर आधुनिक भारत का निर्माण तक आकाशवाणी राष्ट्र के सूत्र में पिरोने का अभूतपूर्व कार्य किया है। संकट और आपदा के समय इसकी प्रमाणिक खबरों ने हमेशा देश का मार्गदर्शन किया है, जिससे इसकी विश्वसनीयता आज भी अक्षुण्य है। जन जागृति और राष्ट्र निर्माण सुदूर गांव, खेतों, खलिहानों और सीमावर्ती क्षेत्रों तक ज्ञान और चेतना का प्रकाश फैलाने में इस माध्यम की भूमिका रहती है। कृषि सुधारों से लेकर मन की बात जैसे संवादों के माध्यम से इसने जन जागृति को एक नई दिशा दी है। स्वास्थ्य, शिक्षा, विज्ञान और सरकारी लोक कल्याणकारी योजनाओं को समाज के अंतिम पावदान पर खड़े व्यक्ति तक सरल भाषा में पहुंचाकर आकाशवाणी ने बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय के संकल्प को सिद्ध किया है। मैं इस अवसर पर आकाशवाणी के उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ कि अद्वितीय संस्थान आदि की अपनी स्पष्टता, राजभक्ति और सेवा से देश को आलोकित करता रहेगा। रेडियो की वह मधुर पुकार आज भी दिलों में बसती है। आकाशवाणी की हर धुन भारत की आत्मा सी लगती है।
1: पंचायती राज्य मंत्री बिहार सरकार दीपक प्रकाश।
2: मैं दीपक प्रकाश, मंत्री पंचायती राज विभाग। आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आकाशवाणी की पूरी टीम को बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। हम सबों के सामाजिक जीवन में, देश के राजनीतिक जीवन में, आर्थिक जीवन में और साथ ही साथ जो हमारा देश का इतिहास है, उन सबों में आकाशवाणी का एक विशेष रोल रहा है। आजादी की लड़ाई हो या विभिन्न कालखंडों में जन आंदोलन को लोगों तक पहुंचाने का काम हो, तमाम क्षेत्रों में आकाशवाणी ने कमेंडेबल काम किया है। हम सबों के बचपन की यादें भी आकाशवाणी से जुड़ी हैं। क्रिकेट की कमेंट्री आकाशवाणी पे सुननी हो, पुराने गाने आकाशवाणी पे सुनने हो, या सभी विद्यार्थियों के लिए टॉक शोज के माध्यम से ज्ञानवर्धन करने की बात हो, तमाम क्षेत्रों में आकाशवाणी ने काम किया है। टेक्नोलॉजी के साथ साथ आकाशवाणी ने अपने को बदलने का भी काम किया है। एनालॉग से डिजिटल तक का सफर आकाशवाणी का विशेष रूप से कमेंडेबल है। आज के इस चकाचौंध और दिखावटी मीडिया के दौर में आकाशवाणी का एक विशेष स्थान है, जो कि हमें अपने जड़ों से जुड़ने के लिए प्रेरित करता है। आकाशवाणी का विशेष रूप से हम धन्यवाद इस बात के लिए भी देना चाहेंगे कि आकाशवाणी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा हम सबों के बीच किया जाने वाला मन की बात कार्यक्रम प्रसारित होता है। एक बार पुनः आकाशवाणी को 90 वर्ष पूरे करने के लिए बधाई देते हुए, और आकाशवाणी हम लोगों के बीच जीवन का और हिस्सा बने, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, आज के युवा आकाशवाणी से जुड़े, इस बात की शुभकामना देते हुए बहुत बहुत धन्यवाद।
3: मेरा नाम नीलम चौधरी है, मैं एक्स IAS ऑफिसर हूं और एक कथक डांसर भी हूं। आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने पर मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयां। आकाशवाणी का नाम आते ही एक स्पंदन सा होने लगता है और याद आता है अपने स्टूडेंट लाइफ का वो स्टडी टेबल जहां हमेशा एक ट्रांजिस्टर रखा रहता था। चूंकि मैं म्यूजिक की फील्ड से हूं, इसीलिए म्यूजिक के लगभग सब कार्यक्रम मैं आकाशवाणी का सुना करती थी, चाहे वो शास्त्रीय संगीत का हो या फिल्मी गानों का हो, गैर फिल्मी गानों का हो, भजन हो, लोक संगीत हो, मैं सब कार्यक्रम सुनती थी और वो सारे गाने मुझे कॉन्सेंट्रेशन देते थे और मुझे पढ़ाई अच्छी मेरी होती थी। मैंने महसूस किया है कि आकाशवाणी ने समाज के हर क्षेत्र, हर वर्ग के लोगों को अपने कार्यक्रम में इनकॉर्पोरेट किया है, चाहे वो कृषि के क्षेत्र से हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र से हो, तकनीकी क्षेत्र से हो, नारी सशक्तिकरण की बात हो, लगभग सभी क्षेत्र के लोगों के लिए इसने कार्यक्रम बनाया है। बच्चों के लिए हो, शाम में 7:30 बजे अनंत सिंह का न्यूज होता था, वो तो बहुत ही लोकप्रिय था और बहुत स्पष्ट और बहुत अनबायस्ड कार्यक्रम हुआ करता था। उसके अलावा नाटक में हवा महल और लोहा सिंह का नाटक हम लोग बहुत इंतजार करते थे और सुनना करते थे। तो ये रिचनेस आकाशवाणी में शुरू से रहा है। आज भी हर वर्ग के लिए कार्यक्रम बनाना, उसे सक्सेसफुली प्रसारित करना, ये एक बहुत बड़ी क्वालिटी है आकाशवाणी की, और मेरी शुभकामनाएं हैं, मेरी इच्छा है, मैं चाहती हूँ कि जिस तरह से 90 वर्षों का सफर तय हुआ, उससे भी और आगे बढ़कर आकाशवाणी अपना कार्यक्रम करे, लोगों में प्रिय रहे और हर वर्ग के लोग इसमें जुड़े रहे।
4: प्रोफेसर दिनेश सिंह, पद्मश्री, उपाध्यक्ष, जम्मू एवं कश्मीर उच्च शिक्षा परिषद और पूर्व कुलपति, दिल्ली विश्वविद्यालय।
5: पूर्ण रूप से अपने हृदय से बधाई दे रहा हूँ आकाशवाणी से जुड़े सारे जो हमारे सहयोगी हैं, और मैं चाहता हूँ कि इसको एक त्योहार के रूप में भारत में मनाया जाए, त्योहार के रूप में कि आकाशवाणी ने भारत के लिए क्या किया। मैं आकाशवाणी से बचपन से जुड़ा हूँ और आकाशवाणी से अमृत बरसता है पूरे देश में, विश्व में। मैंने यहाँ से इतनी रचनात्मक युक्तियों को ग्रहण किया है, इसने भारत की आत्मा को आकाशवाणी ने सींचा है। अब इसके जो एनिवर्सरी आ रही है, इसके 90 वर्ष पूरे हो रहे हैं, हम सबको इसमें भागीदारी लेनी है और इस उत्सव को पूर्ण रूप से अपने अपनी जगह मनाना है। आकाशवाणी ने भारत का बहुत भला किया है।

0: ये थी हमारी आज की विशेष प्रस्तुति। उम्मीद है आपको हमारा यह कार्यक्रम पसंद आया होगा। अगली बार हम फिर मिलेंगे नई जानकारियों, नवीन शोध परक बातों एवं विज्ञान जगत की हलचलों के साथ।
1: तो सीखें कुछ नया, सोचें कुछ अलग। आज की विज्ञान पत्रिका विज्ञान भारती को तैयार करने में स्वर सहयोग रहा अल्पी कुमारी और संजय किशोर का। संयोजक थे दिलीप झा और प्रस्तुतकर्ता रजत कुमार। आकाशवाणी पटना।
0: नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी है। संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में आज हम आपके लिए लाए हैं श्री सीपी माधवन नंबूदरी द्वारा प्रस्तुत कर्नाटक शास्त्रीय गायन। श्री सीपी माधवन नंबूदरी, जिन्हें लोकप्रिय रूप से चंगनाशेरी माधवन नंबूदरी के नाम से जाना जाता है, आकाशवाणी के ए ग्रेड वोकल आर्टिस्ट हैं और कर्नाटक संगीत में 2 दशकों से अधिक के उत्कृष्ट योगदान के साथ अत्यंत सम्मानित कलाकार हैं। उन्होंने 500 से अधिक एकल प्रस्तुतियां की है, जिनमें से अनेक में प्रसिद्ध कलाकारों जैसे डॉक्टर टी के मूर्ति, डॉक्टर उमायालपुरम के शिवरामन, श्री श्रीमुष्णम राजा राव तथा श्री मन्नारगुड़ी ईश्वरन ने संगति की है। उनके कार्यक्रम विदेशों में भी आयोजित हुए हैं, जिनमें अमेरिका, पेरिस, दक्षिण पूर्व एशिया तथा खाड़ी के देश शामिल हैं। केरल के चंगनाशेरी में जन्मे माधवन नंबूदरी ने अपनी प्रारंभिक संगीत शिक्षा अपने प्रथम गुरु श्री पी जी पद्म कुमार से प्राप्त की। बाद में वे स्वर्गीय टी वी शंकर नारायणन के शिष्य बने तथा उन्हें श्री पी आर कुमार केरल वर्मा और श्री कलन्यूर चंद्रशेखरन जैसे प्रसिद्ध संगीतज्ञों से उन्नत मार्गदर्शन भी प्राप्त हुआ। वे आरएलवी संगीत एवं ललित कला महाविद्यालय त्रिपोणितरा में पूर्व संगीत प्रवक्ता रह चुके हैं। उन्हें भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय से जूनियर फेलोशिप भी प्राप्त हुई है और मद्रास म्यूजिक अकादमी से सर्वश्रेष्ठ संगीतकार का सम्मान भी प्राप्त हुआ है।
1: दिस इज आकाशवाणी, इंटरनेट नेशनल प्रोग्राम ऑफ म्यूजिक। वी ब्रिंग यू अ कर्नाटिक वोकल कॉन्सर्ट बाय श्री सीपी माधवन नंबूदरी, पॉपुलरली नोन एज चंगनाशेरी माधवन नंबूदरी। ही इज एन ए ग्रेट वोकल आर्टिस्ट ऑफ आकाशवाणी एंड a highly respected performer with over 2 decades of distinguished contribution to Carnatic music. He has presented more than 500 solo concerts, many of them accompanied by eminent maestros such as Dr. T.K. Murthy, Shri Umayalpuram K. Shivaraman, Shri Shri Mushnam Raja Rao, and Shri Mannarkudi Ishwaran. His performances have also reached audiences abroad, including concerts in the United States, Paris, Southeast Asia, and Gulf countries. Born at Chengannasheri in Kerala, Madhavan Nambudiri began his musical training under his first guru, Shri P.G. Padmakumar. He later became a disciple of late T.V. Shankaranarayanan and also received advanced guidance from renowned musicians Shri P.R. Kumara Kerala Varma and Shri Kalanyur Chandrasekharan, a former music lecturer at the RLV College of Music and Fine Arts, Tripunatra. He is also a recipient of the Junior Fellowship from the Ministry of Culture, Government of India, and has been honored with the Best Musician Award from the Madras Music Academy.
2: The contribution of Akashavani to the growth of artists like me is truly immeasurable. Akashavani has provided a dignified platform that nurtures talent and strengthens the cultural fabric of our nation. Best wishes to Akashavani for completing successful 90 years.
0: आज रात के प्रसारण में इनके साथ संगत कर रहे हैं वायलिन पर विद्वान तिरुविरा विजु एस आनंद, मृदंगम पर विद्वान कोटयम जी संतोष कुमार और घटम पर श्री वाड़पल्ली आर कृष्ण कुमार।
1: इन टुनाइट्स प्रोग्राम ही विल बी अकंपनीड बाय विद्वान तिरुविरा विजु एस आनंद ऑन वायलिन, विद्वान कोटयम जी संतोष कुमार ऑन द मृदंगम एंड श्री वाड़पल्ली आर कृष्ण कुमार ऑन द घटम।
0: श्री चंगनाशेरी माधवन नंबूदरी अपने गायन की शुरुआत स्वाति तिरुनाल की रचना परम पुरुषम से कर रहे हैं, जो राग ललित पंचम पर आधारित है और खंडु चापू ताल में निबद्ध है।
1: श्री सीपी माधवन नंबूदरी बिगिन्स हिज वोकल रिसाइटल विद परम पुरुषम, अ कॉम्पोजिशन ऑफ स्वाति तिरुनाल इन द राग ललित पंचमम सेट टू खंडु चापू ताल।

0: अप्रस्तुत है केसी केशव पिल्ले की एक कृति श्री बालकृष्ण पाहिमाम, जो राग पूर्वी कल्याणी पर आधारित है और रूपक ताल में निबद्ध है।
1: यू विल नाउ लिसन टू श्री बालकृष्ण पाहिमाम, अ कॉम्पोजिशन ऑफ केसी केशव पिल्ले इन द राग पूर्वी कल्याणी सेट टू रूपक ताल।

0: अपने गायन को जारी रखते हुए श्री चंगनाशेरी माधवन नंबूदरी अब प्रस्तुत कर रहे हैं श्यामा शास्त्री द्वारा रचित रावे हिमगिरी कुमारी, जो राग तोड़ी पर आधारित है और आदि ताल में निबद्ध है।
1: The next item is रावे हिमगिरी कुमारी in the राग तोड़ी, set to आदि ताल, composed by श्यामा शास्त्री।

0: ये था तनियावर्तनम। मृदंगम पर थे विद्वान कोटेयम जी संतोष कुमार और घटम पर श्री वाड़ापल्ली आर कृष्ण कुमार।
1: दैट वॉज तनियावर्तनम प्लेड ऑन द मृदंगम बाय विद्वान कोटेयम जी संतोष कुमार एंड ऑन द घटम बाय श्री वाड़ापल्ली आर कृष्ण कुमार।
0: श्री चंगनाश्री माधवन नंबूदरी अपने गायन का समापन पुदुकोड कृष्णमूर्ति की एक रचना श्री हरे से कर रहे हैं, जो कि राग रेवती पर आधारित है और आदि ताल में निबद्ध है।
1: श्री सीपी माधवन नंबूदरी कंक्लूड्स हिज वोकल रिसाइटल विद श्री हरे कंपोज्ड बाय पुदुकोड कृष्णमूर्ति इन द राग रेवती सेट टू आदि।

0: विद्वान तिरुविजा विजू एस आनंद, मृदंगम पर विद्वान कोटेयम जी संतोष कुमार और घटम पर श्री वाड़ापल्ली आर कृष्ण कुमार ने संगति की थी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के तिरुवनंतपुरम केंद्र पर रिकॉर्ड किया गया और आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित किया गया।
1: With that, we conclude the vocal recital by Shri C.P. Madhavan Nambudiri in the broadcast of National Program of Music. He was accompanied by Vidwan Tiruvira Viju S. Anand on the violin, Vidwan Kottayam G. Santosh Kumar on the mridangam, and Shri Vaadapalli R. Krishna Kumar on the ghatam. This broadcast was recorded at Akashvani Tiruvananthapuram and came to you from the Delhi station of Akashvani.

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज भारत अमेरिका व्यापार वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में लगातार हो रही प्रगति, क्षेत्रीय तथा वैश्विक शांति और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज नई दिल्ली में सेवा तीर्थ में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। श्री मोदी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत और अमेरिका वैश्विक भलाई के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। इस बैठक के दौरान विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी उपस्थित रहे। प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक बयान में कहा कि अमेरिका के विदेश मंत्री ने श्री मोदी को रक्षा, रणनीतिक तकनीकों, व्यापार तथा निवेश, ऊर्जा सुरक्षा, कनेक्टिविटी, शिक्षा और लोगों के बीच संबंधों सहित कई क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग में लगातार हो रही प्रगति के बारे में जानकारी दी। श्री रूबियो ने पश्चिम एशिया की स्थिति सहित विभिन्न क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर अमेरिका का दृष्टिकोण साझा किया। श्री मोदी ने शांति प्रयासों के लिए भारत के निरंतर समर्थन की पुष्टि की और बातचीत तथा कूटनीति के माध्यम से संघर्षों के शांतिपूर्ण समाधान की अपील दोहराई। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि अमेरिका जिस तरह से हिंद प्रशांत क्षेत्र को देखता है, उसमें भारत की भूमिका सबसे अहम है। नई दिल्ली में अमेरिकी दूतावास स्पॉट एनेक्स बिल्डिंग का उद्घाटन करते हुए श्री रूबियो ने कहा कि भारतीय कंपनियों ने अमेरिका में $20 अरब का निवेश किया है।
1: अब हमारे व्यापारिक संबंध और भी बढ़ गए हैं। इसमें भारतीय कंपनियों का अमेरिका में $20 अरब से अधिक का निवेश शामिल है। हमने हिंद प्रशांत क्षेत्र में सैन्य अभ्यासों के माध्यम से अपनी सुरक्षा साझेदारी को और भी मजबूत बनाया है। निश्चित रूप से इस महत्वपूर्ण रिश्ते को और मजबूत बनाने के लिए एक व्यवस्थित और सुरक्षित काउंसलर प्रणाली की अत्यंत आवश्यकता है।
0: श्री रूबियो ने कहा कि उनकी इस यात्रा से दोनों देशों के आपसी संबंध और मजबूत होंगे तथा उनमें और अधिक प्रगति होगी।
1: इस रिश्ते की बुनियाद राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी के बीच का आपसी संबंध है। ये एक निजी रिश्ता है। इसकी शुरुआत पहले कार्यकाल के दौरान हुई थी, जब राष्ट्रपति ट्रंप को भारत आने का मौका मिला था। ये रिश्ता दूसरे कार्यकाल में भी कायम रहा। आप उन दोनों के बीच के जुड़ाव को साफ साफ देख सकते हैं और मुझे लगता है ये बेहद अहम है।
0: भारत ने पैक सिलिका समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत के युवा एक विकसित भारत की ओर अग्रसर होने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। आज वर्चुअल माध्यम से 19वें रोजगार मेले को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने ये बात कही। प्रधानमंत्री ने कहा कि पूरी दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनने के लिए उत्सुक है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज महाराष्ट्र के शिरडी स्थित सावली विहिर औद्योगिक क्षेत्र में स्थापित तोप के गोले बनाने वाले संयंत्र का उद्घाटन किया। इस परियोजना को निबे ग्रुप ने विकसित किया है। इस दौरान श्री सिंह ने कहा कि मेक इन इंडिया पहल के माध्यम से देश रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भर बन रहा है। केंद्र ने रक्षा अवसंरचना को मजबूत करने के लिए भूमि की आवश्यकता के मद्देनजर नई दिल्ली स्थित जिमखाना क्लब को 5 जून तक परिसर खाली करने का निर्देश दिया है। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के अधीन भूमि और

विकास कार्यालय के आदेश में कहा गया कि ये भूमि तत्काल संस्थागत आवश्यकताओं, शासन अवसंरचना और जनहित परियोजनाओं को पूरा करने के लिए आवश्यक है। चीन के शांचकी प्रांत में एक कोयला खदान में गैस विस्फोट में मरने वालों की संख्या 90 हो गई है। यह विस्फोट कल क्यूआन काउंटी की लियुशेन्यू कोयला खदान में हुआ। अब तक 201 खनिकों को बचाया जा चुका है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने व्यापक बचाव अभियान और घायलों के उपचार और दुर्घटना के कारणों की जांच के आदेश दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस हादसे में हुई जानमान की हानि पर गहरा दुख व्यक्त किया। श्री मोदी ने भारत की ओर से राष्ट्रपति शी जिनफिंग और चीन की जनता के प्रति संवेदना व्यक्त की। वियतनाम के दा नांग में आज एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवान सूरज वशिष्ठ और सागर सिंह ने रजत पदक अपने नाम किए। 60 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में सूरज वशिष्ठ को एबेक एतुगोब से, वहीं 67 किलोग्राम वर्ग में सागर सिंह को एहतजान खालमा से हार का सामना करना पड़ा। प्रतियोगिता में कुमार सचिन ने 77 किलोग्राम भार वर्ग और रोहित ने 97 किलोग्राम भार वर्ग के कांस्य पदक के मुकाबले जीतकर कांस्य पदक अपने नाम किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।